हाथों की हथेलियों में घर्षण करेंगे। अपने चेहरे और आंखों में लगाने के बाद में अब हम ओजस वायु प्राणायाम की ओर चलते हैं। योगा मैट या चद्दर पर अब आप सीधे लेट जाएं पीठ के बल। पीठ के बल लेट जाने के बाद में आज हम वायु आसनों में से सबसे पहला आसन कराने जा रहे हैं साइकिलिंग, जो आपकी थाई के लिए, आपकी कमर के लिए, पेट के लिए, भुजाओं के लिए बहुत ही लाभप्रद होता है। जिन लोगों को लगता है कि वो फैट में हैं, यानी उनका बहुत बेली फैट हो गया है, बहुत ज़्यादा शरीर में आपको भारीपन लगता है, तो यह आसन आपको नित प्रतिदिन करने से आप खुद में एक स्फूर्ति और एक ओजस को पाएंगे। तो लेट जाने के बाद में आपको अपने पैर उठा लेने हैं, मतलब घुटने आपको मोड़ लेने हैं। आपने देखा होगा कि जब साइकिल चलाते हैं, काफी लोगों ने साइकिल चलाई होगी बचपन में और अभी भी, तो जब साइकिल चलाते हैं तो साइकिल का पेंडुलम जो होता है वो अप डाउन करते हैं, यानी ऊपर नीचे 1 2 3 4। इस तरीके से आपको पेंडलिंग करना है लेट करके अपने पैरों की मदद से। पीठ के बल हम नहीं लेटेंगे, पीठ के बल आपको लेटना है और पैरों को ऊपर उठाते हुए साइकिलिंग चलानी है, पेंडुलम चलाना है, जैसे आप पेंडुलम करते हैं, पेंडलिंग करते हैं साइकिल की, उस तरीके से आपको कम से कम 3 सेट लगाने हैं। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में आपको यह केवल 2 ही सेट लगाना है 15-15 के, यानी 15 आप गिन सकते हैं और उसके बाद में फिर आप 15 की गिनती कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपने 15-15 के 2 सेट लगा लिए। साइकिलिंग के बाद में आपको पैर सीधे कर लेने हैं और एक लंबी गहरी सांस लेकर के विश्राम कर लेना है। वाय आसनों में ये पहला है। आइए अब हम दूसरे वाय आसन की ओर चलते हैं। इसमें आपको दीवाल की सहायता से दोनों पैरों को दीवाल की तरफ खड़े कर देना है और आपके हिप्स बिल्कुल दीवाल की तरफ से लग जाएंगे, यानी पैरों को दीवाल के सहारे आपको सीधे पैर खड़े कर देने हैं। अब बारी आती है इसको पैरों को किस तरीके से मोड़ना है। पैरों को स्ट्रेस करना है, खींचना है बीच में स्पेस करके कि जितने पैर आपके खुल सकते हैं, यानी कि आपको अपने पैर दीवाल के सहायते से ओपन करना है, क्लोज करना है, खोलना है, बंद करना है और उसी अवस्था में आपको दोनों हाथों को भी करना है, यानी कि दोनों हाथों को सीधे कर लेना है सबसे पहले और दोनों पैर को, उसके बाद जिस तरीके से आप पैर खोलेंगे उसी तरीके से दोनों हाथ भी आप खोलेंगे, बंद करेंगे। यह भी आपको 15-15 के 2 सेट लगाने हैं प्रारंभिक अवस्था में। प्रारंभिक अवस्था में 15-15 के 2 सेट लगा लेने हैं और उसके बाद जिस तरीके से आपको लगे कि अब हम इसमें कर सकते हैं और ज़्यादा भी, तो आप अपने सेट्स बढ़ा सकते हैं, यानी कि 3, 4, 5, जिस तरीके से आपको लगे या आप कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण की बात यह है कि आप में जितना ओजस है आप उतना ही पर्याप्त करें। जितनी आप में ऊर्जा है आप उतना ही इस वाय आसन को कर सकते हैं। तीसरा और मुख्य आसन हम कराने जा रहे हैं इसमें, जो कि है अब आपको दीवाल की सहायता से खड़े हो जाना है। दाहिना हाथ आप दीवाल पे रखेंगे, हाथ की हथेली को, और एक ही हाथ रखना है दाहिना, और आपको उसी तरफ खड़े हो जाना है तिरछा करके। अब एक पैर, यानी जो आप दाहिना हाथ आपने रखा है, अब आपको बायां पैर उठा करके ऊपर की तरफ खींचना है, फिर नीचे कर देना है, फिर ऊपर करना है, यानी पैर को हवा में उठाना है। इस तरीके से आप दोनों तरफ पैर

कार्यों को कर सकते हैं। अभी आपने दाहिना हाथ रखा है, अब आप मुड़ जाएंगे, दीवार की तरफ बायां हाथ रख देंगे और दाहिना पैर उठाना है। इस तरीके से भी आपका बेली फैट बहुत ही जल्दी कम होता है। पेट के पास जो चर्बी हो जाती है, आपने देखा होगा, वो बहुत ही खराब लगती है। जब आप कुछ भी पहनते हैं, कहीं आप जाते हैं, तो उस बेली फैट को कम करने के लिए जो तीन आज वायासन बताए गए हैं, इससे यदि आप नित प्रतिदिन करेंगे तो आपको ओजस के साथ साथ यह बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण लगेगा। वायासनों को करने के लिए कोई सावधानी नहीं है, सिर्फ आपको ओजस का ध्यान रखना पड़ता है कि आप कितना ऊर्जावान इसको करने से पहले और बाद में अपने आप को महसूस कर रहे हैं। तो ये था आज का ओजस वाय प्राणायाम और आसन। इसी तरीके से हम 30 दिवसीय रोज किसी एक शब्द के साथ हर एक आसन की ओर बढ़ रहे हैं। नित प्रतिदिन योगशाला में आकर के हम कोई ना कोई नया आसन प्राणायाम सीखते हैं और करते हैं, और इसी श्रृंखला में हम कल फिर मिलेंगे। लेकिन अभी प्राणायाम आसन के बाद में हम 15 मिनट का योग आसन भी करने वाले हैं। तो आइए हम योग आसन की ओर चलते हैं और फिर कल मिलेंगे इसी उम्मीद के साथ। तब तक करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की उपाशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं। तो आइए दोस्तों, जो कि एक नामों के साथ में सीरीज चल रही है, योग के साथ में एक नाम को जोड़ करके। जैसा कि पहली सीरीज में हमने आपको बताया था नौकासन, यानी कि अलौकिक नौकासन, उसी के साथ में एक नया नाम अब हम आज आपके सामने बताने वाले हैं, जो कि है प्रकाशमय वृक्षासन। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि प्रकाशमय वृक्षासन क्यों है। आपने देखा होगा कई बार जब हम कोई भी सीरीज देखते हैं, कोई भी पुरानी सीरियल्स को देखते हैं, कोई आध्यात्मिक सीरियल्स को देखते हैं, तो आपने देखा होगा कि ऋषि मुनि जब घोर तपस्या करते थे तो वो पेड़ों पे जाकर के या फिर पहाड़ों पे जाकर के एक पैर पे खड़े होकर के इस आसन को करते थे, जो कि बहुत प्रचलित है, जिसका नाम वृक्षासन। इसका मतलब ये नहीं होता है कि यह वृक्षों की तरीके से सिर्फ सीधे खड़े रहना ही है। यह वृक्ष की तरह तो लगता है, लेकिन श्वास का लेना, निरंतर रूप से श्वास को कम करना, कैसे लेना है, क्या अंतर में कुछ ऐसी उपलब्धियाँ जिसे हम पाना चाहते हैं, कुछ ऐसी गतियाँ जिन्हें हम अपने रूप में उसे जानना चाहते हैं, ये सारी गतिविधि हमारे वृक्षासन के अंतर्गत आती है। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि वृक्षासन प्रकाशमय वृक्षासन क्यों है। सबसे पहले तो साधारण रूप में वृक्षासन होता है, दूसरा ध्रुव आसन जिसे भागीरथ आसन भी कहा जाता है, उसके बाद में द्वितीय प्रकार यानी कि क्रम पूर्ण एक आसन भागीरथ का दूसरा, ये सारे प्रकाशमय वृक्षासन के अंतर्गत आते हैं। वृक्षासन करने से पहले मैं बता दूं कि यह प्रकाश की तरीके से बहुत ही ज्यादा तेज और हमें रोशनी प्रदान करने वाला होता है। जिस तरीके से हम पेड़ों पे या फिर पहाड़ों पे पहुंचकर एक अलौकिक तेज को प्राप्त करते हैं, चारों तरफ एक रोशनी रोशनी, ठीक वैसे ही यह आसन को करने के बाद भी हमें अपने शरीर में कुछ इसी तरीके से अनुभूति होती है। वृक्ष के समान आकृति होने के कारण इसे वृक्षासन तो कहा ही जाता है। सर्वप्रथम समावस्था में हमें खड़े हो जाना है, फिर शरीर को संतुलित रखते हुए दाहिने पैर को घुटने से मोड़ें और पैर के पंजों को बाएं पैर की जांघ के मूल पे लगाएं। ध्यान रहे दाहिने पैर के पंजे की उंगलियां जमीन पर टिकी रहें। इस प्रकार एक पैर पर संतुलन बनाएं। अब दोनों हथेलियों को मिलाएं और सीधे आकाश की तरफ उठाएं। दोनों हाथों की कोहनियां सीधी रखें और आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाएं। ये है प्रकाशमय वृक्षासन का पहला, जिसमें हमें सीधे खड़े हो जाना है, वजन एक पैर पर हमें पूर्ण रूप से डाल देना है, दूसरे पैर का तलवा, जांघ और पिंडली घुटने पर नहीं रखना है, हाथ जोड़कर नमस्कार मुद्रा में ऊपर की ओर उठाना है, नजर सामने और एक बिंदु पर ही टिकी होनी चाहिए, 20 से 30 सेकंड रुकें और सामान्य सांस को लेना है और छोड़ना है, धीरे धीरे बदल कर दूसरे पैर की ओर हम आ सकते हैं। समय इसका होना चाहिए 5 से 10 सेकंड, ताकि हमें फिर दूसरे पैर
को ऊपर उठा करके हम अवस्था को चेंज कर सकते हैं। वापस ताड़ासन की स्थिति में आए यानी दोनों पैरों को उठाना है, पंजों को उठा करके पंजे नीचे रहेंगे और एड़ियां ऊपर। अब आपको यही प्रक्रिया दाहिने पैर पर खड़े होकर दोहरानी है। इस प्रकार यह क्रिया लगभग क्रमशः 4 से 5 बार दोहरानी है। दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए श्वास को लेंगे। पूर्ण स्थिति में स्वाभाविक श्वास प्रवास करें। हाथों को नीचे करते समय श्वास को धीरे धीरे छोड़ें। इस तरीके से वृक्षासन के फायदे, आइए अब हम आपको बताते हैं। बैलेंस और एकाग्रता बढ़ती है, पैरों और टखनों की ताकत बढ़ाती है, पोस्चर सुधरता है, मन शांत होता है और एकाग्रता आती है, जो कि स्टूडेंट्स को ये जरूर से अपनाना चाहिए। हर एक फायदे से कहते हैं ना, हर एक योग के अलग अलग फायदे होते हैं, तो खास करके विद्यार्थियों को यह आसन जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ में पैर पिंडली पर आराम से रखें, ताकि दीवार कुर्सी का हल्का सहारा भी आप स्टार्टिंग में आप ले सकते हैं। पहले के दिनों में 10 से 15 सेकंड ही आप इसको कर सकते हैं और फिर आप इसे धीरे धीरे इसका समय बढ़ा सकते हैं। आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इसकी सावधानियाँ। अगर आपको यह आसन करते समय चक्कर आते हों या घुटनों में दर्द हो तो दीवार के पास सहारा ले सकते हैं। पैरों को सीधे घुटनों पर न टिकाएं। संतुलन बिगड़े तो तुरंत पोज को चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ में एक आसन और जो कि इसी का दूसरा प्रारूप है, वो है भागीरथ आसन। वृक्षासन को करने के साथ साथ भागीरथ आसन जरूर करना चाहिए। भागीरथ आसन का नाम ध्रुव आसन भी है। भक्त ध्रुव एवं भागीरथ ऋषि ने इस आसन से साधना की थी, जो कि वृक्षासन का दूसरा प्रारूप है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने किया प्रकाश में वृक्षासन, जिसको करने से हमारे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश का आगमन होता है। इस तरीके से हम फिर से मिलेंगे आपसे एक नई सीरीज में, एक अलग नाम और एक अलग योग के साथ में। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। नमस्कार दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आपका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप पहले से अच्छे और बहुत अच्छे होंगे और नित सवेरे आकर के योगशाला में योग प्राणायाम करते होंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि किस रोग में कौन सा प्राणायाम उचित होता है। थोड़ी बहुत जानकारी हम देंगे उस रोग के बारे में और साथ में जानकारी देंगे प्राणायाम के बारे में, यानी कि आसनों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हार्ट अटैक। दोस्तों, ये आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन में है। ज्यादा टेंशन करना और काम के प्रेशर को लेकर के जब काम पूरा नहीं होना या फिर फैमिली प्रॉब्लम को लेकर के लोगों को चिंताएं घेरे रहती हैं, जिसके कारण से हार्ट अटैक का खतरा जो है वो अमूमन ज्यादा सा बढ़ गया है। योग का अभ्यास करने से ऐसे खतरों में बहुत ही जल्दी से सुविधाएं मिलती हैं हमें उन्हें ठीक करने की। हृदय रोग का कारण बनने वाले उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल और उक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में सहायक है, जिससे हृदय गति कम करने में मदद मिल सकती है। योग करने वाले लोगों को में अन्य लोगों की तुलना में हार्ट अटैक का खतरा कम होता है, ये सभी को पता है। तो आइए आज हम बताने वाले हैं कि हृदय रोग के जो रोगी होते हैं उन्हें कौन सा आसन प्राणायाम करना चाहिए। स्पेशली हार्ट अटैक जब किसी को आता है तो उसके कुछ लक्षण होते हैं। दाहिने हाथ में दर्द होना, सीने में दर्द होना। अभी हाल में ही हमने एक डॉक्टर से सलाह करी थी, यानी कि हमारा एक प्रोग्राम था डॉक्टर्स की सलाह में, तो उन्होंने बताया कि यदि आपके चेस्ट पेन हो रहा है, यानी अगर चलते फिरते चेस्ट पेन हो रहा है, तो यह कोई भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ मसल्स की दिक्कत हो सकती है, कुछ हड्डियों की दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर आपके हाथ पैर चल नहीं रहे हैं, आप कहीं हिल डुल नहीं रहे हैं, उसके बावजूद अगर आपको चेस्ट पेन है, तो ये बिल्कुल आपको हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं, तो तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए। तो आइए दोस्तों, आज हम बताएंगे कि कौन से प्राणायाम अगर हमें अभी से ही शुरू कर देने हैं तो यह खतरनाक से खतरनाक बीमारी नहीं हो सकती है। जो कि मुख्य आसन है भुजंगासन, गौमुखासन, मलासन, ताड़ासन और ब्रिज पोज। मैं आपको बता दूं कि भुजंग आसन के बारे में भुजाओं से संबंधित होता है, जिसको हम कोबरा पोज भी कहते हैं। ये इसीलिए करा जाता है क्योंकि जब भुजाओं से संबंधित हम कुछ प्राणायाम करते हैं तो हार्ट जो होता है, यानी कि हृदय की मांसपेशियां जो है वो खींचती हैं, जिसमें ब्लड सर्कुलेशन जो है वो आराम से उस तक पहुंचता है और हमें हृदय संबंधी जो भी रोग होते हैं उससे मुक्ति मिलती है। और हमें सावधानी भी बरतनी चाहिए। सावधानी ये बरतनी चाहिए कि यदि हम कोई आसन प्राणायाम कर
रहे हैं, तो अगर हमें ज्यादा पसीना आ रहा है या घबराहट सी हो रही है तो हमें उस प्राणायाम को नहीं करना चाहिए, रुक रुक के उस प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। जिसको करने से हमें बहुत ही शांति और खुशी प्रदान हो, वही आसन प्राणायाम को हमें आगे नित्य नियम में करने चाहिए। आइए दोस्तों, हम दूसरे एक रोग की तरफ चलते हैं, जो कि है गठिया। गठिया दोस्तों हाथ में हो सकती है, पैर में हो सकती है, और आप तो गले में, गर्दन में, कमर में, कहीं पे भी ये गठिया का दर्द पड़ सकता है। तो आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि इसमें कौन सा आसन प्राणायाम करना चाहिए। गठिया के रोगों को, जो कि रोगी होते हैं, उन लोगों को अनुलोम विलोम, कपालभाति जरूर से करना चाहिए। दिन की दिनचर्या शुरू करने से पहले अनुलोम विलोम को हमें नित्य नियम अपनी दिनचर्या में लाना चाहिए, जिससे गठिया जैसी गंभीर बीमारियां, जो कि शुरू होने से पहले ही खत्म होने की संभावनाएं 100 नहीं 200% होती हैं। अगर हम अपना वेट, जो कि हमारा वेट हो जाता है बहुत ज्यादा, उससे भी हमें ये प्रॉब्लम्स होने लगती हैं गठिया जैसी। घुटनों में दर्द होने लगता है, पैर की एड़ियों में दर्द होने लगता है, और हाथों की भुजाओं यानी कि जहाँ ज्वाइंट पेन्स होते हैं वहाँ पे दर्द होने लगता है। अगर आपको ये नित प्रतिदिन हो रहा है तो तुरंत से तुरंत आप आसन प्राणायाम के साथ साथ अपने जो कि आसपास के डॉक्टर हैं, आप उनसे संपर्क करें और इसकी दवाएं शुरू कर दें, क्योंकि गठिया रोग जो है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे यह रोग और भी बढ़ता जाता है। लेकिन मात्र एक योग प्राणायाम के माध्यम से हम किसी भी गंभीर से गंभीर बीमारी को खत्म कर सकते हैं, तो हम अभी से ही क्यों ना अपना लें ये सारे योग प्राणायाम। अनुलोम विलोम को करने के लिए आपको नित्य प्रतिदिन सुबह उठकर के नित्य क्रिया करने के बाद में आपको शामिल करना है। मांसपेशियों की प्रणाली में सुधार आता है, पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है और तनाव चिंता को कम भी करता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है यह सर्वोपरि और सर्वप्रथम प्राणायामों में से एक है, क्योंकि कपालभाति और अनुलोम विलोम मुख्य 8 प्राणायामों में से एक है, जो कि करने से पूरे संपूर्ण शरीर की जो कि गतिविधियां होती हैं उन पर वो सुचारू रूप से काम करता है। आइए दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही गंभीर बीमारी की, जो कि है शुगर यानी कि मधुमेह। इसमें हमको कौन से प्राणायाम करने चाहिए, कौन से आसन करने चाहिए, नित्य प्रतिदिन हमें अपने कौन सा जो कि डेली रूटीन अपनाना चाहिए शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए, आज हम आपसे बात करेंगे। शुगर लेवल को कम करने के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम और जो कि हमें इस रोग में करना चाहिए वह है कपालभाति। कपालभाति शुगर लेवल को कम करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण के रूप से जाना गया है। कपालभाति इसीलिए क्योंकि वह श्वास निर्मित है, श्वास को श्वास से जोड़ करके किया जाता है। श्वास की गति को बाहर छोड़ना, अंदर लेना, यह कपालभाति की प्रथम प्रक्रिया है। कपालभाति को करने से हमें मन चित्त को एकाग्र बैठ करके बिल्कुल भी कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं, और अपने मुख मंडल पर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ में इस प्राणायाम

आरजे अदनान के साथ नई सुबह नई बात थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे जिंदगी की बात जिंदगानी की बात गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन स्टे ट्यून्ड

0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्त्री 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप है आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9281 9876। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
3: गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC व डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर्स, किचन के लिए चिमनी, HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड फायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर वन प्रोडक्ट तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है एनवी ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 9019353594 और 8726168000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।

संगमरमर की मीनारों ने तो सुन लिया, पर क्या आपने सुना भाई आज के दिन का क्या है कहना? नहीं सुना ना? वही तो सुनाने वाले हैं आपको कि आज का दिन यानी सैटरडे मॉर्निंग आखिर आपसे कहना क्या चाहती है, क्या है इसके दिल में जो आपसे बयां करना चाहती है। बहरहाल आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपकी गुड मॉर्निंग गुंडा शो में आरजे अदनान वॉर्म वेलकम करते हैं आज की मॉर्निंग की ही तरह। तो चलिए इस नगमे को कंप्लीट करते हैं, वापस से आते हैं और आने के बाद बताते हैं कि आज का थॉट ऑफ द डे क्या है।

0: सुनो ना संगे मरमर की है मीनारे, फिलहाल सुनो दो इस शो को सुनने वालों। तो चलिए एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो में, आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। आपने ट्यून किया है रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, ये है गोंडा शहर की धड़कन। तो यस, अब हम आपसे क्या कहने वाले हैं, बहुत कुछ कहना है, बहुत सारी बातें हैं जो आपसे सच में कहनी है, और आज हम कहेंगे भी क्योंकि आज सैटरडे मॉर्निंग स्पेशल शो है। लेकिन सबसे पहले चूंकि बात आ रही है आज के सैटरडे के पैगाम की, कि भाई आज का सैटरडे यानी कि आज का आपका शनिवार आखिर पैगाम क्या लाया है आपके लिए ये जानने की, राइट? तो ये जाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो चलिए भाई, आज का आखिर आपको पैगाम बता ही देते हैं कि क्या लेकर आया है आपके लिए और क्या कुछ होने वाला है आपके गुड मॉर्निंग गोंडा शो में, क्योंकि आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। और भाई साहब यही तो है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन।
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite Ajay Khan.

इतना सुपर थॉट है कि हम क्या बताएं। आज का थॉट बहुत ही उम्दा है और बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे है। सच में। अच्छा, आपको भी जानना है क्या है थॉट? चलिए बताते हैं आपको कि आज का थॉट क्या है और आज का थॉट क्या कहना चाह रहा है आपसे। दरअसल आज का थॉट कहता है कि हमें अपने आखिरी सीमा तक जाना है, हमें अपनी आखिरी सीमा तक जाना है। यही इश्क है, यही इश्क है, यही इश्क है। सो हमें अपनी आखिरी सीमा तक जाना है, यही इश्क है। इश्क की बातें, मोहब्बत की बातें, प्यार की बातें तो रोजमर्रा की जिंदगी में कोई ना कोई छेड़ ही देता है। वैसे इतनी सारी बातें हम करते हैं लेकिन तब भी सबसे ज्यादा प्यार जो फीलिंग होती है वो हम इंसानों के लिए भी यही होती है और हम एनिमल्स में भी देखते हैं। यानी इस धरती पर मौजूद हर प्राणी के लिए ये फीलिंग सबसे सर्वप्रथम है, सबसे सर्वोपरि है, है ना? यानी प्रायोरिटी पे रहती है। सो हमें अपनी आखिरी सीमा तक जाना है, यही इश्क है। अब हम ऐसा भी तो होता है कई बार अपना ही साथ निभाना छोड़ने लग जाते हैं, हम गिव अप करने लग जाते हैं। हमको जो जिंदगी जीना रहा है हमेशा से, हम जो करना चाहते थे वो रहने लग जाता है। चीजों में उलझ जाते हैं, अपने आसपास के लोगों में उलझ जाते हैं, लोगों से दुश्मनियों से उलझ जाते हैं, कभी कभी दिखावे में उलझ जाते हैं, तो बस परेशानियों का नाम ले लेकर उलझे रहते हैं। पर आज का थॉट कहता है कि हर वो मुमकिन की आखिरी सीमा तक जाना जो आप अपने लिए करना चाहते हैं, यही इश्क है। अब ये चाहे आपका खुद के लिए हो या किसी के लिए हो, इश्क तो यही है कि उसको करने की कोशिश में अपनी आखिरी सीमा तक जाना। दैट्स द थॉट। कितना ज्यादा ग्रेट है, कितना ज्यादा इंटेंस है, वाओ क्या बात है। सो मुझे लगता है शायद हर उस शख्स के लिए जिसने जिंदगी को अभी नए आयाम में नहीं देखा है, नए चश्मे से नहीं देखा है, नई निगाहों से नहीं देखा, उसके लिए बहुत बेहतर होगा कि अगर वो उसको इस तरह से देखता है, उसको लाइफ को अपनी आखिरी सीमा तक जाते हुए देखना चाहता है, कोशिश करता है और फिर वो इश्क की अनुभूति करता है, तो शायद बहुत बड़ी बात होगी। वैसे तो हमने हमेशा से कहा है कि फीलिंग की कोई डेफिनेशन है ही नहीं फिक्स्ड, किसी के लिए कुछ तो किसी के लिए कुछ। लेकिन एक चीज है, सच में अगर हर मुमकिन कोशिश, नामुमकिन भी कोशिशें की जाए और कोशिश करते रहा जाए, अपने लिए, अपने पीस के लिए, खुद के लिए, अपनी ख्वाहिशों के लिए, इन चंद जो दिन बचे हमारी जिंदगी में उसको बेहतर करने के लिए, तो सच में कुछ ऐसा अनुभव होता है जो ना कभी इससे पहले आपने किया था और उसके बाद आप इतने ज्यादा बदले हुए होते हैं कि शायद आपको अंदाजा तो बिल्कुल नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों को होता है जो आपके आसपास आपको शुरुआत से देख रहे होते हैं, उनको दिखता है कहां से कहां तक का सफर है, है ना? सो इतना खूबसूरत थॉट है आज का सैटरडे मॉर्निंग स्पेशल का, क्योंकि थॉट कह रहा है हमें अपनी आखिरी सीमा तक जाना है और यही इश्क है। सो भाई, अब अपने लिए अपनी आखिरी सीमा नहीं लांगेंगे तो फिर किसके लिए लांगेंगे? तो हमको अपने लिए, अपनी उस लाइफ के लिए, अपनी उन ख्वाहिशों के लिए, अपनी चीज़ों को बेहतर करने के लिए, अपनी कोशिशों की आखिरी सीमा तक जाना है और ज़रूरी करना है। अब आखिरी सीमा का यहाँ मतलब समझते हैं ना? जी हाँ, हर जुगाड़, हर कोशिश, हर बगावत और हर उलझन, हर गम को पार करते हुए ये आखिरी सीमा मिलती है। सो थोड़े से में ही करके रुक जाने का कोई मतलब नहीं है, आखिरी सीमा का मतलब ही ये बहुत बड़ी बात है। यानी हर वो मुमकिन कोशिश, हर वो नामुमकिन दिखने वाली चीज़ें जो आपके लिए, वो सब कुछ आप करते चले जाएं अपने लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी पहचान के लिए, उस
मोमेंट को महसूस करने के लिए, उस फीलिंग को लाने के लिए कि आप भी महसूस करें अपनी लाइफ को, और ये कोशिशों के बाद ही समझ आने वाला है। जब तक लाइफ चेंज नहीं होती है तब तक हम कुछ चेंज नहीं पाते हैं। आप अगर कहीं कुछ नया करके आते हैं, कहीं और से होकर आते हैं, और किसी ऐसे शख्स से मिलते हैं जो उसी जगह था, उसी काम में था, वही चीज़ें कर रहा था, तो आप पाते हैं कि उसके पास सेम बातें हैं। और आप कहीं से अलग से आए होते हैं तो आपके पास वहाँ के टूर की कई तस्वीरें, कई यादें, बातचीत, जगह, फीलिंग, डायलॉग्स, कल्चर, लैंग्वेज, एटमॉस्फेयर, सब कुछ आपके साथ में रहता है। और आप गाते हुए फिरते हैं, क्यों? क्योंकि आपके पास अनुभव अलग भी हुआ है। एक जगह तो थे, वहाँ का तो था ही, लेकिन आप कहीं ऐसे अलग से आए। ठीक उसी तरह लाइफ में भी है। सो लाइफ में अंदाज़ा तब हमको हमारे बदलाव का होता है जब हम सच में बदल रहे होते हैं। हम सिर्फ बातों से कह रहे हों उससे कभी नहीं महसूस होने वाला। सो हम कर भी रहे हों और करके दिखा भी रहे हों, फिर वो बदलाव हमको सच में समझ आने वाला है। तो अब सिर्फ लफ्ज़ों से बदलाव नहीं होना चाहिए, बदलना है तो सच में खुद को बदलना होगा। सच में हमको खुद को आगे ले जाना होगा। इसके लिए काफ़ी सारा वक्त और काफ़ी सारा कंसंट्रेशन चाहिए, जो कि हम करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि दिस इज आवर लाइफ, और इसके अलावा कोई अलग रिस्पॉन्सिबल नहीं है सिवाय हमारे। यही कहना है आज के थॉट ऑफ द डे का। और मुझे उम्मीद है कि भाई आज का सुविचार जो आपने सुना है वो आपको कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है, और आपको हर वो सीमा याद दिला रहा है जब आपने अपने लिए कोई कोशिश ऐसी की थी, जब आप अपने एक्सट्रीम लेवल पे गए थे, वो आज भी आपको याद आ रहा है। और ऐसे अब ना जाने कितनी सारी सीमाएं अपनी बची हुई ज़िंदगी में हमको लांघते जाना है और निकलते जाना है। फिलहाल ये थॉट के बाद ये गाना आपके उस ख्वाहिश, आपके उस सपने को डेडिकेटेड है, या उस शख्स को जिसके लिए आप ऐसी फील रखते हैं।

सजना दशहरा ए। वाह क्या बात है। सो ये थॉट डेडिकेटेड था हमारे उस सपने को जिसके लिए हम अपनी आखिरी सीमा तक जाने वाले, या उस शख्स को जिसको हम लेकर कहते हैं सच में इश्क बिटवीन अस, राइट। सो चलिए भाई, फिलहाल हम देखते हैं कि आपने किसको मन ही मन डेडिकेट कर दिया है ये सॉन्ग, और साथ ही साथ आपके काफ़ी सारे मैसेजेस भी आ गए हैं चैट बॉक्स पर। चूंकि आप हमको सुनते हैं फ्रिक्वेंसी से, रेडियो गार्डन से और रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम की एप्लीकेशन से, अब एप्लीकेशन सुनने वालों को एक तगड़ा फ़ायदा होता है कि भाई वो जो चाहते हैं और जो सोचते हैं और जो उनके प्रतिक्रियाएं होती हैं, रिएक्शंस होते हैं, वो चैट पर लिखते हैं और वो हम तक सीधे पहुँच जाता है। तो सबसे पहला मैसेज आसिफ अंसारी का हैदराबाद से है। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू आसिफ, आपका स्वागत है, वेलकम है गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। एंड यस, इससे भी पहले जो एक मैसेज और आया है वो आया है मोहित का मालवीय नगर गोंडा से। हाय मोहित, गुड मॉर्निंग टू यू, स्वागत है, वेलकम है गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। आशु जी है लखनऊ से, सुप्रभात सर जी, सुप्रभात आपको भी। लिखा है आपने कि ज़िंदगी में दो चीज़ें भूलना बहुत ही मुश्किल है, एक दिल का घाव और दूसरा किसी दिल का लगाव। क्या बात है। एंड इसके बाद सविता दुबे जी का मैसेज आया है और आप लिखती हैं सर जी प्यारा सा सुप्रभात, सुप्रभात आपको भी। सुप्रभात बोला है हमारी प्रीति जी ने भी, आपको भी सुप्रभात, और साथ ही आपने रिएक्शन भी दिया आज के थॉट ऑफ द डे पर और बाकायदा लिखा भी है। क्या लिखा है, अच्छा ये भी बताना है, ऑल राइट चलिए बता देते हैं कि भाई हमारी प्रीति जी ने बहराइच से आखिर क्या रिएक्शन दिया और क्या कुछ लिखा है। सो आप लिखती हैं वाओ लवली थॉट, और साथ ही आप कहती हैं कि भाई ये थॉट मेरे ऊपर एकदम हिट फिट है, मैं आखिरी सीमा तक अपनी ज़िंदगी में कोशिश करती रहूँगी कुछ ना कुछ करने या पाने की। मुझे लगता है ये कोशिश करना छोड़ देना, ये ख्वाहिशों को मार देना ही ज़िंदगी को ख़त्म कर देना होता है। आप कहाँ पे हैं, आप किस एज में हैं, आप कौन है, कोई ताल्लुक नहीं रखता है। आप अगर आप एक इंसान हैं तो आपके पास आपकी ख्वाहिशों का ज़िंदा होना बहुत ज़रूरी है, अपने लिए बहुत ज़रूरी है, और जब आप ज़िंदा होंगे तो शायद अपने आसपास वालों के लिए ज़्यादा ही ज़िंदा हो पाएंगे। समझ रहे हैं ना हमारी बात को, बिल्कुल समझदार हैं आप काफ़ी। और हमारी आशु जी लखनऊ से लिखती हैं बहुत ही प्यारा सा सुविचार सर जी, सुपर से भी ऊपर, अच्छा मेरे सर के ऊपर से मैं देख रहा था। खैर थैंक यू सो मच टू यू कि आपको थॉट इतना ज़्यादा पसंद आया आशु जी, बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है कि थॉट्स की यही अच्छाई होती है कि जिस लम्हा हमको लगता है कि अरे ये थॉट हमारा अपना है, उस लम्हा हम इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं, खुश होना भी बनता है क्योंकि कुछ चीज़ों की तलाश सदियों से या सालों से या महीनों से या बड़ा गहमा गहमी में रहती है, लेकिन जब उसको देखते हैं वो मिल जाता है जो हमको उसका जवाब चाहिए होता है, तो बड़ा ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं हम। और शायद ऐसे ही किसी बड़े सवाल का जवाब है आज का ये थॉट ऑफ द डे। आई होप कि आपको ये थॉट ऑफ द डे ज़रूर आपके साथ आपकी लाइफ टाइम आपको याद रहने वाला है, और आप भी अपनी खुद से इश्क की आखिरी सीमा तक जाने वाले हैं, है ना। यस, सो साथ मिलकर चलेंगे आखिरी सीमा तक, लेट्स गो।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप है आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

अच्छा, सही सही सही बताइएगा, अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई ऐसा शख्स है जिसने 6 साल लगा करके एक मूवी बनाई है, तो आप कहेंगे हाँ, मतलब हो सकता है। वैसे भी पहले 1 साल 2 साल लग ही जाता था एक मूवी बनने में। खैर, वो बहुत बड़ी बात तो नहीं है, सच में बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक शख्स ने अकेले सारी मूवी बनाई है, वो भी मूवी है और थिएटर में ही लॉन्च हुई है, ऑफकोर्स उसको दिखाया गया है, तो आप हैरान होने वाले हैं, राइट? कि भाई, अकेला इंसान जो खुद का ही प्रोड्यूसर भी है, खुद का ही डायरेक्टर भी है, खुद ही एक्टर भी है, खुद ही कैमरामैन भी है, और खुद ही एडिट किया और खुद ही सेट की डिज़ाइन की, और इसीलिए एक मूवी बनाने में उसे 6 साल लग गए। अकेले पूरी मूवी शूट की, अकेले पूरी मूवी लिखी, बनाया, और उसके बाद उसको सिनेमा घरों में देखने को मिला। अब आप सोचेंगे कहाँ का है वो शख्स। हैरानी तब होगी जब आप ये जानेंगे कि अपने भारत का है वो शख्स। अब आप कहेंगे हाँ, ये तो नहीं सुना था, तभी तो हम बताने वाले हैं, क्योंकि मुझे भी पता है कि आपने अभी तक नहीं सुना था। दरअसल एक ऐसे शख्स की हम बात बताएंगे जिसके पास ना ही बजट था और ना ही क्रू, ना ही टेक्नीशियन। अकेले 6 साल की मेहनत से बना डाली पूरी फीचर फिल्म, एक ऐसे फिल्म मेकर की बात जिसको सुनकर आप होने वाले हैं हैरान। तो चलिए, हमें भी करना है आपको हैरान, क्योंकि मुझे मज़ा आता है आपको हैरान करते हुए। सो आप सुन रहे हैं अपना 89.6 FM का मॉर्निंग शो, जिस पर हम इस म्यूज़िकल ब्रेक के उस पर वापस से आकर के बताने वाले हैं कि आखिर कौन है वो शख्स जिन्होंने ज़िंदगी के 6 साल दे दिए एक अकेले मूवी बनाई, और वो मूवी अकेले इस कदर बनाई जिसमें वो एक्टर भी खुद ही, डायरेक्टर भी वो खुद, और इसके अलावा कैमरामैन भी वो खुद, एडिटर करने वाले भी वो खुद, और इसके बाद वो फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज़ हुई है ना? सोचने वाली बात है ना, कितनी अलग बात। अब ज़रा सोच रहे हैं तो चलिए सोचिए। फिलहाल इस म्यूज़िकल ब्रेक के उस पार वापस से आते हैं और बताते हैं उस शख्स के बारे में जिसने फिलहाल ये कारनामा कर दिखाया है और है भारत का।

0: भाई चलिए, आपने माही बुलाया लेकिन मैं आ गया। फिलहाल अब आ गया हूँ तो आपको बताने वाला हूँ उसी शख्स के बारे में जिसके पास ना बजट था, ना क्रू, ना टेक्नीशियन। अकेले उस शख्स ने 6 साल की मेहनत से पूरी फीचर फिल्म बना डाली। अकेले मतलब कितनी बड़ी बात है, अकेले एक पूरी फीचर फिल्म को बना देना, डिज़ाइन कर देना, राइट? तो आखिर कौन है वो शख्स, और वो भी भारत के? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, भारत के। चलिए ये भी आपको हम बता देते हैं ताकि ये राज जो है इससे पर्दा उठ जाए, और आप भी ये सवाल किसी और से करेंगे तो शायद अगला भी सामने वाला सोचने पर मजबूर जरूर हो जाएगा।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite Aajya Khan.

एक तरफ जहां लो बजट फिल्मों की चर्चा है, वहीं तमिल फिल्म मेकर संकगिरी राजकुमार एक कदम आगे निकल गए। जी हाँ, इन्होंने वन मैन खुद लिखी, खुद शूट की, खुद एक्टिंग की और पूरी तरह से अकेले डायरेक्ट की इस मूवी को। ना ही सेट पर कोई असिस्टेंट था, ना ही कोई सिनेमाटोग्राफर, ना ही कोई मेकअप आर्टिस्ट। राजकुमार ने खुद सेट और कॉस्ट्यूम डिजाइन किए, कैमरे के सामने एक्टिंग की, एडिटिंग की, वीएफएक्स बनाए, म्यूजिक दिया और फिल्म रिलीज की। और ये सब लगभग इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन पांचवी पीढ़ी के थिरुकुथु आर्टिस्ट होने के नाते राजकुमार बचपन से सीखते आए हैं कि एक परफॉर्मर को प्रॉप्स से लेकर के मेकअप तक सब कुछ अकेले ही संभालना पड़ता है। सो इन्होंने 2020 में कोरोना एपिडेमिक से ठीक पहले ये फिल्म शुरू की थी। इसके बाद टेक्निकल दिक्कतें आईं, थकान और कई रुकावटों भरे 6 साल इनके बीते। फिर भी अकेले होने के बावजूद इन्होंने स्टोरी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया ही नहीं। इसके बजाय इन्होंने स्क्रिप्ट बिल्कुल वैसी ही रखी जैसे इनके पास पूरी टीम हो। रिजल्ट क्या हुआ आखिर? फिर यही कि इन्हें एक अकेले इंसान ने अपने विजन से इसको सच कर दिया। जी हाँ, सो फिल्म की स्टोरी भी काफ़ी ज़्यादा दमदार है। ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसे दुनिया कंट्रोल करने वाली डिवाइस मिलती है, और एंड क्रेडिट्स जो है आने तक आपको यकीन नहीं होगा कि ये सिर्फ एक इंसान का काम है। मतलब जब आप मूवी देखेंगे तो आप यकीन ही नहीं कर पाएंगे कि एक ही इंसान ने इसको लिखा है, एक ही इंसान ने इसमें एक्टिंग की है, एक ही इंसान ने डायरेक्शन दिया है, एक ही इंसान ने खुद से कैमरा चलाया है, एक ही इंसान ने एडिट किया है, वीएफएक्स डाले हैं और म्यूज़िक भी एक ही इंसान ने दिया है। मतलब लिटरली आप यकीन ही नहीं कर पाएंगे। सो 6 साल की कड़ी मेहनत के बाद फिल्म थिएटर्स तक पहुंची और दिग्गजों ने इसकी तारीफ की। लेकिन दरअसल असली स्ट्रगल जो है वो फिल्म पूरी होने के बाद शुरू हुआ, जब इनके पास प्रमोशन के लिए फंड ही नहीं बचा। इनका कहना है कि इनके अंदर के प्रोड्यूसर ने फिल्म मेकर का साथ नहीं दिया। इन्होंने सरकार से भी मदद मांगी। अब थिएटर्स और ओटीटी का खर्च उठाना मुश्किल होने की वजह से इन्हें इसे यूट्यूब पर फ्री रिलीज करना होगा। यानी इनका कहना है कि ये इस तरह का खर्च अभी फिलहाल नहीं उठा सकते, इसलिए फ्री में यूट्यूब पर लॉन्च करने वाले हैं। सो दुनिया भर में सरकारें ऐसे शानदार एक्सपेरिमेंट्स को सपोर्ट करती है और फिल्म फेस्टिवल्स में प्लेटफॉर्म भी देती हैं। सो क्या लगता है, भारत को भी ऐसा करना चाहिए? क्योंकि ऐसे बेहतरीन आइडियाज़ को ऑडियंस तक पहुँचाने का मौका तो मुझे लगता है मिलना चाहिए। अब आपकी क्या राय है ये आप बता सकते हैं, लेकिन सच में आप इसको सुन करके हैरान तो ज़रूर हैं जब से आपने सुना है कि भाई एक ऐसा शख्स जिसने अलग ही लेवल पे जा करके खुद पूरी मूवी लिखी, खुद ही डायरेक्ट की, खुद ही एक्टिंग की, खुद ही एडिटिंग की, खुद ही म्यूज़िक डाला, सब कुछ खुद किया और इतने सारे कैरेक्टर्स अपने बनाए। यानी जितने सारे आपको उसमें शख्स मिलेंगे वो एक ही शख्स है जो अलग अलग तरह से गेटअप में, अलग अलग लुक में आपको दिखाई देगा। और यही इसी का डायरेक्टर है, यही इसी का एक्टर है, यही इसका एडिटर है, यही म्यूजिशियन है, यही प्रोड्यूसर है, सब कुछ यही वो शख्स हैं जिनके बारे में हम बता रहे हैं। और उनका नाम है संकगिरी राजकुमार। सो संकगिरी राजकुमार का ये कारनामा जो 6 साल में अकेले पूरी फीचर मूवी बना डाली, ये बहुत बड़ी बात है। बट अब आप क्या समझ पा रहे हैं इस बात से, आपको क्या ख्याल आ रहे हैं और संकगिरी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यानी जो संकगिरी राजकुमार ने कारनामा कर दिखाया, सच में क्या ये मुमकिन था? मैंने कई बार क्या कहा, जब आप अपनी आखिरी सीमा तक जाते हैं कोशिश का, तो नामुमकिन दिखने वाली चीज़ें भी आपके लिए मुमकिन होती हुई नज़र आती है। हालांकि ये सच में आसान बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी हुआ तो सच है ना, सपना तो है नहीं, बिल्कुल हकीकत है। फिलहाल इस हकीकत पर आप ऐसे शख्स को कितना बड़ा सैल्यूट देंगे, खैर ये आप खुद तय करिए।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
3: गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है, गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC व डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर्स, किचन के लिए चिमनी, HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड वायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर वन प्रोडक्ट तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है एनवी ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 9019353594 और 8072668000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।
4: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: जब्बू ए जब्बू, चलो आठ का पहाड़ा सुनाओ।
1: दीपन जी,
2: आठ कम आठ, आठ दूनी सोलह, आठिया चौबीस, आठ
0: का कर रहे हो
1: बहन जी? पहाड़ा भूल गया मगर धुन तो याद है।
3: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, कोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन,
1: गोंडा शहर की धड़कन।
2: जब आप बच्चों के आसपास धूम्रपान करते हैं तो उन्हें हजारों ऐसे केमिकल से प्रभावित करते हैं जिनसे उनके जीवन को खतरा है। बीड़ी सिगरेट के धुएं में साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे कई जहरीले तत्व होते हैं जो स्वास्थ्य की गंभीर समस्याओं को जन्म देते हैं, जैसे कानों में दर्दनाक संक्रमण, गंभीर अस्थमा और जानलेवा निमोनिया। बच्चों का जन्म के समय कम वजन बीड़ी सिगरेट के धुएं की वजह से भी होता है और ये अचानक होने वाली शिशु मृत्यु के जोखिम को दुगना कर देता है। इसीलिए आज ही बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ें।
3: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: सुबह ही इसी बीच में दो मैसेजेस और आ चुके हैं चैट बॉक्स पर, तो चलिए भाई उसको भी ले लेते हैं। और बड़ी ही गहरी बात लिखी गई है मैसेज पर, यानी चैट बॉक्स पर। क्या लिखा है, किसने लिखा है, ये भी बताते हैं आपको आपके मॉर्निंग वाले शो में। मॉर्निंग जो का आरजे अदनान।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

रोजिली का है गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू। धर्मेंद्र मोहन जी फ्रॉम आवास विकास लिखते हैं अदनान से, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। और लिखते हैं, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर मैं अचानक गायब हो जाऊँ तो इस दुनिया का क्या बिगड़ेगा। सूरज वैसा ही उगेगा, गाड़ियाँ वैसे ही दौड़ेंगी, लोग अपनी चाय की चुस्कियों में उलझे रहेंगे, कुछ दिन दो चार लोग याद कर लें फिर मेरी जगह कोई और ले लेगा। हम सब इंसान कितने वहम में जीते हैं ना, कि हमारे बिना किसी की दुनिया रुक जाएगी, जबकि सच तो ये है कि ये सब कुछ हम सब एक किराएदार हैं जिसका नाटक ख़त्म होते ही पर्दा गिर जाता है। वाओ, थैंक यू सो मच। बहुत ही सच्चाई वाली बात आपने, फैक्ट बात कही, कि अगर एक सेकंड के लिए रुक करके सोचे कि आखिर हमारे बिना क्या है, तब हमको समझ में आएगा ये जो हम इतनी टेंशन लिए बैठे हैं, ये जो दूसरों के चक्कर में पड़े हुए हैं, फलाने धमाके के चक्कर में, शायद लाइफ इतनी शॉर्ट, प्रीशियस एंड इतनी कम है ना, कि अपने लिए भी चीज़ें बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी उसमें से हमें ज़िंदगी निकालना होता है। सो बिल्कुल सच है कि जितना भी वक्त है वो हमारा खुद का है और यही रह जाने वाला है। बाकी दुनिया कह रही है, दुनिया किसी की भी तारीफ कर रही है, तो क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आपकी बहुत तारीफ हो और आप अंदर से बहुत लोनली वाला या बहुत बुरा सा फील कर रहे हो, कुछ भी बेहतर ना लग रहा और हम तारीफ पे तारीफ और आपके लिए क्लैपिंग किए जा रहे हैं, तो कोई असर है? लेकिन कोई ऐसा शख्स जो अपनी मस्ती में जी रहा और उसको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है, जैसे कहते हैं ना, घंटा नहीं फर्क पड़ता है, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या नहीं कह रहा है, और जिया जा रहा है अपनी लाइफ अपनी तरह से, तो जाहिर सी बात है वो ज़बरदस्त लाइफ है, क्योंकि उसको चाहिए ही नहीं तालियां, उसको चाहिए ही नहीं अप्रिसिएशन, वो अपने में मस्त है और उसको अपना ही सारा अप्रिसिएशन, अपनी ही सारी तालियाँ खुद एली इनफ है। तो ऐसी ही लाइफ शायद होती है। एंड रोजिली का लवली सॉन्ग्स कलेक्शन, थैंक यू सो मच कि आपको सॉन्ग्स पसंद आए, एंड आई होप कि भाई आगे आने वाले सॉन्ग्स भी आपको पसंद ज़रूर आने वाले हैं, क्योंकि हमारी कोशिश है कि भाई हम ऐसे सॉन्ग्स आपको लगातार सुनाते रहें जो आपने किसी ज़माने में कभी सुना हो, या जिन सॉन्ग्स को आप पसंद करते हैं। यस, ऑब्वियस सी बात है, सो ये ज़रूर आप सुने। चलिए, फ़िलहाल वक्त हो गया है आपको ले चलने का अगले म्यूज़िकल ब्रेक की तरफ। आप सुनते रहिए अपना गुड मॉर्निंग गोंडा शो अपने मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान के साथ, क्योंकि आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम, रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम। ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। सुनते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

सो आज 10 अक्टूबर है। अब आपको ये तारीख याद हो कि ना हो, लेकिन आज कुछ खास दिन है जिस पर हम बात भी करने वाले हैं, और अगर आप कॉल करेंगे तो हम आपकी कॉल भी लेने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मुझे जवाब चाहिए कि भाई आज क्या है। आपको पता है ना कि 10 अक्टूबर को आखिर कौन सा स्पेशल डे है जो सेलिब्रेट किया जाता है और इसके क्या मायने हैं। सो चलिए फटाफट से कमेंट सेक्शन में आइए, यानी चैट बॉक्स पर, और मुझे बताइए कि भाई आज 10 अक्टूबर को ऐसा कौन सा स्पेशल डे जिस पर हम बात भी करने वाले हैं आपसे।

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

सो भाई, इस सवाल का जवाब जो है वो हमारी प्रीति जी ने बहराइच से दिया है। बहराइच से आपने लिखा क्या है? विश्व मानसिक दिवस यानी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। सो क्या ये सच है? ऑलराइट, सो ये बिल्कुल सच है और मुझे लगता है कि ये सच बहुत ज़्यादा सच है और इस पर शायद बात भी होनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा छूट सी जाती हैं और ये जब छूट जाती हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा पीछे हो जाती हैं और पीछे होना नहीं चाहिए, राइट? तो क्या है आखिर आज विश्व मानसिक दिवस पर ख़ास? भाई ये दिन ही अपने आप में बहुत ज़्यादा ख़ास है, क्योंकि इस पर हम जल्दी बात ही नहीं करना चाहते हैं। वैसे तो हम बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन जब किसी के साथ प्रॉब्लम होती है तो ऐसा लगता है कि न जाने कौन सी ऐसी प्रॉब्लम हो गई है जिसको करके हम बातें करते हैं। सो मेंटली इशू होना भी वैसे ही लाजिम है जैसे आपके साथ फिज़िकली होते हैं प्रॉब्लम, कि भाई कभी कोई फोड़ा निकल आया, बुखार हो गया, ज़ुकाम हो गया, किडनी का इन्फेक्शन है या कोई और प्रॉब्लम है, यानी जिस्म के किसी भी हिस्से में कोई इज़ा पहुँच रही है। उसी तरह से अगर मेंटली कोई परेशान है, कोई प्रॉब्लम है, तो क्या जहन या दिमाग जो है वो हमारे शरीर का हिस्सा नहीं है क्या? सोचने वाली बात है ना। तो फिर हम इस तरह से क्यों बिहेव करते हैं कि भाई ऐसा क्या हो गया है? ये जितना सोचेंगे शायद उतना बेहतर समझ में आएगा, लेकिन फ़िलहाल मुझे लगता है कि आप इस बात को ज़रूर समझ रहे होंगे कि आज का दिन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बात करने के लिए, है ना? यस, क्योंकि इस पे बात होती ही नहीं है उस तरह से, और मुझे ऐसा लगता है कि इस पर बात होनी ही चाहिए, इस पर बातें नहीं टलनी चाहिए, क्योंकि मेंटली प्रॉब्लम होना भी जो है वो बिल्कुल कॉमन सी बात है, लेकिन न जाने क्यों हम इन चीज़ों को लेकर के भागते रहते हैं और इस पर बात ही नहीं कर पाते, इसीलिए इसको समझ ही नहीं पाते हैं। वैसे तो हम बहुत सारी बातों को सुनते हैं, लेकिन जब हमारे आसपास या हम ख़ुद उन चीज़ों से गुज़र रहे होते हैं तो हमारे रिएक्शन अलग होते हैं। सो इन सभी चीज़ों के मद्देनज़र रखते हुए मुझे लगता है कि इस पर बात करनी चाहिए। वैसे एक सवाल भी आपसे आ रहा है जहन में पूछने के लिए, हालांकि अभी नहीं पूछने वाले हैं, आप कहेंगे सवाल बहुत पूछते हैं, राइट? तो सवाल भी पूछा जाएगा और उसका जवाब भी आप ज़रूर देंगे, लेकिन उससे पहले चलिए आपको बता देंगे कि भाई आखिर ये जो मानसिक दिवस हम मना रहे हैं इसको देखते हुए अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, किन चीज़ों पे हमारी बातचीत होनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।

जाहिर है जब सब कोई मेंटली खुश रहता है तो अच्छा ही लगता है और अच्छा दिखता भी है, ना सिर्फ लगता है। पर आज चूंकि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, यानी आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है, 10 अक्टूबर को मनाया जाता है पूरी दुनिया में। किस लिए? ताकि इसको लेकर के हम इतने तो जागरूक हो ही जाएं कि भाई इसको अलग से ना देखें। बिल्कुल जैसे हमारी बाकी शारीरिक समस्याएं होती, उसी तरह से मानसिक तौर पर भी समस्याएं होती है। और चूंकि मन तो हमारा हिस्सा है ना, कि अलग से है बॉडी से, हाँ नहीं ना? यस ऑफ कोर्स। तो आज 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, इस वजह से क्योंकि हम समझे कि जिस तरह से हमें निमोनिया हो जाता है, हैजा, कॉलरा, बुखार, जुकाम, आँख दर्द, पैर दर्द, किडनी की प्रॉब्लम और लिवर की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, माइग्रेन की प्रॉब्लम, उसी तरह से हम मेंटली भी परेशान होते हैं और ये भी हमारा एक हिस्सा होता है। सो इसके बारे में खुल कर के बात करना और जो होता है उसका इलाज बाकायदा प्रॉपर होता है, जैसे आपके फिजिशियन MBBS डॉक्टर्स होते हैं, उसी तरह से साइकेट्रिस्ट होते हैं जो इसका बेहतर इलाज करते हैं। और ये भी एक तरह की समस्या हो सकती है, लेकिन कुछ चीज़ों को आदत में जो होती है उसको भी हम कई बार काउंट कर लेते हैं कि भाई ये भी मेंटली प्रॉब्लम है, बट ऐसा नहीं होता है, वो देखने का कई बार नज़रिया भी होता है। तो इसलिए डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई कौन सी चीज़ें हैबिट है, कौन सा नेचुरल पार्ट है और कौन सी चीज़ें कोई डिसीज हो सकती है, जिसके बारे में चेक करना ज़रूरी हो जाता है। यस, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है एंड आई होप कि आप इस बात को ज़रूर समझ रहे होंगे। सो मेंटली परेशान क्योंकि आज लगभग हर कोई है। वक्त जो है वो हम कहते तो हैं कि नहीं है, लेकिन एक्चुअल में वक्त हमारा कहाँ गुज़र रहा, कैसे गुज़र रहा, जब इसको गौर करते हैं तो हम पाते हैं कि हमने मिलना जुलना छोड़ दिया। और अगर मिलते भी हैं तो भी अपने अपने डिवाइसेस के साथ होते हैं, और अगर डिवाइसेस भी नहीं होती है तो भी अपने अपने थॉट्स को चिपके लेकर पकड़े रहते हैं। सो फिर क्या मतलब रह जाता है किसी अलग शख्स से मिलने का, जब उसकी चीज़ों को अपने अंदर लाना ही नहीं है। और सेम ऐसी सामने वाले के लिए भी होता है। तो इस बात को समझना कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई हम जब कभी किसी से मिलते हैं, सच में बैठ के बात करते हैं, तो कितना फ्रीली चीज़ों को हमें महसूस करना होता है। और अगर हमारे घर में या हमारे साथ खुद ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो मेंटली हमको परेशान कर रही है, हमको पैनिक अटैक्स आते हैं, हमको कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो एबनॉर्मल लगती हैं, किसी भी शख्स से जुदा लगती है कि भैया ये तो नॉर्मल चीज़ नहीं है, तो उस पर हम बातचीत करें, उस पर हम चिकित्सकीय सलाह लें ताकि हम चीज़ों को बेहतर कर पाए। और इसके बारे में खुसफुस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मेंटली प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है, अगर भाई जाहिर सी है उसको ही होगी मेंटल प्रॉब्लम, जिसका मेंटल जो है वो जुड़ा होगा उसके फिजिकल से। एंड अब जो ये कह दे कि नहीं भैया मुझसे अलग है मेरी मानसिक चीज़ें, तो वो बात ही अलग है। तो चूँकि हर शख्स के साथ उसकी मानसिक स्थिति जुड़ी हुई है, तो जैसे आपके शरीर में प्रॉब्लम आती है, शरीर का एक हिस्सा है मन, उसमें भी प्रॉब्लम आती है और उसका भी ट्रीटमेंट होता है और उसको भी प्रॉब्लम्स उसकी रिजॉल्व की जाती है। तो ये बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ को लेकर के आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ हो, आप बहुत डिप्रेस्ड हुए हों, आप जो है वो डिप्रेशन में चले गए हों, उसके बाद वापस भी आए हों, या आपने कोई चिकित्सकीय सलाह ली हो और वो आपके लिए काम की हो, या किसी को लेते हुए देखा हो और आपको पता हो कि हाँ भाई फलाने ने जो है वो एडवाइस लिया था, कंसल्ट किया था डॉक्टर से, उसको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिला था, तो ऐसा कुछ भी है तो आप बता सकते हैं।

ऑफ कोर्स कॉल करके भी। कॉलिंग का नंबर है 63-93-316-429 63-93-316-429। और आज कॉलिंग का स्पेसिफिक विषय बहुत क्लियर है कि भाई आप बता सकते हैं मेंटल हेल्थ को लेकर, अगर आपके पास कोई स्टोरी है। अदरवाइज हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हमें पता है कि होती है, इर्द गिर्द घूमती है, जिससे हम रोज़ जो है वो दो चार होते हैं या सामने से मुलाकात करते हैं। वैसे अब चूंकि भैया ये हमारे शरीर का ही हिस्सा है तो जाहिर है हमको इसका अनुभव भी है, माने या ना माने, है तो है, और है तो प्रॉब्लम भी हुई है, और है तो उसका सोल्यूशन भी मिला है।

0: जैसा कि आपको बता चुके हैं, आज है 10 अक्टूबर और आज मनाया जा रहा है विश्व स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य दिवस। सो आज इसी पर हमने आपसे पूछा है कि भैया, अगर आपका कोई भी अनुभव है या आपने खुद लाइफ में ऐसा कोई अनुभव किया है तो आप कॉल करके बता सकते हैं। आपके आसपास का किसी का ऐसा अनुभव है और उसको हेल्प भी मिली हो तो भी आप बता सकते हैं। फिलहाल आइए अपने कॉलर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कौन है अगली कॉल पर।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite Ajay Khan.

0: सो भैया अब चलते हैं देखने के लिए कि भैया कौन है कॉल पर और उनका आखिर क्या है मानना आज की मेंटल हेल्थ डे को लेकर के। हाँ जी हेलो, जी सविता दुबे जी, कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ। अच्छा विषय जो है, जो मेंटली प्रॉब्लम से मैं गुजरी हूँ, हमारे जीवन में बहुत सारा उतार चढ़ाव हुआ था, इसके वजह से डॉक्टर ने बोल दिया था डिप्रेशन है, आपको 6 महीने दवाई चलेगा। हालांकि दवाई मैंने 2 महीने चला, उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई, तो कम होने के वजह से कम होने के जगह बढ़ गया था। फिर मैंने अपने आप को धीरे धीरे धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू किया हूँ, थोड़ा पेड़ पौधों के साथ अपना जीवन बिताना, पेड़ पौधों के बीच देखभाल करके अपना जीवन को थोड़ा सही किया। और फिर जाके खेत वगैरह देखने चली गई, फिर खाना पीना में बनाने के लिए मन लगाई हूँ धीरे धीरे। तब तक आपका रेडियो शो भी आ गया, तो आपका सबसे ज्यादा जो है ना, आपका शो ने मेरा इस डिप्रेशन से निकलने को ज्यादा मदद किया है।
0: गुड मॉर्निंग गोंडा, शो ने आपको डिप्रेशन से निकलने में मदद किया है। अगर मैं पूछूं कैसे तो क्या आप बताएंगे?
1: जी
0: अगर मैं पूछूं कैसे तो क्या आप बताएंगे? कैसे?
1: जैसे कि सुप्रभात में जो आप जो सुविचार जो बोलते हैं, उनको अगर मन लगा के अगर सोचा जाए, अगर उसके बारे में अगर जाना जाए, तो बहुत सारी मदद मिलता है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि किसी का जीवन की कहानी कहाँ से कहाँ तक पहुँचा, एक दुखियारी महिला हो चाहे कुछ हो, करने की कोशिश होना चाहिए। मन लगा कि किसी काम में अगर अपने आप को लगा दिया जाए तो धीरे धीरे डिप्रेशन कम हो जाता है। पर मन लगाना पड़ेगा। जो भी काम आपको अच्छा लगे, कहीं पर आपको घूमने जाना हो, कोई भी काम आप मन लगा के किया जाए। हाँ, पर ध्यान रखने का कि जो काम आप करे वो सही हो, गलत ना हो, सही काम में मन लगाओ, तो आपका लगता है मुझे धीरे धीरे डिप्रेशन कम होगा।
0: सही काम में मन लगाओ तो डिप्रेशन कम होता है। और दूसरा ये आपने कहा कि भाई गुड मॉर्निंग गोंडा सुन करके आपके डिप्रेशन को मैं, जिसमें सुविचार की बात या फिर ऐसे जो रियल हीरोज के बारे में हम बताते रहते हैं, तो उसने आपको सोचने पर मजबूर किया और आपको अपनी प्रॉब्लम छोटी लगी होगी और उसके बाद आपका नज़रिया बदला होगा खुद की प्रॉब्लम्स को देखने का और उसके बाद शुरुआत की होगी, ऐसे ही तो कुछ।
1: बिल्कुल। आपको क्या लगता है, आपने तो 2.5 साल से मेरे को जो जब मैं पहले थी कितना बदला हुआ, वो तो आप भी बता सकते हैं।
0: उससे अब तक में तो बहुत ज़्यादा बदलाव देखा है, क्योंकि शुरुआत में जब हम बात करते थे तो बात करने के दौरान ऐसी कई सारी बातें आती थी जिससे लगता था कि आप अभी भी परेशान हैं। उसके बाद जब ऐसी बातें आने लगी जिसमें आप बताने लगी कि भाई आप किस तरह से टैकल करती हैं, मुसीबतों को पार पाती हैं, फिर आप हमारे लिए खुद ही एक प्रेरणा स्रोत बन गई, हम सभी लोगों के लिए, कि भाई इतनी सारी चीज़ें होने और झेलने के बावजूद आप किस तरह से आज के ही दिन में जीती हैं और कितना खुश को रखती हैं, ये बहुत बड़ी बात है।
1: इसके लिए तो रेडियो को ही धन्यवाद, जो रेडियो स्टूडियो को ही सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहती हूँ, दीपन सर को चलते जो मैं आज स्वस्थ के रास्ते पे हूँ।
0: सच के रास्ते पे बेशक, और ऐसे ही आप बने रहिए, ये बहुत अच्छी बात है। और बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि क्या प्रॉब्लम थी आपके साथ और किस तरह से धीरे धीरे करके आपने कोप अप किया, उससे बाहर आई और आज आप बेहतर फील कर रही हैं। यानी यही वो शख्स हैं जो कुछ वक्त पहले तक बहुत डिप्रेशन जैसे मोड में थी, लेकिन अभी फ़िलहाल काफ़ी बेहतर हैं आप, ये बहुत अच्छी बात है।
1: ठीक, और आपको ढेर सारा आशीर्वाद है। जो शो को जिस तरह से आप पड़ोसते हैं ना, वो बहुत ही लाजवाब है। पड़ोसी ना किसी को कायदा आना चाहिए। बहुत सारी तो मैं तो एफएम सुनी हूँ, बहुत सारा रेडियो शो सुनी हूँ, पर आपका कुछ अलग ही है।
0: बिल्कुल सही बात है, एंड थैंक यू सो मच कि आपको थोड़ा सा अलगपन लगता है और काफी अपनाइयत लगती है और ये आपकी खासियत है, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं।
1: शुक्रिया सबको, बात रखने के लिए शुक्रिया सभी को।
0: जी, शुक्रिया आपका भी कॉल करने के लिए। सुबह ये तो थी हमारे साथ में सविता दुबे जी, जिन्होंने अपनी बात को रखा और ऐसे ही कई सारी जो वक्त है वो हमारी लाइफ में भी आते हैं और कहीं ना कहीं हम ऐसी चीज़ों से रहगुज़र होते हैं। अगर हम कभी प्रॉब्लम में पड़ते हैं, यानी आज मेंटल हेल्थ पे वो बात हो रही है और आपको भी लगता है कि शायद कभी आप परेशान हुए हों, कभी आपको कुछ ऐसा लगा हो जो लगा होगा काफ़ी बड़ा है, काफ़ी एक्सट्रीम लेवल का है, तो ऐसा हुआ है और ऐसा मेरे साथ ही नहीं हुआ है, मुझे लगता है सभी के साथ होता रहता है और अक्सर हो जाता है, हम परेशान भी होते हैं। सो मेंटल हेल्थ जैसी भी कोई चीज़ होती है तो कभी तो ऐसा लगा होगा कि भाई हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं या हम काफ़ी ज़्यादा किसी थॉट में जा रहे हैं, किसी स्पेसिफिक सवाल में फंसे जा रहे हैं, ऐसे कई बार लगा होगा। लेकिन कोशिश करना इन चीज़ों से निकलने का, और अगर कभी ऐसा कोई फेज़ आया है आपकी लाइफ में तो आप कैसे उस फेज़ से निकले हैं, आपने आखिर क्या पद्धति अपनाई है। फिलहाल चलते हैं अगले कॉलर की तरफ, देखते हैं कौन है अगली कॉल पर। हाँ जी हेलो।
2: हेलो गुड मॉर्निंग सर।
0: गुड मॉर्निंग, अपना नाम बता दें हमारे श्रोताओं को।
2: सर मैं अनु पांडे बात कर रही हूँ।
0: हाँ हाय अनु, कैसी हैं आप?
2: मैं तो बहुत अच्छी हूँ और इतने अच्छे अच्छे गाने अभी चल रहे हैं कई दिनों से, सब बहुत अच्छा लग रहा है मुझको।
0: वाओ थैंक यू। तो कोई डिप्रेशन से आप भी बाहर आ गए क्या शो सुन सुन के, गाने सुन सुन के? आज अनु जो है वो मानसिक स्वास्थ्य दिवस है और मुझे पता है कि हर कोई अपने अपने तरह से सेलिब्रेट कर ही रहा है और करना भी चाहिए, लेकिन हाँ। अगर हम एक सवाल करें कि जैसे जब हमको मेंटली कोई प्रॉब्लम होती है तो हम छिपाने लग जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को सीधे सोसाइटी पागल के एक संज्ञा दे देती है किसी को भी अगर मेंटली प्रॉब्लम है, तो इसलिए इस चीज़ को छिपाया जाता है और ऐसे करते करते ये बीमारी बड़ी हो जाती है, साइकेट्रिस्ट के पास लोग जाते नहीं हमारे शर्म के, और ये एक दिन कोई क्राइम का रूप ले लेती है या डिप्रेशन में इंसान बहुत ख़राब कोई कदम उठा लेता है। तो इसको लेकर के आपका क्या संदेश है, क्या कभी आपने ऐसी कुछ चीज़ों पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम रही है तो खुल करके अपने घर वालों से या किसी ऐसे शख्स से शेयर करने की कोशिश की हो जो लगा हो कि ये हमारी प्रॉब्लम को समझेगा?
2: जी सर, पहली बात तो छुपाना नहीं चाहिए, प्रॉब्लम चाहे जैसी हो, किसी भी क्षेत्र से किसी भी तरीके की हो। सर मेरे जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए और मैं खुद ही डिप्रेशन में चली गई थी, लेकिन हमको नहीं पता था कि मैं खुद डिप्रेशन में हूँ। लेकिन मैं रेडियो सुन रही थी तो वहाँ एक भेंट वार्ता सुन रही थी तो उसने डिप्रेशन के लक्षण फिर बताने लगे, तो हमने गौर किया, हमने कहा अरे इसमें से तो बहुत सारे लक्षण मेरे खुद में आ गए हैं। तो मैंने फिर अपने सिस्टर से साझा किया तो उसने कहा हाँ ये सही है, तुम डिप्रेशन में हो। फिर रेडियो सुनती रही और थॉट वगैरह अच्छे अच्छे गाने सुनती रही और लोगों के संपर्क में रही जो मेरे बहुत खास थे, उनसे कुछ अपनी बातें शेयर की, अपने दिल की बातें। और उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा बाहर आ ही रही थी कि मैं जहाँ पहले कहीं मतलब दूसरा चैनल सुनती थी तो वहाँ कार्यक्रम खुद के कुछ कम हो गए, रिले के ज्यादा हो गए। तो फिर एक बार मैं फिर बहुत ज्यादा उदास हो गई। लेकिन और सर मेरी बरसों की ख्वाहिश थी, जब मैं बहुत छोटी थी मतलब तब से मेरी ख्वाहिश थी कि सारे जगह में रेडियो स्टेशन है, सारे शहर में लगभग कई शहरों में, मेरे गोंडा में क्यों नहीं है? कहीं कभी ऐसा हो जाए कि मेरे गोंडा का मेरा खुद का FM रहे तो कितना अच्छा रहेगा। तो सर जब ज्ञान स्त्री अपना FM आया तो मुझे बहुत खुशी मिली और तब ये उम्मीद भी कुछ ज्यादा ही मतलब मिल गई और उत्साह मेरा बढ़ गया कि अरे इतनी बड़ी ख्वाहिश जब मेरी इतनी जल्दी पूरी हो सकती है तब तो मेरी कोई भी ख्वाहिश हो तो सब पूरी होगी। और सर उसके बाद एक एक करके सारी ख्वाहिशें पूरी होती गई तो मैं डिप्रेशन से फिर बहुत जल्दी बाहर आ गई और अभी हैप्पी जिंदगी है।
0: तो मतलब एक बात तो तय हो गई आपकी बात से भी और सविता जी ने भी एक बात कही कि रेडियो ने बड़ा साथ दिया। मुझे लगता है कि मेंटली अगर आप परेशान हैं तो कभी रेडियो की कुछ शोज़, कोई किताब, कहीं लिखा हुआ कोई विचार, कहीं किसी के ज़रिए कही हुई कोई बात या कोई ऐसे इंसान को आपने शेयर किया हो जिसने आपको जज नहीं किया हो, बस सुना हो आपको और आपकी प्रॉब्लम को सुना हो, समझा हो, और ना ही कोई उसने अपनी राय दी हो, और इस तरह से आप साझा करते करते आप हल्की हो गई हो और उसके बाद आप नॉर्मल हो गई हो, ऐसा भी हो जाता है और ऐसा होता है।
2: जी सर
0: बिल्कुल।
2: सर सर अगर हम रेडियो सुनते रहे ना तो रेडियो से हमको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। हम मतलब कैसे भी परिस्थिति में डिप्रेशन में या ऐसे ही थोड़ा मतलब टेंशन में ज्यादा चल रहे हैं, नॉर्मल जिंदगी फिर भी टेंशन बहुत है, तो हम रेडियो सुनते रहते हैं ना तो रेडियो से हमको बहुत सारे फायदे मिलते हैं, हमारा मनोरंजन भी होता रहता है। और सर एक बात कहते हैं, म्यूजिक ना बहुत बड़ा रोल अपना अदा करती है, किसी भी हम कैसे भी रहे किसी भी प्रॉब्लम में रहे तो म्यूजिक का एक अपना अलग सा रोल हो जाता है अगर हम म्यूजिक सुनते हैं।
0: सो म्यूजिक तो आपने बिल्कुल सही बात छेड़ी है यहाँ पे कि म्यूजिक से मूड पर बड़ा असर होता है और म्यूजिक कई बार हमको डिप्रेस्ड भी कर देता है और म्यूजिक ही कई बार डिप्रेशन से हमको बाहर लाने की कोशिश करता है, ले आता है, हील करता है।
2: जी सर।
0: मुझे लगता है कि जो भी चीज़ें हील करे वो ज़रूर सोचे, लेकिन आज रेडियो ज्ञानस्थली सुनने वाले जितने भी हम लोग हैं वो इस बात को समझ लें कि कभी भी हमको प्रॉब्लम होगी तो इसको छिपाने की ज़रूरत नहीं है, और किसी और की होगी तो उसकी मजाक बनाने की बजाय उसका ट्रीटमेंट करने की हम सोचेंगे कि उसका इलाज कहाँ हो पाए। बिल्कुल वैसे ही जैसे शरीर के किसी और हिस्से में चोट लगने पे हम उसका इलाज करते हैं।
2: सर हमको ना खुद की मतलब प्रॉब्लम है छुपाना चाहिए ना, किसी और की है तो उसको मतलब मजाक उड़ाना चाहिए, कुछ भी करना चाहिए, उसकी बातें हमको गौर से सुननी चाहिए। सर हम अगर थोड़ी देर अगर किसी की बातें सुन रहे हैं तो उसमें क्या हर्ज है, हमेशा ये नहीं मानना चाहिए कि हम बोलते हैं, हम ही खुद बोले बात करें, कभी कभी सुनना भी चाहिए।
0: बिल्कुल सुनना चाहिए।
2: हाँ।
0: सुनना ही तो सबसे बड़ी आर्ट है और सुनना ही तो लोगों को नहीं हो पाता है, तभी तो प्रॉब्लम आती है।
2: जी सर, लेकिन मेरी तो सुनने की शक्ति बहुत है, क्षमता बहुत है, क्योंकि मैं आप लोगों को सुनती रहती हूँ ना।
0: रहती हूँ ना, इतना झेलते हो तो झेल झेल के आदत पड़ गई और कुछ नहीं।
2: नहीं सर झेलती नहीं हूँ, क्योंकि आप लोग अच्छे अच्छे गाने सुनाते हैं, म्यूजिक तो सुनने को मिलती ही मिलती है, उसके बाद में बहुत ढेर सारी बातें बताते हैं। और सर पता है कभी कभी आप लोग ऐसी बातें बताते हैं जो दिमाग में नहीं आती है और हो सकता है ना भी आवे, लेकिन जब आप लोग बताते हैं तो कहते हैं अरे ये तो कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी जानकारी है या क्या है, बहुत अच्छी बात है, और जिंदगी में उसका फिर बहुत बड़ा रोल भी हो जाता है।
0: बेशक बेशक, और ऐसे ही आप भी सुनते रहिए रेडियो, गानों को एंजॉय करते रहिए और अपनी बातों को किसी ऐसे शख्स से साझा करते रहिए जो बिना जज किए हुए आपको सुनता है।
2: सर आप ना मेरी बातें आराम से सुनते हो तो मैं तो आपसे सारी बातें बोल देती हूँ यहाँ आके शो में।
0: बहुत ज्यादा लोड हो जाएगा हम पे, हम पे फिर बहुत ज्यादा लोड हो जाएगा कईयों की हम बात सुनते हैं।
2: तो सर हम लोग भी तो आपकी बातें सुनते हैं।
0: ओके, हाँ बात तो सही है, चलिए फिर मिलके सुनेंगे।
2: अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, ढेर सारी बातें जानकारियां लाते हैं, वो बहुत अच्छी लगती है, वो हेल्थ से जुड़ी हो या कोई मतलब जीके से कुछ भी हो तो बहुत अच्छा लगता है।
0: थैंक यू सो मच, और ऐसे ही खुश रहिए, हम तो यही चाहते हैं, सुनते रहिए।
2: सर जब तक ना अपना एफएम चलता रहेगा, आप गुड मॉर्निंग गोंडा शो लाते रहेंगे ना, तब तक हम हमेशा खुश रहेंगे, कभी उदास हो ही नहीं सकते।
0: चलिए अच्छी बात है, ये सफ़र यूं ही चलता रहे, हम भी दुआ करते हैं। और बहुत शुक्रिया इतनी सारी इज्जत अफजाई के लिए, इतना सारा सम्मान देने के लिए, थैंक यू सो मच अनु।
2: ओके सर, बाय बाय,
0: टेक केयर। सो भाई फिलहाल एक शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ बढ़ चलते हैं क्योंकि लगातार हम बातचीत भी कर रहे हैं। आप डिप्रेशन से आपको बाहर लाना ना तो ऐसे गाने सुनाने पड़ेंगे मुझे, है कि नहीं है। So, चलिए मिलकर एंजॉय करते हैं गुड मॉर्निंग गुंडा शो, और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, जिस पर हम बात भी कर रहे हैं और आपको इस गानों के जरिए बाहर भी कर रहे हैं, खुश कर रहे हैं, हैप्पी कर रहे हैं गुड मॉर्निंग गुंडा शो के जरिए।

0: सुबह इसी कड़ी में आइए, इस खूबसूरत से गाने को सुना और उसके बाद अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि भाई अगली कॉल पर हमारे साथ आखिर कौन जुड़ा है और मेंटल हेल्थ के बारे में उनका क्या विचार है, वो हमसे क्या साझा करना चाहते हैं। हाँ जी, हेलो।
1: हेलो, सुप्रभात, नमस्कार।
0: सुप्रभात, नमस्कार, अपना नाम बताएं। सरकार?
1: जी जी सरकार नहीं।
0: अच्छा, छोटी सरकार।
1: जी, जी।
0: अरे अपने घर की तो सरकार है ना आप।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हरकत है।
0: जी,
1: मैं अपना त्रिपुरा से अविनाश अली बोल रहा हूँ।
0: जी क्या बात है। तो भाई त्रिपुरा से हमारे अविनाश जी हैं, आपका स्वागत करते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा में। और इतनी दूर से आपने कॉल किया, लग रहा आज आप डिप्रेशन फ्री हैं, आप डिप्रेशन से बहुत दूर हैं, क्या लगता है?
1: जी जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए हम सबको परेशानी, देखिए 4 दिन की जिंदगी है तो हम सभी को इन सब परेशानी से छुटकारा पाने के लिए हम सबको खुश रहना चाहिए और दूसरों को भी खुश करना चाहिए। तो अगर हम खुद ही खुश नहीं रहेंगे तो दूसरों को क्या हम खुशी दे सकते हैं, इसलिए हम सबको डिप्रेशन फ्री रहना चाहिए।
0: तो दूसरों को खुशी आप कैसे देंगे?
1: जी उनसे बातें करेंगे और अगर अगर उनकी मान लीजिए कि कोई वो दिक्कत में है तो उनकी जो दर्द है वो आप उनको बांटेंगे और साथ साथ मतलब कि आप उनसे लगातार ये कोशिश कीजिए कि उनका किस वजह से है और उनको क्या प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को आप जितनी हद तक अपनी मतलब कि उनमें उनको प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप जितने तक आपका वो जो कहते हैं ना कि एक से भरे दो, तो उनके प्रॉब्लम को आप अपना प्रॉब्लम समझ के भी आप दूर करने के लिए जितने भी हो सके अपने को कोशिश कीजिए। लेकिन जिनको डिप्रेशन होता है खुद उनको तो ज्यादा से ज्यादा उनको ही कोशिश करना चाहिए, क्योंकि हम जिनको मान लीजिए कि किसी का दिल टूट चुका है किसी प्यार में, लेकिन अब इस चक्कर में अब उनको खुद संभालना चाहिए, क्योंकि हम कितने भी उनको समझा लें लेकिन वो अगर पिछले यादों में ही अगर खोए रहे तो उनको कभी भी बाहर नहीं निकल सकते। इसलिए उनको ऐसे अपने आप को बिजी रखना चाहिए किसी काम में हो या फिर किसी से बात करने में या फिर गीत संगीत में हो, मतलब कि अब वहाँ से निकलने के लिए आपको अपने आप को बिजी करना चाहिए, तभी जाकर निकल पाएंगे। या फिर आप अगर वहीं खोए लेंगे तो आप पिछले जिंदगी में जी रहे हैं, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है जीने का, जिंदा लाश बन जाएंगे।
0: अच्छा, मान लीजिए कि कोई डिप्रेशन में है और उसने बहुत सारी दवाइयाँ खाई, काउंसलर से मिला, कोई फायदा नहीं हो रहा है और अचानक से उसने अविनाश जी की कमेंट्री सुन ली, तो क्या होने वाला है?
1: जी अगर कमेंट्री सुन के अगर उनका मन अगर आकर्षित हुआ कि हाँ, क्रिकेट के ऊपर ध्यान दे, क्रिकेट देखें या फिर क्रिकेट को समझें, अगर वो भी अपना इसी में अगर उनको भी मन लग गया अगर क्रिकेट कमेंट्री करना है तो वो सुन सकते हैं बिल्कुल। और आगे आगे मैं भी उनको सलाह दूंगा कि ऐसे ऐसे करना है और ज्यादा से ज्यादा उनको पुराने कमेंट्री सुना सकते हैं और यहाँ पर सीख सकते हैं और अपने को बिजी रख सकते हैं और अपने जो घर से बाहर निकले और जो लोकल टूर्नामेंट हो तो वहाँ पर जाएं खेलें और वहाँ पर भी कमेंट्री करने की कोशिश करें, तो फिर अपने आपको वर्क हल्का महसूस करेंगे।
0: क्रिकेट तक अगर नहीं ध्यान गया, आप ही पे अटक गया तब?
1: हाँ, वहाँ तक गया तो फिर आप वहाँ पे निकालने के लिए उनको समझाएंगे, समझा सकते हैं।
0: अविनाश जी का लिए समझा सकते हैं कि भाई एक ही पर्सन है, इनको रहने दो। सही कहा आपने।
1: लेकिन चलिए आज आपने बढ़िया टॉपिक चुना, क्योंकि देखिए आजकल लगभग 50% लोग डिप्रेशन में ही जी रहे हैं, तो इन सब से निकलने के लिए एक दूसरे को ही आगे आना चाहिए और खास करके ज्यादा से ज्यादा कोशिश तो जो डिप्रेशन में है उनको ही करना चाहिए, तभी जाकर वो निकल पाएंगे। अपने आपको बिजी रखें किसी काम में, या अगर खाली बैठेंगे तो वही कभी यादें आपको घूमते रहेगा, तो कभी भी नहीं निकल सकते, इसलिए अपने आपको बिजी रहना चाहिए।
0: बिल्कुल, सो बिजी रखना भी चाहिए, लेकिन कई बार होता है कि हम भागने की कोशिश करते हैं, भागने से बेहतर हमने हमेशा कहा है कि उसको समझे, उसको अगर आप समझेंगे तो चीजें तब जाके दूर होती है, क्योंकि भागने से कुछ देर आप भाग लेते हैं फिर वही आती है।
1: जी जी जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए एक बात है ना कि मौत से कोई नहीं भाग पाया, क्योंकि आप कितनी भी दूरी बना लेकिन लेकिन जो होना हो तो होकर ही रहेगा, इसलिए हम सोचेंगे कि हम भाग के बच जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं है, उसको उसको आप डट के सामना कीजिए तभी आप वहां से निकल पाएंगे।
0: बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत इंकरेज किया आपने हम सब लोगों को अपनी वक्तव्य के जरिए, यानी आपने अपने विचार के जरिए, और मुझे भी उम्मीद है कि भाई आप ऐसे ही कमेंट्री कर करके लोगों की डिप्रेशन को दूर करते रहिए। मेरी दुआएं आपके साथ में अविनाश जी।
1: जी बिल्कुल, कोशिश तो कोशिश करेंगे लेकिन ऐसा तो अगर एक लोगों को भी हम अगर अपनी आप को अगर वहाँ से उनको निकाल पाए अपने कोशिश में तो हम भी मतलब कि वो खुशनसीब होंगे, क्योंकि देखिए दूसरों को हंसी देखे अगर हमें खुशी मिलता है तो हम तो अपने आप को बहुत ही महान समझते हैं।
0: चलिए महान ऐसे नहीं बनेंगे, हम जो कहने जा रहे हैं उसको आप दोहराइए पीछे पीछे, तब आप महान बनेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये तो कहने से कुछ नहीं होता, बस करके दिखाना चाहिए।
0: नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ तो वो करके दिखाइए, मैं वही बोलने जा रहा हूँ।
1: अच्छा अच्छा बोलिए, देखते हैं।
0: तुम पास आए
1: यूं मुस्कुराए,
0: तुमने न जाने कौन सी कमेंट्री सुनाई। ना ना ना, यही तो चेंज है।
1: अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूँ हाय,
0: अविनाश अविनाश होता है। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए आपका। बहुत शुक्रिया। सो भाई ये हमारे साथ हमारे अविनाश जी जुड़े, और बड़े ही प्यारे इंसान हैं। जब आप बातचीत हमारी इनकी सुनते हैं तो आप इनके बारे में अंदाज़ा लगाते ही होंगे। जिस बेतकल्लुफ़ी से ये बात करते हैं, बहुत शानदार शख्सियत हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अविनाश जी त्रिपुरा से वक्त निकालने के लिए, कॉल करने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। इसी कड़ी में अब हम आगे बढ़ेंगे अगले कॉलर की तरफ। चूंकि आज हम बार बार बोलते जा रहे हैं वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, यानी विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। सो आज की क्या प्रॉब्लम हमारी बड़ी, यही कि हम इसको प्रॉब्लम समझते ही नहीं है। हमें लगता है कि सीधे हम पागल बोल देते हैं किसी को, अगर कोई मेंटल इशू है तो उसको पागल बोल देते हैं। अरे भाई, जैसे आपका जिस्म हमेशा से स्वस्थ रहता नहीं है, जुकाम भी होता है, बुखार भी होता है, बीमारियाँ भी होती है, तो अगर कोई ऐसे ही बात हो गई है, कोई अगर प्रॉब्लम आ गई है मेंटली, तो उसका भी सॉल्यूशन है ना, क्या मसला है फिर। चलिए फिलहाल देखते हैं अगले कॉलर पे कौन है मौजूद। हाँ जी हेलो।
2: हेलो सर जी, गुड मॉर्निंग।
0: जी मैडम जी गुड मॉर्निंग, कौन बोल रही हैं आप? डिप्रेशन बोल रही हैं? अच्छा, तो मैं भी उम्मीद बोल रहा हूँ रेडियो के अनस्थली से। हमारी आशु मिश्र जी फ्रॉम लखनऊ से आ गई, सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं। कैसी हैं आप?
2: बहुत अच्छे सर जी।
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आज का जो हमने एक मुद्दा उठाया है, चूंकि आज दिन भी पूरा मानसिक दिवस को डेडिकेटेड है, तो मैं आपसे भी जानना चाह रहा हूँ कि ये अक्सर दिक्कत है, और मेरे ख्याल से कई बार हम भी अनकॉन्शियसली कर देते हैं प्रॉब्लम, कि किसी को अगर मेंटली इशू है तो उसको हम पागल ही सीधे बोल देते हैं।
2: बिल्कुल सर।
0: बट आपको भी ये पता है, हमको भी अंदाज़ा है कि जो दिमाग है ये भी हमारे शरीर का ही एक हिस्सा है, जैसे बाकी हिस्से हैं। तो आप इस चीज़ को कैसे देखती हैं, और आपको क्या लगता है अगर कोई प्रॉब्लम होती भी है तो क्या अप्रोच होना चाहिए उस मरीज का, खुद का और उसके आसपास वालों का?
2: बिल्कुल सर, उसको समझने की जरूरत होती है, समझना चाहिए कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम है, उसके क्या दिक्कत है उसकी, क्योंकि हम इस दौर से गुजर चुके हैं सर।
0: बिल्कुल
2: बिल्कुल सर, बिल्कुल हम उभर नहीं पाते सर। 2019 में हमारे साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हुई।
0: जी जी जी,
2: बच्चे भी बहुत छोटे छोटे थे। लेकिन फिर संभालने वाला है जी सर, संभाल लिया हमारे फैमिली में, मायके में बहन भाई संभाल लिया, किसको अकेले मत छोड़ना, कभी अकेले मत छोड़ना। नहीं तो सर हम बहुत चुप हो गए थे, किसी से बात नहीं करना पसंद था, कहीं आना ना कहीं जाना, किसी से भी नहीं।
0: बिल्कुल अचानक से पूरी जिंदगी चेंज हो जाती है ना, आपने कभी सोचा तो होता नहीं है, ख्याल में भी नहीं आता आपके।
2: बिल्कुल सर, और बच्चे भी बहुत छोटे थे सर, लेकिन वो बच्चों के लिए ही जीना था मुझे अपने। रेडियो से मेरी बड़ी दी जोर दी मुझको कि कुछ इसमें लग जाएगी तो इसका मन थोड़ा बहकेगा, अपना हल्का रहेगा। तो सर इससे भी हम बहुत उभरे हैं, जो ज्ञानस्थली से भी हम।
0: अरे ज्ञानस्थली से आप उभरी क्या है, आप तो कई लोगों को उबार दी हैं अपनी बातों के जरिए।
2: नहीं
0: सच में
2: ऐसा नहीं है,
0: सच में मतलब
2: मैं उससे जुड़ी हूँ, 4 साल हो गए सर।
0: हाँ सही बात है
2: सर,
0: क्योंकि
2: जो नहीं कुछ जानते थे सर वो भी बहुत कुछ सीखे, बच्चे भी बहुत कुछ सिखाए हमको, क्योंकि सर पहले कुछ इतनी जानकारी नहीं होती थी।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
2: अब तो बहुत कुछ हो गया, गूगल है, इंस्टाग्राम है सर, बहुत कुछ हो गया।
0: सही बात है,
2: जो बहुत कुछ सीखे सर, बच्चों ने ही सिखाया।
0: सही बात है, ये तो है, ये आपने बिल्कुल सही कहा।
2: सबसे ज्यादा श्रेय तो अपनी बड़ी दी को दूंगी मैं,
0: अच्छा बड़ी दी इस टाइम अगर कहीं सुन रही हो तो भाई बड़ी दी खुश हो जाइए, चेहरे पे मुस्कान ले आइए,
2: मेरे भाई बहन हमारे लिए एकदम खड़े रहे सर।
0: सही बात है,
2: बिल्कुल सर। एक दिन फोन अगर नहीं चलता कहीं हो तो तुरंत फोन कर देते थे, क्या बात है क्यों नहीं है फोन किया। आज हमारे पापा भी हैं, रोज हमको फोन करते हैं, लेकिन एक दिन उनका फोन नहीं आता तो मुझे लगता है कि क्या हो गया, क्या बात हो गई जो हमारे पापा का
0: फोन नहीं आया। सही बात है,
2: उल्टा फिर हम करते हैं
0: फोन। बिल्कुल,
2: बस यही कहेंगे बेटा ठीक है और तुम ठीक हो, बच्चे ठीक है, बस इतना ही, ज्यादा बातें नहीं होती हैं और कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं पापा, बस इतनी सी बातें होती हैं बस।
0: सही है, तो आपकी बात से समझ में ये आया है कि जो आसपास वाले हैं वो साथ देते हैं, आसपास वालों से मुराद है फैमिली से और जो करीब आपके आसपास रहते हैं, तो अगर वो आपको थोड़ा सा भी सपोर्ट करने लग जाते हैं तो आपको बहुत बड़ी हेल्प मिल जाती है।
2: बिल्कुल सर, हमारे जो अगल बगल के पड़ोसी हैं सर बहुत अच्छे हैं, क्योंकि सर हम अच्छे हैं इसलिए वो भी अच्छे।
0: सही बात,
2: अगर हम ना अच्छे होते तो भी उनसे वो भी ना मतलब रखते हमसे।
0: ये फैक्ट है, ये तो फैक्ट है।
2: बिल्कुल सर, क्योंकि हम भी उनके सुख दुख में खड़े हैं, वो भी हमारे सुख दुख में खड़े हैं।
0: सही बात है,
2: बिल्कुल सर।
0: सो ये बात तो बिल्कुल आपने सही कहा कि कोई किसी अच्छा है बुरा नहीं होता, हम जैसा उसके साथ रहते हैं वैसे सामना हमारे वाले बन जाता है।
2: बिल्कुल, तो
0: बहुत हद तक ये डिपेंड करता है। बिल्कुल सही बात है आपने कहा, और बहुत अच्छी बात है कि आप उन चीज़ों से बाहर आए और आज आप इतनी स्ट्रांग हो गई हैं कि अगर कोई और आपको डिप्रेशन में या प्रॉब्लम में दिखेगा तो आप खुद उसको उबारने की पूरी कोशिश में लग जाएंगे और आप कर भी ले जाएंगे।
2: बिल्कुल सर, हम भी वो कोशिश करेंगे कि क्यों वो इतना परेशान है, उसके साथ क्या दिक्कतें हैं, उसको समझने की पूरी कोशिश करेंगे।
0: बिल्कुल सही बात है,
2: बिल्कुल सर,
0: एंड थैंक यू सो मच। लेकिन मैं लगता है कि इतनी खूबसूरत सी आपकी आवाज है तो भाई बिना सुनाए जाएंगी तो हम लोग डिप्रेशन में आ जाएंगे, तो एक बार एक लाइन तो कुछ हो ही जानी चाहिए डिप्रेशन से बाहर लाने के लिए।
2: जी सर, जिए तो जिए कैसे अरे बिन आपके, जिए तो जिए कैसे अरे बिन आपके, कैसे कहूँ बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी, जैसे कोई सदा कोई बदुआ होगी।
0: क्या बात है भाई, आपकी आवाज उसमें डाला गया फील हम सब लोगों को इतना ज्यादा पसंद आता है, और एक तो गाने की चॉइस आपकी माशाल्लाह इतनी बढ़िया होती है। बहुत शुक्रिया कि आपने हम लोगों को सुबह की डिप्रेशन से बाहर निकाल लिया। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए आशु जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सो ये थी हमारे साथ में हमारी आशु जी फ्रॉम लखनऊ, और आपने भी अपनी जिंदगी की कुछ बातें हमसे साझा की है, और जाहिर है ज़िंदगी में ऐसी सारी बातें होती रहती है और जब हम साझा करते हैं ख़ास ऐसे दिन पर तो हमको फिर समझ में आता है कि ऐसे दिवस आखिर मनाए क्यों जाते हैं, क्योंकि इसकी अपनी अलग इम्पोर्टेंस होती है और ये अपने आप में बहुत अलग बात है। तो हम ऐसे दिवस को मनाए भी और ऐसी दिवस की जो है इम्पोर्टेंस भी समझे तो शायद हमारे आस पास हमारे साथ खुद भी अगर कुछ ऐसा होता है तो हम उन चीज़ों को समझ पाएंगे। लेकिन पहली बात हमेशा हम ये कहते हैं कि दूसरों की हेल्प करने से पहले खुद की हेल्प करके ये सोच लो, समझ लिया जाए कि आखिर है क्या। तो हम बस अगर इतना ही कर देते हैं कि किसी का मजाक बनाए बिना इस बात को समझ ले कि हाँ इसको मेंटली प्रॉब्लम है और इसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, इसके लिए बाकायदा एक्सपर्ट्स हैं, काउंसलर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, तो फिर हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल चलिए चलते हैं अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं कि भाई अगली कॉल पर हमारे साथ कौन है। हाँ जी हेलो,
3: हेलो, गुड मॉर्निंग सर।
0: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ये आवाज जानी पहचानी सी लग रही है
3: सर। व्हीकल मैन
0: जी, अपना नाम बता दे हमारे श्रोताओं को।
3: सर कमल नयन बोल रहे
0: हैं। अरे कमल नयन जी, क्या हाल है, डिप्रेशन से बाहर आ गए?
3: वैसे तो सब लोग मुझे सर मेंटल मैन कहते हैं।
0: कौन सा मैन?
3: मेंटल
0: मैन। अच्छा
3: जी, आधे से ज्यादा लोग
0: मुझे पागल कहते हैं। वाह मुबारक, आप तो सही रास्ते पे, इसका मतलब
3: फिर भी सर उनकी बातों को हम गौर नहीं करते हैं। मैं सोचता हूँ की मैं अपनी जगह तो सही हूँ, लेकिन अगर मैं मेंटल तो ठीक है।
0: नहीं, जैसे अभी हमारे अविनाश जी ने कहा था ना कि आधे ज्यादा लोग डिप्रेशन में जी रहे हैं, तो इसका मतलब वो लोग आपको अगर कहते हैं तो आप अपनी जगह सही हैं, वो तो डिप्रेशन में
3: सर, उनकी सर नजर में उनके कहने से हूँ सर, मैं अपनी तरफ से नहीं हूँ।
0: वही मैं कह रहा हूँ ना कि अभी अविनाश जी ने बताया कि भाई आधे से ज्यादा लोग जो है वो मेंटल इश्यूज से जूझ रहे हैं खुद, तो अगर ऐसे लोग आपको पागल कहते हैं तो आपको मुबारकबाद कि आप सही हैं, ये मैं कह रहा हूँ
3: जी। और अगर उनकी बात में हम बोल करेंगे तो हो सकता है कि हम पागल ही हो जाएं।
0: अरे तो जरा हमको भी पागल करिए, मतलब बताइए कैसे होंगे कैसे, मतलब क्या सोच के पागल बनना क्या क्या आपकी कौन सी ऐसी हरकतें हैं जिसको देख करके वो लोग आपको कहते हैं मेंटल मैन?
3: सब ऐसे मतलब जो है मतलब हरकतें करते रहते हैं, तो बहुत सारा ऐसा चीज करते रहते हैं।
0: आप हरकत बहुत करते हैं,
3: हंसी मजाक हो गया, हंसी मजाक हो गया, मतलब लोगों को छेड़ना, मतलब लोगों को परेशान करना बातों से, मतलब जैसे जो है बहुत मतलब जो है।
0: तो कभी किसी ने आपको FIR की धमकी नहीं दी कि भैया बहुत छेड़ते रहते तो बहुत परेशान करते रहते?
3: नहीं, वहाँ तो कोई नहीं किया, लेकिन दीदी ने तो कर दिया, उसने तो बता दिया कि मैं पापा का स्कूल कर रहा हूँ, बता दी कि मुझे तो परेशान करते हैं।
0: तब क्या हुआ, कोई कार्रवाई हुई?
3: थोड़ी
0: कर दिया किसी दिन, तो आप ज्यादा डिप्रेशन में ले गए तो मसला हो जाएगा फिर आपके साथ।
3: नहीं सर, करेंगे नहीं, उनको पता है ना कि आधे खोपड़ी क्या है।
0: अच्छा, बाकी आधा कहाँ है?
3: आधा है, दोनों है सर हमारे, लेकिन आधा लोगों के समझ में गाय में आधा मेरे। अच्छा, खोपड़ी की मैंने बराबर रखी है
0: सर। मतलब आधा रखा हुआ है।
3: नहीं सर, लोगों की नजर में सर आधी खोपड़ी है, आधी गाय। अच्छा,
0: तो लोगों की नजर फिर आधी होगी, क्योंकि जब आप बता रहे हैं खोपड़ी पूरी है तो फिर नजर आधी होगी, ये पक्की बात है। सही बात है, मतलब बड़े यूनिक आप। हाँ जी,
3: बाकी सर ये है कि जैसे कोई अगर आदमी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये डिप्रेशन में जा रहा है या थोड़ा सा मतलब हल्का ढीला है, तो उससे सर क्या है ना, उसकी बातों को गौर करना चाहिए। सर हमने देखा हमारे गाँव में एक लड़का जो है अभी जल्दी जल्दी जो है थोड़ा सा उसका स्क्रू ढीला हो गया था, घर वालों को गाली देता था, भागता था, मारता था, लेकिन सर जब हम उसके पास में जाते थे तो उसकी मतलब बाहों को समझते थे, उससे बातें करते थे, अच्छा हमसे सर अच्छे से बात करता था, बहुत प्यार से बात करे, और हमने कहीं देखता था तो तुरंत हमारे पास हमको आवाज दे, मतलब हम जान के साथ बैठे हैं, मतलब तो हमने सोचा कि देखो आखिर इसके मतलब में है कैसे घर वाले इसकी बात समझ नहीं रहे इसका मतलब।
0: ये बात तो बिल्कुल सही है
3: सर। और सर उसको कोई घर वाले थे तो बाहर हमारे घर पे भाग करके आए, बोले कि हमारा पता नहीं है, वो हमसे आकर के बताया, तो हम जाए उनके घर वालों को समझाए कि जो कह रहा है उसकी बात को समझो पहले।
0: सही बात है,
3: मतलब परेशान मत करो, तब तो समझ में आएगा, वो धीरे धीरे करके साथ मतलब दवा कराए तो सही हो गया।
0: अरे
3: हम ये जानते हैं कि सर कोई अगर परेशान है तो सर उसको परेशान मत कीजिए, उसको और थोड़ा सा वो कीजिए, उसका हम मतलब बातों को मतलब गौर कीजिए कि इसका मतलब क्या है, कर क्या रहा है, तो कहना क्या जा रहा है।
0: बहुत बड़ी बात आपने कमल नयन जी बता दी, आपने पूरा एक एग्जांपल दे दिया कि एक शख्स था और वो दिक्कत में था और आपने उसको सुना, जो बातें वो अपनी फैमिली से नहीं कह पाता था बंदा, उसको आपने सुना, बाकायदा काउंसलिंग एक तरह से आपने की, और काउंसलिंग आपने उसकी फैमिली की भी की, जो देखने में तो सही लगते थे, जिनका लगता था कि भाई ये इनको कोई दिक्कत नहीं, बल्कि वो ऐसी हरकत कर रहे थे कि ऐसे बंदे को कैसे ट्रीट किया जाए, कैसे उसके साथ व्यवहार किया जाए। हम आम लोगों को नहीं पता है जो अपने आप को बेहतर समझते हैं, जबकि ये बीमारी हमारी खुद की है कि हम ऐसे लोगों को समझ ही नहीं पाते। उनको आपने समझाया और उसके बाद उस बंदे का ट्रीटमेंट भी हुआ और फिलहाल आज वो खुशहाल है। मतलब ये
3: बात के उसको खटिया पे बांध देते थे रस्सी से, लेकिन जब मैं जाता था तो मैं अपने हाथों पे खोल देता था और बैठ करके बातें करता था उससे।
0: ये बिल्कुल सही कहा आपने, जैसे ये रस्सी से बांध देना, ये सब हरकतें मतलब कई बार हमने कई घरों में और घर के बाहर देखी है, तो ये बड़ी ही
3: ऐसा होता है कि आदमी को पहले पहचानना चाहिए कि इसका।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, इसीलिए आज हम बात ही इस चीज पे कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि पहचानना चाहिए कि इंसान में प्रॉब्लम क्या है।
3: जैसे सर मेरी पूरी खोपड़ी है लेकिन मुझे आधी खोपड़ी समझते हैं, तो समझे क्या करें सर?
0: अरे वो तो देखिए दूसरा मामला है, वो ये है कि वो आपकी कुछ चीजों को समझते नहीं, उसको लगता है कि जैसे अब कोई हमेशा एडवाइस करे कि भैया ज्यादा क्यों हंसते हो, क्यों? क्योंकि वो खुद ही ऐसे ही चेहरा बनाए रखता हो, अब बेजान सा ऐसी कोई कुछ भी करके बता सकता है, तो बात ये नहीं कि हम किसी के कहने पे चलें। हमने हमेशा से कहा है कि आपको जो बेहतर लगता है, अगर आप खुश हैं तो आप बेहतर हैं। और हमारे कमल मैन जी
3: जैसे कोई अगर जी सर, कोई अगर आपको बता रहा है कि इसका स्टूल ढीला हो गया, ये पागल होने लगे, कह रहा है तो धीरे धीरे धीरे धीरे वो उसी बेड में चला जाएगा, वो ये हरकतें करता रहेगा सर, हमने यही देखा है।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बार बार बोलना और बार बार कहने का मतलब है कि उस चीज को सच कर देना।
3: अक्सर जैसे हमारे यहाँ एक बच्चा हमारा है, मतलब जैसे हमारे बड़े भाई का है, उसको बोलते हैं तुम बहुत दुष्ट हो, बहुत बदमाश हो, ये अब मना करने के बजाय वो और मतलब बदमाशी करते करते करते और आगे निकल गया हूँ।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम परफेक्ट एग्जांपल है।
3: इसी के बराबर हमारा बच्चा है, जो हम अपने बच्चे को डांटते रहते हैं, उसको बोलते हैं बेटा ऐसा नहीं, उसको अपने जैसे समझाते हैं तो वो घर वाले बोलते हैं कि हाँ तुम्हारा बच्चा तुम समझदार है, पता नहीं क्या क्या समझाते, उसको भी समझाओ। अब वो हमारे समझने के लिए हमारे बड़े भाई का लड़का नहीं समझता है।
0: सही बात है,
3: इतना बदमाश हो गया, मतलब वो कहने से मतलब वो साजिल कर गया।
0: वही है, वो तो बच्चा है, उसकी क्या गलती, वो कहीं ना कहीं तो माहौल नहीं चीजें को बनाया, जाहिर सी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कमल नयन जी, बहुत अच्छे से आपने बात कही और बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने बता दी।
3: सर वो तो सही है, लेकिन सर आज आपने हंसा नहीं, क्योंकि आप हंसते नहीं तो हम हंसते नहीं।
0: ऐसे क्या बात कर रहे, अभी शुरुआत में आपने जब से ऐसे ही बोला, हमने कहा ऐसे कौन लोग बोलते हैं, उसके बाद हंसे भी थे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।
3: इसीलिए कॉल करते हैं, खाली आपकी हंसी सुनेंगे, मेरे को सुनते तो है, क्योंकि जो आपसे बातें करके सुनते हैं तो और मजा आता है।
0: ये अलग ही प्रकार का एक प्रेम है।
3: बहुत शुक्रिया। जैसे सर अभी मैं क्या ना सर क्या ना अभी मैं काम में डिप्रेशन में जा रहा था, काम में डूबते जा रहा था, काम में डूबते जा रहा था, अब क्या आपसे कॉल से बात कर ले तो वो काम हम भूल देते, काम दूसरा रहे तो उसको छोड़ करके हम आपसे बातें कर रहे थे, वो काम हमारा कहा था क्या था, और जब आपसे कॉल करने की कमी छोड़ दी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू।
3: तो हो सकता था कि मतलब ये काम करते करते हो सकता था 12-1 बज जाता।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा,
3: थोड़ा सा मूड हमारा फ्री हो गया, मतलब जो है फ्रेश हो गया, अब फिर उसी काम में जुड़ेंगे तो और मेहनत हो जाएगी।
0: नहीं नहीं बहुत बहुत शुक्रिया, एंड थैंक यू सो मच कमल जी कि आपने हमको कॉल भी किया, थैंक यू सो मच। सुबह ही हमारे साथ कमल नयन जी थे जिन्होंने हमसे बातचीत किया, एंड डेफिनेटली ऐसी कई सारी बातें बताई जो बहुत ज़रूरी है, और कहीं ना कहीं ये हमने भी फील किया है, हमने भी देखा है इन चीज़ों को, आपने भी देखा है, तो ये हमारे आसपास होने वाली चीज़ें हैं, ये इंसिडेंट्स हैं, इस तरह की जो कुछ आदतें हैं वो हम लोगों में देखते हैं कि घर पे अगर कोई सच में मेंटली परेशान है तो उसको बांध के रख देना इस तरह से, ये बहुत सारे ऐसे चीज़ें। और आइए एक लास्ट कॉल अभी जाने से पहले लेते हैं और जल्दी से बात करते हैं, देखते हैं कौन है इस बार अगली कॉल पर। हाँ जी हेलो,
4: सुप्रभात सर जी।
0: सुप्रभात अंबर जी, कैसे हैं आप?
4: बढ़िया है सर जी, अपना बताइए आप कैसे हैं?
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आज का हमारा विषय है मेंटल हेल्थ, जिस पर हम बात कर रहे हैं अंबर जी।
4: स्वस्थ है
0: जी, बिल्कुल अच्छी बात है, स्वस्थ हैं। और अगर जो कोई स्वस्थ ना हो उसको लेकर के आपके विचार क्या है?
4: सर जी जो स्वस्थ ना हो वो स्वस्थ होने की कोशिश करे, और कैसे करे, प्रेजेंट में जिए, बिजी रहना ही ठीक है, चलिए बिजी है आदमी, लेकिन बिजी है, कपड़े धो रहा है और पास्ट के बारे में सोच रहा है, फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, तो जब तक प्रेजेंट में नहीं जिएगा तब तक वो नहीं निकल पाएगा।
0: हाँ, तो ये कई बार जैसे होता है कि कई बार बीमारी के तरह होती है चीज़ें, ज़्यादा गहरी हो जाती है, वहाँ पे इंसान खुद से कुछ नहीं कर पाता है, फिर आसपास के लोगों का फ़र्ज़ क्या बनता है?
4: नहीं तो आसपास का फ़र्ज ये है कि उसकी बात को सुने, उसको समझाएं, काउंसलिंग करें।
0: एग्जैक्टली,
4: इंसान इंसान को घर वाले सबसे पहले काउंसलिंग कर सकते हैं।
0: सही बात है, लेकिन आपने
4: सकते हैं,
0: आपने देखा होगा ज़रा सा भी कोई अलग हरकत करता है, ज़रा सा भी, भले ही वो एकदम सही इंसान हो, हम लोग के मुंह से भी पहले निकलता है पागल है क्या
4: जी।
0: शायद ये एक सामाजिक जो स्टेटमेंट बन गया ऐसे बोलने वाला, इसको समझना पड़ेगा कि आखिर इसको यूज कहाँ करना है एक्चुअल में।
4: और सर जी सबसे पहले कोशिश उसी को करनी पड़ेगी जो डिप्रेशन में है, एक तो वो सोशल चीज से हट जाता है, भीड़ भाड़ से हटकटने लगता है, कहीं उसको जाना पसंद नहीं है,
0: तो जाहिर है कोई डिप्रेशन में कोई क्यों ही जाएगा।
4: तो सर जी उसको कोशिश करना चाहिए, घर वालों को भी लेके जाना चाहिए हर जगह।
0: तो कोशिश तो करता ही इंसान, कौन नहीं चाहेगा कि डिप्रेशन से बाहर है, लेकिन मन ही तो नहीं करता है, यही तो दिक्कत होती है।
4: सर जी लगाना पड़ेगा, मन कराना पड़ेगा।
0: ये तो बात सही है आपने
4: कहा, जीना पड़ेगा।
0: बिल्कुल,
4: लोग हर दूसरा व्यक्ति डिप्रेशन में है, अच्छा पता किसी को भी नहीं है।
0: एग्जैक्टली बिल्कुल सही।
4: हम भी कह रहे हैं कि हम भी स्वस्थ हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो सिम्पटम्स कहीं ना कहीं डिप्रेशन वाले मिल जाएंगे।
0: मिल जाते हैं, बिल्कुल सही है, एकदम सही बात है। वही मैंने कहा ना कि हर चीज में, हम हर किसी में, सही बात है।
4: और प्रेजेंट में अगर इंसान जीना सीख ले तो कभी डिप्रेशन होगा ही नहीं उसको। ब्रेकअप हो गया डिप्रेशन, कुछ भी हो गया डिप्रेशन, फलाने रुपया इतना कमा रहे हैं डिप्रेशन। अरे क्यों डिप्रेशन देना, ब्रेकअप हो गया ठीक है जाने दो, एक गई दूसरी आएगी, दूसरी गई तीसरी आएगी। सर जी प्यार मोहब्बत हुई ना कम हो गया है?
0: नहीं नहीं कोई कम नहीं हो गया, बहुत है,
4: बहुत है, भर भर के है सर जी।
0: बिल्कुल सही बात है।
4: क्यों डिप्रेशन में जाना?
0: हाँ क्यों डिप्रेशन,
4: हम तो सीधा था सिद्धांत, कोई जा रहा है लाइफ से जाने दो।
0: बात तो सही है, कोई जा रहा है जाने दो, क्योंकि वो जाने के लिए ही था।
4: हाँ वो जाने के लिए, वो अगर वो मेरा होता तो वो रुकता।
0: सही बात,
4: जीवन भर साथ देता।
0: ये मैं मानता हूँ, आई अग्री विद।
4: आजकल के जनजी यही परेशान है, ब्रेकअप हो गया, सबसे ज्यादा डिप्रेशन में वही जा रहे हैं।
0: कोई नहीं, हमारी पीढ़ी भी बहुत परेशान हुआ करती थी, ऐसा नहीं है।
4: नहीं हुआ करती थी, इतनी नहीं थी।
0: अंबर जी अपने ही सोच
4: लीजिए,
0: अपने ही याद कर लीजिए, काफी परेशान थे आप।
4: जी वही तो मैं कह रहा हूँ, एक गया दूसरा आया, दूसरा गया तीसरा आया, क्यों परेशान होना? दो चार दिन परेशान हो लो,
0: ये तो
4: जिंदगी जियो।
0: ये तो बाबा अंबर का कहना है, अभी इसको हम लोग अपनाने की कोशिश जरूर करेंगे।
4: नहीं सर जी बिल्कुल, आप जिस दिन प्रेजेंट में रहना सीख लेंगे उस दिन डिप्रेशन रहेगा ही नहीं।
0: एग्जैक्टली वो तो बहुत बड़ी बात है आपने कही, प्रेजेंट में।
4: गाना सुन रहे हैं, गाना सुन रहे हैं उसी के यादों में खो गए, आंसू बहा रहे हैं। खाना बना रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उसी के यादों में खो गए, आंसू बहा रहे हैं। क्यों बहाना भाई, आप खाने को फील करके खाइए ना। जो भी काम कर रहे हैं उसको फील करिए, प्रेजेंट में जिए। हाँ तो डिप्रेशन क्यों आएगा, उस चीज से इंसान जल्दी निकल जाएगा, कोई भी इंसान हो जल्दी निकल जाएगा।
0: ओके नाइस, बहुत अच्छे पॉइंट्स कुछ रखे हैं आपने। बिल्कुल
4: नहीं, सबके पास, आपके पास भी डिप्रेशन होगा, कभी कभी हम भी डिप्रेशन में जाते हैं। लेकिन हाँ कोशिश करते हैं कि उस चीज को, जैसे कहीं भी गए, सारी पार्टी में गए तो उस चीज को फील करने की कोशिश करते हैं।
0: सही है
4: ना, डिप्रेशन सबके पास आता है, कोई एक चीज नहीं, मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक चीज।
0: बहुत सारी चीजें हैं जो डिप्रेस्ड करती है, अकेलापन करता है, करियर का ना सही हो पाना करता है, अपनी चीजों को सुधारना पड़ना।
4: तुलना करते हैं लोग, कंपेयर करते हैं कि फलाने इतना रुपया कमा रहे हैं, फलाने इतने आगे जा रहे हैं, हम क्यों नहीं जा पा रहे हैं,
0: बिल्कुल
4: उसके वजह से डिप्रेशन में हो जा रहे हैं।
0: बिल्कुल एक्चुअल पॉइंट है ये, वैलिड पॉइंट है।
4: बहुत सी चीजें हैं, क्यों तुलना करना सर जी। हम देखिए, अगर शरीर स्वस्थ है तो उससे ज्यादा हम कमा लेंगे, शरीर स्वस्थ है तो उससे ज्यादा लड़की अच्छी मिल जाएगी। शरीर स्वस्थ है तो बहुत कुछ हो सकता है।
0: बिल्कुल सही बात है, थैंक यू सो मच इतने वैल्यूएबल पॉइंट्स हमसे साझा करने के लिए।
4: ठीक सर जी, थैंक यू, आपका समय भी आप ज्यादा ले रही
0: हैं। नहीं नहीं कोई बात नहीं, लेकिन थैंक यू सो मच कि आपने कॉल भी किया।
4: थैंक यू,
0: थैंक यू। सो भाई ये हमारे अंबर गोयल जी थे, और जिन्होंने अपनी बहुत ही वैलिड बातें हमसे साझा की बताया। और बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ कि सही गलत में नहीं जानते, सबके अपने अपने मानना है। कमल नयन जी का अपना तरीका है, अंबर जी का अपना तरीका है, सविता जी का अपना तरीका है, आशु जी का अपना तरीका, अनु का अपना तरीका, हमेरा अपना तरीका, आपका अपना तरीका। जिस तरीके से आप खुद को बेहतर महसूस कर पाएं, जिस तरीके से आप चीज़ों को बाहर कर पाएं, जिस तरह से आप इसको बीमारी समझ करके इसका ट्रीटमेंट करा लें, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। फिलहाल आज का शो भाई आप लोगों को कैसा लगा ये ज़रूर बताइए। और आशु जी ने बोला है कि सर जी आज मेरा मन बहुत भारी था, लेकिन आपसे बात करके मुझे अच्छा लगा। अगर हर कोई एक दूसरे से बात कर ले तो उसका मन वैसे भी हल्का हो जाता है। बिल्कुल सही बात कही, देखिए कितनी बड़ी बात निकल के आ गई। एंड थैंक यू सो मच कमल नयन जी, आप भी मौजूद हैं चैट बॉक्स पर भी, आपका भी स्वागत है, बहुत शुक्रिया, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। इसके अलावा जो है मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय जी हैं, गुड मॉर्निंग टू यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सुनने वाले सभी श्रोताओं का आप हमको फ्रीक्वेंसी से, रेडियो गार्डन से और रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम की एप्लीकेशन से सुन रहे थे। आई होप कि आपने इस प्रोग्राम को एंजॉय किया होगा। फिलहाल अदनान को दीजिए इजाजत, सुनते रहिए अपना ज्ञानस्थली एफएम 89.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन, बैक टू बैक शोज ओनली ऑन गोंडा एफएम।

0: बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।
2: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
3: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 92।

0: 9781976 9260981976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
0: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
2: यहां होती है BA MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
2: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली PG कॉलेज, गोंडा।
3: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
0: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
3: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
0: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 72 34 020 202।
3: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा।

0: नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपकी होस्ट सविता गांव के गूंज की अपार सफलता के बाद सभी श्रोताओं के लिए एक बार फिर से नया एपिसोड हम सभी मिलकर लाए हैं, जिसमें हमारे मुख्य गायिका श्रीमती किरण पांडे जी के मधुर आवाज में बधाई गीतों की माला पिरोई गई है और जिनका साथ देने आ रहे हैं अदनान जी, श्वेता जी, जिमी जी और अर्चना। इस एपिसोड का विषय है जच्चा बच्चा। अरे जिम्मी, कितने दिनों बाद देखा है तुम्हें, क्या हाल चाल है भाई, सब ठीक है?
1: हाँ समता, सब ठीक है। सच में काफी दिनों बाद मिल रहे हैं हम सब। अच्छा श्वेता का क्या हाल है?
2: लीजिए, मैं भी आ गई।
1: लो, नाम लिया और आ गई।
0: अच्छा सुनो सभी, एक खुशखबरी है, अपने तिवारी जी जो रमचेरापुर गाँव के है उनके यहाँ पोता हुआ है और उनके भाई के यहाँ बेटी हुई है।
2: यह तो बहुत खुशी की बात है। चलिए उनके यहाँ चलकर कुछ सोहर वगैरह गाकर आते हैं।
1: हाँ हाँ, चलो चलो।

0: कितना प्यारा बच्चा है, नजर ना लगे, काला टीका लगा दो कोई भाई इसको।
1: अरे अरे, बधाई हो बधाई हो, आप सभी को बधाई हो और बच्चे की माँ को भी बधाई हो।
2: चलो भाई, ये सब तो ठीक है, पर बच्चे के साथ साथ माँ के खान पान पर भी और साफ सफाई का भी ध्यान रखना। क्यों, ठीक कहा ना?
3: हाँ हाँ, सही कहा।

0: अरे समता, जानती हो अपने तिवारी जी का पोता 2 साल का हो गया है और आज उसका मुंडन है।
1: वाह, तब तो चलो फिर बधाई भी दे आए और कुछ मुंडन के गीत भी गाते हैं।
0: हाँ हाँ।

0: तिवारी जी नमस्कार, कैसे हैं आप
1: जी? नमस्कार नमस्कार।
0: तिवारी जी बहुत बहुत बधाई हो, चुनमुन बेटा तो आपका बहुत प्यारा हो गया है।
1: हाँ हाँ, सही कहा आपने, धन्यवाद बहन जी। हम लोग आप लोगों को याद ही कर रहे थे, आपके लोकगीत के बिना तो जन्मदिन बिल्कुल सूना था। हम तो ही कहेंगे कि लगे हाथ एक जच्चा गीत और हो जाए।

पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।

0: क्या आपने कभी 1 रुपये बचाने के चक्कर में 99 खर्च किए हैं?
1: 1 बचाने के चक्कर में 99?
0: हाँ
1: नहीं, 100 बचाने के चक्कर में 99 खर्च किए हैं।
0: नहीं, 1 बचाने के चक्कर में।
1: हाँ समझ में गई। ये तब होता है ना जब 100 रुपये का सामान 99 में मिलता है और हमको होता है 1 रुपया तो बच रहा है ना।
0: आपको लगता है बस 99 ही जा रहे हैं ना, 100 नहीं जा रहे हैं।
1: पर हमको तो 1 रुपया दिखा ना, हमको 99 थोड़ी दिखा।
0: वही मैं यही तो पूछ रही हूँ कि आपने 1 रुपये बचाने के चक्कर में 99 खर्च किए हैं?
1: नहीं, मैंने 1 रुपये बचाने के लिए 999 खर्च किए हैं।
0: हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त सुहानी। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। आज मैं होस्ट कर रही हूँ और मेरी को होस्ट हैं
1: हम, यानी कि आपकी आरजीवनाती। वैसे जिस तरह से हमने आज रोल स्विच किए हैं, ऐसे ही मॉल्स वाले भी आपका दिमाग स्विच करते हैं।
0: बिल्कुल करते हैं।
1: मतलब यार देखो, एक चीज़ नोटिस करो, जहाँ भी लिखा होता है 999, 999 में मिल रहे हैं, 499 में मिल रहे हैं, हमको लगता है यार 1 रुपया बचा है, 10,000 का तो नहीं है ना।
0: नहीं,
1: ये भूल जाते हैं, कि बराबर में ही तो 1 रुपया लग रहा है।
0: और हम कहीं वैसे लेने जाएंगे, 1 रुपया क्या है, दे के चले आते हैं, लेकिन 1 रुपये बचाने के चक्कर में ज्यादा देखे।
1: कम ऑन मैन, मुझे याद है 1 रुपया मेरे पास नहीं होता है तो मुझे चिज्जी नहीं मिलती है मेरी। और मुझे 1 रुपया कोई वापस नहीं देता, ये तो चीटिंग है ना।
0: अब मुझे लग रहा है कि आप वो चिज्जी के लिए 1 रुपये बचाने के चक्कर में 99 खर्च करते हो कि 1 बच जाएगा।
1: नहीं, ऐसा मैं नहीं करती हूँ, वो अलग बात है कि हाँ ये दिमाग में प्रेशर बहुत अच्छा खासा क्रिएट करता है। जो चीज़ें नहीं भी पसंद आती ना वो भी लेते हैं, पर कितने का ही 99 का ही तो है तो ले तो सकते हैं ना, क्योंकि वो 3 डिजिट में नहीं दिख रहा है, बस यही सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर वो 3 में हो जाए ना तो मैं उसको हाथ भी ना लगाऊँ।
0: तो ऐसा ही होता है जब हम मॉल में जाते हैं शॉपिंग करने, तो हमें लगता है कि यहाँ पे हम शॉपिंग करने अपनी ज़रूरत की सामान लेने आते हैं, पर नहीं भैया, आप तो मॉल वालों की साइकोलॉजी साथ जानते ही नहीं।
1: मेरी तरह बनना चाहिए, जैसे कि घोड़े के आसपास लगा दिया जाता ना, इधर भी एक लगा देते हैं पैच, इधर भी लगा देते हैं, उसको सीधे ही देखना है, उसको देखना ही नहीं है कहीं और।
0: नहीं मैम, वो तो कई बार आप जाने के बाद समझ में आता, नहीं अब मेरी जेब में उतना वो नहीं है कि मैं इधर उधर ना देखूं।
1: मेरे साथ ऐसा होता है, अगर मैंने सोच लिया है मुझे फलाने शॉपिंग मॉल में जाके शैम्पू उठाना है, मैं सारे लोगों को बीच में से हटाती हूँ कि हटो हटो हटो हटो, सारे लोगों को साइड कर देती हूँ, सारे जितनी भी चीज़ें रखी होती है मैं किसी पर देखती नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे वो शैम्पू के उसके तक पहुँचना है, और जैसे ही मैं उस शैम्पू की लाइन में पहुँची, शैम्पू उठाया, फटाक से गायब।
0: क्या कभी आपने मॉल में काम किया है मैम?
1: नहीं।
0: अरे तो आपको उन लोग की साइकोलॉजी कैसे पता चली?
1: क्योंकि साइकोलॉजी ऐसी होती है बॉस, अगर आपका दिमाग कमज़ोर है और आप किसी से भी मैनिपुलेट हो जाते हैं तो हाँ आपको कंट्रोल किया जा सकता है, बट अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है और आप सोच ले तो चाहिए तो वही चाहिए, 1 रुपया एक्स्ट्रा खर्च नहीं करूँगी। बी लाइक कंजूस लाइक मी। फिर आप नहीं करते हो, हालांकि वो अलग बात है कि हमेशा हमेशा ऐसा होता है, मेरी मम्मी कहती है तुम बेटा बहुत खर्चीली लड़की हो, तुम जहाँ जाती हो सामान 1 उठाना होता है 4 उठा लेती हो। ये ताने भी मेरे लिए काफ़ी असरदार साबित हुए हैं और अब मैं पैसे बचाती हूँ।
0: अच्छा मैम, क्या आपने कभी मॉल में जाके टाइम देखा है?
1: हाँ, लेकिन सिर्फ अपने फ़ोन के अंदर, क्योंकि मॉल में घड़ी ही नहीं होती है।
0: मेरी बात मानिए तो आप वहाँ जाइए जहाँ पर घड़ी रखी होती है,
1: तो वहाँ की घड़ी बंद होती है या तो उनका टाइम उल्टा होता है।
0: ताकि आपको टाइम पता ना चले।
1: तो फिलहाल आज हम बात क्या कर रहे हैं, कि आज हम बात कर रहे हैं शॉपिंग वॉपिंग या फिर हम साइकोलॉजी वाइकोलॉजी की बात कर रहे हैं?
0: नहीं, आज हम बात करेंगे तो साइकोलॉजी की, लेकिन शॉपिंग करते करते।
1: जस्ट इमेजिन अगर शॉपिंग मॉल वाले हमें सुन रहे हुए तो
0: वो सोचेंगे
1: अगली बार से गेट पे लगा दिया जाएगा ताला, एक वो चिपकाया जाएगा कि आज नथी एंड हर को होस्ट सुहानी आर नॉट अलाउड।
0: नहीं मैम, वो सोच रहे अंदर की बात कौन बाहर भेज रहा है।
1: चलिए तो भैया आज हम बात करने वाले हैं शॉपिंग मॉल के बारे में, स्पेशली ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे आसपास होती हैं, मार्केट में होती हैं और हम इन पे ध्यान नहीं रखते, फिर चाहे वो हो जाए रेस्टोरेंट या हो जाए शॉपिंग मॉल, आप कहीं भी चले जाइए ऑनलाइन से लेके ऑफलाइन तक, हर दूसरा बंदा आपके साथ इमोशनल मैनिपुलेट में लगा हुआ है, कहीं ना कहीं आपके साथ एक ऐसी साइकोलॉजी डिस्कवर की जाती है, किसी साइकोलॉजी डिज़ाइन की जाती है जिसमें आप फंसते चले जाते हैं। फिर ये होता है कि एक मछली पानी में गई छपाक और दूसरी भी गई छपाक। ऐसा ही होता है, क्योंकि हम धीरे धीरे करके पहले शुरुआत करते हैं एक चीज़ से। होता क्या है स्टार्टिंग में हमें खिलौने मिलते हैं, हम सोचते हैं खिलौने को हटाओ यार, बच्चे को देखने नहीं देंगे, आगे चलते चले जाते हैं, चलते चले जाते हैं, बच्चे लौट के तो वहीं आते हैं ना, बिल तो वहीं करवाएंगे, और बच्चों की नज़र में जैसे ही वो खिलौना पड़ा, मम्मी हमका यही चाहिए, हम नहीं जाएंगे नहीं तो वो लौटने लग जाते हैं वहीं।
0: अरे मम्मी को छोड़ो दीदी, सॉरी मैम, ओए भगवान मुझे मेरी दीदी की याद आ गई मैम।
1: ओह माय गॉड, लगता है मुझमें दीदी नजर आ रही है। थैंक यू सो मच। चले कोई बात नहीं, आई डोंट माइंड।
0: अरे आप मेरी बात सुनिए, मैंने दीदी बोला क्यों पता है, जब भी हम सामान लेने जाते हैं तो बिलिंग मेरी दीदी करती है, अब मुझे लग रहा है मैं बस अभी कुछ ले ही लूंगी और दीदी को ही करना पड़ेगा, इसके चलते मैंने आपको कह दिया दीदी, तो क्या आप मेरी बिलिंग करेंगी दीदी?
1: नहीं, मैं अपनी ही बिल नहीं करती, वो भी सोचते हो मेरी मम्मी निपटा दे।
0: नहीं तब आप मैम है, दीदी नहीं।
1: फिलहाल के लिए दोस्तों आप सुनते रहिए ज्ञान असली लाइव, और हम करेंगे शॉपिंग वाली बातें। ये जो लड़की बगल में बैठी है ये तो ऐसे ही कुछ ना कुछ बोलती रहेगी, लेकिन हम आपको सुनाएंगे गाना, क्योंकि हमारा काम है आपको गाने सुनाना, और आप एंजॉय करेंगे सुरूर, वो भी आदित्य की आवाज़ में। और तुम अपना मूड रखोगी फिलहाल के लिए, क्योंकि हम एंजॉय करने जा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन नगमा। अपनी साइकोलॉजी म्यूजिकल वाले ब्रेक के उस पार बताना ना, थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करना, समझो?
0: ओके,
1: बी लाइक शॉपिंग मॉल वाले, थोड़ा सा साइकोलॉजी हम भी क्रिएट करके आते हैं ताकि आप हमारे साथ बने रहें और एंजॉय करती रहें। अगर आपने कभी शॉपिंग मॉल में घड़ी देखी है तो बताइएगा, क्योंकि हमने नहीं देखी, हम 999 मॉल के अंदर जा चुके हैं, अगर सही गिनती की है मैंने। हाँ ठीक है, मैं 999 मॉल में जा चुकी हूँ, लेकिन मुझे एक में भी घड़ी नहीं दिखी, आपको दिखी तो बताइएगा ज़रूर।

0: ऐसा ही होता है जब जेब से सारे पैसे चले जाते हैं तो हमको भी लगता है कि यार मुझको तो मैंने खुद ही है लूटा। ये इश्क वफा जो हम निभा रहे थे, जा करके सामान उठा उठा के देख रहे थे और लग रहा था ये तो बहुत कम है, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। घर आके मम्मी कहती है इसकी जरूरत नहीं थी, तुम काहे लाए।
1: मम्मी से पहले मैं ये पूछती हूँ, आपको ट्रॉली की जरूरत थी क्या?
0: नहीं, वो हमें नहीं थी, वो तो मॉल वाले भैया दे गए थे ना कि मैम इसमें सामान रख लो अपना।
1: तो आप उसको भरने में क्यों लग गई?
0: क्योंकि यही तो खेल है ना बॉस, जब भी हमें लगता है कि हमारे हाथ में कोई चीज खाली है और हमारे अंदर का जो एक ग्रेटिट्यूड वाला पर्सन होता है वो हमें गिल्ट में डाल देता है कि अरे ये खाली खाली लेके कहाँ जा रहे हो, इतनी बड़ी ट्रॉली उसने दी है, भर तो लो तनिक।
1: ताकि वो भी ना सोचे ये ट्रॉली लेके उसमें
0: एक... नहीं, वो लगता है ना जैसे कि आपने कभी कभी बिना पैसे देखे किसी सामान को उठा लिया हो और आप काउंटर पे पहुंच जाओ बिल कराने के लिए, वो बोलता है 1,500, आपके जेब में 2,000 ही पड़े हैं और आपको वो इम्पोर्टेंट काम के लिए रखना है, लेकिन आप काउंटर पे पहुंच चुके हैं और अब मना करेंगे कि नहीं हमको नहीं चाहिए क्योंकि 1,500 महंगा है, तो एक बेइज्जती महसूस होगी राइट।
1: अब सोचेंगे अरे किसी से भीख ही मांग के करवा देते हैं,
0: है ना, तो वो थोड़ा सा ईगो पे आ जाता है यार अब तो बेइज्जती हो जाएगी, अब तो सामान लेना ही पड़ेगा। और यही हाल मुझे लगता है ना उसमें भी होता है जब हमें ट्रॉली मिलती है, सेम हाल हो रहा होता है कि अगर खाली ट्रॉली लेकर गया तो काउंटर पे खड़ा बंदा इसे घूरेगा कि अच्छा इतने गरीब हो कि तुम्हें सामान नहीं खरीदा गया है तुमसे।
1: अब उनको क्या पता अगर आप हमारे नंबर पे फोन कर ले तो गरीबी का लेवल पता चल जाएगा।
0: हाँ, तुम्हारा तो रिचार्ज भी नहीं रहता है, इवन तुम्हारे फोन को खोलने के लिए भी चार्जिंग पिन लगानी पड़ती है।
1: हम वो क्या नाम है, गरीबी रेखा से जो नीचे वाली लाइन है उससे भी नीचे है।
0: चलो इसको कंजूसी कहते हैं डियर, बट ये जो साइकोलॉजी है इसके साथ शॉपिंग मॉल वाले जो आप जहाँ शॉपिंग करने जा रहे हो ना वो बहुत अच्छे से खेलते हैं, फिर चाहे वो कलर हो, चाहे वो लाइटनिंग हो, चाहे बात हो ट्रॉली की या बात हो वो सामान जिसको आप बहुत इंपॉर्टेंट समझते हो, जिसको हम कहते हैं कि अगर मॉल में कभी कभी हम दूध लेने जाएं, दुकान से दूध लेते हो तो दूध का पैकेट लेके वापस आ जाते हो, लेकिन अगर मॉल में दूध लेने बाय मिस्टेक चले गए तो बॉस, बीच में बिस्किट भी खरीदोगे, नमकीन भी खरीदोगे, सब खरीदोगे,
1: मैं तो वहाँ गाना सुनने लगती हूँ।
0: ये क्या बात होती है। अच्छा हाँ, एक और बात है, गाने का भी ना अपना ही एक कलेक्शन होता है, इतने सूथिंग, इतने आराम से गाने बजाते हैं कि आपके कदम ही स्लो हो जाते हैं कि आगे वाला मुखड़ा भी सुनी जाऊं, और उस आगे वाले मुखड़े के लिए आप खाली तो खड़े रहोगे नहीं, क्योंकि अगल बगल कुछ ऐसे लोग घूम रहे होते हैं कि सर मैं आई हेल्प यू, हाँ मैं कैसे मदद कर सकती, वो इतनी बार टोक देते हैं कि आपको लगता है कि उस सामान उठा ही लेना चाहिए, नहीं तो फिर से ये आ जाएंगे पूछने के लिए और कहेंगे आप वैली क्यों खड़े हैं।
1: सही बात है, या तो उनके मॉल में घूमते रहो, कहीं कुछ तो मिल जाएगा तब तक गाना भी कंप्लीट हो,
0: या तो मॉल इतना बड़ा होना चाहिए कि हम घूमते रहे। बट एक स्टोर से खाली हाथ निकलना अपने आप में थोड़ा वो लगता है ना, बाहर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है चेक करने के लिए आपके पास क्या सामान है, उसके बगल से निकलो वो ऐसे देखता है सामान ही नहीं है।
1: अरे मैम सबसे ज्यादा बुरा तब लगता है आप बैग लेके जाओ उसको दो, वापस आते वक्त आप सामान न लाओ मेरा बैग वापस कर दो।
0: फिलहाल मुझे तो नहीं लगता क्योंकि मैं तो इस चीज़ के लिए आदी हो चुकी हूँ, मैं चाहती हूँ अगर मुझे कोई सामान पसंद नहीं आया ले आती हूँ, भले ही वो मुझे ऊपर से नीचे साइड आई से जज करते हैं कि अच्छा सामान ही नहीं लिया है तुमने, चलो कोई बात नहीं है, मेरा खाली टाइम वेस्ट कर रहे थे।
1: अच्छा बहुत से लोग होते हैं जो टाइम वेस्ट करने जाते हैं, मतलब उनको टाइम वेस्ट नहीं करना होता, उनको टाइम पास करना होता।
0: कभी ऐसा देखा है किसी के इंतजार में हो और आप बस स्टॉप के पास खड़े हो, उसने कहा अभी बस स्टॉप, हमें बस स्टॉप तक पहुंचने में आधा घंटा और लगेगा, आप सोचते हो क्या करें, खाएं पिए नहीं, चलो मॉल घूम के आते हैं।
1: होता है
0: और वहां जाके ना शॉपिंग हो जाती है अच्छी खासी।
1: मैम तब लगता है नहीं अब आए तो क्या पता जो आने वाला उसके लिए कुछ खरीद ही ले।
0: अब फिलहाल मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता कि कोई आने वाला है तो हम खरीद ले, क्योंकि तोहफे देने मुझे समझ में नहीं आते, तोहफों की जगह पे मैं फूल दे देती हूँ, क्योंकि फूल एक ऐसी चीज़ है ना जो किसी भी मौके पे दिया जा सकता है।
1: नहीं ये फूल देने वाला या मूर्ख बनाने वाला तोहफा ना दे के इसको फूल,
0: एक्सक्यूज मी, इसीलिए मैंने फूल बोला था, फूल नहीं बोला था, हम इतने भी एक्सेंट में नहीं खो चुके थे।
1: नहीं नहीं मैं सोच रही थी कि वो फूल दे के फूल ना बना दो।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, इवन मुझे अगर बर्थडे का तोहफा भी समझ में नहीं आता है ना तो मैं फूल ले जाती हूँ, क्योंकि फ्लावर से ज़्यादा खूबसूरत चीज़ मुझे आज तक दिखी नहीं, और आई थिंक वो सारे जज्बात बता देते हैं, बाकी मैं परफ्यूम्स देंगी ख़त्म हो जाएंगे, वैसे फूल भी सूख जाते हैं कोई बात नहीं होती है।
1: बात तो वही है, इससे अच्छा मैम आपको देना होगा तो मुझे परफ्यूम दे देना।
0: नहीं कहते हैं परफ्यूम देने से परफ्यूम जैसी बॉटल ख़त्म होती जाती है ना वैसे वैसे इंसान का रिश्ता कमज़ोर हो जाता है, इसलिए मैं चांस ही नहीं लेती।
1: क्या मैं रखी रहूँगी लगाऊंगी नहीं,
0: नहीं तो वो सड़ जाएगा।
1: मैं उसको म्यूजियम में रखाऊंगी।
0: ऐसा नहीं होता है, बट हाँ कुछ चीज़ों को मना किया जाता है, हालांकि वो चीज़ें मैं मानूँ या ना मानूँ, लेकिन जब किसी अपने लव्ड वंस की बात आती है ना तो सारी चीज़ें एक साथ क्लिक होती है, हाँ भैया अगर कहीं ये बात सच निकली तो।
1: अच्छा तो इसका मतलब मैं
0: हाँ समझ जाओ. समझदार के लिए इशारे काफी होते, वो अलग बात है तुम समझदार नहीं हो. फिलहाल के लिए हम बात साइकोलॉजी की कर रहे थे. शॉपिंग मॉल में तुम कहाँ इशारों की बात कर रहे हो?
1: अरे नहीं,
0: इशारे
1: मैं ली क्या थी मैम, मैंने कुछ खरीदा था.
0: नहीं आपने अभी कुछ नहीं खरीदा था, आप मॉल के अंदर एंट्री कर रही थी. और आपने एक चीज नोटिस की है सॉरी, जब ये मॉल में जाते हैं ना तो वहाँ की लाइटनिंग इतनी जबरदस्त होती है कि बाहर वक्त कब गुजर गया इसका अंदाजा हमें नहीं लगता.
1: मैं तो जाती हूँ दिन में, लौट के आती हूँ रात में. मैं जाऊंगी 5 बजे.
0: वो तो कहा वो गेट पे जो सिक्योरिटी वाले भैया खड़े रहते हैं ना, अगर वहां से निकले हैं तो बाहर का नजारा दिख जाता तो पता चलता है अरे दादा ये तो रात हो गई. नहीं तो ना हमें टाइम पता चलता है, ना ये पता चलता है कि कितने घंटे हो चुके हैं. वो तो घर जाके पता चलता है कि पैरों में बहुत दर्द हो रहा है. क्यों दर्द हो रहा है? क्योंकि 1 घंटे से घूम रहे थे हम.
1: मैम आप 1 घंटे, मैं जाऊँ 3 घंटे ना लगे, भले मैं कुछ लूँ ना लूँ 3 घंटे लगने तो लगने.
0: क्या बात है. फिलहाल ऐसा पहले होता था गर्मियों में, मैं खाली एसी की हवा खाने जाती थी.
1: तो आपके साथ तो पहले होता था, मेरे साथ में वो अभी हो रहा है.
0: अच्छा अच्छा
1: अच्छा, हमारे लिसनर ऐसे कौन से हैं जो गर्मी में हवा खाने जाते हैं?
0: हाँ कोई तो ऐसा होगा मेरी तरह जो सिर्फ गर्मियों में एसी की हवा खाने के लिए मॉल के अंदर घुस जाते हैं. मुझे लगता है ना बाहर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी में खड़े नहीं हो सकते, इंतजार नहीं कर सकते. मैं तो चलो मॉल चलो, मॉल में तो एसी चल रही होगी. और कमाल की बात है कुछ मॉल वाले एसी भी नहीं चला रहे होते, फिर मेरा दिमाग खराब हो जाता है, फिर मैं बाहर आ जाती हूँ. इससे अच्छा तो मैं सूरज के नीचे ही खड़ी हो जाऊँ.
1: उनको भी पता है लेने आई नहीं है, बंद कर देते हैं.
0: हाँ उनको पता चल जाता है कि ये मतलब शायद मेरी शक्ल पे लिखा हुआ है ये शॉपिंग करेगी नहीं.
1: नहीं उनमें से किसी ने बाहर आपको खड़े हुए देख लिया होगा.
0: अच्छा तुम्हें पता है मेरे साथ एक ऐसा किस्सा हुआ था हाल फिलहाल में ही. मैं मॉल में गई थी और मुझे शॉपिंग करनी थी, एंड मेरे साथ मेरे दोस्त लोग भी थे और मेरा फैमिली मेंबर भी थे. तो मुझे लगा मेरी शॉपिंग के पैसे वो लोग देने वाले हैं. अब इस खुशी में मैंने सारा सामान उठा लिया, मैंने 3 से 4 सामान उठाए जिसमें इयररिंग्स शामिल थे, ब्रेसलेट शामिल था. और मैंने कमाल की बात यह है क्योंकि मुझे बिल पे नहीं करना था तो मैंने पैसे भी नहीं देखे कि कितने पैसे का वो है. काउंटर पे पहुंच गए हैं, काउंटर पे जाके मैंने वो सामान दिया, उसने मेरी इयररिंग्स के 600 रुपए लगाए. ठीक है अब मैं सोच रही हूँ उस इयररिंग में 600 रुपए में ऐसा था क्या जो मैं इतना महंगा देकर आई हूँ. फिलहाल के लिए उसको साइड रखते हैं. टोटल सामान आया 1500 रुपए का. अब मैं शक्ल देख रही हूँ कि क्या ये देगा, बट मेरे अंदर का जो एक आदमी है वो बोलता है तुरंत ही कि नहीं कोई और पैसा क्यों देगा, सामान तुम्हारा पैसे भी तुम दोगी. और मैंने मजाक मजाक में कह दिया और रहने दो मैं बिल पे करती हूँ. उन्होंने सीरियसली ले लिया, उन्होंने कहा ठीक है पे करो. और मेरे पास उस वक्त मात्र 1700 रुपए थे, 1500 पे करके चले आए हैं क्योंकि वापस नहीं कर सकती यार, बेइज्जती हो जाएगी.
1: भगवान.
0: इसके अलावा उससे भी नहीं बोल सकते जिसको हमने बड़े शान में कहा था और रहने दो मैं बे पे कर दूंगी ना, और उसने सीरियसली ले भी लिया. भाई ऐसे मत किया करो मेरे साथ.
1: तब फिर आपको मॉल वालों नहीं आपके घर वालों ने लुटवाया है.
0: घर वालों को पता नहीं चलने दिया मैंने.
1: जिनके साथ में गई थी वो लोग लुटवाए.
0: नहीं उन्होंने उनको भी कहा था देखो बताना नहीं मम्मी को बताओगे कहेंगे बेटा 1700 बचाए थे, 1500 है और इस 600 में है क्या, तुमको ऐसा क्या दिख गया था इसको मैं 250 में ना लूं. मेरी मम्मी ऐसी बेइज्जती कर देती इसलिए मेरे मम्मी तक ये बात पहुंचती ही नहीं थी. वो अलग बात है अगर मम्मी यहां सुन रहे होंगे कहेंगे अच्छा बेटे तुम घर वापस आओ थोड़ा.
1: ये तो मैम वही हो गया, घर वालों को कोई बात नहीं पता है. फिर
0: हम उसको हम ऑन ईयर चिल्लाते हैं.
1: नहीं ऑन ईयर नहीं, हाँ जैसे अभी चिल्ला दिए मैम.
0: हाँ वो अलग बात है कि अब मैं यही दुआ करूंगी कि मेरी माँ ना सुन रही हो. बस एक बात तो है यार, अब माँ सबकी माँ ही होती है और कहीं भी चले जाओ अगर तुमने 1500 की 2000 की एक टी शर्ट खरीदी है और उस टी शर्ट को उन्होंने वो 250 के बाहर नहीं देख ली, स्पेशली अगर तुम कोई सामान लेकर आए हो और ब्रांडेड सामान लेकर आए लाइक गुची पराडा H&M जारा इनका लेकर आए हो तो एक अच्छा खासा ब्रांड है, ब्रांड के पैसे अकॉर्डिंग लग रहे हैं. मेरी मम्मी देख के कहती है बगल वाले दुकान पर ये 250 रुपया मिलता है बेटा, तुम लुट गई हो, तुमको शॉपिंग करना नहीं आता.
1: अच्छा मैम और मम्मी लोग अगर मॉल में जाएं तो मुझे नहीं लगता है कि वो आप मम्मी को बिल पे करने देती हो?
0: ऑफ कोर्स
1: कर देती हैं.
0: ऑफ कोर्स.
1: अच्छा मेरी मम्मी ना करेंगी?
0: अरे नहीं यार मेरी मम्मी ऐसी नहीं,
1: नहीं
0: है.
1: वो कहेंगी भैया
0: वो अलग बात है कि घर पे आके ताने जरूर मिलते हैं कि एक सामान लेने गए थे 4 उठा लाए, लेकिन इसमें गलती मेरी नहीं है, इसमें गलती साइकोलॉजी की है जो मॉल वाले इस्तेमाल करते हैं ट्रॉली पकड़ा करके.
1: गलती ये होती है कि हम अकेले ना जाके किसी के साथ में जा रहे
0: और बातों बातों में ये भी उठा लेते हैं वो भी उठा लेता है. अच्छा खाने के लिए घर पे कुछ है नहीं ये भी उठा लिया जाता है, चाय के साथ नाश्ता नहीं है ये भी उठा लेते हैं और उस चक्कर में पूरी ट्रॉली भर जाती है. इवन ट्रॉली भरने के ऊपर तक हम रखते जाते हैं, जब बिल हाथ में थमाया जाता है तब पता चलता है कि आधी ज्यादा शॉपिंग तो फालतू की थी.
1: नहीं अब लग रहा था जो ट्रॉली में भर के वजन लेके आए थे वो दिल पे रख गया.
0: बिल्कुल. इसके अलावा वक्त का पता नहीं चलता, तो भाई जहाँ पर घड़ी नहीं होगा वहाँ आप घड़ी देखोगे भी नहीं। और मॉल वालों को जो डिज़ाइन करना होता है वो मॉल इस खूबसूरती के साथ डिज़ाइन करते हैं। इतनी लाइट होती है कि अगर बाहर रात के 12 भी बज जाएंगे तो भी लगेगा कि अंदर की सुबह के 4 हो रहे हैं। लाइटनिंग इतनी ज़बरदस्त होती है और घड़ी नहीं होती है, म्यूजिक चलता रहता है और मॉल के अंदर हजारों लोग खड़े होते हैं, सबको लगता है कि सब जग रहे हैं, ये जग रहे हैं तो मैं सो के क्या करूँगी।
1: बात वही है। और उनके यहाँ पे ये नहीं कि एक जैसी लाइट हर जगह लगी हो,
0: सब जगह अलग अलग।
1: अगर आप कपड़े पे लेने जाएंगे, कपड़े लेने जाएंगे वहाँ पे वार्म लाइट होगी।
0: और ये भी बात है कि लाइटनिंग की वजह से ही कपड़े और चूड़ियाँ बहुत पसंद आती है। तुमने देखा मेले में तुम अगर जाओ तो जो लाइट लगी होती है चूड़ियों के ऊपर, उससे चूड़ियाँ बड़ी खूबसूरत नजर आती है। और जैसे ही वो घर पे लेकर आओ उनका रंग चला जाता है। क्यों चला जाता है? मेरी मम्मी कहती बेटा ये सिर्फ यहीं चमक रही है, तुम्हारे हाथ में जाती बेकार हो जाएगी।
1: नहीं अब मुझे क्या लगता था ये सामान मेरे पास आती है ऐसा क्यों हो जाता है?
0: इसके पीछे की जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो लाइट का है। जितनी ज्यादा लाइट उतनी चमकने वाली चीज, जितनी कम लाइट उतनी बेकार चीज। और इसीलिए कपड़े हो या फिर आप जाके वहां देखो ट्रायल रूम में जब कपड़े चेंज करते हो तो बड़े सुंदर लगते हो ना कि ये इधर से भी फिट है, बाइसेप भी दिख रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है, पेट वेट सब गायब। घर आके पहनो तो लगता है यार ये तो पेट निकल आया वापस। क्यों? क्योंकि वो लाइट ऐसी पड़ रही है आपके ऊपर कि आपको हर एक एंगल से आप खूबसूरत नजर आ रहे हो। चारों तरफ मिरर लगे हुए हैं, आप देख रहे हो इधर से, ये मेरे बाल देखो, ये मेरी हाथ देखो, मेरी उंगलियां कितनी खूबसूरत हैं। घर आते ही लगता है ये पहले जैसी ही हो गई है। होता है ना?
1: यस मैम।
0: और इन सबके पीछे होती है साइकोलॉजी जो आपके दिमाग से खेली जाती है। इतनी देर से जो हम बातें कर रहे हैं इन बातों में भी एक साइकोलॉजी है। हालांकि आपको अभी पता है कि इन बातों में हो सकता है आपके मतलब का कुछ भी ना हो, फिर भी आप सुन रहे हो। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी कहती है अगर कोई बात कर रहा है और उसमें अगर वो हंस रहा है तो हम भी इंक्लूड होंगे।
1: रीजन पता हो ना पता हो,
0: होता है ना, चार लोग अगर बैठ के बातें कर रहे हैं भले ही वो बातें पे और बकवास हो, बट जाने की इच्छा होती है ना ये चार गॉसिप में चल क्या रही है और ये इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं।
1: हम यहाँ पे बकवास नहीं कर रहे हैं।
0: हालांकि हम ये तो एक साइकोलॉजी का एग्जांपल दिया था मैंने कि साइकोलॉजी किस तरह से आपके दिमाग के साथ खेलती है। अगर आप ग्रुप से बाहर रहना चाहते हो और आप नहीं रह पा रहे हो तो इसके पीछे आपकी कमजोरी नहीं है, वो साइकोलॉजी है, वो माइंडसेट है जो आपको घसीटता है, जो आपको मजबूर करता है कि जाओ। किसी भी रिश्ते से निकलना हो तो तुम देखो कि हम सोच तो लेते हैं यार इसको छोड़ के चले जाएंगे, उसको अनब्लॉक कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं और 21 दिन तक हम ऐसे छोड़ भी देते हैं। लेकिन अगर आप उस बंदे को ब्लॉक नहीं कर रहे हो, आप उस बंदे को म्यूट नहीं कर रहे हो, नोटिफिकेशंस म्यूट नहीं कर रहे हो और आप ऐसी जगह काम कर रहे हो जहाँ पे वो इंसान आपसे बार बार टकरा, आप ना चाहते हुए भी उससे बात करोगे, कितना भी कह रहे हो कि हम मूव ऑन कर लेंगे, हम छोड़ देंगे, हम ये कर देंगे, वो नहीं कर पाते हो क्योंकि आपका दिमाग बार बार उसी प्रोसेस को दोहरा रहा है। वो सोचता है ये सामने ही तो है, इससे बात करने में क्या जाता है, एक और कोशिश, एक और कोशिश, एक और कोशिश। और वो कोशिश कब ज़्यादा हद पार कर देती है ये आपको भी आइडिया नहीं लगता। एंड दैट्स वाई इस तरह से साइकोलॉजी आपको ट्रीट करती है। इसलिए लोग कहते हैं कि अगर आपने अपने दिमाग को मास्टर कर लिया तो आप इस दुनिया में कुछ भी हासिल कर लेते हो, बट आपका दिमाग आपको मास्टर खुद पर करने नहीं देता है।
1: इसके लिए थोड़ा बहुत साइकोलॉजी जानना चाहिए,
0: इसके लिए साइकोलॉजी जानना चाहिए और इसी के लिए आपको वो बातें पता होनी चाहिए। बट मुझे पता है ना जब इमोशंस की बात आती है
1: तो वो जानते
0: तो वो साइकोलॉजी भी धरी के धरी रह जाती है।
1: वही मैम
0: एग्जाम्पल में हमारे एडवर्टाइजमेंट होते हैं, अब ये कैसे काम करते हैं ये हम आपको बताते हैं, लेकिन इस छोटे से म्यूजिकल वाले ब्रेक के उस पार तो एंजॉय करते रहिए। आप सुनते रहिए आपका अपना वाला शो जिसका नाम है ज्ञानस्थली लाइव। और क्यों ना राहत फतेह अली खान की आवाज़ में आपको थोड़ी सी राहत दिया जाए, एंजॉय कीजिए, चिया धड़क धड़क जाए।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
0: मतलब?
2: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
3: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: रोशनी रोशनी इस मॉल की ये रोशनी किसके लिए है? मेरे लिए है,
1: कस्टमर के लिए है।
0: तो मैं क्या हूँ, कस्टमर ही भगवान है।
1: यस मैम।
0: और भगवान ही सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है।
1: भगवान ही दुनिया बनाता है, हम लोग वो मॉल वाली की दुनिया बनाए।
0: ओह माय गॉड,
1: वो हमारे बल पे जिंदा।
0: ओह माय गॉड। अच्छा ये पता है, मॉल में जाते ही हम सीधे दाहिनी ओर मुड़ जाते हैं। क्यों, बाही ओर भी जाया जा सकता है ना?
1: नहीं, वो ऐसे इंसान हर कोई दाहिनी ओर। अब मैम उसी साइड में सबसे ज्यादा दुकानें मिलेंगी आपको।
0: दुकानें नहीं मिलती, प्रोडक्ट्स मिलते हैं।
1: मतलब सामान मिलेंगे छोटे छोटे, उनके अलग अलग काउंटर होते हैं।
0: सबसे महंगे और लग्जूरियस प्रोडक्ट जहाँ रखे होते हैं वो होता है राइट साइड। बट मुझे जानना है हम दाहिनी साइड ही क्यों मुड़ते हैं, हमेशा दाएं ही कहीं चलते हैं, बाएं भी जा सकते हैं।
1: क्यों, उधर का रास्ता बंद रखते हैं?
0: नहीं ऐसा नहीं होता, खुला रहता
1: है। अब हम नहीं जाने देंगे,
0: ऐसा नहीं है। शायद हमारे दिमाग के साथ ही कुछ दिक्कत है।
1: दिमाग में ही किसी ने राइट राइट राइट टर्न कर दिया है।
0: अरविंद जी लिख रहे हैं, मैम मे आई कम इन? यस यू मे कम इन। देखा, हम आधी अधूरी इंग्लिश नहीं बोलते, हम पूरी बोलते हैं।
1: हम बुलाएं?
0: नहीं आप ना बुलाएं,
1: रहने दीजिए।
0: बैकग्राउंड म्यूजिक और खुशबू,
1: परफ्यूम
0: मैं लगाती हूँ।
1: महक रहा है मैम स्टूडियो।
0: वो तो मुझे पता है, शुक्रिया शुक्रिया। अपनी तारीफ में चार चांद लगा ली है खुद मैंने, नहीं अपनी तारीफ में चार परफ्यूम लगा ली है खुद मैंने।
1: परफ्यूम की जरूरत ले चांद।
0: अच्छा देखो, तुम जहाँ किसी भी मॉल में जाओ तो एक अच्छी सी प्यारी सी भीनी सी खुशबू आती है, राइट?
1: यस मैम।
0: और अगर इस यही खुशबू किसी इंसान के पास मिले तो आप उस इंसान के पास खड़े रहते हो, यही खुशबू आपको किसी जगह पे मिले तो आप वहां खड़े रहते हो। तो ये खुशबू जो हमें बहुत मामूली सी लगती है, ये बहुत बड़े बड़े रोल कर रही होती है
1: मैम। वो जान के वहां पे वो खुशबू फैलाते हैं।
0: बिल्कुल, जितने भी बड़े स्टोर्स हैं, फिर चाहे कोई भी ले लो आप, उनके अंदर एक स्मेल होती है। कुछ लोग तो अपने लग्जूरियस परफ्यूम की स्मेल ही करते हैं, और वो जो मॉल की एक अच्छी सी खुशबू होती है ना, उसको हम परफ्यूम्स में कई बार ढूंढते रहते हैं और नहीं मिल पाता, उसको पता नहीं कहाँ छुपा के रखते हैं यार। मैं तो कितने सालों से।
1: चलो इस बार पूछा जाए, भैया ये वाला बताओ जो इसमें महक रहा है वो वाला।
0: रहने दो रहने दो, फिर वो बताएंगे कि मैम ये 45,000 का है, वुड यू लाइक टू हैव? एंड आई वाज लाइक नो नो,
1: मुझे 500।
0: मेरी मम्मी मुझसे कहेंगी बेटा ये रही आपकी वसीयत, इस पे मेरा साइन है और आप इस वसीयत से बेदखल हो चुकी हैं, उठाइए अपना सामान और 45,000 का जो परफ्यूम लेकर आई हैं इसी के साथ जाइए, खाइए पिए रहिए उधर आराम से।
1: नहीं तो बाबू ये वाला नहीं, वो जो 500 में आ जाए वो वाला दे दीजिए।
0: नहीं ऐसा नहीं होता। ब्रांड देखो, तुम्हें पता है ब्रांडेड परफ्यूम्स महंगे क्यों होते हैं? इसके पीछे एक रीजन होता है
1: मैम, क्योंकि उसमें केमिकल कम होता है।
0: नहीं बॉस, परफ्यूम्स की अगर तुम्हें जानकारी चाहिए तो हमसे बेहतर कोई नहीं दे सकता। वो इसके पीछे की वजह ये होती है कि परफ्यूम डिज़ाइन किए जाते हैं यूनिक। किसी भी लग्जूरियस परफ्यूम को तुम उठाकर देख लो, जो बहुत बड़ा ब्रांड है, उसके परफ्यूम की स्मेल जो होगी वो बाकी सब में नहीं मिलेगी। जब वो बन के तैयार होता है तब जाकर दूसरे लोग इसको कॉपी करना शुरू करते हैं, तो पहला पीस तो हमेशा महंगा होगा।
1: yes,
0: और परफ्यूम को रखा जाता है सालों के लिए, पहले तो उस पर काम होता है, उस पर पढ़ाई होती है, रिसर्चर्स बैठ के रिसर्च करते हैं किस नोट के साथ कौन सा अच्छा लगेगा, फिर उसको सालों के लिए एक बंद कमरे में छोड़ दिया जाता है, और इसकी वजह से उनकी कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ती है क्योंकि उनका प्रोडक्शन कम होता है, और इसलिए वो आपको हज़ारों में मिलते हैं। और जो आपको बहुत 500 के अंदर मिल जाते हैं, ये एक हफ्ते के अंदर 10 बोतलें तैयार की जाती है और आपको अगले ही दिन डिलीवर कर दिया जाता है, इसलिए उनकी खुशबू टिकती नहीं है,
1: अच्छे भी नहीं लगते हैं
0: क्योंकि खुशबू नहीं टिक रही है। उनके नोट्स कॉपी पेस्ट है, आपको कुछ अलग चाहिए, कुछ यूनिक फ्रेशनेस आप ढूंढ रहे हो तो वो आपको महंगा ही मिलेगा, बिकॉज उसमें थोड़ा सा दिमाग खर्च हो रहा है, उसको रखा जा रहा है। कोई भी नया परफ्यूम आप लो तो उसको एक महीने के लिए छोड़ दो, आराम से सेटल होने दो, देन इस्तेमाल करो, उसकी स्मेल आपको थोड़ी अलग मिलेगी।
1: अब मैम मुझे लग रहा है कि आपको आर्जिंग छोड़ के परफ्यूम कंपनी में जाना चाहिए।
0: ओ या, मुझे भी लग रहा है। फिर मैं अपने फेवरेट नोट्स को कॉपी पेस्ट करूंगी, लाइक कोकोनट है, लाइक फिग है, लाइक सेडर है, सबको मिक्स कर करके एक बढ़िया सा डिज़ाइन तैयार करूंगी
1: और आप उसी को लगाइएगा।
0: फिलहाल हम परफ्यूम्स की बात नहीं कर रहे थे, हम बात कर रहे थे उस खुशबू की जो आपको मॉल्स के अंदर मिलती है और जहाँ पर आप रुक जाते हैं। लाइट बहुत अच्छी है, खुशबू बहुत अच्छी है, और ये सारी चीज़ें मिलकर आपके दिमाग के साथ केमिकल लोचा करती हैं और केमिकल इस तरह से क्रिएट होता है कि आप सोचते हो कि कुछ वक्त और रुके। जब आप कुछ वक्त और रुकते हैं तो वहाँ खाली खड़ा होना आपको पसंद नहीं आता, क्योंकि ये अपने आप में ही थोड़ा सा गिल्टी फील कराता है कि यार हम कहीं आए भी हैं और हम कुछ खरीद नहीं रहे हैं।
1: खाली खड़ा होना यानी कानूनी अपराध है?
0: नहीं, कानूनी अपराध तो नहीं है,
1: खुद के
0: वो अंदर से फील आता है, वो जो गिल्ट है, जो पछतावा है कि हम खड़े क्यों हैं। फिर हम वहाँ से कोई चीज़ें उठाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब हम चीज़ें खरीदने जाते हैं, हमारे बगल में कोई और वो सामान ले रहा है, तो हमारा हाथ अपने आप उससे भी महंगे प्रोडक्ट की तरफ जाता है, क्योंकि हमें थोड़ी सी शान दिखानी होती है कि हम तो महंगा वाला सामान खरीदते हैं। सब्जी की दुकान पे अगर तुम जाओ और तुम वहाँ पे खड़े होकर सामान ले रहे हो, कोई बगल में खड़ा है, उसने कहा है कि भैया एक किलो ये दे दीजिए, दूसरे किलो वो दे दीजिए, और आपने देखा कि इसने तो 400-500 रुपए की सब्जी ले ली है, आप उसके सामने 250 ग्राम कैसे मांगेंगे? नहीं मांगेंगे ना। आप मांगेंगे, भले आप अकेले ना रह रहे हो, आप अकेले भी रह सकते हो, नहीं भी रह सकते हो, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा ले रहा है, उसकी 500 तक की सब्जी बन चुकी है और आपको लगातार वो दुकान वाला बहुत हंस के निकाल रहा है सामान, तो आपके अंदर एक प्रेशर क्रिएट होता है यार कि मैं 250 कैसे बोलूँगी इसके सामने। या तो उसके जाने का इंतज़ार करोगे आप कि ये चला जाए, और नहीं, अगर आप इंतज़ार नहीं कर पा रहे हो तो मुझे यकीनन मैं बता सकती हूँ आप वहाँ पर 1-2 किलो एक्स्ट्रा बोलने वाले हो, यानी कि या तो उसके बराबर पैसे दोगे या उससे 100 रुपये ज़्यादा दोगे, और घर आके आप बताओगे भी उसको, घर आके आप बताओगे भी, क्योंकि जो दुकानदार होता है उसका ध्यान उसकी तरफ ज़्यादा होता है, तो आपको लगता है दुकानदार इसकी तरफ ध्यान ज़्यादा दे रहा है, 250 ग्राम तो ध्यान भी नहीं देगा। इसलिए है वो प्रेशर जो क्रिएट होता है ना, ये सारी साइकोलॉजी आपके शॉपिंग में ही चल रही होती है, और आपको पता भी नहीं चलता कि आप ज़रूरत से ज़्यादा पैसे खर्च कराते हो। और इसीलिए जो 20,000 रुपये महीने सैलरी कमाते हैं, उनका घर भी वैसे ही चल रहा होता है जैसे 80,000 रुपये कमाने वाले का, क्योंकि दोनों के खर्चे बराबर चल रहे हैं। वो अपने उन 20,000 के अंदर का खर्चा समेट रहा है, उसे लगता है कि मुझे इसी के अंदर करना है। 80,000 वाला कहता है मेरे पास 80,000 है, मैं और चीज़ें खरीद सकता हूँ, उसका खर्च बढ़ता है और सैलरी दोनों की बराबर हो जाती है लास्ट के महीने आते आते।
1: यस मैम, तो इसीलिए
0: साइकोलॉजी समझें, जो ज़रूरत हो उसे ले। अब इससे बचने के लिए आपको करना ये है कि जो सामान आपको ख़रीदना है, जो आपने देखा है, उसे अपने विश लिस्ट में डाल दें। आपको यकीनन मैं कह रही हूँ 99.99% चीज़ें आप उसको रख कर भूल जाओगे, क्योंकि उसकी ज़रूरत आपको है ही नहीं, और जिसकी ज़रूरत होगी उसे आप ख़रीद ही लोगे।
1: और साइकोलॉजी के हिसाब से अगर आप कोई चीज़ लेना चाहते हैं, आप उसको 30 दिन के लिए टाल रहे हैं, जाहिर सी बात है आप 1 हफ्ते में उसको भूल जाएंगे।
0: हाँ, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं होती है, वो सिर्फ एक फेम, एक तरीका होता है हमें अट्रैक्ट करने का। कोई बहुत बढ़िया बॉटल आपको दिख गई है परफ्यूम की, कोई बहुत बढ़िया शैम्पू आपको दिख गया है, उसके लेवल्स आपने पढ़ लिए हैं, बट आपको ज़रूरत नहीं है, आप उसे विशलिस्ट में डालो, यकीनन आप उसे भूल जाओगे अगले हफ्ते तक, क्योंकि वो ज़रूरत नहीं थी, और जो ज़रूरत है वो आप अगले दिन लेकर आओगे। इससे आपका पैसा बचेगा, सेविंग आप कर पाओगे, प्लस वो जो महीने के लास्ट में रिग्रेट होता है यार इस महीने को ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए हैं, वो भी नहीं होगा।
1: और शॉपिंग करते वक्त लिस्ट बना के जाएं।
0: बिल्कुल, आपको पता होना चाहिए कि आप शॉपिंग मॉल में लेने क्या आए हो, क्योंकि कहते हैं अगर आप भूखे हो और आप घर से बाहर निकल गए हो तो आप बकवास चीज़ ही उठाओगे, इसीलिए हमेशा घर से खाना खा कर निकलो, ताकि बाहर की चीज़ों पे आप इस तरह से ना गिरे। और ये चीज़ें सिर्फ बाहर के लिए नहीं होती हैं, ये हर उस इमोशन के लिए हैं जो अपनी ज़िंदगी में आप लेकर आते हैं। फिर चाहे किसी इंसान की आपको तलाश हो, किसी सामान की आपको तलाश हो, अगर आप घर से खाली हाथ निकल गए हैं, खाली पेट निकल गए हैं, तो यकीनन आप हमेशा घटिया सामान ही चुनोगे। ये सच होता है। अगर आप ऐसे इंसान हो जिसको कोई ना कोई चाहिए ही चाहिए अपनी ज़िंदगी में, तो आपको 99.99% एक वो टॉक्सिक इंसान मिलेगा जो आपकी ज़िंदगी में आकर उसको हेल्प कर सकता है। बट अगर आप अपने आप में कंप्लीट हो, खुश हो, आप खुद से बहुत मोहब्बत करते हो, तो आप इंसान भी ऐसा चूज़ करते हो, क्योंकि इसमें आप टाइम लेते हो, आप सब्र रखते हो, तो इंसान भी आप अच्छा चूज़ करते हो। जल्दबाजी में किया गया काम हमेशा शैतान का इसीलिए कहा जाता है।
1: अच्छा,
0: क्यों? आप हमेशा जब किसी चीज़ के लिए भूखे होते हो, प्यासे होते हो, तो आप कुछ भी पी लेते हो। तुम्हें बहुत प्यास लगी है, पानी नहीं मिल रहा है, तुम टंकी का पानी भी पी लोगे, लेकिन अगर तुम्हें प्यास नहीं लगी है, तुम्हें अच्छे से अपने पास से पानी स्टोर करना है, तो तुम बॉटल खरीदोगे जाके कि 20 रुपये की बॉटल ले ले। अगर बहुत ज़्यादा प्यास लगी है तो फिर तुम कहीं भी पी सकते हो। अगर इतनी प्यास नहीं है तो तुम घर जाने तक का इंतज़ार करोगे ताकि घर में आरओ का पानी पी सको। समझे?
1: यस मैम।
0: ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम किस इमोशन के साथ घर से बाहर निकल रहे हो।
1: तो यानी कि अब कहीं जाने से पहले खा के और पी के जाना है,
0: ताकि बाहर जाके जंक फूड से नहीं उलझना है। और ऐसे ही जिंदगी में भी इन इमोशन को समझिए कि आप अपने आप में कंप्लीट मुकम्मल रहिए, ताकि बाहर आप कहीं टॉक्सिसिटी में ना फंस जाएं। और कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी चीज़ में लंबे वक्त तक रहते हैं तो हम निकल नहीं पाते, ये सोच कर कि इसमें तो बहुत वक्त चला गया है। और यहीं पर मुझे एक जापानी की कहावत याद आती है, जापानीज़ कोट है कि अगर तुम किसी गलत ट्रेन पे चढ़ गए हो तो आने वाले अगले स्टेशन पे उतर जाओ, क्योंकि अगर तुम ये सोचते हो कि इस पे तो हम इतने स्टेशन पहले ही क्रॉस कर चुके हैं, आगे देखते हैं क्या होता है, तो आपका जो असल स्टेशन होता है वो बहुत पीछे छूट चुका होता है। उतना ही वक्त लगता है वापस लौटने में जितना वक्त आप उस गलत ट्रेन के अंदर बैठे रहते हो।
1: पर लोग क्या करते हैं, वो ये सोच लेते हैं अगर हम किसी अपनी मंजिल तक जाना है और फिर तैयारी करते करते रुक जाते हैं, तो तब वो सोचते हैं कि जितना हम आगे आए हैं आ चुके हैं उतना ही पीछे जाना पड़ेगा, इसके वजह से वो तैयारी अपनी जारी रखते हैं और सक्सेस पा जाते
0: बस
1: हैं।
0: यही तो दिक्कत है, सक्सेस नहीं है। मैं यहाँ पर उन ट्रेनों की बात कर रही हूँ, उन चीज़ों की बात कर रही हूँ जो आपके लिए ठीक नहीं है।
1: मैं बता रही हूँ।
0: और तुम सक्सेस की बात कर रही हो।
1: अरे मैं अभी घुमा के बताऊंगी ना।
0: जलेबी की तरह नहीं घुमाया जाता है, बात को स्ट्रेट रखा जाता है। जितनी आपकी सीधी बात होगी लोग उतना बेहतरीन समझेंगे।
1: दिमाग लगाने दीजिए।
0: नहीं, हमें मैनिपुलेट नहीं करना है, हमको यही साइकोलॉजी तो तोड़नी थी बैठ के यहाँ पे, और तुम वही काम कर रही हो।
1: अच्छा, तो मतलब सीधी सी बात है, अगर आप गलत रास्ते पे हो तो वापस आ जाओ, अगर आपको लग रहा है आप सही रास्ते पे हो तो बस चलते जाओ।
0: बिल्कुल, फिलहाल के लिए घड़ी ने इशारा कर दिया है कि सही गलत को यही रोक दिया जाए, और हमारे पास हमारे चैट बॉक्स में अरविंद जी जुड़ गए हैं, एंड लगता है सबकी वाट लगने वाली है। उन्नति मैम ने, किसी की वाट नहीं लगेगी, बस आपको समझा रही हूँ ताकि आप जब अगली बार शॉपिंग करने जाएं तो 10 रुपये का सामान 10,000 में खरीद के ना लाएं, बुरा लगता है।
1: और एक बात, ऑनलाइन शॉपिंग करने से ज़्यादा आप कैश दें।
0: हाँ, क्योंकि कैश में पैसे खर्च होते हैं ना, 500 के नोट अगर टूटता है तो पता चलता है कि अरे 100 रुपये ख़त्म हो गए, 200 रुपये ख़त्म हो गए, 300 रुपये ख़त्म हो गए, अब तो रुपए ही नहीं बचे। बट ऑनलाइन जब पेमेंट करते हैं तो ये काउंटिंग हम नहीं कर पाते, और हमें लगता है बैंक में तो पड़े ही पड़े हैं, क्या फ़र्क पड़ता है।
1: इसीलिए जब भी सामान लेने
0: इसलिए मैं तो कैश रखती हूँ हमेशा।
1: जाए
0: वो अलग बात है कि मेरा कैश कभी गिर जाता है तो मेरा दिल भी गिर जाता है कि ओ माई गॉड मेरा 10 रुपये चला गया।
1: अच्छा मैम।
0: हाँ जी।
1: नहीं कुछ नहीं।
0: ओके, हमारे अरविंद जी लिख रहे हैं कि कौन उन्नति मैम को कहीं भेज रहा है। बताइए कहाँ भेज रही थी आप मुझे?
1: मैंने तो कहीं नहीं भेजा, बस कह रही थी कपड़े दिला दीजिए।
0: तो गाइस, फिलहाल के लिए वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, और आप कपड़े जाइए खरीद के लेकर आइए। मैं शॉपिंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ।
1: मैंने आपसे आपका इंटरेस्ट नहीं पूछा था, मैंने डायरेक्ट बोला था।
0: हाँ, तो मैं भी तो इनडायरेक्टली बोल रही हूँ ना कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड।
1: चलिए कोई बात नहीं, हम कर लेंगे शॉपिंग।
0: कल मुलाकात होगी आपसे, और आज मुलाकात होगी आपसे 3 से 4। कल यानी कि संडे को हम आपसे मिलेंगे 2 से 5, और मंडे को वापस से सुहानी मिलेंगी। वैसे मैं टाइम टेबल बता रही हूँ ताकि आप ना भूलें कि आपकी अर्जुनती और मेरी को होस्ट सुहानी आने वाले कुछ दिनों तक आपके साथ आफ्टरनून शो में भी बनी रहेंगी, ऐसी ही कुछ बातों के साथ, मस्ती मजाक और कुछ बहुत डीप बातें करने वाले हैं। तो जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि आज का शो तो था हमारा एकदम लाइट मूड पर, क्योंकि हमने लाइट किया था ताकि आप ये समझ सके कि बातों में आपको कैसे उलझाया जा रहा है। फिलहाल के लिए घड़ी ने कर दिया इशारा कि वक्त है आपसे विदा लेने का, तो हम चाहते हैं आपसे इजाजत। मेरी मुलाकात होगी 3 से 4 आपके अपने कॉल ट्यून वाले शो में, तो सुनना मत भूलेगा। फिलहाल एंजॉय करते रहिए आलतू चलालतू आई बला को टालतू, और बेटा अगर तुम चाहते हो अपनी जिंदगी में कुछ कामयाब करना तो हो जा फुल्ली फालतू, क्योंकि टेंशन वेंशन छोड़नी होती है, और इसीलिए एंजॉय करते रहिए फालतू।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
1: सेहत सही लाभ कई शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर। 89.6 FM पर। अरे!

0: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही और लाभकारी। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा। आज की कड़ी बहुत खास है क्योंकि आज है 28 मई, एक ऐसा दिन जब हम दो बहुत ही जरूरी विषय पर बात करते हैं। पहला है मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे यानी मासिक धर्म स्वच्छता दिवस, और दूसरा है विश्व पोषण दिवस यानी हमारे खाने पीने और सेहत से जुड़ा दिन। पहली नजर में ये दोनों विषय अलग लग सकते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़ाव रखते हैं, खासकर महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य के लिए। और आज के विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं हम सभी के प्यारे यानी कि सेहत की जागरूकता का प्रचार प्रसार करने वाले हमारे सेहतिया सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में सेहतिया भैया।
1: धन्यवाद आरजे कांछा, और मेरे सभी प्यारे श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही कहा, मासिक धर्म और पोषण ये दोनों ही विषय ऐसे हैं जिन पर खुलकर बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तरफ जहां मासिक धर्म प्राकृतिक प्रक्रिया है, वहीं दूसरी तरफ सही पोषण उस प्रक्रिया को स्वस्थ और सुरक्षित बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है
0: जी।
1: लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे समाज में आज भी इन दोनों विषयों को लेकर बहुत सी गलत फहमियाँ और झिझक मौजूद है।
0: सच कहूँ भैया तो आज भी कई घरों में पीरियड शब्द बोलना भी आसान नहीं होता है। लड़कियां चुपचाप सब सहती हैं और कई बार तो उन्हें सही जानकारी भी नहीं मिल पाती। आखिर ऐसा क्यों है भैया?
1: देखो आरजे कांछा, ये एक सामाजिक सोच का मामला है। सालों से मासिक धर्म एक छुपाने वाली चीज बना दिया गया है, जैसे ये कोई गंदगी हो या शर्म की बात हो, जबकि सच्चाई ये है कि ये हर लड़की और महिला के जीवन का एक सामान और जरूरी हिस्सा है। अगर हम इसे समझेंगे नहीं, इसके बारे में खुलकर बात नहीं करेंगे, तो लड़कियां सही जानकारी से वंचित रह जाएंगी और उनका स्वास्थ्य प्रभावित होगा।
0: मतलब ये सिर्फ एक महिलाओं का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे परिवार और समाज की जिम्मेदारी है।
1: बिल्कुल, माँ पिता भाई पति शिक्षक सभी की भूमिका होती है कि जब परिवार समर्थन देता है तो लड़की की आत्मविश्वास के साथ अपनी सेहत का ध्यान रख पाती है, उसे साफ सफाई सही सामग्री और सुरक्षित जगह मिलती है।
0: तो भैया अगर हम सीधे तौर पर समझेंगे मेंस्ट्रुअल हाइजीन यानी कि मासिक धर्म स्वच्छता का मतलब, तो इसका क्या मतलब है?
1: मासिक धर्म स्वच्छता का मतलब है साफ और सुरक्षित तरीके से पीरियड को संभालना, जैसे कि साफ सैनिटरी पैड कपड़ा या अन्य सुरक्षित साधन का इस्तेमाल करना, उसे समय समय पर बदलना, हाथ धोना, शरीर की साफ सफाई रखना और इस्तेमाल किए गए सामग्री का सुरक्षित निपटान करना। इसके साथ ही जरूरी है कि लड़की या महिला के पास एक निजी और सुरक्षित जगह हो जहां वो आराम से खुद का ख्याल रख सके।
0: लेकिन भैया गांवों में या कम साधनों में जहां पे इन संसाधनों की कमी है, ऐसे इलाकों में ये सब सुविधाएं हर किसी को मिल पाती हैं क्या?
1: यही सबसे बड़ी चुनौती है। कई जगहों पर आज भी लड़कियां पुराने गंदे कपड़े का इस्तेमाल करती हैं या फिर समय पर बदल नहीं पाती हैं, क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं होती है या संसाधन नहीं मिलते हैं। इससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए ज़रूरी है कि हम इस विषय पर जागरूकता बढ़ाएं और सरकार व समुदाय मिलकर सुविधाएँ सुनिश्चित करें।
0: और यहीं पर विश्व पोषण दिवस की बात भी जुड़ जाती है, क्योंकि अगर शरीर को सही पोषण नहीं मिलेगा तो इसका असर मासिक धर्म पर भी सीधा सीधा पड़ेगा, है ना?
1: बिल्कुल सही समझा आपने। अगर लड़की या महिला को सही पोषण नहीं मिलेगा
0: जी,
1: जैसे आयरन प्रोटीन विटामिन, तो उसे कमजोरी चक्कर ज्यादा दर्द या अनियमित पीरियड जैसी समस्याएं हो सकती है। इसलिए पोषण और मासिक धर्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
0: तो एक संतुलित आहार कैसा होना चाहिए? हमारे श्रोता क्या क्या चीजें अपनी रोजाना में जो खाने पीने की चीजें हैं उसमें शामिल कर सकते हैं?
1: देखिए, संतुलित आहार का मतलब है थाली में विविधता, आधी थाली में सब्जी हो, साथ में दाल या अन्य प्रोटीन अनाज जैसे रोटी या चावल, और अगर संभव हो तो दूध।

0: या दही, हरे पत्तीदार सब्जियां, दालें, फल, मेवे, ये सब बहुत ज़रूरी हैं। और सबसे अहम बात है कि जंक फूड ज़्यादा तला भुना और ज़्यादा नमक चीनी से बचना चाहिए, पानी भी पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए।
1: मतलब अच्छा खाना सिर्फ महंगा खाना नहीं होता, बल्कि सही और संतुलित खाना होता है, क्यों भैया?
0: बिल्कुल, हमारे गांव में जो स्थानीय और मौसमी खाना मिलता है वही सबसे अच्छा और सबसे अच्छा है, बस हमें उसे सही तरीके से अपनाना है।
1: सेहतिया भैया, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई, लेकिन कई बार लोग तब तक नहीं समझते जब तक वे किसी असली कहानी से ना जुड़े। क्या आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो हमारे श्रोताओं को ये समझा सके कि सही जानकारी और पोषण कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं हमारे जीवन में?
0: हाँ आरजे कांछा, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ
1: जी।
0: हमारी ही एक गांव की एक लड़की रीना की
1: जी
0: कहानी है। रीना करीब 14 साल की थी, पढ़ने में तेज लेकिन बहुत चुपचाप रहने वाली लड़की है। जब उसे पहली बार पीरियड हुए तो वो घबरा गई। उसे समझ में नहीं आया कि उसके साथ क्या हो रहा है। घर में इस बारे में कभी खुलकर बात नहीं हुई थी। उसकी माँ ने उसे बस एक पुराना कपड़ा दे दिया और कहा, किसी को बताना मत, बस चुपचाप संभाल लेना। रीना को ना तो ये पता था कि कपड़ा साफ होना चाहिए, न ही ये कि उसने कितनी बार बदलना है। वो उसी कपड़े को कई कई घंटों तक इस्तेमाल करती रही। धीरे धीरे उसे खुजली और जलन होने लगी, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उसे लगता था कि ये शायद नॉर्मल है। इसी के साथ एक और समस्या थी, रीना का खान पान, घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और खाने में अक्सर सिर्फ रोटी और नमक या कभी कभी दाल मिलती थी। हरी सब्जियां, फल, ये सब बहुत कम मिलते थे। धीरे धीरे रीना को कमजोरी महसूस होने लगी। पीरियड के समय उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता था, चक्कर आते थे और कई बार वो स्कूल भी नहीं जा पाती थी। एक दिन स्कूल में स्वास्थ्य शिविर लगा। वहाँ आशा दीदी और एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए। उन्होंने लड़कियों से खुले में बात की, पीरियड क्या होते हैं, कैसे संभालना चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए। रीना पहली बार किसी को इतनी खुलकर बातें करते हुए सुन रही थी। शिविर के बाद उसने हिम्मत जुटाकर अपनी परेशानी बताई। स्वास्थ्य कार्यकर्ता ने उसे समझाया कि साफ सफाई कितनी ज़रूरी है, उसे सैनिटरी पैड दिए और ये भी बताया कि उसे आयरन की कमी है। उसे आयरन की गोलियाँ दी गई और खाने में हरी सब्जियाँ, दाल, गुड़ और फल शामिल करने की सलाह दी गई। धीरे धीरे रीना अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव किए। उसने साफ सफाई का ध्यान रखना शुरू किया, समय पर पैड बदलना सीखा और अपने खाने में सुधार किया। कुछ ही महीनों में उसका स्वास्थ्य बेहतर होने लगा। अब उसे पहले जैसे कमजोरी नहीं होती है और वह नियमित रूप से स्कूल जाने लगी। आज रीना अपने गाँव की दूसरी लड़कियों को भी जागरूक करती है। वो उन्हें बताती है कि पीरियड कोई शर्म की बात नहीं है और सही जानकारी और पोषण से हमें इसे आसानी से संभाल सकते हैं।
1: सच में सेहतिया भैया, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि एक सीख है। अगर सही समय पर जानकारी और मदद मिल जाए तो जिंदगी बदल सकती है।
0: बिल्कुल, और यही हमारा मकसद है कि हर रीना तक सही जानकारी पहुंचे, ताकि कोई भी लड़की अज्ञानता या झिझक के कारण अपनी सेहत से समझौता न करे।
1: सेहतिया भैया, रीना की कहानी ने सच में दिल को छू लिया, लेकिन एक बात जो बार बार सामने आ रही है वो है पोषण। आपने बताया कि सही खाना मिलने के बाद ही रीना की सेहत सुधरी, तो क्या ये समस्या सिर्फ लड़कियों और महिलाओं तक सीमित है या पुरुषों में भी पोषण की कमी एक बहुत बड़ी चुनौती है?
0: बहुत अच्छा सवाल है आरजे कांछा
1: जी।
0: अक्सर हम पोषण की बात सिर्फ महिलाओं और बच्चों तक सीमित कर देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि पुरुषों में भी पोषण की कमी एक गंभीर समस्या है। हमारे देश में बहुत से पुरुष दिन भर मेहनत करते हैं, खेतों में, निर्माण कार्य में या दिहाड़ी मजदूरी में, लेकिन उनका खान पान संतुलित नहीं होता है। कई बार वो सिर्फ पेट भरने के लिए खाते हैं, शरीर को सही पोषण देने के लिए नहीं। इसका असर उनकी ताकत, काम करने की क्षमता और लंबी अवधि में उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है।
1: मतलब कमजोरी और थकान जो हम आम समझ लेते हैं उसके पीछे भी पोषण की कमी हो सकती है।
0: बिल्कुल, और यही बातें हमें विश्व पोषण दिवस के संदेश से जोड़ती है। इस दिन का मकसद सिर्फ अच्छा खाना बताना नहीं बल्कि ये समझना है कि सही पोषण हर उम्र, लिंग और हर वर्ग के लिए ज़रूरी है। और आज हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे भी मना रहे हैं, जिसका इस साल का संदेश है टूगेदर फॉर ए पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड। तो इसका मतलब यही है कि हम मिलकर ऐसा समाज बनाएं जहां लड़कियां और महिलाएं बिना डर और झिझक के अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें, और इसमें पोषण एक मजबूत कड़ी है जो दोनों विषयों को जोड़ती है।
1: सेहतिया भैया, आपने एनीमिया यानी खून की कमी का जिक्र किया था, ये समस्या हमारे देश में कितनी बड़ी है और क्या ये सिर्फ महिलाओं में ज़्यादा होती है?
0: देखिए, एनीमिया भारत में एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य समस्या है, खासकर किशोर लड़कियां और महिलाओं में इसकी दर काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन पुरुष भी इससे अछूते नहीं हैं। खून की कमी का मतलब शरीर में हीमोग्लोबिन का कम होना, जिससे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। इसके कारण व्यक्ति को जल्दी जल्दी थकान, चक्कर, सांस फूलना और कमजोरी महसूस होती है। महिलाओं में ये समस्या ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि उन्हें हर महीने मासिक धर्म के दौरान खून की कमी होती है, और अगर उनका खान पान सही ना हो तो ये कमी और बढ़ जाती है।
1: तो इसका सीधा मतलब है कि अगर हम पोषण पर ध्यान नहीं देंगे तो इसका असर सिर्फ ताकत पर नहीं बल्कि पूरे शरीर पर पड़ेगा।
0: बिल्कुल सही समझा आपने, इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने रोज के खाने में कुछ खास चीज़ों को शामिल करें, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, जैसे पालक, मेथी, दालें और चने, गुड़, मूंगफली, तिल, और अगर संभव हो तो दूध, दही, अंडा या अन्य प्रोटीन के स्रोत हैं। फल जैसे केला, अमरूद, संतरा, ये भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। और सबसे ज़रूरी बात है कि खाने में विविधता होनी चाहिए, एक ही चीज़ रोज़ खाने से शरीर को सभी पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं।
1: मतलब थाली जितनी रंग बिरंगी होगी सेहत उतनी ही मजबूत होगी, क्यों भैया?
0: बिल्कुल आरजे कांछा, यही सबसे आसान तरीका है समझने का। और एक बात हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए, हम जो खाना खा रहे हैं वो साफ़ सुथरा और सही तरीके से पकाया गया हो, क्योंकि अगर खाना साफ नहीं है तो बीमारी का कारण भी बन सकता है।
1: तो साथियों, आज की बातचीत से एक बात तो साफ हो गई है कि पोषण सिर्फ खाना नहीं है बल्कि ये हमारी ताकत, हमारी ऊर्जा और हमारे पूरे जीवन का आधार है। और जब हम मासिक धर्म और पोषण को साथ समझते हैं तो हमें एहसास होता है कि सही जानकारी और सही आदतें मिलकर ही एक स्वस्थ समाज बनाती हैं। तो साथियों, आज की इस खास कड़ी में हमने जाना कि मासिक धर्म और पोषण दोनों हमारे जीवन के अहम हिस्से हैं। अगर हम इन्हें समझेंगे, अपनाएंगे और दूसरों तक पहुंचाएंगे तो हम एक स्वस्थ और सशक्त समाज बना सकते हैं।
0: याद रखिए, साफ सफाई, सही जानकारी और अच्छा पोषण, यही स्वस्थ जीवन का आधार।
1: इसी के साथ हम अपना आज का प्रोग्राम यही खत्म करते हैं, पर जाने से पहले लेंगे हम सब सेहत की शपथ।
2: तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का, सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को
3: प्राथमिकता देंगे,
2: क्योंकि सेहत ही असली धन है,
3: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं
2: और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे
3: और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे
2: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का
3: लोगों की सेहत का
2: विशेष ध्यान रखेंगे।
3: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा
2: तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई।
1: मैं आपकी दोस्त यानी कि आरजे आकांक्षा आपसे विदा लेती हूं, लेकिन जाते जाते बस इतना कहना चाहूंगी आप सभी से कि अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए। फिर मिलेंगे इसी शो के साथ में, सेहत सही लाभ कई में, क्योंकि अगर सेहत है सही तो लाभ तो हो ही जाएंगे कई, एक नए विषय के साथ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।

हम सफर पर निकलने से पहले हर चीज की प्लानिंग करते हैं। नए स्कूटर या कार खरीदने से पहले हर विकल्प पर सोचते हैं। तो फिर अपने परिवार की योजना बनाने से पहले क्यों नहीं? ये तो जिंदगी भर का फैसला है। आपके परिवार को नियोजित रखने के लिए आपके पास गर्भ निरोधक के कई विकल्प हैं। जब आपके पास सही जानकारी होगी, तभी आप अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर, अपने जीवन और अपने भविष्य के बारे में सही फैसला ले पाएंगे। तो झिझकिए नहीं, आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और अपने सभी गर्भ निरोधक के विकल्प जानें।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।
2: स्वागत है श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना कम्युनिटी रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं आपकी अपनी आरजे आकांक्षा। सेहत सही लाभ कई श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उन नन्हे मुन्हों की, जो दुनिया में आते ही सबसे ज्यादा देखभाल के हकदार होते हैं, हमारे नवजात बच्चे। बहुत बार हम देखते हैं कि बच्चा पैदा होते ही अचानक कमजोर पड़ जाता है, दूध नहीं पी पाता, सांस लेने में दिक्कत, शरीर ठंडा और परिवार घबरा जाते हैं। अब क्या किया जाए, इसलिए आज हमने बुलाया है हमारे गांव-गांव के स्वास्थ्य साथी, सबके प्रिय सेहतिया सिंह जी को। सेहतिया भैया, आपका हार्दिक स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आरजे आकांक्षा जी कि एक बार फिर आपने मुझे अपने इस मंच पर बुलाया, और धन्यवाद मेरे गांव के सभी भाइयों बहनों को। आपने आज बहुत ही जरूरी विषय उठाया है। नवजात बच्चा तो जैसे कली का फूल होता है, नर्म नाजुक और छोटी सी बीमारी भी बड़ा रूप ले सकती है, इसलिए जागरूकता बहुत जरूरी है।
2: भैया बिल्कुल सही कहा आपने, आज हम NBSU के बारे में बात करेंगे। कई लोग इसका नाम भी पहली बार सुनते हैं, तो शुरुआत यहीं से करते हैं। NBSU यानी ये क्या है भैया, और इसकी जरूरत आखिर पड़ी क्यों?
3: देखिए, NBSU का पूरा नाम है न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट, जिसे हम सरल भाषा में नवजात स्थिरीकरण कक्ष कह सकते हैं। ये यूनिट खास तौर पर उन नवजात बच्चों के लिए बनाई गई है जो जन्म के बाद सांस नहीं ले पा रहे हैं, जिनका शरीर ठंडा हो जा रहा है, जिनका वजन बहुत कम है, जो दूध भी नहीं पी पा रहे हैं, जिन्हें तेज पीलिया हो, या फिर जिनमें संक्रमण के लक्षण दिखे, जिन्हें दौरा या झटका आए, या किसी भी तरह की आकस्मिक समस्या हो। NBSU बच्चों को तुरंत सुरक्षित और शुरुआती इलाज दे देती है ताकि उनकी जान बचे और हालत स्थिर हो जाए। यानी आरजे आकांक्षा जी, NBSU नवजात का पहला सुरक्षा कवच है।
2: यानी कि ये जो SNCU होता है, जैसे उसी की जैसा थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, क्यों?
3: हाँ बिल्कुल, SNCU अधिक गंभीर बच्चों के लिए है, और NBSU शुरुआती 24 से 48 घंटों का सबसे जरूरी इलाज देता है।
2: अच्छा।
3: या FRU यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या CHC और सब डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में होता है, ताकि इलाज नजदीक मिले, जल्दी मिले।
2: अच्छा भैया, तो आप ये भी बता दीजिए कि NBSU में कौन कौन सी सेवाएं मिलती हैं?
3: बहुत सारी,
2: जैसे?
3: और ये सब सेवाएं बच्चों को स्थिर करने के लिए जरूरी हैं। मैं एक एक करके बताता हूँ।
2: जी।
3: नवजात की त्वरित जांच, जैसे ही बच्चा आता है तुरंत ये जांचें होती हैं कि बच्चा सांस ले रहा है या नहीं, उसका शरीर ठंडा है या गर्म, वजन कितना है, दूध पी पा रहा है या नहीं, कहीं उसे दौरा या झटका तो नहीं आ रहा है, संक्रमण के संकेत दिख रहे हैं या नहीं, क्या उसे पीलिया तो नहीं है, ऑक्सीजन का स्तर भी हम इसमें जांचते हैं। ये त्वरित पहचान ही बच्चे की जान बचाती है।
2: और बाकी?
3: अरे बताता हूँ। दूसरा इमरजेंसी केयर आपात उपचार। यदि बच्चा कमजोर है तो तुरंत रेडिएंट वार्मर में गर्म रखना। सांस में दिक्कत हो तो ऑक्सीजन की आपूर्ति करना। अगर उसको दौरे आ रहे हो तो उसे दवा देना। अगर उसका सुगर लो हो तो ग्लूकोज की आपूर्ति करना। शॉक हो तो सलाइन की व्यवस्था करना। इन्फेक्शन हो तो तुरंत एंटीबायोटिक से उसका उपचार करना। यानी आरजे आकांक्षा जी, एनबीएसयू का काम है पहले एक घंटे में बच्चे को सुरक्षित करना। और तीसरा, फीडिंग सपोर्ट, दूध पिलाने में मदद। यानी कई नवजात माँ का दूध तुरंत नहीं पी पाते तो एनबीएसयू माँ को स्तनपान का सही तरीका सिखाता है। जरूरत पड़े तो कप चम्मच से भी दूध पिलाया जा सकता है। बहुत कमजोर बच्चे को नली से दूध पिलाया जाता है। और सबसे जरूरी, हर स्थिति में माँ का दूध ही प्राथमिकता। और चौथा, कंगारू मदर केयर, यानी माँ की गोद में गर्माहट। यह कम वजन वाले बच्चों के लिए बहुत असरदार होता है। त्वचा से त्वचा का संपर्क, वजन इससे बढ़ता है, बच्चा जल्दी स्थिर होता है। माता पिता दोनों केएमसी कर सकते हैं।
2: अरे वाह, क्या बात है भाई। और इसके अलावा भी कुछ है?
3: अरे और तो सुनते तो जाइए। पांचवा, इन्फेक्शन प्रिवेंशन, यानी संक्रमण से सुरक्षा। एनबीएसयू में साफ सफाई, हाथ धोने के नियम, उपकरणों का स्टेरिलाइजेशन, लाइन नली की सुरक्षित हैंडलिंग, सब सख्ती से पालन किया जाता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण, माता पिता की काउंसलिंग, जिसमें कि परिवार को बताया जाता है कि बच्चे की हालत, कौन सा इलाज हो रहा है, आगे क्या क्या होना है, घर पर क्या सावधानी रखनी है, और कौन सा डेंजर साइन दिखे तो तुरंत लौटना है। और सबसे आखिरी, अगर जरूरत हो तो रेफरल। यदि बच्चा गंभीर हो, एनबीएसयू पहले बच्चे को स्थिर करता है, फिर एसएनसीयू को रेफर करता है। 108 और 102 एम्बुलेंस बुलाकर सुरक्षित ट्रांसपोर्ट करता है।
2: तो भैया आपने इतना कुछ तो बता दिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कैसे पहचाने कि बच्चे को तुरंत एनबीएसयू ले जाना चाहिए।
3: देखिए आकांक्षा जी, नवजात बच्चा अपनी परेशानी बोल नहीं पाता। वो तो बस संकेत देता है
2: जी।
3: देखो, अगर बच्चा दूध नहीं पी पा रहा है या थोड़ा सा पीकर छोड़ दे, ये खतरे की घंटी है। अगर सांस तेज चल रही है, छाती धस रही है, या बच्चा हाफ रहा है, एक मिनट भी मत रुकिए। शरीर अचानक ठंडा हो जाए या तेज बुखार हो, ये भी गंभीर संकेत है। कुछ बच्चे बिल्कुल सुस्त पड़ जाते हैं, जगाने पर भी ना जागे, तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। अगर झटके आ जाए, पीलिया बहुत बढ़ जाए या शरीर नीला पड़ा दिखे तो सीधा एनबीएसयू। और हाँ, नाभि में मवाद, सूजन या बदबू आए तो समझो संक्रमण है। देर मत करो आरजे दीदी
2: जी।
3: खासकर कम वजन वाले बच्चे, 2.5 किलो से कम, इन्हें जन्म के 48 से 72 घंटे में जरूर एनबीएसयू दिखाना चाहिए। ये बच्चे जल्दी कमजोर पड़ते हैं।
2: भैया बहुत ही गहन चिंतन वाली आपने जानकारी हम सभी को दे दी। अब ये भी बता दीजिए कि अगर बच्चा एनबीएसयू से छुट्टी पाकर घर आ जाए तो फिर क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं?
3: सबसे पहली चीज, माँ का दूध दिन में 8 से 10 बार देना जरूरी है। और बच्चा सुस्त लगे तो ध्यान से देखना, शायद उसे ज्यादा जरूरत हो। दूसरी बात, बच्चे को ठंड ना लगने दे। सिर, हाथ, पैर ढककर रखे। केएमसी यानी माँ की छाती से चिपकाकर रखना बहुत फायदेमंद है। तीसरा, साफ सफाई, नाभि।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
2: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
1: बिल्कुल, हम आपके लिए सिर्फ आपके लिए कभी डॉक्टर तो कभी कुक
2: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
1: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
2: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
1: और बता दूं कि 1:30 से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें।
2: तो सुनना ना भूलें, 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
3: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं NVO की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।

0: आज के इस मौसम को एंजॉय करेंगे और इस प्यारे से गाने जो कि हमारा बैकग्राउंड चल रहा है, मुझसे रहा नहीं गया इस गाने में एंट्री लेने से लिए, तो मैंने सोचा कि चलो भाई गाना तो सुनते ही रहेंगे, ये गाना मैं फिर से आपको पूरा सुनाऊंगी। तो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, आ गई आपकी आज है समता और आज मेरे साथ स्टूडियो में है एनी गेस आप पहचाने की कौन।
1: जी मैम बिल्कुल, हमारे लिसनर हमको पहचाने या ना पहचाने हम बता देते, मैं हूँ आपकी आरजे निधि।
0: वाओ, तो आज है हमारे साथ आरजे निधि, तो निधि एंड समता। निधि मेरा आपका जो नाम है ना वो मेरी कास्ट में आता है, पूछो कैसे।
1: कैसे
0: निधि धनकानी, मतलब अल्फाबेट्स बहुत मिलते हैं, ध एन भी है, ध भी है, एच भी है, आई भी है, तो धनकानी जो है ना वो बिखरे हुए उसमें आप पूरे मेरे कास्ट के बीच में हैं, बिखरी हुई।
1: जी बिल्कुल
0: है ना,
1: तो मैं सबके यहाँ बिखरी हुई, मेरे नाम का मतलब ही है
0: आपके नाम का। और निधि का मतलब क्या होता है पहले मुझे ये बताओ।
1: कुबेर के खजाने को निधि कहते हैं।
0: ओह माय गॉड, तो यानी कि अभी मेरे पास कुछ दिन तक कुबेर का खजाना रहने वाला है।
1: जी बिल्कुल,
0: तो सुन सहेली में आप लोगों के लिए कुबेर का खजाना आ गया है, तो लूट सको तो लूटो एंड कि बहुत सारी चीजें और भी आज हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि कल से माता रानी आ रही है, हमारी माँ का आगमन हो रहा है और आज जो है वो पितृ विसर्जन की सब स्कूलों में कॉलेजेस में छुट्टी है, क्योंकि आज उनका है आखिरी दिन और हम उनकी पूजा अर्चना करके और आज के दिन हम उनसे विदाई लेते हैं। तो चलिए भाई और आज के प्रोग्राम को शुरू करेंगे एंड शाम से ही सब मंदिरों में घरों में पूजा एंड साफ सफाई का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाता है, क्यों।
1: जी मैम, और नवरात्र आते ही जैसे मन में एक अलग सी खुशी भी आ जाती है,
0: वाइब्स कितनी अच्छी लगती है ना, वो हर घर में बढ़िया सी स्मेल आती है खाने की और धूप अगरबत्ती की, मंदिरों से और मतलब घंटियां, और हर समय वहां पर जैसे लगता है कि भक्तों का तांता लगा रहता है, तो मन करता है ना कि ऐसी जगह पर जाके बैठ जाओ, मतलब मैं क्या बता दूं, बहुत ही अच्छा लगता है। खैर तो आइए आपके पसंदीदा शो को शुरू करते हैं जिसका नाम है
1: सुन सहेली,
0: और इस प्यारे से दोपहर में एक साथ विश कर देते हैं
1: शुभ दोपहरिया,
0: मतलब ये इसको पता है कि
1: जी मैं
0: बोलते हैं शुभ दोपहरिया, आप सभी को हमारी तरफ से प्यार भरा शुभ दोपहरिया। तो आइए जैसे प्रोग्राम की औपचारिकता है, आप सभी को पता है कि हम पहले लव सीजंस को लेकर के लव शुरू करते हैं उनकी कुछ कविताओं को लेकर के, तो आज प्रोग्राम को थोड़ा किया है मैंने चेंज, मैं ना पढ़ करके आज पढ़ेंगे आपकी आरजे निधि।
1: जी बिल्कुल, और इस प्यार भरे सीजन में मैं प्यार भरा शायरी सुना के ही रहूंगी सबको,
0: तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे भाई, आज निधि पढ़ रही है।
1: जी बिल्कुल जी। प्यार वो नहीं जो हर पल इजहार किया जाए, प्यार वो है जो खामोशी से महसूस किया जाए, कभी हंसी बनकर होठों पे खिल जाता है, कभी किसी की याद में आंखों को भिगो जाता है, प्यार में कभी छोटी सी बात भी खास होती है, कभी किसी की खामोशी भी दिल के पास होती है, किसी की खुशी के लिए अपना गम छुपाना पड़ता है, उसके टूटे हुए दिल को अपना बनाना पड़ता है, प्यार में जरूरी नहीं कि हर ख्वाब पूरा हो, कभी अधूरी कहानी भी दिल के सबसे करीब होती है, कभी दूरियां भी मोहब्बत को गहरा कर जाती हैं, कभी दूरियां भी मोहब्बत को गहरा कर जाती हैं, कभी अनकहीं बातें आंखों से बयां हो जाती हैं, प्यार तो बस प्यार है, वक्त के साथ बदलता नहीं, लाख मुश्किलें आएं फिर भी दिल से वो उतरता नहीं, प्यार सिर्फ किसी को पाने का नाम नहीं होता, किसी की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेना भी मोहब्बत होता है।
0: ये जो लास्ट की लाइन बोली ना कि प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं है, किसी की खुशी में अपनी खुशी को ढूंढ लेना ही प्यार होता है। एग्जैक्टली मैं बताना चाहती हूँ कि वाकई में प्यार सिर्फ और सिर्फ पाने का नाम नहीं होता है। तो आज के प्रोग्राम की शुरुआत हम कुछ ऐसा ही करेंगे कि प्यार के लिए रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ क्या होता है, मुझे आज निधि से जानना, मतलब आपके लिए प्यार का मतलब क्या होता है।
1: मैम प्यार का साफ मतलब है जो मुझे मेरी तरह रहने दे,
0: मतलब आज़ादी से,
1: आजादी से
0: बाउंस नहीं हो किसी के ऊपर,
1: बिल्कुल हाँ। नहीं, जैसे आपने सुना होगा अगर रेत को कस के पकड़ो तो मुट्ठी से निकल जाती है।
0: ओह माय गॉड,
1: और छोड़ दो तो
0: छोटा पैकेट बड़ा धमाल। बहुत ही बढ़िया सा इसने आज एग्जांपल दिया है कि अगर रेत को हम, पहली बात तो ये है निधि कि हम रेत को पकड़ ही कहाँ पाएंगे।
1: वही मैम, और जिसको आप पकड़ेंगे वो फिर आपका नहीं, आप उससे प्यार और मोह में एक अंतर होता है। आपने कहीं सुना होगा, पढ़ा होगा कि मोह और प्यार में क्या अंतर होता है, तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ। अगर आपको किसी से बहुत प्यार है तो आप बिल्कुल आप उसको वैसे ही रहने देते हैं, आपको वो ट्रस्ट होता, भरोसा। अगर मैम ने मुझसे कह दिया निधि ये तो बिल्कुल वही होगा, मुझे भरोसा नहीं होगा तो मैं चार बार आके चेक करूंगी, हो सकता है झूठ बोल रही हूँ।
0: ये बिल्कुल सही,
1: और ऐसे इंसान को घुटन होता है, कोई आपके साथ रह नहीं सकता है,
0: रहना मतलब नहीं ऐसा जो ये है वो जो नहीं। लेकिन कुछ लोग फिर ये भी कहते हैं ना कि अगर हम पूछताछ कर रहे हैं, हम आप पे कंट्रोल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमें आपकी केयर है।
1: नहीं मैम, वो बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये मैं मानती हूँ। पर वो आपको तरीका, जैसे आपको एहसास हो जाता है, अभी आपसे सर पूछ बुलाते हैं और कहते हैं ऐसा ऐसा, तो वो आपको वो फील हो जाता है,
0: फील हो जाता
1: कि
0: है
1: कि ये शक वाला है कि ये केयर वाला है।
0: एग्जैक्टली वो बातों से, जैसे अभी आपने पढ़ा ना कि प्यार जो है वो आंखों से पता चल जाता है,
1: आंखों से बया
0: हो जाता है। एग्जैक्टली, आंखों से जब बया हो जाता है तो उसको तो कुछ और नाम हम दे ही नहीं सकते हैं।
1: जी बिल्कुल नहीं,
0: बिल्कुल नाम नहीं दे सकते हैं। तो एग्जैक्टली ये छोटा पैकेट बड़ा धमाल जो है, आज से मैंने इसका नाम रख दिया निधि का। तो जैसे कहते हैं ना, कभी कभी हमें छोटों से भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो अभी आज का रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ यही निकल के आया है कि प्यार और मोह में बड़ा अंतर है। अगर आपको किसी से प्यार है तो उसको आज़ादी देना चाहिए, उसको बांध के नहीं रखना चाहिए।
1: जी मैम, और जैसे मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे एक होता है कि लाइफ में एक बार तो प्यार होता ही है,
0: हाँ।
1: तो अगर
0: एक बार नहीं, आजकल तो दो बार होता है
1: मैम, चार बार भी हो जाता है आजकल। तो मुझे लगता है कि मुझे जानना है आपसे कि जब प्यार किसी से होता है तो जो रियल लव होता है उसको कैसे पहचाने,
0: कैसे पहचाने।
1: जी मैं कैसे मानूं कि हाँ ये जो व्यक्ति है वो मुझसे सच्चा प्रेम,
0: सच्चा प्यार करता है या फिर मुझसे फ्लर्ट कर रहा है।
1: जी मुझसे ऐसे
0: बड़ा अच्छा टॉपिक लिया है निधि ने। तो निधि, इसका जवाब जो मैं दूंगी तुम्हें, लेकिन मैं एक ब्रेक के बाद दूंगी ताकि लिसनर्स को भी थोड़ा इंतजार रहे इस प्रश्न का उत्तर मुझसे जानने के लिए। एंड बहुत ही प्यारा सा आंसर देंगे, लेकिन इसको हम पहले गाना सुनाएंगे सभी लिसनर्स को उसके बाद, ठीक है?
1: जी फिर आइए, छोटे से गाने के बाद आप सुनिए इस सवाल का जवाब, क्या पता आपसे भी कोई प्यार कर रहा है या फ्लर्ट, exactly, पता चलना चाहिए।
0: exactly, तो आइए सुनते हैं इस पर से गाने को और हम बस लौटेंगे इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
2: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
3: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में हमारे हैं निधि। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं आज की, जो अभी निधि ने मुझसे प्रश्न पूछा था। निधि, क्या पूछा था?
4: जी मैम, हम कैसे पता करें कि जो सामने व्यक्ति है वो हमसे सच्चा प्रेम करता है?
3: ओके, ये सवाल तो बहुत ही पेचीदा सवाल है, मतलब मुझे लग रहा है कि पेचीदा सवालों में से एक है, बट मुझे इसका आंसर देने में बहुत मजा आएगा अभी। कि जब कहते हैं ना कि जब खुद कोई उन स्थितियों से गुजर कर आ गया हो तो उसका वो आंसर देने में अच्छा लगता है।
4: जी बिल्कुल।
3: सबसे पहले तो प्यार में कभी शक नहीं होना चाहिए।
4: जी,
3: आप किसी के ऊपर भी ट्रस्ट कर रहे हैं तो उस पर कोई ब्लेम नहीं, कोई अविश्वास की कोई भावना नहीं, क्योंकि आपके नजरिए से वो काम गलत हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो कर रहा है उसकी नजरिए से वो काम गलत हो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आंखों देखा भी गलत हो जाता है।
4: जी मैम।
3: कानों सुना भी गलत हो जाता है।
4: बिल्कुल
3: है? तो अगर आपकी कोई केयर कर रहा है, एक्सेस केयर कर रहा है, इट्स नॉट अ लव। अगर आपको कोई आजाद छोड़ रहा है, आपकी छोटी छोटी ख्वाहिशों की कदर कर रहा है।

0: ये वो, तो सामने से आता है मैं आपकी हद से ज्यादा परवाह करता हूँ।
1: हाँ,
0: तो
1: ऐसा
0: क्या
1: होता
0: ये
1: है।
0: प्यार है?
1: नहीं नहीं नहीं नहीं हद से ज्यादा परवाह। अभी जब हम लोग ब्रेक में थे तो मैंने आपसे क्या पूछा था, आपने सेम प्रश्न का आंसर दिया था कि अगर कोई अगर ये चाह रहा है तो ये लव नहीं है,
0: जी
1: ये एक अपने आप को बांध के रखने वाला,
0: जी
1: ठीक है, तो ये प्यार नहीं है। अगर प्यार होता तो आपको वो आज़ाद छोड़ता और उसकी एक नज़र में अगर आप उनसे मिल रही हैं, उनकी उनसे बातें कर रही हैं, उनके बारे में सोच रही हैं, तो पहली बात तो वो गलत थॉट आएगा ही नहीं,
0: जी
1: ठीक है। और आपकी छोटी छोटी बातों की केयर, आपने खाना खाया है कि नहीं, ऐसा मतलब नहीं है कि ये सिर्फ आपका उस समय का पीरियड है जब आप लवर लवरी हैं।
0: जब मतलब ऐसा भी होता है कभी कि आप रिलेशनशिप में गए हैं, एक दो मंथ हुआ है या दो चार मंथ जैसा भी हुआ है, तो वहाँ बहुत केयर और बहुत प्यार रहता
1: हाँ,
0: है,
1: और उसके बाद से फिर वो खत्म होने लगते हैं।
0: उसके बाद धीरे धीरे से ऐसा होता है।
1: तो मैंने क्या कहा भी कि ऐसा नहीं है कि ये केयर सिर्फ एक दो साल के लिए हो, 6 महीना 5 महीने के लिए हो, ये केयर अगर आजीवन चले, भले आप उनसे कमिटेड रहें, आप शादी नहीं कर रहे, आप कमिटेड रहें, तो फिर वो इंसान आपको लव रियल लव कर रहा है। और मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आपको पहचान करनी है कि आपको किसी से सच्चा प्यार है तो उसको गुस्सा दिलाओ, किसी बात पे उसको गुस्सा दिलाओ। अगर गुस्से में आप वो अपनी मर्यादा नहीं तोड़ रहा है या लड़की हो तोड़ रही है, इट मीन्स कि वो आपसे सच्चा प्यार कर रही है। मतलब गुस्से में अनचाहे वर्ड भी निकल के आते हैं बाहर,
0: जी बिल्कुल।
1: और अगर वो उन मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए आपसे गुस्से में बातें कर रहा है, इट मींस कि वो आपसे रियल लव कर रहा है, क्योंकि उसको आपकी इज्जत की परवाह है, प्यार से ज्यादा आपकी इज्जत की परवाह है।
0: और हमारे लाइफ में मैम ऐसा भी हो जाता है, अटैचमेंट हो जाती है और लोग उसको प्यार समझ लेते हैं।
1: हाँ, ये बहुत बड़ा खराब
0: ये वाला बहुत
1: है
0: बड़ा
1: कि
0: हो रहता
1: अटैचमेंट
0: है।
1: को लोग प्यार समझ बैठते हैं। सैटरडे के दिन हम बहुत सारी प्यार भरी बातें करते हैं और आज निधि बहुत ही प्यार वाले मूड में है, तो मुझे लग रहा है कि ये आज पूरा मेरा इंटरव्यू लेके ही रहेगी प्यार पे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था?
0: जी मैम, तो मतलब ऐसा होता है, आपके साथ भी हुआ होगा कि आपको मतलब कोई रैंडम इंसान है
1: पसंद आ गया
0: तो
1: होगा,
0: पसंद आ गया नहीं आपसे वो बात करे तो आपको अच्छा लगता हो, ठीक है पूछ लेते हैं, मतलब आपको थोड़ा, जैसे अपने भाई लोग भी होते हैं, हमें ध्यान रहता है, ख्याल रहता है, तो फिर वो इंसान सामने से आता है, मुझे आपसे बहुत प्यार हो गया है पर मुझे नहीं हुआ है, तो फिर अगर आप ऐसा कहती तो वो बहुत क्रूरता लगती है कि मैं
1: अगर, नहीं मैंने अगर उसको जवाब नहीं दिया तो
0: नहीं, अगर आपने जवाब दिया कि नहीं पर मैं तो आपसे प्यार नहीं करती हूँ, तो अंदर ही अंदर ये भी लगता है ये बहुत क्रूरता है, पर हमें उससे प्यार भी नहीं होता।
1: नहीं
0: है।
1: ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अगर सच्चाई बता देनी है, मैं इन मामलों में हूँ कि अगर 5-6 महीने अगर आप उनके साथ झूठा लव अगर करके और फिर उसको बता रहे तो उससे तो बेटर है ना कि आपने फर्स्ट मीटिंग में ही बता दिया,
0: पहले ही बता दो
1: भैया प्यार व्यार नहीं है, ये हमदर्दी है और एक अट्रैक्शन है, दैट्स ऑल, वो प्यार व्यार नहीं है आपके साथ में मुझे।
0: जी मैम,
1: मैं आया तो इसीलिए कहते हैं कि अगर आप फर्स्ट मीटिंग में सच्चाई के साथ अगर हर रिश्ते की शुरुआत हो रही है तो इट्स ये इसको रियल लव कहा जाता है। अगर आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा पीरियड आएगा तो सच्चाई बताने से इंसान पीछे नहीं हटे,
0: मतलब चलिए मैं इस बात का ध्यान रखूंगी, मतलब लाइफ में मुझे ये ध्यान रखना है।
1: हाँ, ठीक है। और
0: मैम कभी कभी ऐसे रैंडम ये भी हो जाता है कि किसी की लव स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लग रही होती कि मैंने सुना, मैं आप ही को ले लेती हूँ, मैंने समता मैम की लव स्टोरी सुने,
1: लव स्टोरी जानोगी ना तुम्हारे कदमों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी।
0: तो हमारे लिसनर अभी मैम सुनाएंगी अपनी लव स्टोरी, हम लोग
1: लव स्टोरी, मेरी लव स्टोरी को रिवील ना करो। और मैं चाहती हूँ कि आज हमारे गेस्ट रूप में हमारे नए आरजे के रूप में निधि आई है, तो मैं निधि से जानना चाहूंगी लव स्टोरी, मतलब वो चाहे अपनी हो या किसी फ्रेंड की हो या किसी कहीं पे भी आपने पढ़ी हो, तो लव स्टोरी भाई किसको किसको लव स्टोरी सुननी है। और गेम शुरू करेंगे हम विद इन 15 मिनट के अंदर, तो आप सभी लोग भी रेडी हैं अगर गेम के लिए तो फटाफट आ जाइएगा, क्योंकि अभी लव स्टोरी का टाइम हो गया है, तो हम यहाँ ब्रेक लेंगे और तब तक जो है निधि उसको अच्छे से और सोच लें, क्योंकि लव स्टोरी होने वाली है, तो मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट होती है पता है लव स्टोरी सुनने का।
0: आपको लगता है मुझे देख के मेरी कोई लव स्टोरी हो सकती है?
1: ऑफ कोर्स हो सकती है।
0: मैम मुझे मेरे घर वालों को नहीं लगता, आपको कैसे लग गया?
1: मुझे लगता है लव स्टोरी, देखो लव स्टोरी ये नहीं होती है कि हम किसी से मिल रहे हैं बातें कर रहे हैं घंटों, लव स्टोरी ये भी हो सकती है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन।
0: यस मैम कह सकते हैं,
1: इन कॉलेज, इन स्कूल, इन होम, इन प्लेस, इन एवरी वेयर, मतलब ऐसा नहीं होता है कि हम घंटों बात कर

0: मेरे पास कोई बॉयफ्रेंड है, तभी हमारी लव स्टोरी है। लव स्टोरी वो भी हो सकती है कि हम ट्रेन में कहीं जा रहे हैं, हम कहीं फ्लाइट पे जा रहे हैं, एक लड़का एक बंदा बैठा है जो स्टार्टिंग से एंड तक बैठा है, उस बंदे ने मुझे देखा तक नहीं और मुझे पहली नजर में उसे देख के प्यार हो गया, और ऐसा कई बार होता है।
1: रुके वहीं प्यार खत्म हो गया,
0: और जहां पर वो ट्रेन रुकी वो उतरा, बस आपकी लव स्टोरी
1: खत्म।
0: तो इसको भी लव स्टोरी कह सकते हैं।
1: जी मैम, चलिए फिर हमसे जुड़े रहिए, कहीं जाइएगा मत, और मिलते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद,
0: और उसके बाद सुनेंगे हम निधि से
1: एक लव स्टोरी। बिल्कुल,
0: स्टे ट्यून्ड।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: बड़ी दूर से

पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
2: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
3: वेलकम बैक दोस्तों, आगे आपकी आज समता और साथ में आज हमारे हैं आज निधि। तो फटाफट आइए सुनते हैं उनके मुख से एक प्यारी सी लव स्टोरी।
4: जी मैम आप
3: सुन। लेकिन उसके पहले मैं चाहती हूँ कि हम लोग गेम स्टार्ट कर दें, ठीक है? तो आप सभी की नजरें जो होनी चाहिए वो चैट बॉक्स में होनी चाहिए, क्योंकि मैं पहला वर्ड आपको चैट बॉक्स में देने जा रही हूँ और निधि की लव स्टोरी के बाद में सीधे हम लव राशि फल भी शुरू कर देंगे। तो आपकी पहली नजर होनी चाहिए चैट बॉक्स में, क्योंकि आपका गेम स्टार्ट होने जा रहा है।
4: जी मैम, ये निधि की लव स्टोरी मतलब आप ऐसे कह सकेंगे? निधि
3: नहीं, मतलब निधि के द्वारा बताई गई। निधि की कोई लव स्टोरी नहीं है, ये साइन हो।
4: तो बात मैम लव स्टोरी कुछ ऐसी है, उस लड़की के जीवन में एक कोई शख्स आया और लड़की यूपी की थी और वो लड़का एमपी का था। उस समय शायद हाँ वो ट्वेल्थ क्लास में थी। फिर उन लोगों की मुलाकात हुई, सोशल मीडिया पे बातचीत हुई, हाय हेलो कैसे हो। आई थिंक 4 या 5 साल हो गया है, अभी भी वो लोग एक दूसरे से बात करते हैं और प्यार इतना है कि आपको मैं बता नहीं सकती हूँ। अगर लड़की ने खाना नहीं खाया है तो लड़का जॉब करता है, वो लाके टिफिन रखता है, और खाना अगर लड़की ने नहीं बताया 8 बजे तक कि मैंने नाश्ता कर लिया है तो वो लड़का खाना फेंक देता है, वो नहीं खाता है। कि तो लड़की, चलिए लड़की पतली भी थी, इसी चक्कर में लड़की मोटी हो गई। फिर धीरे धीरे ऐसे उन लोग का प्यार चलता गया। बीच में कुछ ऐसा हुआ कि वो लोग 1 साल के लिए दूर हो गए। फिर लड़की बीमार उमार हो गई, बहुत पतली। इस समय आप देखेंगे उसको तो वो बहुत ज़्यादा ही पतली है वैसे। फिर प्यार उन लोगों में ऐसा है कि बात घर वालों तक पहुँची, पर अभी मैम कोई यूपी का है कोई एमपी का शादी करना थोड़ा मुश्किल है,
3: इम्पॉसिबल है। हाँ
4: इम्पॉसिबल,
3: पर जाने वाले जा रहे हैं यार, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। लोग तो इतनी इतनी दूर दूर जा रहे हैं।
4: जी फिर मतलब ऐसा नहीं, प्यार है तो प्यार ही रहेगा, प्यार में अनबन होती है, लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, फिर उतनी अंडरस्टैंडिंग कहीं कहीं हो जाती है कहीं कहीं नहीं होती है। तो फिर थोड़ी लड़ाई झगड़ी हुए, फिर कुछ दिन वो लोग दूर रहे, फिर ऐसे ऐसे लड़की तो प्यार करती रही पर उस लड़के के जीवन में कोई और आ गया। फिर उस लड़के को उसके साथ रहने में अच्छा नहीं, प्रॉब्लम होने लगी। जैसे अभी मैम जब कोई आपके साथ है और किसी और के साथ गया, फिर उसने कंपेयर किया, नहीं वो पहले वाली ज़्यादा अच्छी थी, तो फिर वो वापस आया। तो लड़की तो प्यार करती ही थी, उसने एक्सेप्ट कर लिया। फिर धीरे धीरे ये हुआ कि जब बात चालू हुई तो लड़की तो बिल्कुल जैसी थी वैसी ही रही। अब लड़का किसी और को भी देख रहा था, तो अब दो लोग का वो हैंडल करने में हुई दिक्कत। फिर भी उस लड़की को बात पता चली, और आप विश्वास नहीं करेंगी, उस लड़की ने उसको भी एक्सेप्ट कर लिया।
3: ओह माय गॉड।
4: और इस टाइम भी वो लोग रिलेशनशिप में हैं,
3: मतलब दोनों लोग, जो पहले वाली और वो था।
4: पहले वाली तो छूट गई।
3: अच्छा।
4: जो आई थी।
3: हाँ।
4: वो तो कुछ दिन ऐसे परमानेंट लोग चले आते।
3: हाँ।
4: हैं, मतलब टाइम पास करने के लिए। फिर मैं ये सोचने उसने ऐसा क्यों एक्सेप्ट किया,
3: क्यों एक्सेप्ट किया?
4: मैं भाई दूसरा इंसान तो ना एक्सेप्ट करे कोई।
3: हाँ, बिल्कुल।
4: और लव स्टोरी में ऐसा नहीं होता,
3: नहीं
4: है,
3: होता है।
4: और प्यार को प्यार की तरह ही रहने देना चाहिए,
3: करना चाहिए। एग्जैक्टली।
4: जी, ये
3: तो
4: नहीं,
3: ये हैप्पी एंडिंग तो नहीं हुई, ये लव स्टोरी नहीं है मेरी, क्योंकि हैप्पी एंडिंग नहीं हुई
4: अभी। मैम बाकी है।
3: अच्छा, अभी बाकी है। तो अभी बाकी है, तो मैं सोच रही हूँ हमारा गेम स्टार्ट कर दे और इसकी जो बाकी कहानी है वो हम ब्रेक के बाद बताएंगे।
4: जी बिल्कुल,
3: ठीक है। तो आइए आशु जी आपका गाना सुनते हैं और आपके गाने को सुनने के बाद में बाकी बची लव स्टोरी को भी सुनेंगे, लेकिन आपका आपका जो वर्ड है वो चैट बॉक्स में हम आपको देंगे। स्टेट
5: पीता पियों के शरारे पीछे हैं, ये सावन की रिमझिम झड़ी है, कदम बेखुदी में बहकने लगे हैं, ये मद

0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
2: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
3: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में निधि। तो चलिए फटाफट उस लव स्टोरी को कंप्लीट करते हैं और राशिफल को शुरू करते हैं। तब तक आपको मैंने एक वर्ड दिया था कजरा, ठीक है। तो कजरा से वर्ड आरके जी ने बाजी ली है मार और उन्होंने सॉन्ग लिख करके भेजा है कजरा मोहब्बत वाला। तो बिल्कुल सुनाऊंगी ये वाला गाना, लेकिन उसके पहले आइए जो लव स्टोरी थी जो आधी थी उसको सुन लेते हैं।
4: मैम फिर क्या हुआ, यूपी और एमपी में शादी की बात हो गई और इसी नवरात्र में इन लोग की एंगेजमेंट है।
3: ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही गुड न्यूज वाले, अब लग रहा है लव स्टोरी है, अब लग रहा है मुझे।
4: मैम 12th से अभी, मतलब वो लड़की होगी 27 से 28 इयर्स की होगी
3: और मतलब अब जा करके उनकी शादी हो रही है।
4: अब शादी हो रही है, सोचे कितना मुसीबत। मतलब ये होता है
3: ना कि हैप्पी एंडिंग हुई ना।
4: जी मैम, हैप्पी एंडिंग बहुत है अभी।
3: चलिए तो फटाफट राशिफल शुरू करते हैं और जल्दी से राशिफल आप पढ़िए।
4: जी मैम, तो आज बात करें मेष राशि वालों की, तो पार्टनर से बात करते समय संयम रखें। गुस्से में बहस करने से रिश्ते में दूरियां बढ़ सकती हैं, इसलिए आज बातचीत के दौरान शांत रहना बेहतर होगा। तो मेष राशि वालों के लिए ये था कि आज थोड़ा वो संभल के रहें। फिर हम आ जाते हैं वृषभ राशि। जी मैम, प्रेम जीवन में ठहराव और मधुरता रहेगी। वाओ, पार्टनर आपको कोई प्यारा सरप्राइज दे सकता है जिससे आपका आपसी जुड़ाव और गहरा हो जाएगा। काश ये राशि मेरी होती, आज मुझे कोई गिफ्ट मिल जाता।
3: ओह माय गॉड।
4: मिथुन राशि, अपनी वाणी और शब्दों के चयन में सावधानी बरतें। बेपरवाही में कही गई बात आपके साथी का दिल दुखा सकती है। मतलब जो मेष राशि वाले और मिथुन राशि वाले हैं थोड़ा सतर्क रहें, और जिन जिन लोगों की वृषभ राशि है भाई, आज उनको कुछ तो मिलने वाला है। हाँ, पर वो रिलेशनशिप में हैं तो अब ऐसा नहीं है कि मैम सोच लें कि उनको मिलेगा। नहीं मैम, आपको बिल्कुल नहीं मिल सकता।
3: क्या गिफ्ट?
4: जी
3: अच्छा, तो आपने वृषभ राशि बता दी।
4: जी
3: अब मुझे बतानी है मिथुन राशि।
4: बिल्कुल,
3: तो मिथुन राशि वालों के लिए है कि अपनी वाणी और शब्दों के चयन में सावधानी बरतना है और ताकि कोई गलती ना हो जाए, बातचीत करने से आपका दिल ना दुखे। कर्क राशि वालों के लिए आज आपका दिन आपके लिए बेहद स्नेहपूर्ण और भावुक रहने वाला है। पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा और आप दोनों भविष्य के लिए कोई साझा निर्णय भी ले सकते हैं। सिंह राशि वालों के लिए है कि रिश्ते में गजब की ताजगी देखने को मिलेगी। पार्टनर के साथ कहीं बाहर जाने का, रोमांटिक डिनर पर जाने की योजना बन सकती है। तो बाकी हम राशियों को अभी पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले आइए आरके जी के गाने को बजाते हैं और सुनते हैं, और उसके बाद एक गाना और सुनाएंगे और उसके बाद फिर हम आएंगे आपके लिए फिर से लेकर के राशिफल। तो मुझे ये बताओ निधि कि तुम्हारी राशि कौन सी है?
4: मैम वृश्चिक।
3: वृश्चिक है
4: जी।
3: तो जो तुमने पढ़ ली अभी?
4: No,
3: नहीं पढ़ी?
4: नो।
3: ओके, तो चलिए भाई, इन्होंने अभी नहीं पढ़ी है तो इसकी राशि को मैं पढ़ूंगी। आइए सुनते हैं इस प्यारे से गाने को।

0: मुसीबत से चलती है दुनिया। तो आइए फटाफट बढ़ते हैं अपने राशिफल की ओर, जो कि हमारी नेक्स्ट राशियां होने वाली हैं। जी निधि जी।
1: जी फिर हम कन्या राशि की बात करें तो पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। हर बात में मन मुटाव निकालने के बजाय प्रयास करें कि एक दूसरे की तारीफ करें, रिश्तों को बेहतर बनाएं और समझें, जिससे आपके रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। तो ये कन्या राशि वालों के लिए थी। और अब आ जाते हैं हम तुला राशि पर। आज पार्टनर के मूड को भाप कर ही बात करें। अगर वो किसी बात से परेशान है तो बहस करने की बजाय उन्हें मानसिक सपोर्ट दें।
0: ओके।
1: फिर मैम आपकी आ गई फेवरेट राशि, जो आप मुझसे पूछ रही थी,
0: वृश्चिक राशि।
1: जी मैम।
0: हाँ।
1: आपसी तालमेल और समझ बहुत बढ़िया रहेगी। सिंगल लोगों की लाइफ में आज किसी पुराने दोस्त से नजदीकियां बढ़ सकती हैं।
0: ओके।
1: चलिए फिर हम बात करते हैं धनु राशि की। पार्टनर का मानसिक तनाव आज आपकी मीठी बातों से कम होगा। ओहो, धनु राशि जिसकी है मुझे बताइए एक बार। आज उन्हें आपके समय और साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो धनु राशि वाले बिल्कुल ध्यान दें, आपके पार्टनर को आपकी आज बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है। फिर आ जाते हैं मकर राशि पे। बाहरी लोगों या दोस्तों की बातों में आकर अपने पार्टनर पर शक ना करें।
0: बिल्कुल।
1: जो भी बात है सीधे उनसे मिलकर साफ कर लें। मकर राशि वाले भी ध्यान दे भाई, अपने रिश्ते को है बचाना तो किसी के बात में ना आना।
0: बिल्कुल। ओहो। अपने रिश्ते को है बचाना तो किसी के बात में। अंशिका वाकई में आई मिस्ड, क्योंकि ना वो ऐसे बहुत सारी चीजों में तालमेल बना करके जब हम पोयम पढ़ते हैं तो वो मुझे रास्ता देती है बहुत अच्छे से, एक शायरी पढ़ के।
1: जी।
0: तो आज उसको याद कर रहे हैं बहुत दिल से।
1: फिर हम बात करते हैं कुंभ राशि की।
0: ओहो, माय फेवरेट।
1: वाणी में थोड़ी करवाहट आ सकती है।
0: कभी नहीं आ सकती
1: आज
0: जो ऑलरेडी रहती है मेरे।
1: आज अपनी टोन को नरम रखें, नहीं तो शाम तक कोई बड़ी नोकझोंक हो सकती है।
0: किसके साथ? अपने
1: पार्टनर के साथ।
0: अपने पार्टनर के साथ।
1: जी मैम। आज आपको महसूस होगा कि आपका पार्टनर, मीन राशि की बात हम कर रहे हैं, आज आपको महसूस होगा कि आपका पार्टनर ही आपको सबसे अच्छा दोस्त है। आपसी प्यार, विश्वास और सम्मान में बढ़ोतरी होगी। तो ऐसे राशिफल हम आपको सुनाते रहेंगे। फिलहाल हम जानना चाहते हैं कुंभ राशि वालों का कि अभी होगी लड़ाई या हो चुकी
0: है? नहीं होगी, नहीं होगी, ऐसे मत बोलो निधि। और आई होप सो कि लड़ाई ना हो। और मतलब अब मैं सतर्क हो गई ना। अब मैं अपनी जुबान को कड़वाहट से निकाल करके मिठास भर के रखूं।
1: मैम आप हमेशा ही मिठास ही भर के रखती हैं, हम लोग समझ ना पाए अलग बात है।
0: ये तुमने बहुत दिल की बात बोल दी है। तो चले अब फटाफट चलते हैं और एक गाना सुन लेते हैं, और मैंने लास्ट वर्ड भी दे दिया है जो कि है प्यार। ठीक है, तो आइए चलते हैं और लास्ट गाने के इंतजार में जल्दी से लिख करके भेजिए, वर्ड दिया है प्यार।

0: एग्जैक्टली प्यार में जिएंगे और प्यार में ही रहेंगे। और आज का सेक्शन पूरा हमारा लव पे था और अब हम दोनों को दें इजाजत, यानी कि हमें और निधि को। निधि कैसा लगा आज?
1: मैम मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आपसे बहुत सारी बातें जानने को मिली जो मुझे पूरी जिंदगी काम आए,
0: याद आने वाली है ना। तो मंडे को फिर मिलेंगे सेम प्लेस सेम टाइम पर, तब तक के लिए हम दोनों को दें इजाजत। टेक केयर, बाय बाय
1: बाय बाय फिर।

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
4: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9216-9976-9816-981-976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
3: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
4: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
4: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
5: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
6: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
7: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं।

0: होना चाहिए।
1: अपनी यादों से कहो एक दिन छुट्टी दे मुझे, इश्क के हिस्से में भी इतवार होना चाहिए। हेलो, हाय, आदाब, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सभी। घड़ी में वक्त हो चला है 3:05। आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपकी अपनी आशुनती मौजूद है आप सभी के साथ, और ये है आपका अपना कॉल ट्यून गोंडा। आपने ट्यून कर लिया है रेडियो क्याना 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। और भैया, हमने तो तय कर लिया है कि आप करेंगे आपकी फरमाइशों के ट्यून 3 से 4 लगातार। तो अपनी फरमाइशें पूरी करने के लिए, अपनी फरमाइशें भेजने के लिए उठाइए अपना फ़ोन, डायल करें 6393316429, आई रिपीट 6393316429, और भेज दे अपनी फरमाइशें हम तक। फिलहाल आइए बढ़ते हैं हमारी पहली फरमाइश की ओर, और आप एंजॉय करने जा रहे हैं हमारे बाबू अंसारी जी की फरमाइश। हम मिलते हैं इस गाने के उस पार, तो बने रहिए, सुनते रहिए, अपनी फरमाइशें करते रहिए, क्योंकि भैया आज टाइम सिर्फ 1 घंटा है और 1 घंटे में आपकी फरमाइशों का सिलसिला यूं ही बरकरार रहेगा।

0: हंस जी, तो आप एंजॉय कर रहे थे बाबू अंसारी जी की फरमाइश पर अलबेला फिल्म से कहो तो जरा झूम लूं, कहो तो जरा झूम लूं। अलका जी कुमार सानू की आवाज़ थी, बहुत ही प्यारा सा नगमा समीर साहब के लिखे बोल। और वक्त है अब आपके चैट बॉक्स की तरफ बढ़ने का। चैट बॉक्स में हमारे पास कुछ मैसेजेस आ चुके हैं, कुछ पैगाम आ गए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके भी मैसेजेस हमें चैट बॉक्स में मिल जाएं, तो भैया एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, जो कि आपको प्ले स्टोर ऐप स्टोर पर मिलता है रेडियो 89.6 FM के नाम से, और आप अपनी चैट्स हमें भेज सकते हैं। सुरेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका स्वागत करते हैं। एंड इसके बाद आशु मिश्र जी का भी मैसेज आ गया है, आपका भी स्वागत करते हैं। महेंद्र दीपन जी लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून, नमस्ते आर्यमती मैम जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं, एंड गुड आफ्टरनून टू यू। आसिफ अंसारी जी फ्रॉम हैदराबाद तेलंगाना से हमारे साथ जुड़ गए हैं, गुड आफ्टरनून डियर आर्यमती मैम, गुड आफ्टरनून टू यू। राज मौर्य फ्रॉम गोंडा जुड़ गए हैं, गुड आफ्टरनून अंते, गुड आफ्टरनून टू यू राज जी, कैसे हैं आप? आपका वेलकम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं कॉलर ट्यून गोंडा में। गुलाबशाह सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, गुड आफ्टरनून अति मैम, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ गुलाबशाह जी, आप बताइए आप कैसे। और आप तो ये बताइए कि आप हमको लड्डू कब खिला रही हैं, हम आपके लड्डू का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हमसे रोशनी जी ने वादा किया था कि लड्डू आप हमको खिलाने वाली हैं। तो रोशनी जी से पहले आप कब आ रही हैं हमसे मिलने के लिए? एंड उसके बाद बाबू अंसारी जी जुड़ गए हैं हमारे साथ बाराबंकी से, आपका वेलकम करते हैं। और आपने लिखा है, गुड आफ्टरनून अति मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। अरविंद जी भी आ चुके हैं, आपका भी वेलकम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं कॉलर ट्यून गोंडा में। धर्मेंद्र मोहन जी फ्रॉम आवास विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी वेलकम करते हैं। और आपने लिखा है, उन्नति जी गुड आफ्टरनून, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग हमारी गुलाबशाह जी की फरमाइश पर है, और ये गाना डेडिकेट करते हुए उन्होंने तीन लोगों का नाम लिया है, हमारे आसिफ भाई को, रोशनी जी को और अनु जी को। तो एंजॉय करते रहिए जिस देश में गंगा रहता है फिल्म से गोविंदा और सोनाली बिंद्रे पे फिल्माया गया गाना मेरी शादी करवाओ लाल चुनरिया वाली से। तो भैया लाल चुनरिया वाली का तो पता नहीं, लेकिन हाँ आसिफ जी आपकी शादी बहुत जल्द होने वाली है, और हमें लगता है कि रेडियो ज्ञान असली पे सबसे ज्यादा धूम आप ही की शादी की मच रही है इस टाइम। तो एंजॉय करते रहिए, हम मिलेंगे अगले गाने पर। अपनी फरमाइश भेजने के लिए उठाइए अपना फोन, डायल करें 6393316429। आप सुन रहे हैं कॉलर ट्यून गोंडा, फरमाइश वाला कार्यक्रम भेद राजनति।
1: मैं कुआरा कब तक बैठूं, बैंड मेरा बजवाओ, अरे जैसे भी चलता है चक।

इतनी शादी की जल्दी आई थिंक जिसकी हो रही है उसको भी नहीं होगी जितनी हमारी गुलफशा जी को हो गई है आसिफ जी की शादी को लेकर के। सपना मस्ती उदित नारायण के पास में आप एंजॉय कर रहे थे लाल चुनरिया वाली से कोई शादी मेरी करवाओ, और ये शादी वादी तो होती रहेगी। फिलहाल आइए मारते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। बैंड बाजा बारात नहीं बजाएंगे क्योंकि अब हम जाएंगे सीधे मंदिर, मंदिर से लेकर आएंगे आशीर्वाद, क्योंकि अगली फरमाइश हमारे पास आई है सुरेंद्र यादव जी की। नवरात्रि आ रही है और लखा की आवाज में गाने ना हो ऐसा हो नहीं सकता दोस्तों, तो आइए एंजॉय करते हैं सुरेंद्र की फरमाइश पर एक बहुत ही प्यारा सा भजन तेरा भवन सजा जिन फूलों से। एंजॉय करते रहिए कॉलर ट्यून को, आप सुन रहे हैं कोंडा का अपना एफएम रेडियो ज्ञान 89.6 एफएम कोंडा शहर की धड़कन। विद और आज चुनौती अपनी फरमाइशी के लिए बस अपना फोन उठाइए, डायल करें 6393316429, अपने नाम के साथ साथ अपने शहर का नाम और अपने गाने के बोल भेज दीजिए।

और ये फरमाइश थी हमारे सुरेंद्र यादव जी की। और इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे चैट बॉक्स की तरफ। ओके, तो भाई अरविंद जी को करनी है शादी और आप लोगों के पास आ गई है जिम्मेदारी कि अरविंद जी के लिए ढूंढ के लाइए लड़की। और हमारे पप्पू जी जुड़ गए हैं और आपका स्वागत करते हैं। फोन क्यों नहीं लग रहा है? आई थिंक सिग्नल प्रॉब्लम है, अदरवाइज सबके कॉल आ रहे हैं। आप दोबारा से कोशिश कर सकते हैं पप्पू जी, एंड इसके बाद भी नहीं लगे तो आप मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, मैं चेक जरूर करूंगी। फिलहाल के लिए आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग हमारे पास राजस्थान से आया है, फरमाइश है हमारे महेंद्र दीपन जी की, तो इन्जॉय करते रहिए लाल चुनरिया वाली पे। लगता है सबको लाल चुनरिया वाली ही चाहिए, तो हम जैसे जो काले दुपट्टा ओढ़ के घूमते हैं हमारा क्या होने वाला है, सोचिए ज़रा। वैसे भी आजकल लोगों के पसंदीदा रंग ब्लैक हो गए हैं और आप हर दूसरा इंसान सिर्फ लाल चुनरिया वाली कर रहा है, कैसे कैसे बताइए बताइए। हालांकि नवरात्रि आ रही है तो लाल चुनरिया इज मस्ट, तो एंजॉय करते रहिए। हम मिलते हैं इस गाने के उस पार लेकर के हमारी अगली फरमाइश। सो स्टे ट्यून्ड।

और देखो भैया, इसमें भी ना लड्डू वड्डू खाने की बात हो रही है। लगता है आज हर एक गाने में या तो लाल रंग आएगा या तो सब लोग लड्डू ही खिलाते रहेंगे। क्या ख्याल है? वैसे ज्यादा मिठाई नहीं खानी चाहिए दोस्तों, ज्यादा मिठाई खाने से डायबिटीज होती है, ये बात हमने बचपन में सुनी थी और हम अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं। इसीलिए आइए आगे बढ़ते हैं, आगे की फरमाइश पूरी करते हैं जो कि हमारे देवी प्रसाद जी की है। और आज वो एंजॉय करेंगे एक बहुत ही सैड सॉन्ग। लगता है देवी प्रसाद जी का दिल गया है टूट, इसीलिए वो एंजॉय करते हैं। जहां खुशी मिलती है सोना वहीं तुम रहना, तो एंजॉय करते रहिए। हम मिलेंगे इस गाने के उस पार जो कि हमारे निशा जी की होने वाली है, मिस्टर ऑप्टिकल की होने वाली है, सुरेश कुमार जी की होने वाली है, धर्मेंद्र मोहन जी की होगी। तो बने रहिए, एंजॉय करते रहिए कॉल ट्यून गोंडा। और ऑफ कोर्स जी पप्पू जी, हमने अपना फोन चेक कर लिया है और सिग्नल प्रॉब्लम आ रही है आपके साइड से, तो प्लीज एक बार अपना फोन आप जरूर चेक करें और सुनते रहे मेरे साथ। बने रहे कॉल ट्यून गोंडा में, आपकी अपनी आशीर्वादी मौजूद है आपके साथ।

और ये फरमाइश थी हमारे देवी प्रसाद जी की। आइए बढ़ते हैं अगली गाने को ट्यून करने के लिए। अगला सॉन्ग हमारे पास आया है नशा की फरमाइश पर। वो सुनना चाहती हैं, हमने घर छोड़ा है एंड सारी रस्मों को तोड़ा है, तो इंजॉय करते रहिए। और रही बात चाय पिलाने की, तो मुझे लगता है भैया ये काम हमारे लहसुन करने वाले हैं। एंड आप बेफिक्र रहिए महेंद्र जी, अगर कोई वो चाय नहीं बना रहा है तो कोई और चाय ज़रूर बनाएगा। होस्ट आपके साथ बैठे हैं, तो होस्ट के साथ साथ जो और लोग हैं वो आपके लिए चाय ज़रूर बना रहे हैं। तो इन्जॉय करते रहिए कॉलर ट्यून गुना। मिलते हैं इस गाने के उस पर। आप सुन रहे हैं रेडियो 11.89 FM विद राजयोनदी।

0: हमारी निशा जी की फरमाइश थी, दिल फिल्म से आप एंजॉय कर रहे थे, हमने घर छोड़ा। साधना सरगम उदित नारायण की आवाज में समीर साहब के लिखे बोल थे, आनंद साहब का वह संगीत, और इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे चैट बॉक्स में। इट्स कुमार जी की एंट्री हो चुकी है और आते ही लिखा है आपने वेरी गुड आफ्टरनून अनहोनी। ये नाम कुछ ज्यादा ही यूनिक हो जाता है मेरे लिए, एंड बहुत बहुत शुक्रिया। गुड आफ्टरनून टू यू, आपका इस्तकबाल करते हैं कॉलर ट्यून गोंडा में, नाइस सॉन्ग, थैंक यू सो मच, क्रेडिट गोज टू हमारी निशा जी। एंड इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। अगला गाना है हमारे पास मिश्रा ऑप्टिकल जी का, और वो एंजॉय करना चाहते हैं मैं परदेसी हूँ पहली बार आया हूँ, कहाँ आया हूँ, भजन है भाई भजन है, एंजॉय कीजिए क्योंकि आप जा रहे हैं मेरे साथ पहाड़ों की दुनिया में। इस गाने के साथ साथ हम मिलेंगे अगले सॉन्ग पर, जो ऑफकोर्स आपको बॉलीवुड का एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाने वाले हैं, बिकॉज उसमें सार के हैं, हमारी करिश्मा कपूर है और माधुरी दीक्षित है। एनी गेस किस फिल्म का गाना होने वाला है? अगर आपने गेस कर लिया है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, यानी कि आपके चैट बॉक्स में बताइए।
1: इधर से है या उधर से है?

बहुत ही प्यारा भजन था हमारे मिश्र ऑप्टिकल जी का. एंड ओके, हमारे पास मैसेज आ गया है बाबू अंसारी जी की तरफ से. क्यों नहीं मैम, फिल्म का नाम है दिल तो पागल है. जी हाँ, बेशक करेक्ट, पर हमारे पास 7 करोड़ नहीं है तो हम आपको दे नहीं पाएंगे, इसके लिए माफी चाहते हैं. मिश्र ऑप्टिकल जी, आपका भी स्वागत करते हैं. बहुत बेहतर प्रोग्राम, शानदार प्रस्तुति, आज कल बहुत कम समय मिल रहा है, जल्द लौटेंगे, बाय बाय, ख्याल रखिएगा इट्स कुमार जी. एंड इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ, जो कि आपने जरूर अच्छे से गैस कर लिया है, क्योंकि हमारे बाबू अंसारी जी ने तो कर लिया था. और इसीलिए इस फिल्म से पेश करते हैं सुरेश कुमार जी की फरमाइश पर, भोली सी सूरत आंखों में मस्ती दूर खड़ी शर्माए. आय हाय, क्या बात है, एंजॉय करते रहिए. हम मिलेंगे अगले गाने पर, जो कि हमारे धर्मेंद्र मोहन जी का है, आवाज विकास से.

भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए, आए हाय आए हाय। और आप इंजॉय कर रहे थे शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, करिश्मा कपूर की फिल्म से बहुत ही प्यारा सा गाना, लता जी, उदित नारायण की आवाज़ थी। और मैं आपको बता दें, आनंद बख्शी के लिखे बोल थे। और आनंद बख्शी की एक खास बात बताऊँ मैं आपको, वो जब किसी की तारीफ लिखते हैं, स्पेशली किसी फीमेल की तारीफ लिखते हैं, वो इतनी खूबसूरती से लिखते हैं कि जब भी आप उनके गाने सुनेंगे ऐसा लगेगा यार क्या सादगी के साथ किसी की तारीफ की गई है। बहुत ही खूबसूरत गाने होते हैं उनके। और ओके, इसके बाद बढ़ते हैं हमारे अगले गाने को ट्यून करने के लिए। अगला सॉन्ग हमारे पास धर्मेंद्र मोहन जी की तरफ से आया है, फ्रॉम आवास विकास। और आपके चैट बॉक्स में भी कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। अरिबा शेख हमारे साथ जुड़ गई हैं। हेलो, गुड आफ्टरनून स्वीट हार्ट, माई फेवरेट सॉन्ग, आई हाय। क्या बात है, आपने भी आते ही आई हाई कर दिया, एंड थैंक यू सो मच। फिलहाल आपका फेवरेट सॉन्ग जो फरमाइश थी वो थी हमारे सुरेश जी की, तो इंजॉय करते रहिएगा। हम मिलते हैं अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग हमारे रफीक खान का है, एहसान जी का है, अरविंद मौर्य जी का है, आसिफ जी फ्रॉम हैदराबाद से, और राकेश जी। एंड इसी के साथ उत्तराखंड से भी मैसेज आ चुका है हमारे पास, रीना शर्मा जी का, सभी की फरमाइशें उन्हें काफी ज्यादा पसंद आ रही हैं। तो भाई दोस्तों, खुश हो जाइए, उत्तराखंड से आपकी तारीफ हो रही है।

आप एंजॉय कर रहे थे आवाज विकास से आई फरमाइश हमारे धर्मेंद्र मोहन जी की कविता कृष्णमूर्ति कुमार सानू की आवाज में। बाय द वे हम आपको बता दें, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज कई लोग अलगा जी की आवाज समझ लेते हैं और बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसमें हमारी 2-3 फीमेल सिंगर 90s की ऐसी हैं, हमारी अनुराधा पौडवाल साहब एंड हमारी कविता कृष्णमूर्ति जी एंड अलका जी। इन तीनों की आवाज़ लगभग इतनी सेम साउंड करती है कि कुछ लोग यही भूल जाते हैं कि ये तीनों अलग अलग मोहतरमाएँ हैं, एक ही नहीं है। फिलहाल के लिए आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। कॉलर ट्यून गुना में अगला गाना पेश करते हैं हम आपके लिए रफ़ी खान साहब का। एंड राज जी लिख रहे हैं, उन्नति जी आज आपको सुनने के लिए मेरा पूरा परिवार बैठा है और आपको सभी बड़े तसल्ली से सुन रहे हैं। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच। मेरा यहाँ से सभी को हेलो, आई होप आप सब इंजॉय कर रहे होंगे कॉलर ट्यून गुना। अगली फरमाइश पेश करते हैं आपके लिए। लड़ाई दंगे फसाद काटते हुए हम चलेंगे और हमारा गाना है जब जब मियाँ बीबी में लड़ाई हो जाती है। क्यों लड़ाई होती है, नहीं करनी चाहिए लड़ाई, बड़ी अच्छी चीज नहीं होती है। लड़ाई लड़ाई माफ करो, घर मिलके साफ करो और गाने को एंजॉय करो। हम मिलते हैं इस गाने के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

भाई वक्त को मद्देनजर रखते हुए रफीक जी आपसे माफी चाहेंगे आपके गाने को बीच में रोकने के लिए, लेकिन ये बताइए श्रीदेवी जी ने हमारे पाजी को बाहर कहीं निकाल दिया है, वो भी बारिश के मौसम में? नहीं नहीं ऐसे नहीं करते हैं, इसीलिए मैं कहती हूँ लड़ाई दंगे साफ करो, माफ करो, घर मिलके साफ किया करो, लड़ाई वड़ाई अच्छी चीज़ नहीं होती है, नहीं तो बारिश में जाएंगे तो अच्छू अच्छू करते आएंगे। फिलहाल आइए अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं, अगली फरमाइश हमारे पास आई है एहसान जी की, एंड अगेन एक सैड सॉन्ग आ चुका है, पता नहीं क्यों लेकिन सैड सॉन्ग से एक अलग ही मोहब्बत होती है लोगों को, चाहे आपका मूड कितना ही अच्छा क्यों ना हो लेकिन एक सैड नगमा जरूर बजना चाहिए, और उसी नगमे में पेश करते हैं तेरी दुनिया से होके मजबूर चला, सुनते रहिए।

से। एहसान जी की फरमाइश थी तेरी दुनिया से और आवाज थी हमारे किशोर दा की। पवित्र पापी 1970 में रिलीज किया गया था ये गाना। हमारे जो लिरिसिस्ट है यानी कि जो गीतकार थे उनका नाम था प्रेम धवन और संगीतकार भी इसमें प्रेम धवन ही साहब थे। फिलहाल आइए ट्यून करते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। अगले गाना जो आया है वो आया है हमारे अरविंद मौर्या जी का और बड़ी नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा है कि आज हम अपना गाना किसी को डेडिकेट नहीं करेंगे। रीजन ये है कि कोई भैया हमको डेडिकेट नहीं करता है तो हम काहे करें, जैसे को तो ऐसा टिट फॉर टैट कर रहे हैं। तो आप उनके गाने को एंजॉय करते रहिए और उनकी नाराजगी को थोड़ा समझिए। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे हैं कॉल ऑफ ट्यून गोंडा विद राजनाथ।

मधु शर्मा की आवाज में आप एंजॉय कर रहे थे उनके अंदाज ही गरम और रोहिब अख्तर ने लिखे थे इस गाने के बोल। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग हमारे क्या बात है हैदराबाद से आया है और अगला गाना एक पंजाबी गीत है, तो आप एंजॉय करते रहिए और शादी मुबारक हो। आई डोंट नो आपकी शादी कब है, लेकिन मुबारकबाद हम आज ही से आपको दे रहे हैं आसिफ जी।

और आप इंजॉय कर रहे थे हमारे आसिफ जी की फरमाइश जो कि हैदराबाद तेलंगाना से आई थी। और इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अगली गाने की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास आई है राकेश वर्मा जी की, तो इंजॉय करते रहिए ये बहुत बेहतरीन सा भजन सोनू निगम साहब की आवाज में। एंड दादा यादव जी, आपको अपनी फरमाइश करने के लिए कॉल ट्यून में करना पड़ेगा, कॉल जो ऑफकोर्स आप करेंगे 6393316429 पर, क्योंकि ये कॉल ट्यून गोना है यानी आपके कॉलिंग वाला प्रोग्राम।

एंड क्योंकि नवरात्रि आने वाली है भाई, तो नवरात्रि वाइब्स शुरू हो चुकी हैं। एंड इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे राजू सलमानी जी की फरमाइश को ट्यून करने के लिए। एंड मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में उन्होंने फरमाइश भेज दी है हमारे पास, बेहद खूबसूरत परदेसियों से ना अखियां मिलाना, क्या बात है। तो आइए एंजॉय करते हैं और हम मिलेंगे अपनी आखिरी फरमाइश को लेकर के, जो ऑफकोर्स एक सैड गाना है, दिल मेरा तोड़ दिया उसने। किसने तोड़ा वैसे आपका दिल, बताइए, हम फेविकोल से जोड़ कर आते हैं।

और आप इंजॉय कर रहे थे हमारी राजू सलमानी जी की फरमाइश को मोहम्मद रफी की आवाज में, परदेशियों से ना अखियां मिलाना। एंड इसी के साथ अब बारी है हमारी आखिरी फरमाइश को ट्यून करने का, जो कि दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों मानूं भाई, मैं तो बुरा मानूंगी, क्यों ना मानूं मैं बुरा, ऐसी कोई बात ही नहीं है इसमें बुरा मानने लायक। फिलहाल के लिए एंजॉय करते रहिए और आई होप आज का शो आपको बहुत पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जरूर से दीजिएगा। घड़ी ने कर दिया इशारा कि वक्त है आपसे विदा लेने का, तो चाहूंगी आप सभी से इजाजत। कल मुलाकात होगी आपसे संडे के स्पेशल वाले शो 2 से 5 लगातार 3 घंटे बैक टू बैक नॉन स्टॉप। मेरी बकवास सुनने के लिए तैयार रहिएगा क्योंकि हम आपके साथ बहुत सारी बातें करने वाले हैं। और ये गाना जाते जाते डेडिकेट करते हैं हम उन सभी लोगों को जिन्होंने अपनी फरमाइशें हम तक नहीं भेजी हैं, जो हमें सुन रहे हैं रेडियो गार्डन से, फ्रीक्वेंसी से या फिर एप्लीकेशन से, जिसमें हमारे राज मौर्या जी, हमारे साथ इट्स कुमार जी शामिल हैं। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, ख्याल रखिएगा अपना। आप सुन रहे हैं गोंडा का अपना FM रेडियो क्या असली 89.6 FM। दादा यादव जी की फरमाइश है ये।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
4: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली PG कॉलेज गोंडा।
2: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
3: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
3: आज ही कॉल करें 9860 9816 9817 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
2: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
3: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गॉडली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला, होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गॉडली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट, ढेर सार मसालेदार बातें चटपटी चाची लेकर आती हैं, और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधुली में, स्टे ट्यून्ड।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: Now you're listening ज्ञानस्थली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान मौजूद है आपके साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में। शो चल रहा है गोधुली और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सो हर रोज गोधुली में गोंडा की प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी से आपकी मुलाकात कराते हैं, और हर रोज की पर्सनैलिटी में अपनी एक खास बात अलग होती है। तो आज भी जो हमारे बीच में खास मेहमान मौजूद हैं, उनकी भी अपनी एक अलग ही पर्सनैलिटी है। उनसे आज बहुत कुछ उनकी बात के जरिए जानने को समझने को मिलेगा। लेकिन जैसा कि हर गेस्ट के बारे में हम पहले की जिंदगी हुई बातों को करते हैं और उसके बाद उनके कार्यक्षेत्र के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उसी तरह आज हम अपने गेस्ट से जानने की कोशिश करेंगे उनकी जिंदगी के बारे में। तो आज के हमारे स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं मालिक राम वर्मा जी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एजुकेशन, राजकीय महाविद्यालय डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर। पहले तो हम आपका वेलकम करते हैं आपके अपने शो में जिसका नाम है गोधुली।
3: जी धन्यवाद, और आपको भी और पूरे ज्ञानस्थली परिवार को भी धन्यवाद कि आप लोगों ने इस तरीके का कार्यक्रम शुरू किया, और इस कार्यक्रम से पूरा जो गोंडा शहर है और जो पूरा जिला है इससे निश्चित रूप से प्रभावित होगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ पे मोटिवेशन और मार्गदर्शन की बहुत समस्या होती है। तो मैं आपके कार्यक्रम मैंने सुना है, एक दो प्रोग्राम सुना है, उससे मुझे लगता है कि इस क्षेत्र के जितने भी लोग इससे जुड़ेंगे वो निश्चित रूप से उनको बहुत फ़ायदा होगा, उनको बहुत मोटिवेशन मिलेगा, और वो देखेंगे कि क्या क्या फील्ड हैं और उस क्षेत्र में कैसे करियर बनाया जा सकता है। तो इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और ज्ञानस्थली परिवार।
2: बहुत बहुत शुक्रिया मेरी साइड से भी और ज्ञानस्थली परिवार की तरफ से भी। और जैसा कि हमने अभी अपने श्रोताओं को बताया कि सबसे पहले हम आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, तो आप सबसे पहले ये बताइए कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई, अपने माता पिता के बारे में, अपने भाई बहनों के बारे में और अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में।
3: सर मैं यही गोंडा जिले में एक गाँव है तिनोना मंगरावा करके, वहाँ पर मेरा जन्म हुआ था। काफ़ी बैकवर्ड एरिया है फिलहाल, और मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही प्राथमिक विद्यालय में हुई थी, और उसके बाद मैंने जो माध्यमिक शिक्षा थी उसको गांव से थोड़ी दूरी पे था, 10 किलोमीटर की दूरी पे, वहाँ मैंने माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की, और उसके बाद इंटरमीडिएट के लिए मैं मनकापुर चला गया, AP इंटर कॉलेज। तो वहाँ से इंटरमीडिएट के बाद मैं अपनी हायर एजुकेशन के लिए मुझे गोंडा आना पड़ा, और मैं चाहता था बाहर निकलूं किसी अच्छे जगह से और अच्छी शिक्षा करूं, लेकिन उस तरीके की परिस्थितियां नहीं थी, कुछ फाइनेंशियल कंडीशन इस तरीके की नहीं थी कि मैं गोंडा से बाहर जा पाता। तो मैं गोंडा आ गया और यहीं पे एडमिशन ले लिया LVS डिग्री कॉलेज में।
2: ओके, तो ये तो आपने अपनी पढ़ाई के बारे में बताया, इस पर भी हम वापस अभी लौटेंगे। अपने माता पिताजी के बारे में बताइए, भाई बहनों के बारे में।
3: सर हम लोग 9 भाई बहन हैं, 6 बहनें हैं और 3 भाई हैं, एक मुझसे बड़े हैं, बड़े भाई, और माता पिता हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, खेती करते हैं, और पिताजी की भी बहुत अच्छी सर एजुकेशनल बैकग्राउंड हम लोगों की बहुत अच्छी नहीं है। पिताजी नहीं पढ़ पाए थे, वो कुछ उनकी परिस्थितियाँ उस समय रहीं,
2: बिल्कुल बिल्कुल,
3: लेकिन कक्षा 5 तक उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी जी। तो वो चाहते थे कि हम सब लोग पढ़ें और अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, उच्च शिक्षा प्राप्त करें, और इसके लिए उन्होंने प्रयास किया, बड़े भाई को पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो पढ़ना नहीं चाहते थे, और हाई स्कूल में वो फेल हो गए और उसके बाद छोड़ दिया उन्होंने पढ़ाई।
2: ओके,
3: तो फिर मेरा नंबर था, बहनें सभी बड़ी थी।

0: हाई स्कूल पास किया था
1: ओके
0: और इसके पहले कोई इस तरह की राउंड नहीं थी।
1: ओके तो अभी तो नो डाउट मतलब आपके माता पिता आपके भाई बहनों को बहुत अच्छा लगता होगा आपको इस जगह देख के जहाँ पे भी अभी आप हैं। और साथ ही साथ अब आपकी हम थोड़ा सा बचपने में बात करेंगे
0: जी।
1: बचपन से आपका स्वभाव कैसा था? थोड़ा चुप चुप मिजाज के थे आप या शरारती थे, कैसे थे आप?
0: नहीं सर, मेरा जो अभी मिजाज है ऐसे पहले भी था, उसमें कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया है।
1: अभी थोड़ा तो मुस्कुराता चेहरा है आपका।
0: हाँ, मुस्कुराता चेहरा है और ऐसे मैं पहले भी था। लोगों से ज्यादा मैं घुल मिल नहीं पाता था, थोड़ा शर्मिलापन था और अभी भी है, उसको मैं फेस करने की कोशिश कर रहा हूँ
1: जी।
0: धीरे धीरे चीजें मैं सोच रहा हूँ कि
1: अंतर्मुखी जैसे कहते हैं एक पर्सनालिटी थी क्या? अच्छा, सो श्रोताओं हम भी आपसे ये कहना चाहेंगे कि गेस्ट के बारे में पूछने का हमारा सीधा सा मतलब ये होता है कि देखिए हमारे आपकी तरह ही ये होते हैं, कोई बहुत टॉकेटिव होते हैं ज्यादा बोलने वाले, तो कोई अंतर्मुखी होते हैं जैसे कि आज के हमारे स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं वो हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो भी पर्सनैलिटीज आती हैं वो अपने क्षेत्र में कोई बहुत अच्छा काम कर रही होती है। तो आज हमारे बीच में मालिक राम वर्मा जी हैं, उनसे हमारी बातचीत लगातार जारी है। तो आपने बताया कि आप थोड़ा सा शर्मिले किस्म के थे
0: जी,
1: लेकिन अभी तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं
0: जी,
1: बच्चों को न जाने कब से आप पढ़ा रहे हैं, तो आपका प्रोफेशन तो लोगों से बातचीत करने का है, वो भी इतने सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाने का है।
0: नहीं सर,
1: ये कैसे दूर किया आपने?
0: क्लास में सर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है मुझे, ऐसे पर्सनली बात करने में थोड़ा दिक्कत होती है।
1: अच्छा।
0: क्लास में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है और वहाँ पे मैं अच्छे से बच्चों को फेस करता हूँ और बच्चे मेरी टीचिंग स्टाइल से मुझसे बहुत काफी संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है।
1: मतलब आपको टीचिंग में प्रॉब्लम नहीं आती?
0: नहीं, टीचिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं, बस ये एक पब्लिक जो फेस करना होता है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसमें मैं इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ।
1: बहुत अच्छी बात है और पब्लिक फिगर तो आप ऑलरेडी हो गए हैं बच्चों के लिए, एक रोल मॉडल है भाई, एक आप प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर
0: जी।
1: आप ये हमको बताइए कि आप 9 भाई बहन थे
0: जी,
1: ठीक है, और आपने कहा आप थोड़ा शर्मिले किस्म के थे
0: जी।
1: मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने भाई खेलकूद तो बहुत सारे किए होंगे, कौन कौन से खेल आपने खेले?
0: गांव में सर उस समय कोई बहुत ज़्यादा खेल नहीं होता था, हम लोग जैसे जो गांव के खेल होते हैं कबड्डी होता है, कुश्ती होता है, गिल्ली डंडा, यही सब होता था और हम लोग बहुत खेलते थे बचपन में। सुबह गर्मियों की छुट्टी जब होती थी तो 10 बजे हम लोग निकल जाते थे घर से, बड़े बड़े बगीचे उस समय होते थे और पूरा शाम तक वहीं पर रहते थे, पूरा इंजॉय करते थे, उसके बाद शाम को आते थे। और कोई आधुनिक गेम जो इस समय हम लोग देखते हैं फुटबॉल क्रिकेट इस तरीके का, उस समय कोई वहाँ पे सुविधा नहीं थी, हम लोगों को पता भी नहीं था कि उस समय मेरे गांव में, अभी इलेक्ट्रिसिटी 2016-17 में आई है तो टेलीविजन भी नहीं था, तो इससे कोई जानकारी भी नहीं
1: मिल पाती थी आपको, जाहिर सी बात है। लेकिन आपने अभी कहा ना कि जो गांव के खेल थे, मैं ये कहना चाहूंगा गांव के खेल ही तो असली मजेदार खेल होते हैं
0: जी,
1: मतलब मजा तो उसी में आता है, बाकी तो दुनिया क्रिकेट पूरी दुनिया में खेले लेकिन कबड्डी पूरी दुनिया नहीं खेलती है,
0: बिल्कुल
1: लच्छी दाढ़ी पूरी दुनिया नहीं खेलती है, ये अपने भारत के गांव में ये सारे गेम्स, पाकिस्तान स्टोर हुआ और लुका छुपी हुई, ये सब तो बड़ा मजा आता है, बहुत अच्छा बचपन बीतता है। बचपन से पढ़ाई में कैसे थे आप?
0: पढ़ाई में सर मैं बहुत ब्राइट नहीं था, एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, और लेकिन ये था कि जो भी वर्क हमको मिलता था उसे मैं पूरा करता था और सारे टीचर्स पसंद करते थे इसके लिए और अच्छा था, एवरेज था।
1: अच्छा, तो मतलब टीचर्स आपको हमेशा से पसंद करते
0: जी सर, ये मेरे ऊपर पता नहीं क्या ईश्वर की कृपा है
1: बिल्कुल
0: मैं जहाँ भी गया हूँ टीचर्स पसंद ही करते हैं और संपर्क भी मेरा उनसे हो, व्यक्तिगत संपर्क भी हो जाते हैं।
1: क्या
0: तो
1: बात है?
0: जब इंटरमीडिएट कर रहा था तो वहाँ पे एक राम सुजन पांडे करके सर थे
1: जी,
0: तो उन्होंने काफ़ी वहाँ पे मेरी मदद करी, और यहाँ जब मैं आया तो डॉक्टर त्रिलोचन सिंह सर
1: जी, जी
0: और डॉक्टर बीसी एचएन के श्रीनिवास राव सर हैं, उनसे उन्होंने बहुत हेल्प करी हर तरीके से, गाइडेंस में भी और आर्थिक रूप से भी, हर तरीके से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से भी।
1: मानसिक आपने बोला, बौद्धिक रूप से, किस टाइप की आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे और कैसे आपके टीचर्स ने आपका साथ दिया?
0: सर मैं जैसे पहले ही बताया फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी
1: जी जी,
0: तो मैं गोंडा आया उस समय और किसी तरीके से मेरी ग्रेजुएशन चल रही थी, मैंने एडमिशन लिया, पढ़ाई कर रहा था, बहुत कम पैसे होते थे, हम लोग घर से आते थे एक हफ्ते यहाँ पे रहते थे, पैसा ख़त्म हो जाता था फिर जाते थे फिर आते थे, तो थोड़ा बहुत मिलता था।

0: ऐसे चल रही थी
1: जी।
0: तो मैंने एक समय ऐसा, ग्रेजुएशन मेरा फाइनल हुआ तो मुझे लगा कि अब आगे नहीं चल पाएगी पढ़ाई, तो मैंने पढ़ाई छोड़ने का भी डिसीजन कर लिया था, निर्णय ले लिया था।
1: ओके।
0: और उसके बाद एक दिन ऐसे सर से मुलाकात हो गई, सर से हम लोग पहले भी जुड़े हुए थे, NSS हमने लिया था ग्रेजुएशन में,
1: तो सर की बात,
0: डॉक्टर त्रिलोचन सिंह सर से।
1: ओके।
0: तो वो मिल गए और उन्होंने पूछा ऐसे हालचाल पूछा, तो मैंने बताया कि ऐसी ऐसी बात, मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं मालिक, तुम अभी जो है, मैं कह रहा हूँ कि MA कर लो, उसके फिर देखा जाएगा, क्योंकि एक बार अगर तुम चले गए यहाँ से तो फिर वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो लेकिन मैं उस समय सर को भी नहीं सुना, वापस चला गया। और सर ने मेरा दोस्त था, उससे फोटो लेकर के और मेरा एडमिशन करवा दिया यहाँ पे।
1: ओके।
0: और उसके बाद मुझे बताया, तो फिर मैं फिर पढ़ने लगा। और MA के बाद हमने BEd किया, और सर ने ही कहा कि BEd कर लो, और इसमें अच्छा स्कोप है, काफ़ी वैकेंसी आने वाली हैं। और तो मैंने BEd किया, और 2011 में उसी समय TET शुरू हुआ था
1: जी।
0: और TET भी क्वालिफाई किया, लेकिन उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया।
1: ओके। फर्स्ट अटेम्प्ट पे आपका सिलेक्शन नहीं हुआ
0: जी।
1: ओके। उसके बाद फिर आपने क्या किया?
0: उसके बाद ये था कि BEd को इससे प्राइमरी एजुकेशन से हटा दिया, प्राइमरी में टीचर नहीं बन सकता था BEd वाला, कुछ समय के लिए किया गया
1: जी।
0: तो ये हुआ कि अब क्या किया जाए। मैंने सर, मेरा कोई ग्रेजुएशन तक कोई गोल सेट नहीं था कि करना क्या है। मैं जब BEd मैं कर रहा था तो मुझे लगा कि इस क्षेत्र में करियर बनाया जा सकता है, इस क्षेत्र में संभावनाएँ हैं। तो BEd मैंने बहुत अच्छे से किया, और फिर जब प्राइमरी में नहीं हो पाया उस समय, तो मैंने फिर एजुकेशन किया MA में। उस समय कहा जाता था कि एजुकेशन से अगर आप MA कर लीजिए तो MEd के बराबर हो जाता है। तो खैर, अब तो MA और MA एजुकेशन और MEd लगभग सेम हो गया है, एक डिसीजन आया हाई कोर्ट का। तो उसमें फिर मैंने MA किया एजुकेशन में, और उसके बाद कुछ समय के लिए लखनऊ भी गया, कि उस समय असल में मेरी सर चाइल्ड मैरिज हो गई थी।
1: ओके।
0: शादी बहुत बचपन में ही हो गई थी।
1: ओके।
0: तो एक वो भी प्रेशर था कि कुछ करना है,
1: हाँ, परिवार चलाना है,
0: और लौट के घर जा नहीं सकता था।
1: सही बात
0: कि है। सबकी अपेक्षाएं थी कि यही पढ़ रहा है तो ये कुछ ना कुछ करेगा। तो मैं कुछ समय के लिए लखनऊ भी गया तैयारी करने के लिए, लेकिन मुझे कोई फील्ड समझ नहीं आया। तो मैंने फिर वहीं से नेट के लिए तैयारी करनी शुरू कर दी। सेल्फ स्टडी करता था नेट के लिए, मैं जाता था, कोचिंग वोचिंग ज्वाइन किया था, लेकिन ज़्यादा मैं उधर ध्यान नहीं देता था। नेट मुझे अच्छा लगने लगा, उसका सिलेबस पढ़ा तो बहुत कुछ वो BEd से मिलता जुलता था एजुकेशन में, जो नेट का सिलेबस है। तो फिर मैं नेट की तैयारी करने लगा, और तीसरे अटैम्प्ट में मैंने नेट क्वालिफाई किया,
1: तीसरे
0: 2013 में।
1: ओके।
0: हाँ, उसके बाद मैं इधर नेट के बाद मैं वापस आ गया गोंडा, और सर ने कहा कि अब अगर आप नेट हो गए हैं, डॉक्टर त्रिलोचन सिंह, मैं बता रहा हूँ बार बार उन्होंने मुझे पुश कर करके यहाँ तक पहुँचाया।
1: बिल्कुल।
0: तो सर ने कहा कि कहीं पे तुम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए कहीं कॉलेज ज्वाइन कर लो
1: जी।
0: तो मैंने यहाँ पे ज्ञानस्थली में उस समय मैंने ज्वाइन किया था, और अप्रूवल भी मेरा हुआ था। लगभग 1.5 साल मैं यहाँ पे पढ़ाया हूँ, और जून 2015 में मैंने GRF के लिए क्वालिफाई किया। तो GRF जब हो गया तो मुझे रिसर्च के लिए जाना पड़ा, और मुझे फिर मैं यहाँ से फिर रिजाइन करके PhD करने लगा। और इस बीच में तैयारी चली रही थी कम्पिटिटिव, जो बेसिकली मैं टीचिंग जॉब की तरफ ही मेरा झुकाव था, तो उसी के लिए मैं तैयारी कर रहा था। और उसी 2014 में ये UP हायर एजुकेशन कमीशन का एक विज्ञापन संख्या 46 आया था, 46, तो उसके लिए मैंने अप्लाई किया, और मेरा क्वालिफाई भी हो गया था, रिटर्न क्वालिफाई हुआ, लेकिन इंटरव्यू से मुझे वापस आना पड़ा वहाँ।
1: ओके। रिटर्न आपको क्वालिफाई हो गया था, आपको इंटरव्यू से वापस आना पड़ा
0: जी।
1: जी, फिलहाल अब वापस जाने का एक छोटा सा वक्त हो चला है, मतलब छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का टाइम हो चला है
0: जी।
1: और अभी हमको ये जानना है कि आप चूंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हैं राजकीय महाविद्यालय सिद्धार्थनगर में, उस पे भी हम जानेंगे कि अब तक की आपकी जर्नी कैसी रही। लेकिन अभी चलते हैं फिलहाल इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए। सो अपने श्रोताओं से हम यही कहेंगे कि सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
2: क्या आप या आपका कोई अपना जले की निशान, सफेद दाग, जन्मजात समस्याओं या कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए बड़े शहर जाने की सोच रहे हैं? तो अब गोंडा में ही उपलब्ध है इंटरनेशनल लेवल की सर्जरी सुविधा। देवी पाटन मंडल का पहला प्लास्टिक सर्जरी एवं बर्न सेंटर समर्पित SKKM मेमोरियल लाइफ केयर हॉस्पिटल, जहां 5000 से ज्यादा सफल सर्जरी का अनुभव रखने वाले MCH स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुधीर कुमार मौर्य द्वारा प्लास्टिक सर्जरी, जले हुए मरीजों का इलाज, सफेद दाग और दूरबीन विधि से पथरी, हार्निया, अपेंडिक्स, हाइड्रोसील, पाइल्स और भगंदर का सफल इलाज होता है। यहाँ आयुष्मान कार्ड से कैशलेस इलाज और 24 घंटे इमरजेंसी व ICU सुविधा भी उपलब्ध है। आज ही कॉल करें 0552-460-562 या व्हाट्सएप करें 9592-904-908 पर। लाइफ केयर हॉस्पिटल का पता है झंझरी ब्लॉक के पास बेलसर रोड गोंडा। गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC व डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर, किचन के लिए चिमनी, HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड वायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर वन प्रोडक्ट तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है NV ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 9018-935-5394 और 8072-661-8000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।
1: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता है आपका अपना होस्ट एंड दोस्त RJ अदनान, मौजूद है आपके साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में। शो चल रहा है गोधुली और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। हमारे बीच में आज हमारे खुसूसी जो मेहमान हैं वो हैं मालिक राम वर्मा जी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट राजकीय महाविद्यालय डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर। अभी तक आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया, एक लफ्ज आया था इंटरव्यू
0: जी।
1: इंटरव्यू में देखिए ज्यादातर लोग रिटर्न भी निकाल ले जाते, लेकिन इंटरव्यू में चूंकि आपकी ऑल ओवर चीजें जो आपने लिखी होती हैं, पढ़ी होती है, पढ़ने के अलावा आपका उठने बैठने का ढंग, आपके बोलने का ढंग, सब कुछ देखा जाता है। और शायद कहीं ना कहीं वहां पे इसीलिए कहते हैं कि पूरी तरह से तैयार होके ही जाना होता है
0: जी।
1: तो हम इस पे अभी आपसे बातचीत करने के बाद इस पे भी आएंगे, पूछेंगे कि एक इंटरव्यू में क्या क्या, कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, उसके लिए कैसी प्रिपरेशन होनी चाहिए। बहरहाल पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपका अब तक का सफर एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन डिपार्टमेंट राजकीय महाविद्यालय सिद्धार्थनगर में कैसा रहा?
0: सर बहुत अच्छा रहा है, अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है वहाँ पे, एक साल लगभग हो रहा है, और सारा टीचिंग स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत सपोर्टिंग है सब, और स्टूडेंट्स भी बहुत ही सपोर्टिंग है। वो पहले जो होती थी बच्चों में एक उच्छृंखलता होती जो, वो अब नहीं दिखती है बच्चों में, बहुत ही कोऑपरेट करते हैं और बहुत अच्छा माहौल है सर, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस अनुभव मिल रहा है राजकीय डिग्री कॉलेज में।
1: यानी आप,
0: लेकिन ये है सर थोड़ा सा वहाँ पे संसाधनों का थोड़ा अभाव होता
1: अभाव है
0: जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, और एक तो ग्रामीण क्षेत्र में है तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन हम लोग उसके साथ भी फेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पूरी लगन के साथ लगे हुए हैं।
1: क्या बात है।
0: और मैं बता रहा हूँ कि जब मैंने ज्वाइन किया था तो वहाँ पे मेरे सब्जेक्ट में 15 बच्चे थे उस समय, और अभी इस समय 68 बच्चे हो गए हैं। अभी वहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम बच्चों ने दिया उन लोगों ने, तो 68 बच्चे हो गए हैं, तो मुझे लग रहा है अच्छा कर रहे हैं हम लोग, और सारे टीचर्स अच्छा कर रहे हैं, सब सहयोग करते हैं।
1: चार गुना से ज्यादा नंबर है, आप कह रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। कहाँ 15 बच्चे, कहाँ 68, आप 68 बच्चों को बता रहे हैं, बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज है, दिख रहा है बिल्कुल गैप।
0: असल में सर जब मैं इससे पहले मैं गवर्नमेंट यहाँ पे किसान पीजी कॉलेज बहराइच में काम करता था
1: जी।
0: तो यहाँ से मैं रिजाइन करके गया था गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में। तो एक बार एक सर ने पूछा कि कैसे चल रहा है मालिक वहाँ पे, तो हम कहे सर ठीक है, बस ये कि उतना अच्छा नहीं है, उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का नहीं है, लेकिन ठीक है। तो उनके एक बात बड़ी अच्छी लगी थी, उन्होंने कहा मालिक जहाँ पे सब कुछ अच्छा होता है वहाँ पे तो सब लोग अच्छा कर लेते हैं, जहाँ पे वहाँ पे फिर कुछ करना ही नहीं होता है, जहाँ पे चीज़ें बहुत विपरीत होती हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें नहीं होती, वहाँ पे आपका काम दिखेगा और आपको वहाँ करने के लिए बहुत कुछ होता है। तो बहुत अच्छी लगी मुझे भी, और उस दिशा में प्रयास भी कर रहा हूँ।
1: बिल्कुल ये सही कहा आपके गुरु ने, क्योंकि जहाँ नहीं होता वहाँ कुछ स्कोप होता है कि उसको किया जाए।
0: हाँ बिल्कुल,
1: और जहाँ ऑलरेडी चीजें मिली मिलाई हैं,
0: हाँ वेल एस्टेब्लिश्ड है जहाँ पे सब चीजें, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा, हालांकि आपके पास अपनी अलग यूनिक क्षमताएं होती हैं, आप अपना ऐड करते हैं हर जगह, लेकिन वहाँ जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं वहाँ पे आपको
1: स्कोप ज्यादा होता है,
0: स्कोप और आपको काम करने के लिए बहुत अवसर मिलते हैं,
1: अवसर मिलते हैं। बिल्कुल सही है आपने कहा
0: जी।
1: आपने बताया कि आपको सपोर्ट बहुत मिलता है, चाहे वो टीचर्स से मिलता हो, स्टूडेंट से मिलता हो
0: जी,
1: लेकिन जहां तक मैं जानता हूं कि अगर स्टाफ से मिलता है तो यानी आपका कोलैबोरेशन बहुत अच्छा है
0: जी,
1: आप रिश्तों को निभाते अच्छा हैं, आप डील अच्छा करते हैं। बच्चों से अगर बात किया जाए तो आपकी टीचिंग मेथड में इतना इफेक्टिव है तो ही आप बच्चों से जुड़े हुए हैं, तो आप जरा उन दोनों के बारे में बताइए कि टीचर के साथ आपका बिहेव आप कैसे रखते हैं, और बच्चों के लिए पढ़ाने के दौरान आप किन किन बातों का ध्यान रखते हैं।
0: मैं सर बिल्कुल फ्रेंडली रहता हूँ, हमारे सब जो भी टीचर्स वहाँ पे होते हैं सब वेल क्वालिफाइड हैं, यूपी हायर एजुकेशन, यूपी लोक सेवा आयोग की परीक्षा फेस करके आए, सारे लोग अच्छे हैं, और आप उनके साथ अगर अच्छा बिहेवियर करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे, तो वो भी आपको पूरा समय देते हैं, पूरा आपको सहयोग देते हैं, तो सारे लोग अच्छे हैं, तो मैं उसमें फिट हो जाता हूँ मैं भी, और मेरा भी ये व्यवहार ऐसे ही रहता है, मैं हमेशा सबके साथ मुस्कुरा के मिलना, और कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं मन में रखता नहीं हूँ किसी के प्रति भी, तो इसलिए चलता रहता है। और टीचिंग का मैं कोशिश करता हूँ बच्चों को बोलने की ज़्यादा ज़्यादा समय देता हूँ, तो उससे ये समझ में आता है कि बच्चे कैसे सीखेंगे, क्या उनका ज्ञान का स्तर क्या है, और किस तरीके से उनको पढ़ाया जा सकता है कि जिससे वो बेहतर लर्न कर सकें। तो इससे फ़ायदा होता है जब आप बच्चे का स्तर जान जाते हैं, तो उसके और टीचर का काम होता है बच्चे के स्तर तक उतरना, जब आप उसके स्तर पर आ करके उससे बात करते हैं तो उसको अच्छा भी लगता है और समझ में भी आता है चीज़ें, तो इसलिए अच्छा चल रहा है।
1: ये बात तो समझ में आई कि आपने कहा कि उसके बच्चे के स्तर तक जाया जा सकता है, लेकिन स्तर पता कैसे करते हैं आपके कि किस बच्चे का क्या स्तर है, क्योंकि मेरे ख्याल से हर बच्चे का अलग अलग स्तर होता है
0: जी,
1: तो क्या एक आपकी मेथडोलॉजी होती है
0: बच्चों से? सर जैसे जब क्लास हम लोगों की जब शुरू होती है, जब सेशन स्टार्ट होता है
1: जी,
0: तो हम लोग बच्चों से बात करते हैं, व्यक्तिगत हर बच्चे से बात करते हैं, और जब टॉपिक हम शुरू करते हैं पढ़ाने के लिए तो भी बच्चों से रैंडमली क्वेश्चन पूछते हैं, तो उससे पता लगता है कि उनका क्या स्तर है, कितना उन्होंने जो भी टॉपिक मैं शुरू करने जा रहा हूँ उसमें उनका कितना ज्ञान है, तो इससे पता लगता है कि वो किस स्तर से उनको किस तरीके से उनको पढ़ाया जाए।
1: मैं आपसे यही जानना चाह रहा था, क्योंकि देखिए आपने बिल्कुल सही बताया कि आप पहले बात तो उस बच्चे के बारे में खुद बात करते हैं ताकि वो आप देखते हैं कि कितना बच्चा खुद के बारे में बता पा रहा है, यानी क्या लेवल है। दूसरा, आप जो टॉपिक चूज करते हैं पढ़ाने के लिए उसके इर्द गिर्द की बहुत सिंपल सिंपल बेसिक सी बातें करते हैं ताकि बच्चों का एक स्तर जान पाए कि कौन बच्चा कितना जानता है। ये तो मैं यही आपसे जानना चाह रहा था, और बिल्कुल सही आपने बताया, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे इस वक्त बहुत सारे शिक्षक भाई भी सुन रहे होंगे इसको, और उनको भी कहीं ना कहीं ये सारी चीजें एक बार समझ में आ रही होंगी कि हाँ वो भी अपने क्लास में इस तरह से इंटरवेंशन कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी आपने बात कही। अब बात करते हैं बच्चों की ह्यूमन साइकोलॉजी होती, बच्चों की अपनी एक साइकोलॉजी होती है स्टूडेंट्स की
0: जी,
1: तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आपका भी बहुत ज़्यादा तो एक्सपीरियंस आपने बताया यहाँ का नहीं, लेकिन अगर ऑल ओवर टोटल देखा जाए टीचिंग का एक्सपीरियंस तो आपको काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है, आपने काफी कॉलेजेस जगहों पे पढ़ाया है।
0: हाँ, लगभग तीन चार साल का एक्सपीरियंस कह सकते हैं। मैंने लगभग 1.5 साल ज्ञानस्थली में टीचिंग किया है
1: जी,
0: और 8-9 महीने KDC बहराइच में
1: जी,
0: और अभी 1 साल से लगभग वहाँ पे काम कर रहा हूँ। अक्टूबर 2021 में मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया था, तो 1 साल 5-6-7 महीने हो गया वहाँ पे भी,
1: लगभग 4 साल का मोटा मोटा मान लेते हैं।
0: जी जी।
1: तो आपने अलग अलग जगह के बच्चों को पढ़ाया, अलग अलग बच्चों को देखा है, आपको क्या लगता है कि बेस्ट मेथड क्या होता है बच्चों को समझाने का?
0: बेस्ट मेथड ये है सर कि आप बच्चे की जो सेंसेज हैं उसमें कितने सेंसेज को आप इन्वॉल्व कर पाते हैं, मल्टी सेंसरी जो आजकल तमाम सारी टेक्नोलॉजी आ गई है तो उसका उपयोग किया जा सकता है। हम लोग ब्लैक बोर्ड, चार्क डस्टर इसलिए उपयोग करते हैं कि उसमें उनकी कई सेंसेज एक्टिवेट होती हैं, तो वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से पकड़ पाते हैं, समझ पाते हैं। और अगर हमें लगता है कि बेसिक चीज़ें और जो टेक्नोलॉजी है उसको और मजबूत किया जाए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाए विद्यालयों में, तो बच्चे और अच्छे से समझ पाएंगे।
1: सेंसेस का क्या अर्थ होता है ये हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा सरल भाषा में समझा दें।
0: सर जैसे हमारी 5 सेंसेज होती हैं, सुनने की, देखने की, आँख, नाक, कान, त्वचा, तो जितनी चीज़ें हमारी जितनी सेंसेज एक्टिवेट होती हैं, अगर जैसे हम लोग एग्जांपल से इसको समझते हैं, आप मान लीजिए कोई मूवी देख रहे हैं,
1: बिल्कुल,
0: तो मूवी देखते हैं 3 घंटे तक और 3 घंटे की स्टोरी आपको याद हो जाती है
1: जी।
0: लेकिन आप एक किताब 3 घंटे तक बैठ के पढ़ते रहते हैं, याद नहीं होती,
1: नहीं होती।
0: तो उसमें चूंकि आप देख भी रहे होते हैं, सुन भी रहे होते हैं और आप इमोशनली भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो इसलिए वो चीज़ें याद हो जाती हैं। तो ये कोशिश होती है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा विजुअलाइज किया जा सके चीज़ें, तो उसके लिए खैर ज़्यादा संसाधन नहीं है, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी आ गई है और ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड जो भी है हम लोग यूज करते हैं, और ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से भी हम लोग पढ़ाते हैं। एक ऐप है, अभी मैं उसको जल्दी हमने शुरू किया है यूज करना, एड पजल करके है, तो उसमें आप क्लासेज अपनी बना सकते हैं, और बीच बीच में उसमें ये भी सुविधा दी गई है कि आप उसको क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हैं कि जब बच्चा वो वीडियो देखेगा तो एक कुछ समय तक चलने के बाद वो एक वहाँ पे आके पॉज हो जाएगा जहाँ पे आपको क्वेश्चन ऐड करेंगे, तो जब तक वो क्वेश्चन को आंसर नहीं करेगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी का मुझे लगता है उपयोग करके और अच्छी टीचिंग की जा सकती है।
1: मतलब आपका सीधा सही कहना है, बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि अभी तक जितने भी मैंने टीचर से इस बात को लेकर बात की सबके अपने बहुत अच्छे रिप्लाईज आए हैं, लेकिन आज आपका जो रिप्लाई आया है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और बहुत ही मुझे बहुत क्लियर समझ में आया कि अगर बच्चों को समझाना, तो आपने कहा उनके ज्यादा से ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व हों उस चीज को समझने में, वहां बच्चे ज्यादा समझते हैं। आपने एक एग्जांपल के तौर बताया एक बुक और एक मूवी की बात, यानी 3 घंटे की मूवी और एक बुक 3 घंटे में पढ़ी गई, उसमें मूवी ज्यादा ध्यान होती है क्योंकि उसको हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं और इमोशनली कनेक्ट होते हैं, लेकिन किताब में शायद हम उतने सेंसेस का इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो उतनी कह सकते हैं कि दिलचस्पी नहीं आ पाती है
0: जी।
1: और यही वजह है कि ज्यादा देर तक किताबों का ज्ञान नहीं याद रहता है। ये बहुत ही अच्छी बात आपने कही, और आपने एक चीज ये भी बताया कि अभी जैसे जैसे दौर चेंज हो रहा है, वक्त मॉडर्न हो रहा है कह रहे हैं, तो उसमें स्मार्ट क्लासेस का आपने एक एग्जाम्पल दिया।
0: सर हाँ बिल्कुल, नई जो एजुकेशन पॉलिसी आई है इसमें एक ये भी प्रावधान है कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यहाँ पे कैंपस खोलेंगी इंडिया में
1: जी,
0: तो टीचर्स के लिए कंपटीशन बढ़ने वाला है ठीक है,
1: टीचर्स के
0: तो
1: लिए।
0: हाँ, और उसके लिए हमको तैयार होना होगा उस तरीके से कि हम उनके साथ कम्पीट कर पाएँ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ, तो उस तरीके की हम लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी, और जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है उसके साथ हम लोगों को हैबिचुअल होना पड़ेगा।
1: बिल्कुल सही बात है, लेकिन अभी आपने स्टार्टिंग बताया था कि वहाँ पे थोड़ा इंटीरियर है, यानी अभी संसाधनों का अभाव है
0: जी जी।
1: स्मार्ट क्लासेस अगर मान लीजिए आप क्या है, तो बिजली की समस्या भी आप फेस करते होंगे, कैसे मैनेज करते हैं फिर?
0: बिजली की समस्या सर है, ग्रामीण क्षेत्रों में है, लेकिन जो कस्बा है वहाँ पे तो खैर रहती है, लेकिन हम लोग यही समस्या हम लोगों के पास वहाँ पे है सर, बड़ी समस्या यही है कि वहाँ पे ये संसाधन अच्छे नहीं है, बिजली की अच्छी व्यवस्था नहीं है। आप अगर ऑनलाइन क्लास पढ़ाना चाहते हैं तो इंटरनेट कनेक्शन है बच्चों के पास तो स्पीड नहीं होती है,
1: स्पीड नहीं है।
0: बहुत सारे बच्चों के पास मोबाइल फोन नहीं होते हैं, लड़कों के पास होते हैं, विशेषकर लड़कियों के पास नहीं होते
1: नहीं
0: हैं। कई बार उनकी शिकायत आती है, मैं कोशिश करता हूं। असल में जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है
1: जी।
0: तो हम लोग उसमें एग्जाम्स लगातार होते रहते हैं, तो ये प्रयास रहता है कि जब एग्जाम चल रहा है तो मैं उनको ऑनलाइन पढ़ाऊं बच्चों को
1: जी।
0: तो कोशिश की जाती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा बच्चे जुड़ नहीं पाते हैं, और उनसे जब बात की जाती है क्यों नहीं जुड़ते हैं तो कहते हैं कि मेरे पास मोबाइल नहीं है, भैया के मोबाइल से जुड़ना, बाप पिताजी के मोबाइल से मैं जुड़ती हूँ। तो ये समस्या है सर, वहाँ पर इंटरनेट स्पीड नहीं है, तो इसमें सुधार की ज़रूरत है। सरकार प्रयास भी कर रही है और धीरे धीरे हो सकता है समस्याएं सॉल्व हों
1: जी। आपने कहा प्रयास हो रहा है और शायद यहाँ पे ज़रूरत है इन चीज़ों पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे और काम करने की। बिल्कुल सही आपने कहा। मैं आपके ऊपर आता हूँ, आपसे जानना चाहता हूँ, आप इतना शहर में रहें, आप गोंडा में रहें, सारे आपको सुविधाएँ मिली, आप गए बहराइच में, वो भी आप मेन सिटी के अंदर रहें, वहाँ भी आपको सुविधाएँ मिली, लेकिन अभी आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ आपके एंटरटेनमेंट का क्या साधन है? आप खुद को कैसे इंस्पायर करते हैं, खुद को कैसे चिल करते हैं? बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स नहीं है, घूमने की जगह नहीं है, कैसे करते हैं मतलब?
0: सर मैं जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि मेरा मैं गांव में पला बढ़ा हूँ, तो गांव मुझे अच्छा लगता है, और जब वहाँ के लोगों से मिलो, बच्चों से मिलो, तो लगता है कि कोई अपना ही, उनसे एक अपना अलग लगाव होता है, बच्चों से एक जुड़ाव हो जाता है
1: जी।
0: तो इस तरीके से, और अपना एंटरटेनमेंट का सर हम लोग 10 बजे से लेकर के लगभग 5 बजे तक कॉलेज में समय देते हैं
1: जी।
0: उसके बाद आते हैं, बच्चों को समय देते हैं, बच्चे भी छोटे छोटे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनको होमवर्क कराना, और तो उन सब में समय निकल जाता है।
1: मतलब बच्चों पे ही आपने अपना जीवन कह सकते हैं कि फिलहाल अभी उनके नाम कर दिया है।
0: हाँ सर, बच्चों पे और अपने स्टूडेंट्स पर भी, क्योंकि मैं जब भी सर कोई भी क्लास नहीं होती है तो उसके पहले मैं 2 घंटे कम से कम पढ़ के जाता हूँ। तो जब मैं कॉलेज से आता हूँ, बच्चों को, अपने बच्चों को होमवर्क कराता हूँ, पढ़ाता हूँ उनको, और उसके बाद मैं अपनी तैयारी करता हूँ पढ़ाने के लिए। अक्सर फ़ोन आता है लोगों का, मैं बता रहा हूँ यार मैं पढ़ रहा हूँ, तो कहते हैं अभी तुम क्या पढ़ रहे हो यार अब तो तुमको नौकरी मिल गई। हमके ये जो जॉब है इसमें लगातार आपको अपडेट
1: रहना है,
0: हाँ सीखते रहना
1: है। सही बात है,
0: इस तरीके का ये नेचर है यहाँ पे, नहीं तो आप यहाँ पे टिक नहीं पाएंगे। क्लास में आप जब जाते हैं और बच्चों को उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व कर पाते हैं, उनके जो क्वेश्चन हो पाते होते हैं उनको आप अच्छे से आंसर करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा एक सेटिस्फेक्शन खुद को मिलता है। और चीज़ें बदलती भी रहती हैं, कुछ नई चीज़ें आती हैं, कुछ पुरानी चीज़ें, तो वो सब जब आप स्टडी करते हैं, घर पर तैयारी करते हैं, तो वो बहुत बेटर हो जाती है, और बहुत अच्छा अनुभव होता है जब क्लास से पढ़ा के निकलते हैं तो अपने आप को अच्छा लगता है।
1: क्या बात है।
0: तो और ये सर मुझे लगता है बहुत यही तरीका भी है पढ़ाने का, रटा रटाया चीज़ें तो बच्चे पढ़ ही सकते हैं, किताब से पढ़ सकते हैं, और तमाम सारे आजकल इंफॉर्मेशन का दौर है, तो यूट्यूब ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं
1: जी।
0: जी
1: तो बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर खुद अपडेट होके जाएंगे तो शायद बच्चों को एक इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा पाएंगे, नई नई चीज़ें बता पाएंगे, बच्चों की भी दिलचस्पी जागेगी और आपकी भी, आपको काम करने में मज़ा आएगा, और वो काम अपने आप में नायाब होता है जिस काम में मज़ा आए
0: जी।
1: तो वो आप पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं, हमारी आपके साथ बहुत सारे विषय हैं, आप और दिन दूनी रात चौगनी तरक्की इस मामले में करते रहे, बच्चों का और प्यार पाते रहे, कम्युनिटी से और जुड़ाव होते रहे, ऐसी हमारी पूरी दुआ है। लेकिन इसके साथ साथ चूंकि अभी म्यूजिकल ब्रेक का टाइम हो चला है, तो अपने इस ब्रेक के आने के बाद, चूंकि आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करके आप आज इस पद पे कार्यरत हैं, उसके बारे में भी हम जानेंगे कि आपकी तैयारी कैसी थी, आपने कैसे इसको क्रैक किया, आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी, इन सारी चीजों पर हम बात करेंगे। इसलिए अपने श्रोताओं से कहेंगे कि बात होने वाली है बहुत अहम, सो जाइएगा कहीं मत, सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
3: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88403395 84। अब सपने होंगे साकार।

0: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता है आपका अपना होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान मौजूद है आपके साथ आपके अपने स्टूडियो में। शो चल रहा है गोधुली और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन। हमारे साथ आज स्पेशल गेस्ट के रूप में मौजूद है मालिक राम वर्मा जी जो की असिस्टेंट प्रोफेसर है एजुकेशन डिपार्टमेंट राजकीय महाविद्यालय डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर। अभी हमने चूंकि जाने से पहले आपसे कहा था कि आपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के बारे में बताना है
1: जी,
0: तो बहुत सारे ऐसे इस वक्त हमारे लिसनर्स हैं जो तैयारी कर रहे होंगे और टीचर ही बनना चाहेंगे क्योंकि आप खुद एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, इसलिए मैं इस पे ज्यादा फोकस आपसे बात करूंगा
1: जी।
0: तो आप मुझे पहले तो ये बताइए कि आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए कौन कौन से कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दिए?
1: सर मैंने पहले बताया कि मैं पहला जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिया था
0: जी
1: वो यूपी टेट था 2011 में
0: जी,
1: और क्वालिफाई किया था वो भी मैंने
0: जी।
1: उसके बाद यूपी हायर एजुकेशन कमीशन का विज्ञापन 46 आया था, उसमें भी मैंने रिटर्न क्वालिफाई किया
0: जी।
1: फिर यूपी लोक सेवा आयोग का एक विज्ञापन आया था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसको भी क्वालिफाई किया और उसमें सिलेक्शन भी हुआ। फिर विज्ञापन 47 का ये जो यूपी हायर एजुकेशन कमीशन है उसको भी क्वालिफाई किया है मैंने, उसमें भी सिलेक्शन मिला। 2019 में मैंने 20 में मेरा प्राइमरी में भी सिलेक्शन हुआ था
0: जी।
1: उसमें फिर से ऐड किया गया था बीएड वालों को कि प्राइमरी में जा सकते हैं, तो उसमें मैंने फिर से दिया, टेट दिया, सुपर टेट हुआ और उसके बाद प्राइमरी में भी फाइनल सिलेक्शन हुआ था। लेकिन चूंकि उस समय इसका भी रिजल्ट आ गया था यूपी हायर एजुकेशन कमीशन का, तो मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया प्राइमरी को। यहाँ पे मैंने एडेड कॉलेज ज्वाइन कर लिया बहराइच में, केडीसी बहराइच।
0: ओके, तो पहले तो हमारे श्रोताओं को बताइए कि टेट किस लिए होता है, सुपर टेट क्या होता है?
1: टेट सर एक पात्रता है, अगर आप प्राथमिक विद्यालय में टीचर बनने के इच्छुक हैं तो आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी एक वो पात्रता आपको होगी तभी आप जा पाएंगे प्राइमरी में, एक मिनिमम कह लीजिए क्वालिफिकेशन है।
0: ठीक है, और ये सुपर टेट क्या है?
1: सुपर टेट उसके टेट के बाद एक कह लीजिए स्क्रीनिंग है, उसमें बहुत सारे विषयों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक तरीके से हम उसको सेमी फाइनल कह सकते हैं,
0: सेमी फाइनल कह सकते हैं। अच्छा,
1: टेट के बाद उसको क्वालिफाई करेंगे फिर आपको सिलेक्शन मिलेगा प्राथमिक में।
0: ओके, तो आपने देखिए इतने सारे एग्जाम्स दिए और आपने सफलता भी पाई, आप असफल भी हुए
1: जी,
0: तो आप एक बेहतर तरीका समाज को बता सकते हैं कि किस तरह से आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही, आपका अप्रोच क्या रहा? तो हम पहले तो आपकी स्ट्रेटेजी के बारे में जानना चाहेंगे कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही।
1: सर मेरी स्ट्रेटजी सबसे पहली ये होती है कि मैं एग्जाम का पैटर्न समझता हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और उसके लिए आपको जो पिछले वर्ष के क्वेश्चन पेपर हैं वो पढ़ने पड़ते हैं। और मैंने यही किया, जब मैं नेट के लिए तैयारी कर रहा था तो जितने पिछले 10 साल के जो भी प्रीवियस पेपर्स थे उनको मैंने पढ़ा, जो क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे उनको मैं लिख लेता था, नोट्स बनाया उसका, और उसमें सारे जो वैकल्पिक ऑब्जेक्टिव टाइप के बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी जो टीचिंग से रिलेटेड जॉब्स हैं, तो मैं बहुविकल्पीय क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस होते थे उनको, उन चारों ऑप्शंस को मैं पढ़ता था और उनके जो भी उनसे संबंधित जो भी जानकारी होती थी उनको मैं नोट्स करता था हर क्वेश्चन का। तो इसलिए एक मेरा बहुत बड़ा बहुत मोटा सा नोट्स तैयार हो गया था सिर्फ प्रीवियस पेपर्स के लिए, और उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में मिल जाते हैं और आपको ये पता चल जाता है कहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है, किस तरीके का क्वेश्चन आपके परीक्षा में आने वाला है, और तो उस हिसाब से आप तैयारी करते हैं। तो आप ऑब्जेक्टिव टाइप्स के जो पिछले साल के जो पेपर होते हैं उनको सॉल्व करें और उसके बाद फिर डिटेल स्टडी करें, तो बहुत अच्छे से समझ में भी आता है और आपको एक आइडिया आ जाता है कि कहाँ से क्वेश्चन किस तरीके का क्वेश्चन बनने वाला है।
0: आपने बहुविकल्पी में बताया कि चारों क्वेश्चंस के बारे में आप लिखते थे और डिटेल में जानकारी निकालते थे।
1: हाँ, उसको मैं अगर और सरल करना चाहूँ, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये बना कि निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है, चार ऑप्शन उसमें दिए गए
0: जी,
1: समसा दे दिया गया, रमसा दे दिया गया, रूसा दे दिया गया, इनमें से कोई नहीं, तो माध्यमिक शिक्षा ये माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, तो आप उसमें मैं वो आंसर तो मैं समझ गया कि हाँ ये राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान से संबंधित है, तो समसा किससे संबंधित है उसको भी मैं नोट करता था कि समसा क्या है फिर वो सर्व शिक्षा अभियान है, तो रूसा क्या है उसके बारे में मैं डिटेल लिखता था कि ये हायर एजुकेशन का है रूसा, उच्च शिक्षा के लिए एक अभियान चलाया जा रहा सरकार के लिए, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, तो इस तरीके से मैं नोट्स बनाता था, सारे चारों ऑप्शंस के बारे में समझने की कोशिश करता था।
0: तो ये बड़ा अच्छी आपकी स्ट्रेटेजी लगी कि लोग जो हैं वो सिर्फ आंसर देखते हैं कि ये क्वेश्चन है, इसका ये आंसर है, लेकिन वही चीज अगला जो ऑप्शन उसमें है उसी के द्वारा भी उसको घुमा के पूछा जा सकता है, जैसा कि आपने कहा,
1: और उससे बहुत हेल्प मिलती है
0: जी।
1: कई बार वो क्वेश्चन रिपीट होके आ जाता है आपके पेपर में
0: जी।
1: तो मेरी यही कोशिश होती थी कि इन जो भी क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है उनके बारे में मैं जान लूं पहले
0: बिल्कुल सही आपने कहा, मतलब ये स्ट्रेटेजी मुझे प्रैक्टिकली बहुत समझ में आई कि आप ऐसा क्यों करते थे, ये बड़ी अच्छी बात रही। अभी बात कर लेते हैं कि इंटरव्यू की, जैसे कि आपने कहा एक बार आप असफल भी रहे और आपने कई ऐसे एग्जाम,
1: तीन बार सर मैं इंटरव्यू दिया हूँ, दो बार TGT का दिया था
0: जी,
1: लेकिन उसमें भी सिलेक्शन नहीं हुआ था, और एक बार हायर एजुकेशन के लिए तो वहाँ भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। असल में इंटरव्यू में आपके रिटर्न के मार्क्स भी जुड़ते हैं और इंटरव्यू का भी होता है,
0: करेक्ट।
1: तो रिटर्न में अगर बहुत अच्छा होता है तो इंटरव्यू में मिनिमम भी मिल जाता है, मैं जो भी न्यूनतम उसका मार्क्स निश्चित किया गया वो भी मिल गया तो हो जाता है, लेकिन रिटर्न में अच्छा नहीं होता है तो फिर कितना भी मिल जाए इंटरव्यू में आप सिलेक्शन नहीं हो सकता है।
0: तो मान लीजिए रिटर्न में किसी का बहुत अच्छा निकल आया है और वो इंटरव्यू के लिए अब तैयारी कर रहा है, अभी आप इस टाइम चूंकि हमारी आपके टॉक शो चल रहा है, आप ऐसे बच्चों के लिए क्या बताना चाहेंगे कि इंटरव्यू में किस टाइप की चीजें ज्यादा पूछी जाती, कैसे सवाल ज्यादा होते हैं?
1: टीचिंग्स में सर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, जो भी आप जिस सब्जेक्ट से संबंधित हैं उस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इंटरव्यू पैनल में अगर कोई सचिव उचिव टाइप के लोग बैठे होते हैं तो वो लोग थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं,
0: अलग टाइप,
1: ज्यादातर क्वेश्चन आपको आपके सब्जेक्ट से ही पूछे जाएंगे।
0: ज्यादातर अलग से कैसे आ सकते हैं?
1: अलग से सर जैसे आपके पर्सनालिटी से संबंधित या कुछ जनरल अवेयरनेस, कोई नई घटना हुई है जो समाज से संबंधित है, तो उन सब चीजों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और हाँ, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादातर आपको अपने सब्जेक्ट को मजबूत करना होता है उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
0: आपने बताया अगर कोई टीचिंग के लिए जा रहा है और उसका इंटरव्यू है तो वो ज्यादातर अपने सब्जेक्ट पे कमांड करे, उससे रिगार्डिंग ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और अगर कोई सचिव जैसे लोग अगर बैठे हैं पैनल में तो वो हो सकता है कुछ अलग की चीजें भी आपसे पूछे। मैं एक और बात आपसे पूछना चाहूंगा कि मान लीजिए कोई प्राइवेट जॉब भी करने जा रहा है तो एक इंटरव्यू एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है आपके चुने जाने के लिए, और बिना इंटरव्यू मुझे नहीं लगता है कि अब शायद बहुत ही कम ऐसी कंपनीज होगी जो ले लेती होगी, वो भी छोटी मोटी, क्योंकि अगर ठीक ठाक भी कंपनी तो वो इंटरव्यू कंडक्ट कराती है। उन बच्चों के लिए आप क्या बताएंगे कि इंटरव्यूज में कॉमनली कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह से इंसान प्रिपेयर होके जाए और किन किन बातों का ध्यान रखें?
1: इंटरव्यू में सर आपको अपनी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपको कॉन्फिडेंट दिखना होता है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं दिखना होता है, आपको आपके बात करने का, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे वो अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं और आपसे बहुत ज़्यादा अनुभवी होते हैं जो दूसरी तरफ बैठे होते हैं, तो उनको आप बहुत, आपका बात करने का तरीका विनम्रतापूर्ण होना चाहिए और बहुत सोच समझ के जवाब उनको दें, और ऐसा ना लगे उनको कि ये जो है बहुत ज्ञान बघार रहा है, या बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए वहाँ पे।
0: यानी कह सकते हैं जितना पूछा है पॉइंट टू पॉइंट बात,
1: पॉइंट टू पॉइंट, और अगर नहीं जानते हैं तो सीधे मना भी कर सकते हैं कि मैंने, मुझे नहीं आता है सर। अगर आप उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि वो तो आपसे ज़्यादा अनुभवी हैं, वो जानते हैं क्या है सही उत्तर क्या होना चाहिए।
0: सही है,
1: तो आप ना कर सकते हैं लेकिन गलत उत्तर नहीं दे सकते हैं।
0: ओके, तो आपने पहले चीज तो ये कहा कि पहले तो आपको कॉन्फिडेंट दिखना है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट, दूसरी चीज आपने कहा कि सोच समझ के ही बात करना है।
1: सर मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, एक मेरे साथ एक मेरा दोस्त था, तो उसका पहले चयन हो चुका था एक जगह और मेरे साथ ही उसका इंटरव्यू था, तो वो गया वहाँ पे, उससे पहला क्वेश्चन यही पूछा गया कि आप यहाँ पे इस जॉब में क्यों आना चाहते हैं, तो उसने कहा पैसा
0: सीधे पैसा
1: तो इस तरीके से भी उत्तर नहीं देना है।
0: तो उनके साथ फिर क्या हुआ?
1: तो उनको सर मतलब ऐसे क्वेश्चंस वो बता रहा था कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछने लगी जिसमें मैं सब में फंसता चला गया। तो इस तरीके से इंटरव्यू खराब भी हो सकता है। तो बहुत आपके बोलने का तरीका, बोलने का लहजा और ये सब बहुत अच्छा होना चाहिए। विनम्रता पूर्ण आप दिखें वहाँ पे, आप एरोगेंट ना दिखें वहाँ पे, घमंडी अहंकारी टाइप के ना दिखें
0: जी,
1: बिल्कुल नॉर्मल आप दिखने की कोशिश करें जो हैं आप।
0: मतलब जितना सहज आप खुद फील करके जाएंगे उतना ही ज्यादा अच्छा आपका इंटरव्यू होगा
1: जी।
0: आप वहाँ पे सहज बन के बैठे
1: जी,
0: और जो कुछ आता उसका ईमानदारी से आंसर करे, जो नहीं आता उसको मना कर दे। और आपने कहा कि आपके लहजे में विनम्रता होनी चाहिए, ये बहुत अच्छी आपने बात कही। और कहीं ना कहीं शायद जो इंटरव्यू देने जाता है उसको अपने बारे में ज्यादा नॉलेज भी होना चाहिए। पहली बात तो वो कि अपना
1: जी, भी बिल्कुल पता अपने बारे में,
0: अपने बारे में क्या है
1: नीचे जी,
0: कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या रही है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, अपने बारे में आप अवेयर होने चाहिए। इंटरव्यूज की यही क्वालिटीज होती है, ये बात बिल्कुल सही कही। अभी चूंकि आपने अपने स्टार्टिंग में ही गुरुजनों का नाम बताया, और जैसा कि बताया कि आप तो पढ़ाई तक छोड़ चुके थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो उनका दोबारा से आपका नाम लिखवा देना बिना आपसे कहे, वापस में आपके पलट के आना और आज आप जिस जगह हैं, कहते हैं ना कि एक बहुत छोटी सी भी चीज पूरी की पूरी जिंदगी बदल देती है, कई बार बहुत अच्छा कर देती है, कई बार बुरा भी होता है, लेकिन इत्तेफाक से और भगवान के आशीर्वाद से कि आपके साथ बहुत अच्छा हुआ है,
1: बहुत अच्छा हुआ है।
0: तो मैं लास्ट
1: इस मामले में मैं लकी हूँ।
0: इस मामले में आप लकी हैं, और आपकी स्माइल, आपका वो कॉन्फिडेंस बता रहा है कि आप सच में कितने ज्यादा लकी हैं। कहीं ना कहीं वो मुझे कनेक्शन आपका दिख रहा है आपके गुरु के साथ। तो इसी कड़ी में मैं जानना चाहूंगा कि आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देंगे?
1: सर सबसे जो अगर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो डॉक्टर त्रिलोचन सिंह सर का है, और बाकी सारे गुरुजनों का हमको आशीर्वाद मिला। सब लोग गाइड करते थे, सब लोग किसी ना किसी तरीके से सपोर्ट करते थे, समर्थन करते थे, मोटिवेट करते थे। और इसके साथ साथ माता पिता और हमारी जो शादी भी बचपन में हो गई थी सर, तो पत्नी का भी बहुत सहयोग रहा, क्योंकि बच्चा भी था, और वो लोग भी, उन लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया, समर्थन किया।
0: देखिए ये तो हम बात बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, क्योंकि गुरुजन का आशीर्वाद होना बहुत बड़ी बात है, और बहुत ज़्यादा आप सफल भी होते हैं उनके आशीर्वाद से। लेकिन अगर वाइफ है और वो भी आपको समझ रही हैं, आपके काम को, आपको स्पेस दे रही हैं, तो आपकी वाइफ भी उतनी ही भागीदार हैं आपकी सफलता में जितने आपके गुरुजन
1: हैं।
0: तो ये बात तो आपने सही कहा कि माँ बाप का भी रोल था, वाइफ का भी था, और गुरुजन का तो खैर था ही था, उसमें कोई शक की बात नहीं है। ये बहुत अच्छी बात आपने कही, और बहुत अच्छा लगा आपसे आज बात करके। आज हमारे बीच में आप मौजूद थे, आपसे हमने पहले आपके बारे में जाना, उसके बाद आपके करियर के बारे में जाना, टीचिंग के बारे में जाना, इंटरव्यू स्किल्स के बारे में जाना, क्वेश्चनर्स कहते होते हैं ये हो जाना, कि आपकी स्ट्रेटजी क्या थी एग्जाम को क्रैक करने की वो भी हमने जाना, और आपने सबका बहुत ही सरलता से और सहजता से उत्तर दिया, जिसके लिए हम आपके आभारी हैं।
1: थैंक यू सर।
0: और साथ ही साथ चूंकि जाने से पहले हर एक गेस्ट से लास्ट क्वेश्चन करते हैं, कि आप बैठे हैं देवी पाटन मंडल और गोंडा के पहले रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम के स्टूडियो में, तो आपको क्या लगता है कि ये एफएम गोंडा वालों के लिए क्या वैल्यू ऐड करेगा?
1: बहुत ज़्यादा सर, मैंने पहले भी कहा था, और मैंने कहा था गोंडा जैसे ग्रामीण क्षेत्र में गाइडेंस की, मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है, और ये कार्यक्रम आपने जो भी एफएम ज्ञानस्थली 89.6 शुरू हुआ है, इसकी वजह से बहुत बहुत फ़ायदा होगा सर इस क्षेत्र के जितने भी लोग सुन रहे होंगे, क्योंकि आप अपने कार्यक्रम में ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो अपने क्षेत्र के बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं। मैं नहीं होता
0: लेकिन
1: बहुत सारे लोग
0: है ना, अचीवमेंट है आपकी,
1: आते हैं तो उनके अनुभवों से सीखने को मिलता है, जो भी सुन रहा होगा वो उनसे मोटिवेशन ले सकता है कि इस तरीके से मैं भी कर सकता हूँ, या इस क्षेत्र में मैं जा सकता हूँ, यहाँ करियर के ऑप्शन हैं, और बहुत अच्छा है सर। और एक चीज़ और इसकी ऐड कर सकते हैं आप, और हमें लगता है चल भी रहा होगा यहाँ पे, कि जैसे कोविड काल में हमने देखा सारे स्कूल कॉलेज बंद हो गए थे, पढ़ाई पूरी तरीके से बाधित हो गई थी, तो इस रेडियो ज्ञानस्थली का उपयोग आप शिक्षण में भी कर सकते हैं, टीचिंग में भी कर सकते, शायद कर रहे होंगे, और उसमें आप टीचर्स आकर के यहाँ कार्यक्रम रिकॉर्ड कर सकते हैं, और जो भी बच्चे हैं उनको निश्चित समय पर बता सकते हैं कि समय एक कार्यक्रम आएगा, एक ये चैप्टर ये टॉपिक पे पढ़ाई होगी, तो ये सर बहुत अच्छा उपयोग होगा और बहुत बहुत वैल्यूएबल कार्यक्रम है सर ये।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाँ 12 बजे से दोपहर 1:30 बजे के बीच में ज्ञानस्थली लाइव प्रोग्राम होता है, जिसमें सरस्वती देवी नारी ज्ञानस्थली पीजी कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, मेंटर्स वो आते हैं, अपने सब्जेक्ट्स के बारे में बताते हैं और स्पेसिफिक टॉपिक पे ही चर्चा होती है।
1: बिल्कुल,
0: तो ये बिल्कुल आपने सही कहा। और इसमें हम और भी दिन ब दिन जैसे जैसे लोगों के सुझाव मिलते जाएंगे, हम इसमें अपनी वैल्यू ऐड करते जाएंगे।
1: बिल्कुल।
0: से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिर से कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने अपना कीमती वक्त दिया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मुझे लगता है कि एक दिन आपका भी इंटरव्यू होना चाहिए कि आप भी गोंडा से हैं और बहुत कुछ हासिल किया है आपने, इस तरीके से आप एक फील्ड, आप ये भी बच्चों के सामने आ सकते हैं कि इधर भी करियर बनाया जा सकता है और उसमें आप गाइड कर सकते हैं कैसे करियर बनाया जाए।
0: बिल्कुल। तो यहाँ पे रेडियो जॉकी का वोकेशनल कोर्स में भी चल रहा है और हम बताते भी हैं कि जैसे मैं खुद एक रेडियो जॉकी हूँ, एक रेडियो को चलाने वाला, वैसे ही बच्चों को ट्रेन कर रहा हूँ। आने वाले टाइम में बहुत सारे आरजेज मुझे नहीं लगता है कि बड़े शहरों की तरफ देखना पड़ेगा गोंडा को, गोंडा के खुद के अपने बच्चे ही यहाँ के आरजे होंगे, बस इतना ही कहना चाहूंगा।
1: बिल्कुल।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। और अपने श्रोताओं से हम ये कहेंगे कि आज हमारे बीच में मौजूद थे मालिक राम वर्मा जी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एडुकेशन डिपार्टमेंट राजकीय महाविद्यालय डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर, जिनसे आज हमने उनकी जिंदगी के बारे में जाना, पढ़ाई के बारे में जाना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को कैसे क्रैक किया जाए इसके बारे में जाना, इंटरव्यू स्किल्स क्या होती है और इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं इसके बारे में जाना। सो बहुत बहुत शुक्रिया आज उनका, वो हमारे स्टूडियो में है। और आपसे भी हम यही कहेंगे कि सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
2: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
3: मतलब
2: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना,
4: इन समस्याओं के लिए निशुल्क डेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
5: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
6: जब आप बच्चों के आसपास धूम्रपान करते हैं तो उन्हें हजारों ऐसे केमिकल से प्रभावित करते हैं जिनसे उनके जीवन को खतरा है। बीड़ी सिगरेट के धुएं में साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे कई जहरीले तत्व होते हैं जो स्वास्थ्य की गंभीर समस्याओं को जन्म देते हैं, जैसे कानों में दर्दनाक संक्रमण, गंभीर अस्थमा और जानलेवा निमोनिया। बच्चों का जन्म के समय कम वजन बीड़ी सिगरेट के धुएं की वजह से भी होता है और ये अचानक होने वाली शिशु मृत्यु के जोखिम को दुगना कर देता है। इसीलिए आज ही बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ें।
7: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम है आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो, आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: हर कलाकार का सफर तन्हा शुरू होता है, लेकिन साथ होती है आपकी सद्भावना और आशीर्वाद की मंगल ध्वनि। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन।

नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।

शर्मा जी आजकल के

0: बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9816 9876, पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
2: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

तो शुभ वाली संध्या, आप सभी का स्वागत है इस प्यारी सी खूबसूरत सी इवनिंग में। एंड यस, आज इवनिंग की एंट्री हो चुकी है आप लोगों के साथ सुपर डुपर वाले स्टाइल में, यानी कि मेरे मन में कुछ है जो मैं कहना चाहती हूँ। एंड सच्ची बताऊँ तो मुझसे बिछड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं आप लोग के पास हूँ, आप लोग के साथ हूँ। एंड ऑलवेज आपके, कहते हैं ना कि शाम में कोई हो ना या ना हो, आपके साथ, चाहे आपका साथ निभाए या ना निभाए, लेकिन 89.6 FM हमेशा आपके साथ। आपके जो कहते हैं ना कि सुख दुख का साथी बन के हमेशा रहेगा। एंड इवनिंग की बात करूँ तो RJ बीना इज ऑलवेज देयर, देन फिकर काहे को डेयर। तो जितने भी मेरा डियर वंस हैं वो सभी उड़ जाएं और जग जग के आ जाएं, क्योंकि आज हम करने वाले हैं कुछ बातें। अब सोच रहे होंगे कौन सी बातें, उन्हीं बातों को जिनको अधूरा छोड़ा था, अधूरी बातों को पूरा करने का काम ही तो है हमारा। एंड यस, कौन क्या क्या कर रहा है, और आज के बारे में बता दूं भाई, आज की ताज़ा खबर ये है कि कल से नवरात्रि यानी कि शारदीय नवरात्रि शुरू हो जाएगी, और आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, क्योंकि आपको और मुझको इस फेस्टिवल को धूम धड़ाके के साथ मनाना है। आए दिन मतलब हमें एक से एक फ्लायर देखने को मिलते हैं, कहीं डांडिया नाइट्स है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कुछ भी हो, लेकिन एक चीज़ खास होती है जो है हमारे दोस्तों का साथ। दोस्तों के साथ तो इवनिंग शानो शौकत से भरी होती है, लेकिन उसी में अगर हमारा प्यार हमारे साथ बैठ के ओहो कुछ गुफ्तगू कर दे तो बात ही कुछ और हो। फिलहाल के लिए आप लोग बताइए क्या क्या, कैसे कैसे, क्यों क्यों, कब कब, कहाँ कहाँ जाने वाले हैं। वैसे मैंने कितने सारे सवाल एक साथ कर लिए ना, आप सोच रहे होंगे कौन से वाले का जवाब दें। मैं कहूँगी किसी का जवाब दीजिए ना दीजिए, लेकिन अपने साथ मुझे भी ले चलिएगा 89.6 FM के तौर पे, मुझे सुनाते रहिएगा, बताते रहिएगा कि आप कहाँ कहाँ जा रहे हैं घूमने फिरने। और इस फेस्टिवल की, कहते ना अक्टूबर का मंथ शुरू नहीं हुआ कि ख़त्म होने की तैयारी कर लेता है, अक्टूबर का मंथ शुरू नहीं होता है कि ख़त्म होने की तैयारी कर लेता है। हम सोचते रहते हैं ये करेंगे वो करेंगे, वो महीने में डेट बदल देता है। सही बात कह रही हूँ यार, कि अक्टूबर में हम लोग बड़ी प्लानिंग करते हैं, भाई ये करेंगे वो करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, यार पता नहीं कब चलता है 30 तारीख कब आ गई। एंड यस, देखिए 10 तारीख आ गई है आज, और 20 दिन बस बचे हैं अक्टूबर के महीने में, महीना खुला नहीं कि ख़त्म हो गया। क्या बताऊँ, ये तो एकदम से मतलब ओरियो बिस्किट हुआ कि मतलब खुला कि पेट में तुरंत। ऐसे आप लोग बताइए कि आज क्या क्या भाई स्पेशल है आप लोग की लाइफ का। वैसे मैं तो बताऊँ,

आज बात होने वाली है दोस्ती और प्यार के भरोसे के बारे में। और अगर आप लोग भी अपना ओपिनियन देना चाहते हैं तो 6393316429 पे कॉल कर सकते हैं। यार सोचने समझने की बात नहीं होती है, कुछ चीज़ें ना इमीडिएटली कर देनी चाहिए। मतलब अगर लाइफ में देखिए, लाइफ में अगर देखें लोगों को, सबकी लाइफ की बात करूं, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दुनिया में सिर्फ टाइम पास करने के लिए ही आए हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको अपनी लाइफ में टाइम पास करना है या किसी के लिए याद करने वाला एक ऐसी शख्सियत जिसको हर कोई इंसान याद करना चाहता है। मैं तो यही कहूंगी। तो चलिए आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि हम सभी एक दूसरे के साथ दिल लगी लगा के रखें और इस प्यारी सी शाम में ऐसी बातें करते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और गुलजार होते रहें, क्योंकि बातें ऐसी ही होती हैं। ठीक है, वैसे आप लोग बताइए कि दिल में अगर कुछ खास हो तो कहने के लिए वो पहली शख्सियत कौन होगी जिससे आप अपने दिल की बात कहना चाहेंगे। भाई मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे दिल में अगर कोई बात है तो मैं तो सीधे तौर पे अपने मतलब दोस्त को बताना चाहूँगी। सच्ची बता रही हूँ, मतलब मेरे लिए मतलब प्रायोरिटी पे या तो मेरे अपने हैं और उन अपनों में मेरे फ्रेंड्स और मेरी फैमिली सबसे पहले आती है। आप लोग बताइए कि आप लोग किससे क्या कहना चाहेंगे। वैसे चलिए कुछ भी कहने का मन कहे तो मुझसे ज़रूर बताइएगा। एंड यस, चलिए आज की शाम शुरू हो चुकी है एंड आई मस्ट से कि आज की शाम में आप सभी जो हैं वो अपने ओपिनियंस देने के लिए तैयार हैं। तो हो जाओ शुरू, करते हैं बात डॉक्टर लव के साथ कुछ ही देर में प्यार और दोस्ती पर। देखते हैं दोस्ती ज़्यादा साथ निभाती है या प्यार। हमारे साथ इवनिंग के टाइम आ चुके हैं आरिफ। कैसे हैं आरिफ? कल चार मीनार जाएंगे, फिर गोलकुंडा फोर्ट जाएंगे, आप भी आ जाओ। ओके आसिफ, आपने कहा एंड यस आई एम देयर। गुड इवनिंग। तो मेरा मन भी कर रहा है आप लोगों के साथ ही घूमने का। देखिए एक आरजे की जर्नी जो होती है वो उसके लिसनर्स के साथ शुरू होती है और लिसनर्स के साथ ही चलती रहती है। और मुझे पता है कि आप लोग मेरे साथ जर्नी करना बहुत पसंद करेंगे। एंड यस, ये बताइए कि आपने तो अपनी आइटनरी बता दी, कहाँ कहाँ जाने वाले हैं और साथ ले भी जाने वाले हैं, तो ये बताइए कि हर जगह की कोई ख़ास चीज़ आपने मतलब अभी जैसे कि कहीं आप गए हैं तो ऑब्वियसली उसी में आगे आपकी आइटनरी जुड़ रही होगी। यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, कौन सी वाली जगह आपको क्यों खास लगी आरिफ? एंड आपसे ये जानना चाहूँगी कि आसिफ मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर आपके लाइफ में आपके सामने मतलब प्यार है जिससे बहुत बेइंतहा आप मोहब्बत करते हैं, दूसरी साइड ही आपके सामने आपका दोस्त बैठा है, दोस्त मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जेंडर की बात नहीं करेंगे, तो ये बताइए कि आप उस घूमने वाली जगह सबसे पहले किसको ले जाना पसंद करेंगे और क्यों? सच्ची बताइएगा, एकदम झूठ नहीं बोलेगा। हाँ दादा यादव, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? सभी का इस्तकबाल भाई। और कुछ शाम के नाम कर देते हैं, हैं क्या बोलते हैं, शाम की बात ही कुछ और होती है और शाम की बात के साथ मन करता है कि आपको कुछ खास चीज़ें भी बता दूं। वैसे आपको पता है कि आज पूरे के पूरे शहर में बड़ी सारी भीड़ चल रही है। क्यों चल रही है? आपने देखा होगा कि जगह जगह पंडाल सज रहे हैं और फेस्टिव वाइब दिख रही है। एनीवे, इस फेस्टिव वाइब को हम लोग भी फील करेंगे, शेयर करेंगे, एंजॉय करेंगे। एंड आज सर्वपित्र अमावस्या भी थी, इसको श्राद्ध का समापन भी बोलते हैं। आज पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है जिस दिन पूर्वजों को मृत्यु की तिथि याद ना हो वो आज के दिन श्राद्ध या तर्पण कर सकते हैं। ठीक है, और 30 साल बाद आज का ये मतलब जो दुर्लभ योग है, लोग कह रहे बन रहा है, सैटरडे को बहुत कम पड़ती है ये वाली तिथि, इस बार पड़ी है तो दैट इज़ सुपर खास फॉर अस। एंड आज जैसा कि आप सभी को पता है 10 अक्टूबर है, कल हम लोगों ने मनाया था वर्ल्ड पोस्ट डे और आज हमारा राष्ट्रीय डाक दिवस, तो आज की भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं।

अगेन आप लोग के लिए खास दिन होगा क्योंकि कल चिट्ठियों की बात की थी मैंने। एंड आप लोग को बता दूं कि आज वो तारीख है जिसने साल 1910 में एक इतिहास रचा था। अब आप सोचें कौन सा इतिहास। जी हाँ, वाराणसी में मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में पहली बार अखिल हिंदी सम्मेलन किया गया था। मतलब उस समय हिंदी के हालात बहुत खराब थे, हिंदी भाषा को बहुत एक मतलब कहते हैं ना कि राष्ट्रभाषा राजभाषा की सोच तो छोड़िए, हिंदी को लेके किसी के मन में कोई विचार ही नहीं था। दैट वाज द फैक्ट। तो इतिहास के पन्नों से ये खास बात आज को लेके। वैसे आप लोग बताइए कि आप लोग के लिए आज का दिन क्यों खास है। मेले तो इसलिए खास है क्योंकि कल नवरात्रि शुरू हो रही है। एंड यस, फेस्टिव वाइब्स, यानी कि शहर में धूम धड़ाका, दोस्तों से मिलना, बातें करना, एंड यस खूब सारी मस्ती। तो फिलहाल आपको बता दूं कि आज डॉक्टर लव वाला डे है। गुड इवनिंग धर्मेंद्र, आप बताइए अगर आपको अपने दिल की बात किसी से बतानी हो। दिल की मतलब जैसे कोई बात होती नहीं जैसे परेशान करती है, या कोई बड़ी खुशी की बात होती है। फॉर एग्जाम्पल कि आपको मौका मिल जाए कि आपको चांद पे जाना है घूमने, आपकी फ्लाइट है, आपको उससे जाना है, या आपको स्पेसशिप मिल गई है जाने के लिए, आप किसको लेके जाना चाहेंगे? मेरा नाम मत ले लीजिएगा, मैं नहीं जा पाऊंगी। सोच के बताइए। तब तक के लिए चलिए दोस्ती और प्यार के साथ ये गाना, ये जो गाना है इसको सुनते हैं ज्ञान के साथ। गाना है प्यार इश्क और मोहब्बत। इस गाने को सुनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि प्यार इश्क मोहब्बत के साथ दोस्ती भी होना चाहिए था। फिलहाल ये गाना मैं नहीं प्ले कर रही हूँ, मैं बस ये बताना चाह रही थी कि इस गाने में अगर दोस्ती भी होता ना तो इस गाने का जो वैल्यू है वो थोड़ा और बढ़ जाता। चलिए थोड़े से एल्बम सॉन्ग सुनते हैं जिसको सुन के आपकी वाली वाइब हमारी वाली वाइब हो जाएगी। एंड कोक स्टूडियो से ये प्यारा सा गाना आप सभी के लिए मैंने बहुत दिनों से सोच रखा था सुनाऊंगी। तो चलिए आज की शाम की प्लेलिस्ट आरजबीना की तरफ से लेट्स एंजॉय दीज ब्यूटिफुल सॉन्ग्स दैट आर एब्सोल्यूटली डेडिकेटेड फॉर यू।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: ये वही मैं हूँ और ये वही तुम हो। आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी क्या तुम्हारे पास,
2: आज मेरे पास डॉक्टर लव है, जिनके पास रिश्तों की हर प्रॉब्लम का सलूशन है। डॉक्टर लव, द मैटर ऑफ हार्ट इज हिज आर्ट।

0: तो डॉक्टर लव
1: जी बिल्कुल
0: शुभ संध्या आपका स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपके मरीजों का ताता ऐसा लगा रहता है कि मुझे पता है कि आपको लोग पकड़ के आपके पैरों को घसीटते हुए जैसे कि आपको देखा जा सकता है कि आपके कपड़ों का हाल बता रहा है कि आपके मरीजों ने आपको ऊपर से लेके नीचे तक पकड़ा था और चिथड़े उड़ा दिए कपड़े के।
1: एकदम समझ लीजिए कि बस
0: मैं आपको बता दूं कि आज डॉक्टर लव कपड़े तो पहने हुए हैं लेकिन वो कपड़े ना के बराबर हैं। जैसे कि आजकल के वेस्टर्न कपड़ों का ख्याल है वैसा ही कुछ इनके कपड़े हैं और इसी वजह से उनको कहते ना कि भागते दौड़ते आना पड़ा। तो अभी आसिफ से मैंने सवाल किया, आसिफ ने लिखा मैम मैं दोस्तों के साथ जाना पसंद करूंगा। एक्चुअली दोस्त होते हैं साथ में तो मज़ा बहुत आता है, प्यार व्यार नहीं है कोई भी। अच्छा प्यार व्यार कोई नहीं है। अच्छा ये मतलब कैसी बात कह दी आपने। उम्मीद करते हैं कि आपने जो कहा वो सच हो, लेकिन चलिए डॉक्टर लोग बताएंगे। डॉक्टर लोग आपसे भी वही सवाल करना चाहूंगी, जैसे आपको कहीं कोई घूमने का मौका दे दे, जैसे आसिफ जी गए हुए हैं कहीं घूमने हैदराबाद। हैदराबाद नहीं गए हैं ये, कहाँ गए हैं? हैदराबाद लिखा है इन्होंने। ये जाने वाले हैं कहाँ कहाँ पे? जी हाँ, ये चार मीनार जाने वाले हैं, गोलकुंड जाने वाले हैं। तो ऐसे ही अगर आपको मौका मिल जाए कहीं जाने का तो

0: किसके साथ प्रायोरिटी पे जाएंगे? वैसे आप मतलब प्यार तो क्या ही कहूँ, प्यार तो आपका किस्तों में होगा, प्यार बहुत लंबा चौड़ा है आपका, टिकट का खर्चा ही लंबा चौड़ा बैठ जाएगा, तो दोस्त के साथ जाना चाहेंगे प्यार के साथ?
1: अच्छा, मतलब हम संतुलन बना के चलते हैं, हम दोस्त और प्यार दोनों के साथ लेकर जाएंगे।
0: ये गलत बात है।
1: नहीं मतलब नहीं मतलब बैलेंस,
0: हम एक की बात करें, एक किसको ज्यादा तवज्जो देंगे आप,
1: किसको ज्यादा तवज्जो देंगे?
0: मतलब
1: अब
0: कौन?
1: हम चूंकि
0: आपकी चेकलिस्ट में किसका नाम टॉप पे होगा?
1: अब चूंकि हम डॉक्टर लव हैं तो लव के ही साथ जाना पसंद करेंगे भाई।
0: ओह
1: हाँ, तो ये भाई अब हम
0: इस प्यार को प्यार के साथ ही रहने दो, क्या बात है,
1: उस प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो,
0: क्या बात है, क्या बात करती है ये आपने। फिलहाल डॉक्टर लव ये बताइए
1: जी, बताइए
0: कि संतूर देखा आपने?
1: संतूर साबुन?
0: हाँ बस यही बस आपके अंदर फिर प्यार नहीं है।
1: हाँ
0: अभी बताती हूँ, ये बताइए। अच्छा चलिए, संतूर से बात बाद में होगी, आप बताइए कि भरोसे की बात लास्ट टाइम हम लोगों ने शुरू की थी
1: जी,
0: तो आपके हिसाब से कि जब भरोसे की बात हो, कोई बात पचाने की बात हो कि भाई किसी को बताना चाहिए, तो आपको क्या लगता है कौन आपकी बातों को ज़्यादा अच्छे से पचा पाएगा? डाइजेस्ट, जिसका डाइजेशन ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे कॉल आया है, कॉलर से ही पूछ लेते हैं। हेलो, गुड इवनिंग, आपका शुभ नाम, कैसी हैं आप, स्वागत है आपका।
2: मैं बहुत अच्छी हूँ, और डॉक्टर लव सर कैसे हैं?
0: डॉक्टर लव सर, भाई जो लव में लबा लब है वो कैसा ही होगा,
1: कैसा ही होगा,
0: अच्छा ही होगा, जिसके जीवन में प्यार ही प्यार है। हाँ जी, ये लव में लबा लब हैं तो इनको इनके हाल पूछने का सवाल ही नहीं उठता, इनका हाल ऑलवेज कूल होता है। ये आप बताइए कि आपका हाल कैसा है मोहतरमा?
2: मेरा हाल और अच्छा है, आपसे बात करके।
0: आपका नाम नहीं बताया आपने, श्रोता लोग मतलब आपने अपना नाम नहीं बताया, श्रोता लोग का निशा, निशा निशा निशा हमारे साथ है। निशा का मतलब जानती हैं आप? निशा का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ निशा?
2: सारी नहीं पता।
0: रात्रि, रात को निशा कहते हैं, ये जो रात है, रात होती है, इसी रात को निशा कहते हैं। जैसे शाम को संध्या बोल सकते हैं, वैसे रात को निशा बोलते हैं। नाइट, गुड नाइट, गुड निशा बोल दिया तो समझ लीजिए गुड नाइट ही कह दिया।
2: आपसे बात करके और अच्छी।
0: ऑफ कोर्स। तो ये बताइए डॉक्टर लव से क्या सवाल करना चाहेंगे, पहले तो यही मैं जानना चाहूंगी।
2: सवाल तो मेरा कुछ नहीं है, पर ऐसे हम आप दिल लग गया ना, हाल चाल लेने के लिए हमने मिला लिया।
0: हाल चाल लेने के लिए तो आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर आपके पास कोई बात है ऐसी जो बड़ी सीक्रेट है, मान लीजिए कि आप ऐसे सीक्रेट बात है, टॉप सीक्रेट, मतलब आपने कुछ ऐसे खास बात जान ली, मान लीजिए आप जा रही थी और रास्ते में आपको एक बेशकीमती हीरा मिल गया और आपने उसको दबा के रखा हुआ है और आप सोच रही हैं किसी को बता दूं, तो आप किसको बताएंगे?
2: मैं अपने दोस्त को बताती हूं, अपने दोस्त को।
0: ओह मतलब प्यार पे भरोसा नहीं है आपको?
2: दोस्त,
0: लेकिन आपने ये गाना नहीं सुना है लग रहा है, आपने शायद ये गाना नहीं सुना है, हर एक फ्रेंड कमीना होता है। हाँ तो कमीने दोस्तों को कोई मतलब राज की बात बताता है, ऐसा गाने में कहा गया, कभी का अभिप्राय मेरा नहीं,
2: लेकिन दोस्तों बता देती हूँ।
0: तो ये दोस्त के साथ जाना चाहेंगी निशा, तो निशा मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप दोस्त पे इतना भरोसा करती हैं, तो दोस्त पे भरोसा करने वाली एक हो चुकी है और दूसरे हमारे
2: एक समस्या है मेरे पास।
0: एक समस्या है, अच्छा क्या बताइए?
2: एक समस्या यह है कि हमारे सिंबल में हमसे बात नहीं हो पाती है, खाली नहीं हो पाता है।
0: अच्छा तो इसके लिए देखिए आपको भी सिंपल बनना पड़ेगा। देखिए आपने वो सुना होगा ना, पानी में पानी मिले कीच में कीच, तो वैसे ही आपको भी सिंपल बनना पड़ेगा, तभी आपकी बात हो पाएगी। आपने क्या कहा, मुझे सिंपल मैम से मिलना है, बात करनी, बात नहीं हो पाती है, तो मिलने के लिए
2: उन्नति मैम आती है 3 बजे।
0: उन्नति मैम मुझसे हो जाती, उनसे नहीं हो पाती, तो आपको सिंपल मैम जैसा होना पड़ेगा,
2: सिंपल
0: बिल्कुल सिंपल, साधारण, सरल।

0: स्वीट क्यूट ब्यूटीफुल क्यों डॉक्टर लव, वो क्या क्या कहावत थी मुझे पूरी नहीं याद आई
1: है। ठीक है, जितना आपने कहा उतना ही पर्याप्त है। और मैं इनसे कह देता हूँ कि भाई आप निशा जी हमको सिंपल मान के बात कर लीजिए, क्योंकि हम भी बहुत सिंपल आदमी हैं। जी हाँ,
0: जैसे गणित में एक्स मान के पता नहीं कितने सवाल हाँ, आज तक सॉल्व
1: कर लिए गए,
0: और वो एक्स किसकी है ये पता नहीं है।
1: हाँ, किसके ये पता नहीं है।
0: वाई की है, एट की है, नाइन की है, सौ की है, 200 की, किसकी एक्स है वो हाँ, आज तक नहीं पता चला।
1: तो उसी प्रकार से आप हमको सिंपल मैम मानिए और बात कीजिए। आप क्या बात,
0: आप मुझे भी मान सकते हैं।
1: हाँ, इनको मान सकते हैं,
0: लेकिन मुझे तो मान चुकी है कुछ और।
1: हाँ,
0: मुझे पहले कुछ और
2: मान चुके हैं, पर मैम 8 बजे लग तो सुनते हैं
1: तो आपसे एक हम निवेदन करें, आप अपना फोन जो है वो यहाँ स्टूडियो में आइए और सिंपल मैम के सर पर 11 बार उबारिये, और इसके बाद अपने घर पर लेकर चली जाइए, फिर उनको फोन कीजिए तो फोन लग जाए।
0: क्या पता बीच में जैसे आप फोन मिलाती हो कोई जिन जिन्नाद उस फोन को कंट्रोल कर लेता हो कि हम सिंपल से नहीं मिलने देते।
1: हाँ,
2: मिलाते हैं तो जैसे घंटी जाती है तो उधर से उठ नहीं पाती है।
1: हाँ,
0: उठ नहीं पाती है, ये बात है। तो बिल्कुल यहाँ पे मतलब जिन का ही कंट्रोल चल रहा है, यहाँ घंटी पहुँच नहीं पाती होगी आपके कॉल करने के बाद।
1: आपको सुनाई पड़ता है कि घंटी जाती है, लेकिन वास्तव में घंटी नहीं आती है। अब वास्तव में घंटी यहाँ पर आए इसके लिए आपको स्टूडियो आना है, सिंपल मैम के सर पर 11 बार अपना फोन उबारना है और लेकर चले जाना है। आप अगले दिन फोन कीजिएगा, कॉल लग जाएगी।
0: जो भी आप
2: कहाँ पड़ेगा स्टूडियो?
1: स्टूडियो दुखानंद मंदिर के पास, सरस्वती देवी नारीगंज असली महाविद्यालय। हाँ, आप आइए, आपकी प्रतीक्षा है।
0: चलिए, आपकी समस्या उम्मीद करेंगे जल्दी दूर होगी। निशा, थैंक यू सो मच, बात करके। तो निशा की बातों में दम तो था,
1: बहुत दम था, दम है। हाँ,
0: हमारे साथ हैं हमारे धर्मेंद्र जी, धर्मपाजी हैं। कैसे हैं धर्मेंद्र जी, क्या हाल है? कोई नया बीमारी आया है तो सुनाइए समाचार। देखिए, बीमारियों की बात न करिए, आए दिन एक पता चला अभी बैक्टीरिया आया था, वो प्लेग वाला, टेस्ट ट्यूब टूट के गिर गई थी और लड़की बेचारी मर गई।
1: 63-93-31-64-29
0: पे अगर आपको किसी बड़ी बीमारी यानी कि प्रेम से जुड़ी किसी बड़ी बीमारी के बारे में जिक्र करना है तो मिलिए। और हाँ, अपना ओपिनियन प्यार और दोस्ती के बारे में रखना चाहते हैं तो डेफिनेटली कॉल करिए। और चलिए, हम जानते हैं दोस्त कैसा होता है। मेरे मन में गाना आया और उस गाने को अगर मैं ना सुनाऊं तो मतलब शाम अधूरी है। तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गाना, दोस्तों के नाम। भाई दोस्त इतने अच्छे हैं तो अच्छा सा गाना भी दोस्ती के नाम। वैसे रहे दोस्ताना हमारा,
1: बने चाहे दुश्मन
0: जमाना सारा, मतलब व्हाटएवर कुछ भी हो, लेकिन दोस्त के नाम ये प्यारा सा गाना।
1: हाथ होता नहीं है दोस्त मिलाने वाला।
0: हाँ,
1: मतलब आवश्यक नहीं, दिल मिल जाए वो दोस्त, हाथ तो कोई से भी मिला सकते हैं।

0: तो डॉक्टर लव
1: जी
0: संतूर
1: संतूर हाँ
0: संतूर
1: संतूर सं को तोड़ दिया जाए संतूर मतलब एक शब्द अंग्रेजी का है एक शब्द हिंदी का है अच्छा हम सं को तोड़ेंगे तो क्या बचेगा ये पूछ रही हैं आप हाँ
0: अभी जो बज रहा है इंस्ट्रूमेंट उसको संतूर बोलते हैं
1: नहीं वो तो संतूर है ही संतूर है
0: संतूर को लेके आपका क्या ख्याल है
1: संतूर को लेकर हमारा ये ख्याल है कि इसको बजाया जाना चाहिए
0: जैसे संतूर एक इंस्ट्रूमेंट है
1: इंस्ट्रूमेंट है
0: उसके ऊपर एक बजाने वाली स्टिक होती है
1: स्टिक होती है हाँ
0: दोस्ती इसी तरह होती है
1: दोस्ती इसी तरह से होती है क्या बात है मतलब
0: दो दोस्त अगर साथ हों तो म्यूजिक कुछ ऐसा ही बजेगा
1: इतना
0: मेलोडियस कि किसी का भी स्ट्रेस दूर हो जाए
1: हाँ ये
0: दूर करने वाला इंस्ट्रूमेंट मानते हैं संतूर को
1: अच्छा हमने तो वैसे खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे तीन यार आप मैं और बैक पाइपर क्लब सोडा
0: वो तो बात सही है लेकिन हर कोई बैक पाइपर प्रेफर नहीं करता ना तो उनके लिए
1: हाँ नहीं
0: देखिए हमारे साथ कुमार आ चुके हैं हेलो कुमार क्या हाल है कैसे हैं कब से मतलब कुमार ही रहेंगे क्या कुमारे ही रहेंगे हमारे यहाँ कुमार मतलब कुमारा कुमारा लगता है तो कुमारे मत रहिए आप भी ब्याह शादी करिए ठीक है और
1: मतलब
0: अरविंद
1: आप
0: जी आ गए

0: एक एक इंस्ट्रूमेंट के लिए पक्का हो जाता है। जैसे एक हारमोनियम बजाने वाला है, वो हारमोनियम बजाता है और उसको ढोलक बजाने को कहा जाए तो वो कैसे बजाएगा?
1: नहीं बजा पाएगा, तो बड़ी मुश्किल बात है।
0: वो ढोलक पे हारमोनियम बजाने की कोशिश करेगा।
1: हाँ ये बात तो सही है।
0: और एक ढोलक बजाने वाले को अगर हारमोनियम बजाने को कहा जाए,
1: क्या बात है,
0: वो हारमोनियम पर ढोलक बजाएगा,
1: हारमोनियम पर ढोलक बजाएगा, क्या
0: टेबल पे हारमोनियम बजाएगा।
1: हाँ सही बात है, ये बात नहीं, ढोलक बजाने वाला टेबल बजा सकता है, ये तो मैं जानता हूँ। क्या लगता है आपको?
0: और जब बात होती है एक शिक्षक की, वो ऑल इंस्ट्रूमेंट प्लेयर है,
1: सब कुछ बजा लेता है,
0: क्योंकि वो हर बच्चे में एक एक इंस्ट्रूमेंट को देखता है।
1: हाँ, एक एक करके
0: किस तरीके से पीटना है, किसी का कान ऐंठ के म्यूजिक प्ले कर देता है। ठीक है, तो अगर आपकी लाइफ में दोस्ती संतूर की तरह है,
1: संतूर
0: की तरह म्यूजिक प्ले करती है, तो समझ लीजिए आप अपनी दोस्ती को अपनी खुफिया बात बता सकते हैं।
1: हाँ ये बात तो सही है, खुफिया बात। लेकिन अंग्रेजी कहती है कि सीक्रेट वंस ओपन्स ओपन्स फॉरएवर, राज अगर एक बार खुला तो हमेशा के लिए खुल गया।
0: कौन कहता है?
1: अंग्रेजी कहती है।
0: तो अंग्रेजी पे तो वैसे ही नहीं भरोसा, अंग्रेजों पे किसने भरोसा किया आज तक? अच्छा। अंग्रेज आए दगाबाजी करके हमारे देश में फूट डाल के ऐसी की तैसी हमारे देश की कर दी है, और आप अंग्रेजी शायरों की बातें सुन सुन के मतलब बौरा रहे हैं?
1: नहीं बौरा नहीं रहे,
0: हिंदी वाले की बात कहिए।
1: अच्छा हिंदी वाले की?
0: हाँ, किसी हिंदी वाले की बात करिए जिसने कहा हो कि एक बार रास खुला तो वो खुला रह गया, बंद नहीं हुआ।
1: अच्छा, मतलब आपको लगता है कि रास एक बार खुलने के बाद फिर बंद हो सकता है?
0: रास कहाँ डिस्क्लोज हुआ ये मैटर करता है।
1: अच्छा,
0: ये मैं ऐसे बड़े बड़े राज बता दूं कि लोगों ने ऐसे दबा दबा के रखे हुए।
1: अच्छा,
0: खतरनाक खतरनाक राज।
1: तो हमने भी दबा दबा के रखे हुए कई सारे राज।
0: तो
1: हाँ, लेकिन
0: आपने किसी और को हमराज नहीं किया ना, अपने दोस्त की बात को राज रखा।
1: मतलब
0: मींस दोस्ती वो है।
1: हाँ, काबिले तारीफ है।
0: नहीं, प्यार से ठीक है,
1: प्यार से ठीक है, वही काबिले तारीफ।
0: माफ करना जल्दीबाजी में जबान इधर उधर निकल गई, डॉक्टर लव
1: जी मतलब
0: तेरे लिए ले लेंगे। देखिए हमारे पास एक कॉल आ रहा है, देखते किस जनाब का है और इनसे क्या जानने की हमें मतलब जानकारी मिलेगी। हेलो
2: हेलो
0: हेलो, गुड इवनिंग
2: जी। गुड इवनिंग, कैसे हैं?
0: डॉक्टर लव से आपकी बात करा रहे हैं।
2: डॉक्टर लव को सीधे बोलो हमार बिहावा कर रही हैं कि ना कर रही हैं, अगर ना कर रही हैं तो इनका हारमोनिया और ये सब हम तूर तार दे।
0: तो ये बात डॉक्टर लव से आप
2: हाँ, चलिए डॉक्टर लव का हमारा फॉलो अप पकड़ा दियो। तो मैडम
0: जी अगली आवाज डॉक्टर लव की, आपको फोन पकड़ाने की जरूरत ही नहीं, आपका फोन ऑलरेडी सबके हाथों में है यहाँ पे।
2: अच्छा सबके हाथों में, तो इनसे कह दो हमारा ब्याह कराऊ मैं पहले। बहुत ये दूसरे
0: आप कहिए ना।
2: अरे डॉक्टर लव बाबू
1: जी नमस्कार।
2: नमस्कार सर जी, कैसे हैं आप?
1: आशीर्वाद है आपका।
2: अरे हमार बिहावा करेबो की ना करेबो, अपना करो तो कैंसिल कर दियो, दूसरे से तो करा दियो भैया, अपना तो 35 मेहरारू रखे हो।
1: नहीं, 30, तो
2: हम को कहूँ एक चाहिए।
1: आप जो है वो 30 को 35 में बनाइए भाई।
2: 30 को 35 में? अरे 5 हमारे तरफ से गिफ्ट होएगा आपका।
1: 5 पत्नी आपने हमको गिफ्ट कर दी।
0: अब गिफ्ट कर सकते हैं तो एक ठूसी में से रख भी लीजिए।
1: हाँ, मतलब जब आपने हमको 5 गिफ्ट किया तो इसका मतलब।
2: अच्छा सुनिए, एक काम करिए अब आपके लिए एक स्कीम है, आपके पास 30 है, 5 इस कुमार को दे दीजिए और 5 हमें दे दीजिए, बाकी 20 से काम चलाइए आप, हम लोग 5 रख पाएंगे भैया।
1: 5 ही रख पाएंगे आप?
2: हाँ हाँ,
1: 5 से ऊपर की क्षमता
0: नहीं, ऐसे 5 आपको नहीं मिलेंगे।
2: अरे अकरे ऊपर का मतलब आप उस सर वो जमाना गए वो अकर चिला जीत खाए वाला।
1: हाँ। नहीं, नहीं,
2: अब दूसर जमाना आई गए।
1: जी जी आपकी बात बिल्कुल सही है, यथार्थ कह रहे हैं।
2: अब क्षमता के हिसाब से काम करे चाहिए।
1: और आपका जो है अनुभव बता रहा है कि आप काफी वीर पुरुष हैं।
2: हमारा अनुभव बहुत ज्यादा ना है, लेकिन जो है पर्याप्त है।
1: पर्याप्त है मतलब वो मतलब आप लगा हमको कि आप बहुत अनुभवी हैं और आप
0: जनाब सिद्ध पुरुष हैं।
1: सिद्ध मतलब पहुँचे, मतलब उन्होंने हमको लगता है अपने हिमालय की तलहटी में काफी तपस्या की है और तब आप योग्य बन पाए हैं।
2: अरे बीना जी आप सपोर्ट में खड़े हो जाइए, नहीं तो ये जोन है जोन हम हमार

0: कौन है वो लेके भाग गई है।
1: नहीं आप निश्चिंत रहिए, हम जननी समझाने पर नारी वाले सिद्धांत पर चलते हैं।
0: अच्छा,
1: दूसरे की पत्नी हमारे लिए माँ समान है।
0: हाँ, अब जेकरे पास 30 महरारू हुए उन्हें सुकून न मिली तब और का मिली, आप बताओ।
1: हाँ, वो तो आप कुछ दिन स्वयं आइए हमारे बंगले पर रहिए, इसी सुकून को आप भी प्राप्त कीजिए जो हम प्राप्त कर रहे हैं।
0: हम आपके बंगले भाई पर पता लगा है, आप हमारा वीडियो क्लिप बना लो, बाद में हमें ब्लैकमेल करो।
1: हम कभी हमारे पास स्मार्टफोन नहीं है और हम आपको
0: आपके पास ना है, जमाना बहुत हाईटेक है गुरु जी, ऐसा ही कहूँ ऐसा वैसा जगह ना जाए चाहिए, अपने जगह साफ सुथरा हुआ है।
1: आप हमारे ऊपर निश्चिंत रहिए, भरोसा कीजिए और
0: आप कह रहे हो हम आपके ऊपर विश्वास करें
1: जी।
0: अरे मतलब खुद आप बैल मुझे मार वाली कहानी हो जाएगी मुझे।
1: नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा साहब, आप निश्चिंत रहिए, आप आइए।
0: अच्छा जी,
1: आपके विश्वास को हम बनाए रखते हैं।
0: चलिए अगर आपने कहा है तो हम आएंगे जरूर एक बार और कोशिश करेंगे, देखते हैं कहाँ तक झेल पाते हैं।
1: जी बिल्कुल निसंदेह आपका स्वागत है।
0: और हमार गनवा गुरु जी प्ले कह दी हो जब मन का ही तब।
1: अच्छा अच्छा,
0: बाकी शुभ रात्रि, जय हिंद जय भारत,
1: जय
2: भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई अरविंद जी की बात तो बहुत पते की है, किसी की शादी नहीं हो रही और हम यहाँ प्यार और दोस्ती की बात कर रहे हैं।
1: सोचिए
2: बड़े दुर्लभ परिस्थितियों में ऐसे
1: मतलब वो इस कुमार की शादी के पीछे पड़े हुए हैं ज्यादा।
2: पप्पू हार्डवेयर लिखते हैं सात पत्नी हमको भी, अरे बाप रे
1: बाप रे, सोचिए सात पत्नी चाहिए।
2: चलिए मैट्रिमोनी वालों से
1: हाँ।
2: हम लोग कमीशन फिट करते हैं,
1: कमीशन फिट करते हैं और
2: सबको जितनी आवश्यकता है
1: हाँ।
2: उतनी पत्नियां प्रोवाइड कराते हैं
1: जिसको जितनी चाहिए उतनी।
2: अरे कुमार जी को प्यार का बुखार है, उस बुखार को जल्दी उतारिए, कुछ टिकिया उकिया बताइए।
1: अच्छा इनको प्यार का बुखार है, तो पहले ये बताइए कि बुखार जिस प्यार का है उसके नाम का पहला अक्षर क्या है, क्योंकि उसी के हिसाब से दवाई दी जाएगी, पहले बिना डायग्नोस किए हम दवा नहीं देंगे।
2: ये बात सही है। 30 हो गई इनकी भैया, ना जे हो 30वीं तुमको ना घूंघट पहना के रख लें, क्या कह रहे हैं। हाँ ये भी बात सही है। कुमार कह रहे हैं कहीं नहीं को घूंघट पहना के ना रख लें। नहीं ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं कुमार, आप थोड़ा सा ज़्यादा सोच रहे हैं। हमारे डॉक्टर लव जो हैं बहुत ही मतलब अपने जो जिस रिश्ते हैं ठोक पीट के करते हैं। Am I right?
1: You are always right.
2: आपने ये कविता सुनी है दुष्यंत की, साये में धूप। याद है?
1: याद तो नहीं है।
2: कि कहां तो तय था चिरागा हर,
1: हाँ कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए,
2: यहाँ हाँ। यहाँ चिराग मयसर नहीं शहर
1: के लिए। क्या बात है।
2: यहाँ चिराग की जगह पत्नी कर दी जाए
1: हाँ,
2: तो लोगों के घर बस जाए,
1: लोगों के घर बस जाए हाँ।
2: फिलहाल चलिए कोई बात नहीं, एक कॉल आ रहा है लेकिन कॉल जो है चला भी गया है, कॉल रिसीव हो गया, चलिए देखते कौन है भाई साहब। हेलो
3: हेलो,
2: गुड इवनिंग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही है, कृपया करीब आ जाए।
3: अब
2: हाँ बिल्कुल क्लियर आ रही है। तो दीपांशी कैसी हैं आप, पहले तो आपका स्वागत है, गुड वाली इवनिंग।
3: बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए कैसे।
2: अच्छी तो आप हमेशा से हैं, सवाल ये है कि आपका मतलब कहते हैं ना हाल चाल, कुछ अपडेट हुआ या फिर अभी सिंगल ही है स्टेटस आपका। क्योंकि आज सवाल चल रहा है प्यार और दोस्ती पे, तो सवाल ये था कि अगर दीपांशी को अपने दिल की कोई सीक्रेट या कोई खतरनाक वाली बात आपको शेयर करनी हो।
3: अच्छा मेरे साथ खतरनाक ही हो रहा है हर एक चीज।
2: या कोई बहुत अच्छी वाली बात शेयर करनी हो, वैसे अच्छी बात तो सुनने के लिए कोई भी कान खड़े कर लेता है, लेकिन मुसीबत में हर किसी
3: अक्सर क्या है ना कि खतरनाक सुनने के लिए तो मतलब मजेदार कहानियां सुनने के लिए सब लोग हो जाते हैं, लेकिन मसाला लगा के उसे फिर गलत इस्तेमाल करने लगते हैं।
2: यही बात तो सही है। आप बताइए कि अगर आपने सीक्रेट आपको किसी को शेयर करना हो तो आप किसे शेयर करेंगे।
3: कभी तो मैं अपनी मम्मी से ज्यादा शेयर करती हूँ हर एक चीज, चाहे जो जैसी भी बातें हूँ मम्मी से नहीं छुपाती मैं कोई भी बातें, क्योंकि सब कहते हैं ना कि पहला दोस्त पहला गुरु माँ बाप ही होते हैं, तो मैं हर बात अपनी माँ से शेयर करती हूँ, कुछ भी नहीं छुपाती।
2: पहला प्यार भी, पहला प्यार भी माँ ही होती है। और बताइए समस्या क्या है दीपांशी, आपको कोई समस्या नहीं है दीपांशी? कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर अपनी शेयर करिए। दीपांशी की आवाज नहीं आ रही है। हेलो दीपांशी, आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस। आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू की वजह से दीपांशी की आवाज नहीं आ रही है। तो भाई एक और दोस्त वाला आ गया, दोस्त प्यार दोनों कह सकते हैं।
1: हाँ, दोस्त प्यार दोनों। कामन, माँ सबसे अच्छी दोस्त।
2: चलिए देखते हैं, क्या पता दोबारा से हमें दीपांशी की आवाज सुनने को मिले। हेलो
3: हेलो
2: अगेन दीपांशी, आपका स्वागत है। कोई ऐसी समस्या जो आपको परेशान कर रही हो?
3: हाँ मैम, जैसे कि मतलब किसी से किसी को अच्छा समझो, और किसी के बारे में जैसे कोई भी हो किसी से बात करे या कुछ भी करे तो लोग उसे गलत क्यों समझते रहते हैं हर वक्त, उसे फेंक देता है कि तुम ऐसे करती वैसे करती हो, ये मेरे मतलब मेरे हाथ में से सबको प्रॉब्लम है, और मैं किसी से अच्छे से बात करूँ या कोई मुझसे करे तो ये सबको क्यों रहता है, मतलब
2: जजमेंटल क्यों है आपको लेके? आपको लेके जजमेंटल क्यों है?
3: हेलो,
2: मतलब मैं कह रही हूँ कि आपको लेके लोग जजमेंटल क्यों है, ये आप जानना चाह रही हैं?
3: जी मैम।
2: देखिए अगर जजमेंटल की बात करूँ दीपांशी, तो लोग जब भगवान को लेके जजमेंटल हो सकते हैं भगवान राम को लेके या किसी को भी, मतलब मैं देखूँ तो हर एरा में देखा गया है कि लोग जजमेंटल ही रहे हैं।
1: कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना,
2: लेकिन फिर भी आप आई हैं तो समस्या का समाधान मिले के ही जाएंगे। जैसे जगराते में जाओ तो प्रसाद लेके आना चाहिए, वैसे डॉक्टर लव के पास आओ तो समाधान लेके आओ। तो डॉक्टर लव समाधान
1: जी, चार लोग क्या कहेंगे और चार लोगों की बात एक के तब होती है, वो चार लोग आपको तब मिलते हैं, पता है चार लोग कब मिलते हैं?
3: कब मिलते हैं सर
1: जी? वो चार लोग आपको तब मिलते हैं जब आप उन चार लोगों के कंधे पर होते हैं, वही चार लोग होते हैं, बाकी कहीं कोई चार लोग नहीं है जो आपको जज कर रहे हैं। लोगों के पास अपना काम करने के लिए फुर्सत नहीं है, आपको कहाँ जज करेंगे, और अगर जज करते ही हैं तो लोग क्या कहेंगे ये भी हम ही कहेंगे, तो फिर वो क्या कहेंगे? तो मुझे लगता है कि हमको अपनी जिंदगी जीनी चाहिए और लोग जो कह रहे हैं उनको कहने देना चाहिए, उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए।
3: मैं हर बातों को मतलब बचपन से मेरी आदत है, चाहे बुरी बातें हो चाहे अच्छी बातें हो, मैं हर किसी से शेयर करती रहती हूँ चाहे जैसे भी हो, और वो मतलब जो कहते हैं ना क्या दिल का हाल लेके समाज में उल्टी सीधी बातें करना या किसी के साथ अफेयर करवाना या उल्टी से, मतलब काफी मतलब मैं बहुत इस वक्त तो दो ढाई महीने से तो मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। वैसे एक लड़की ही है परेशान करने वाली, शायद उम्र में भी बड़ी है लेकिन अपने आप को पता नहीं क्या समझती है और क्या है।
1: ये तो बात है, इस दुनिया में महिलाओं की सारी प्रॉब्लम महिलाओं से ही है, पुरुष से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं।
3: सही कहा सर, दुनिया में सब अगर वो चाहे ना तो बना दे, वो चाहे तो बिगाड़ दे।
1: महिलाओं की प्रॉब्लम महिलाओं से ही होती है, पुरुष से उनको दिक्कत नहीं होती है। देखिए जब शादी होती है तो ये नहीं कहा जाता है कि ससुर कैसा है, कहा जाता है पता कर लो सास कैसी है।
2: अच्छा ये दीपांशी एक सवाल करना चाहूंगी, वो महिला आपकी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट है मुझे ये बताइए।
3: मैम इम्पोर्टेंट मेरे लिए हर कोई, जैसे आप आ गए हैं तो आप भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक देखिए कोई आता है तो आपके लिए अच्छा ही बताएगा चाहे जो भी हो, मगर ऐसा पता नहीं कौन सा आया कि क्या हुआ ज्यादा दिन मेरी
2: मतलब, दोस्ती। मैं मतलब ये कह रही हूँ कि उस सामने वाले के बिना कौन कौन से आपके काम रुक सकते हैं, मैं इसकी बात कर रही हूँ।
3: काम नहीं मतलब उसे ना ही मैंने कभी देखा है, बस आवाज जैसे आपकी सुनी हूँ वैसे उसकी भी सुनी हूँ, और मगर ज्यादा दिन मेरी दोस्ती भी नहीं हुई उससे, बस थोड़े दिन में पता नहीं ऐसा क्या हुआ क्या नहीं, मैं उसका रीजन भी नहीं जान पाई क्यों किया उसने, किसके वजह से किया, ये सब मुझे यही बातें खाई जा रही है कि मतलब जिसकी वजह से जो कोई मतलब एक है कि जैसे कोई शराब ना पीता हो और उसे शराबी नाम दे दो तो अच्छा नहीं लगता है ना उसे।
1: तो बस मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, इन सभी समस्याओं का मलमूत्र, अरे मतलब मूल मंत्र, इन सभी समस्याओं का मूल मंत्र बस ये है, कहिए जस्ट गो टू हेल, उसको भाड़ में भेजिए और अपनी जिंदगी जीना शुरू कीजिए जी।
3: नहीं मैं ये नहीं समझ पा रही, मतलब मेरे बोलने से उसे प्रॉब्लम है या बातें करने से किसी से
1: कहीं, प्रॉब्लम कहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको जो है वो उसे बोलना है जस्ट गो टू हेल और अपने काम करना है, परवाह मत कीजिए।
2: जैसे जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए।
1: हाँ। बहुत अच्छा,
2: और बस पार्टी करिए आप, बस आप पार्टी करिए, ठीक है।
3: एक्चुअली क्या है ना, मैं हर वक्त पार्टी करती रहती क्योंकि मुझे मम्मी मेरी डांटती है कभी, मतलब थप्पड़ भी पड़ जाते हैं ना।
2: तो ऐसी कौन सी दोस्त है जिसकी आपने सिर्फ आवाज सुनी है और वो आपके करीब नहीं है? एक तो मैं ही हूँ, कहीं मैं ही तो नहीं हूँ, मैं ही तो नहीं हूँ आपकी जिंदगी का वो काटा?
3: अगर आप होती ना तो आपके स्टूडियो आकर आपसे मैं सवाल जवाब करके तुरंत फाइनल कर देती।
2: ओ मैं नहीं हूँ, तो प्यार है but... किसी और का, ऐसा तो नहीं है?
3: वैसे इस बात में आज बोलना चाहूंगी, जितने लिसनर मुझे सुन रहे हैं, अगर आज मुझे सबसे ज्यादा अगर कोई जितना करता है या मुझे हर चीजों से सपोर्ट करता है तो एक आप है और एक समता मैम है।
2: थैंक यू सो मच,
3: क्योंकि आप एक दोस्त वाली फीलिंग रखती हैं और समता मैम एक माँ के जैसा फीलिंग कराती हैं, हर एक चीज को इस तरह से बता देती है ना कि हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है।
2: एंड इट दैट्स द ग्रेट थिंग, जैसे मैं ये कहूँगी कि एक आरजे बन के हम लोग आपके जिंदगी में मैटर कर रहे हैं, एंड अगेन दैट्स अ ग्रेट थिंग। डॉक्टर साहब देखिए मुझे तो दीपांशी ऐसे ही हर चीज़ को देखिए लाइफ में, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि आपने एक ग्लास में थोड़ा सा मतलब पानी लिया और उसमें थोड़ा सा कोई भी कलर डाल दिया, फिर उसमें आप उस कलर को आप कैसे हटा सकते हो? दीपांशी तुमने एक ग्लास में थोड़ा सा पानी लिया जिसमें तुमने कलर डाल दिया, अब तुमको उस कलर को अलग करना है, क्या करोगे?
3: वो कैसे होगा मैम, कलर कभी नहीं अलग हो सकता।
2: हो सकता है
3: कैसे मैम?
2: दिमाग लगाओ तो फिर पता चलेगा।
3: नहीं पता,
2: बस उस कलर वाले गिलास को टैप के नीचे कर दो, अपने आप साफ पानी गिरता जाएगा, वो कलर कहाँ चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा और तुम्हारे ग्लास में वापस से साफ पानी आ जाएगा।
3: Yes,
2: तो ऐसे ही नेगेटिव थॉट्स होते हैं, नेगेटिव थॉट्स को दूर करने के लिए तुम्हें नेगेटिव थॉट्स लाने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव थॉट्स लाना शुरू करो। और कोई भी चीज़ जो ऐसी बॉदर कर रही है आपको, मतलब जैसे उंगली करना सरल भाषा में, उस उंगली से आप रास्ता ही बदल दो, ठीक है ना? एंड दैट इज ओनली थिंग, और एक जिंदगी एक ही बार मिली है, और अगर आप ऐसे ही लोग, मतलब दुनिया में बहुत सारे लोग आए हैं डॉक्टर लव, जो दुनिया में सिर्फ टाइम पास करने के लिए आए हैं, उसका उनका इस धरती पे कोई मतलब अगर देखा जाए तो बेटे जी नहीं है ना, वो फैमिली में किसी के लिए वैल्यू कर रहे हैं ना, वो किसी और की लाइफ में, इनफैक्ट दूसरों की लाइफ में प्रॉब्लम बन के ट्रबल बन के एकदम सीना तान के खड़े रहते हैं। मैं तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ा ट्रबल हूँ। तो ऐसे मतलब लोगों के लिए जो दुनिया में सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करने आए हैं, तो उनके लिए हमें अपनी ज़िंदगी को, वैल्यूएबल ज़िंदगी जो कि बड़ी मुश्किल से मिली है, किसी को ये नहीं पता कि दोबारा ज़िंदगी मिलेगी कहाँ मिलेगी, क्योंकि हमारे पास ये मेमोरी ही नहीं होगी, तो प्लीज़ अपनी इस वैल्यूएबल ज़िंदगी को यूटिलाइज करो, एक एक मिनट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
3: यही मनु सर बोलते हैं अक्सर, बाहर गजल में यही बोलते रहते हैं।
2: क्या बात है, ये हमारे यहाँ एक कार्जे हैं, रात में आते हैं, रात में ही चले जाते हैं, उनको कोई जल्दी देख नहीं पाता दिन दिहाड़े।
3: दिन दिहाड़े देखने की क्या जरूरत है?
2: जिसको आपने कभी देखा भी नहीं, आपकी आवाज सुन के आपको वो चीजें बॉदर करी, तो प्लीज बायकॉट करें।
3: मैम पूछी तो यही, बस इसीलिए तो मैंने कुछ नहीं बोला, ना ही किसी से कभी कुछ कहा। बट ये अपने आप में, मैं कभी अकेली में बैठती हूँ तो बहुत परेशान हो जाती हूँ सोचते सोचते कि मतलब ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, ये समझ नहीं आया।
2: ठीक है, तो चलिए मैं आपके लिए एक बढ़िया सा गाना सुनाती हूँ और इसको प्ले करती हूँ, इसको इसकी वाइब को फील करिए, ठीक है? फिर मैं आपसे फिर बात करूँगी।
1: बिना जी, हम आपको बताएं, हमारे साथ जो है वो ऑर्केस्ट्रा में कुछ लोग गाते थे, तो उनमें से दो की शादी हो गई, दोनों ठीक है, तो वो चला गया कमाने। तो जब वो मतलब आया लौट करके, जो मेरा दोस्त था, वो दोनों सिंगर थे ऑर्केस्ट्रा में, तो उसने अपनी गायकी वाले अंदाज में ही पूछा, जब अपनी वाइफ को पहले देखा, उसने कहा ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। उसकी पत्नी ने उसको उत्तर दिया, चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था। तो ऐसे चलते चलते लोग मिल जाते हैं आपको, चलने वाले लोगों की परवाह मत कीजिए।
3: या फिर ये बताया सर कि बैठे बैठे यूं ही खो जाते हैं।
1: हाँ, लेकिन वो चलते चलते मिला उनको। ऐसे जो लोग चलते चलते चला करते हैं।
2: ये बात सही है। हाँ। तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गाना आप सभी के लिए और दीपांशी के लिए स्पेशली। तो लेट्स हैव पार्टी टुगेदर, दुनिया जाए एक कोने में, हम तो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने जिएंगे, यही थॉट। थैंक यू दीपांशी, बाय। तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गाना।

0: डॉक्टर लव हमारे साथ हमारे पप्पू भाई हैं और प्रीति भी आई हुई हैं। गुड इवनिंग प्रीति, कैसी हैं? हरफन मौला, ये मतलब ये कौन सा टाइटल है भाई, मुझे नहीं पता चला। अपनी समस्या हमें सुनाए, फीस मात्र 500 रुपए, क्या बात है। और यहाँ बिना फीस के अगर आपकी समस्या दूर हो रही है तो इसमें क्या होगा। अरीबा आ गई है, 5 रुपीज लो, बता रहे हैं। 5 रुपए में कौन क्या बताता है, फिलहाल बिना कुछ दिए अगर कोई बता रहा है तो वो सही हो सकता है, क्यों डॉक्टर लव?
1: बिल्कुल सही है, हम निःशुल्क बताते हैं।
0: तो कुल मिला के दोस्ती और प्यार के बीच में दोस्ती की जीत हुई है आज। हाँ। लेकिन इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे हम लोग कल, मतलब कल यानी कि अगले शनिवार भी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ से ओपिनियन तो लूँ ही। और मैं चाहती हूँ फेसबुक पे भी हम लोग अपने ओपिनियन से, क्योंकि वहाँ पे भी हमारे बहुत सारे श्रोता है जो चैट रूम में आके बता नहीं पाते हैं या कॉल नहीं कर पाते।
1: हाँ, सही बात है, ये बात तो।
0: मैं चाहूंगी कि अभी ये मुकाबला जो है वो थोड़ा बाकी है। मैं वैसे प्यार के साथ हूँ और दोस्ती के भी साथ हूँ, लेकिन ज्यादा प्यार के साथ हूँ।
1: ज्यादा प्यार के साथ।
0: हाँ। क्योंकि प्यार अकेला खड़ा है ना,
1: अकेला खड़ा है।
0: और ऐसा महाभारत में देखा कि जिसका साथ कोई ना दे उसका साथ जरूर देना चाहिए।
1: जैसे दो दोस्ती में हम अगर हम देखें तो दो हस्ती मिलकर जब एक हो जाए तो वो दोस्ती होता है।
0: सीता जी लिखती है, लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता। और देखिए चैट रूम में जिस भी लड़की ने लाल दुपट्टा ले रखा हो वो फटाफट से अपना नाम बता।
1: हाँ,
0: क्योंकि सवालों का जवाब मिलना
1: मुश्किल है। अच्छा, यहाँ मुश्किल है क्योंकि अब कोई बताएगा नहीं कि हमने लाल दुपट्टा और रखा है कि नहीं।
0: क्यों नहीं, क्यों नहीं, मुश्किल सवाल जरूर है।
1: अच्छा, दुपट्टा लाल कैसे, लाल दुपट्टा उड़ गया ने मेरा हवा के झोंके से।
0: देखिए कवि जब लिख रहा होगा तो उसके मन में लाल दुपट्टा या कुछ कहते ना कि एक कलर ब्लाइंडनेस।
1: अच्छा,
0: कलर ब्लाइंडनेस में लोगो को ज्यादातर लाल रंग नहीं दिखता है।
1: नहीं दिखता है,
0: लाल रंग उनको काला दिखेगा, लाल नहीं दिखेगा। रोड सेल का कुछ मामला है, साइंस का मामला है थोड़ा, वो नहीं यहाँ डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, तो कभी शायद नाइट ब्लाइंडेड हो, वो कलर ब्लाइंडेड
1: हुआ, मतलब लाल
0: रंग नहीं दिखता होगा तो उसने लाल रंग को इमेजिन करके ये गाना लिख दिया होगा,
1: लाल दुपट्टा,
0: जहाँ तक मैं समझ पा रही
1: हूँ।
0: अगर वो कलर तो सबके अलग अलग पसंद है, मेरे को तो नीला पसंद है, पीला भी पसंद है, कलरफुल मल्टी कलर बहुत लोग को पसंद है। लेकिन लड़कियां ज्यादा मल्टी कलर पसंद करती हैं क्योंकि वो किफायती होता है, कई सूटों पे चल जाता है।
1: हाँ, सही बात है।
0: बिल कोई बात नहीं, आगे बात करते हैं। हमारे साथ हैं खुशी, इनका भी कुछ सवाल वाला गाना है। चलिए छोड़िए, ये सब चलता रहेगा, 2 कप चाय मिल गई, चलिए सरकार लिया जाए, समय भी हो चुका है। लिखती है आशु जी ने चाय भेजी। भाई देखिए, दोनों बहने बड़ी कमाल की है, आशु जी और प्रीति जी, चाय और नाश्ता यही दोनों।
1: हाँ, सही बात है, ध्यान।
0: ऐसे लिसनर मतलब कम होते हैं। आपको दिल से प्यार भरा नमस्कार, और मैं चाहूंगी कि ये डिजिटल चाय कब फिजिकल चाय बनेगी, इंतजार रहेगा।
1: सही बात है, डिजिटल को फिजिकल बनाना चाहिए।
0: तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ये दोस्ती और प्यार पे चर्चा ऐसे आगे बरकरार रहेगी। दिलों की धड़कनों को तरोताजा रखने के लिए डॉक्टर लव से मिलते रहिए। देखिए कोरिया में एक ऐसी मशीन आ चुकी है जहाँ पे आपकी धड़कनों को स्कैन करके बताया जा सकता है कि आपके दिल में कोई बसता है या नहीं। मतलब मेरे मतलब प्यार की बात नहीं मैं कर रही हूँ, चलिए तेरे बॉस, सबके दिमाग में बस एक प्यार का कीड़ा चलता है लेकिन कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। प्यार के साथ ये है कि लोग बहुत दोगलेबाजी करते हैं। आधो के मन में प्यार चल रहा है।
1: हाँ?
0: कहेंगे जरूर हम तो दोस्त ही जाएंगे, क्योंकि जैसे प्यार का नाम लेंगे तो कोई नाम पूछ लेगा कौन है भाई। दूसरों के सामने सिंगल और यहाँ ट्रिपल होते हैं ये लोग डिजिटल मीडिया पे,
1: क्या बात
0: है। नहीं भाई कोई बात नहीं, बातें भावनाओं की हैं, तो मेरा प्यार अकेला दिख रहा था तो मैंने सोचा प्यार का साथ दिया जाए।
1: हमने भी प्यार ही कहा था।
0: तो हम ही लोग हैं प्यार के साथ, बाकी तो वहाँ पता चलेगा फेसबुक पर।
1: फेसबुक
0: तो इसी के साथ अपने फेस चमका के रखिए, मिलेंगे फेसबुक पर और बातें करेंगे एक दूसरे का फेस देख के, और वहां से आपके जवाब को लेके आएंगे और यहाँ डॉक्टर लव के साथ बात करें, क्योंकि डॉक्टर लव का फेस नहीं दिखता है।
1: हाँ।
0: तो इसलिए फेसबुक पे नहीं है, फेस नहीं। पे तो मैं ही हूँ, ये ऑन एयर आते हैं। तो डॉक्टर लव चलते चलते कोई सलाह मशवरा जो देना चाहते हैं अपने श्रोताओं को।
1: बस बस सबसे पहले तो कल से भाई नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है तो सभी श्रोताओं को नवरात्रि की
0: खाने पीने का ध्यान रखें। हाँ। नवरात्रि में व्रत रखना का काम तो सभी करते हैं।
1: हाँ।
0: खाने का काम,
1: खाने का काम करें,
0: ठीक है।
1: मतलब व्रत वगैरह हो तो जो है वो कम से कम 2 दर्जन केला, 3 लीटर दूध, 5 किलो आलू, 1 किलो मूंगफली इसको तलकर प्रत्येक दिन खाएं,
0: अच्छी खासी डाइटिंग हो जाएगी,
1: डाइटिंग हो जाएगी और आप एकदम दुबले पतले हो जाएंगे।
0: ये बात तो आपने बताई, अपने पते की बात बताई,
1: एकदम उसको ध्यान रखना है।
0: क्या बात है। तो यहाँ गानों की फरमाइश के साथ आरजे बीना को दीजिए इजाजत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बजाते रहिए अपना वाला रेडियो स्टेशन गाल सिटी 9.6 FM। ये है
1: वो गुनाह शहर की धड़कन।
0: आप सुन रहे थे शो गुंडा मैसेज मसाला, आरजे बीना वाला विद योर आरजे बीना एंड योर
1: टिल लव।

0: प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC व डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर्स, किचन के लिए चिमनी HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड फायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर वन प्रोडक्ट तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है एनवी ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 901-935-5394 और 872-661-8000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
0: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
0: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: भारतीय डाक विभाग लाया है पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र योजना। इस योजना के तहत समस्त पेंशन भोगी अब घर बैठे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। इसके लिए डाक विभाग के मोबाइल ऐप पोस्ट इन्फो के माध्यम से या वेबसाइट IPPBonline.com पर रिक्वेस्ट डालनी होगी और डाकिया आपके घर जाकर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बना कर देगा। साथ ही 10 वर्ष से कम बच्चियों का सुकन्या समृद्धि खाता डाकघर में अवश्य खुलवाए एवं बच्चियों के भविष्य को सुरक्षित करे। भारत सरकार ने महिलाओं के लिए महिला सम्मान प्रमाण पत्र योजना का शुभारंभ किया था, जिसके तहत महिलाएं अधिकतम ब्याज के साथ बचत कर सकती हैं। ये सूचना अधीक्षक डाकघर गोंडा मंडल द्वारा जनहित में जारी।

सर, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो पर माय शिवी द्वार, जो सिंपल इज नॉट सो सिंपल। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून, एंजॉय करते हैं बहुत ही बेहतरीन सा नगमा और मिलते हैं इस बहुत ही खूबसूरत से गीत के बाद में। स्टे ट्यून एवरीवन।

नमस्कार आदाब एंड सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, आपकी अपनी आरजी सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। कैसे हैं आप सब, क्या है हाल चाल और क्या है आज की शाम में बहुत खूबसूरत बात जज्बात, मुझे चैट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। लेकिन उसके पहले जिन लोगों ने आज वो भी शनिवार रात्रि की प्लेलिस्ट नई खोली है, ओ माय गॉड किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूँ ना, मैं आ चुकी हूँ अपनी फरमाइशी की गठरी को खोल लीजिए, उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा गाना टटोल लीजिए, उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए और डेफिनेटली लगा दीजिए हजारों लाखों करोड़ों चांद, क्योंकि शो आपका, गीत आपके, जज्बात आपके और ये आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल तो हमेशा हमेशा हमेशा हमेशा हमेशा के लिए आपकी है ही ना दोस्तों। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। आशु मिश्रा जी लखनऊ से, धर्मेश त्रिपाठी गोंडा से, मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से, अजय मिश्रा, सुरेंद्र यादव गौरा चौकी से, उदालक शर्मा मनकापुर से, राजेश कुमार जी मालवे नगर गोंडा से, राजू सीतापुर से, मोहित मालवे नगर गोंडा से, सोनिया तिवारी गोंडा से, राजेश कुमार सिंचाई विभाग गोंडा से, विजय रावत अरविंद जी, उषा कश्यप जी गोंडा से, जुगल किशोर वर्मा जी एमपी से, मीनू कश्यप सीतापुर से, निधि सीतापुर से, कार्तिक कश्यप गोंडा से, उत्कर्ष कश्यप गोंडा से, धर्मेंद्र मोहन जी आवास विकास गोंडा से, इट्स कुमार एमपी रीवा से, स्टे ट्यून्ड एंड वेलकम इन योर शो, सुरेश कुमार जी चौक से, निबर जी रानी बाजार सुनार गली गोंडा से, मुमताज अंसारी जी गोंडा से, सबीहा गोंडा से, निशा पटेल नगर गोंडा से, अनूप मिश्रा गोंडा से, स्टे ट्यून्ड एंड वेलकम इन योर शो। एंजॉय करते हैं बिना किसी देरी के हमारी आज की पहली फरमाइश। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास में पहली फरमाइश है आशु मिश्रा जी की लखनऊ से, उनको सुनना है गाना उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज में, हम दिल दे चुके सनम पिक्चर का चांद छुपा बादल में। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा सुपर डुपर डुपर हिट नगमा, ऐश्वर्या राय और सलमान खान का सिर्फ और सिर्फ हमारी आशु मिश्रा जी की फरमाइश पर जो की है लखनऊ से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

हमने एंजॉय किए ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में सिर्फ और सिर्फ आशा मिश्रा जी की फरमाइश कर चुकी है लखनऊ से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ, लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो के गुप्ता जी तिरंगा कॉम्प्लेक्स गोंडा से आपका स्वागत है, और इसी के साथ में गौरव तिवारी मालवीय नगर गोंडा से वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। और इंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश जो की है धर्मेश त्रिपाठी की, और धर्मेश त्रिपाठी को सुनना है गाना दिल के बदले सनम दर्दे दिल ले चुके और दे चुके तुझे दिल ये दिल दे चुके। ओ माय गॉड क्योंकि का ये गाना हम एंजॉय करेंगे उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज में धर्मेश त्रिपाठी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। ओ माय गॉड आई लव दिस सॉन्ग।

देखिएगा, ये सुपर डुपर हिट नगमा हमने एंजॉय किया है सिर्फ और सिर्फ धर्मेश त्रिपाठी की फरमाइश पर। अब एंजॉय करेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश, लेकिन उसके पहले धर्मेश त्रिपाठी का कुछ कहना है दोस्तों, सुन लेते हैं ना। इनका कहना है कि आपकी आवाज में जादू है और बातों में मिठास, फरमाइश पूरी करके आपने जगा दिया विश्वास। यूं ही गूंजती रहे सदा आपकी महफिल, आरजे सिंपल आप सच में हैं बहुत खास। फ्रॉम धर्मेश त्रिपाठी, ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच। एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश है मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा की, और मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा को सुनना है गाना तेरे दर को मैं छोड़ कहां जाऊं। सो एंजॉय करेंगे ये डिवोशनल सॉन्ग। और जी हाँ दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं एडवांस में आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से और मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा की तरफ से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, ओ माय गॉड, हैप्पी नवरात्रि।

दर को छोड़ कहाँ जाऊँ, वहाँ दूजा कोई द्वार न दिखे। हम एंजॉय के हैं मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा की फरमाइश पर नवरात्र के उपलक्ष में ये बहुत ही खूबसूरत सा डिवोशनल सॉन्ग बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश गीत की तरफ। लेकिन उसके पहले दोस्तों, धर्मेश त्रिपाठी का कहना है कि सुरों में माता की भक्ति का साज सजे, आपके शो में हमेशा खुशियों का ढोल बजे, आरजे सिंपल जी माँ दुर्गा का सदा रहे सिर पर हाथ, मुबारक हो आपको पावन नवरात्र की सौगात, हैप्पी नवरात्र, हैप्पी नवरात्र यू टू, एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। दीपू पांडे आपका स्वागत, और एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों गौरव तिवारी की मालवे नगर गोंडा से। गौरव तिवारी को मालवे नगर गोंडा से सुनना है गाना पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा और बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। इंजॉय करेंगे गौरव तिवारी की फरमाइश पर यह गाना जो कि है मालवे नगर गोंडा से, और आज उनके पिताजी का श्राद्ध, सो इसलिए उनको सुनना है ये गाना। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

तक का ये गाना हमने एंजॉय किया है उदित नारायण जी की आवाज में, गौरव तिवारी की फरमाइश पर जो कि है मालवे नगर गोंडा से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों सुरेंद्र यादव जी की गौरा चौकी से, और सुरेंद्र यादव जी को गौरा चौकी से सुनना है नवरात्र स्पेशल प्लेलिस्ट से ये भक्तिमयी गाना। जी हाँ दोस्तों, माई डोली चढ़ी चले ली सेवक घर वासो, इंजॉय करेंगे पवन सिंह की आवाज में नवरात्र स्पेशल प्लेलिस्ट से ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, और ये सच में फरमाइश है सुरेंद्र यादव की गौरा चौकी से। स्टे ट्यून्ड, हाय हाय, हैप्पी नवरात्रि वंस अगेन एवरीवन। गणपत बप्पा गए, माता जी आ गई, हाय हाय। मतलब भगवान जी भी चाहते हैं कि हम लोग खुश रहें किसी ना किसी बहाने। थैंक यू भगवान जी, और बोलिए साचे दरबार की जय।

ओह माय गॉड, ऐसा लग रहा है कि मैं तो भैया बैठी हूँ एकदम से जागरण में और ये अपराध भर जैसे जगराता होते रहेगा और ऐसे ये माता जी के देवी गीत सुनते रहेंगे और भक्ति में एकदम से रहेंगे, एकदम से मगन रहेंगे। आए हाय मजा आ गया। इसका मतलब अगर अभी से ये हाल है तो पूरी नवरात्र सिर्फ मैया ही मैया गूंजेंगी, हर तरफ सिर्फ मैया के ही जयकारे लगेंगे। ओ माय गॉड, मुझे तो आज ही से बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा। और इसका सिर्फ और सिर्फ अगर किसी को श्रेय जाता है तो आप सभी को, क्योंकि आप सभी हैं जिन्होंने पहले से ही मुझे एकदम एनर्जी से भर दिया, पहले से ही मेरे मूड में एकदम स्विंग सा कर दिया। जैसे मेरे घर वाले आज साफ सफाई में लगे हैं तो सो के उठ के ही पता चल गया ओ माय गॉड कल से नवरात्रि है, और फिर आज यहाँ के ओ माय गॉड ओ वाओ कल से नवरात्रि है, और फिर उसके बाद में जब माता जी आएंगी तब तो मजे ही मजे बल्ले ही बल्ले। सो हमने एंजॉय किया है सुरेंद्र यादव की फरमाइश पर, बहुत ही खूबसूरत सा नगमा मैया रानी वाला एंजॉय करेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश। और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों उदालक शर्मा की, मन का पुरसे। यू नो वॉट, मन का पुरसे उदालक शर्मा को सुनना है गाना जुग जुग जिए तो ललनवा भवनवा के भाग जागल हो। सो एंजॉय करेंगे ये सोहर मैथिली ठाकुर जी की आवाज में सिर्फ और सिर्फ उदालक शर्मा की फरमाइश पर। और शायद जिनको ललन जी हुए हैं, जिनको ये गाना डेडिकेट करना चाहते हैं उदालक शर्मा जी, उनका नाम है अनिल पाल, गांव है मरियादपुर, जिला है मऊ, राज्य है उत्तर प्रदेश। तो अनिल पाल जी ढेरों सारी शुभकामनाएं आपको और उदालक शर्मा जी आपको। सो इंजॉय करते हैं ये सोहर, और जिनके जिनके भी घर हुए हैं ललनवा उन सभी को डेडिकेट करते हैं आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल ये गाना। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, एंड सुरेंद्र जी आपको भी नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं।

एंजॉय किया है ये सोहर मैथिली ठाकुर की आवाज में, सिर्फ और सिर्फ दालक शर्मा की फरमाइश पर। और ऐसा नहीं लग रहा था कि हम लोग सच में बैठे हैं उसी सभा में जहां सोहर गाया जा रहा है। बच्चे के होने पे एक दादी जी ढोलक लेके बैठी हैं, एक आंटी जी हारमोनियम लेके बैठी हैं, और सबके सब बस लीन है इसी में। और इसके बाद में अब मिलेगा हम लोग को सठोरा, सठोरा के बाद में ओ माय गॉड और भी जो भी मिठाइयाँ उठाइयाँ आई होंगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हमने सिर्फ सोहर गाया है। उदालक शर्मा जी आपने मिठाइयाँ तो भेजी नहीं, अरे कम से कम चैट बॉक्स में ही रसगुल्ला, मोतीचूर का लड्डू, कुछ ऐसा ही कुछ भी भेज दीजिए, बस भेज दीजिए ना चैट बॉक्स में। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में राजेश कुमार सिंह जी की मालवीय नगर गोंडा से, उनको सुनना है गाना अगर दिल हमारा शीशे के बदले। सो एंजॉय करते हैं कुवारा ही कुवारी पिक्चर का ये गाना किशोर कुमार जी की आवाज में, सिर्फ और सिर्फ मालवीय नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश। फर्स्ट स्टे ट्यून्ड एवरीवन। ओहो

अगर दिल हमारा शीशे के बदले पत्थर का होता, बहुत ही बढ़िया होता, गजब का होता। लेकिन इसके साथ में मेरे लिसनर्स का पूछना है कि अगर दिल पत्थर का होता तो दिल में मतलब लाइक खून पंप कैसे करता, बताओ ना खून कैसे पंप करता, फिर हमारी ये दिल की धड़कनें जो ये दुक दुक दुक दुक होती हैं वो कैसे होती, फिर कैसे कैसे ये दिल धड़कता किसी को देख के, आंखें चार कैसे होती हैं जनाब बताओ जरा। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है राजू की सीतापुर से, और राजू को सीतापुर से सुनना है गाना तू पागल प्रेमी आवारा दिल तेरी मोहब्बत का हमारा। सो एंजॉय करेंगे ये गाना शोला और शबनम पिक्चर का, कविता कृष्णमूर्ति और अमित कुमार की आवाज में, सिर्फ और सिर्फ राजू की फरमाइश पर जो की है सीतापुर से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

पहचान लिया रे, अपना तुझे मान लिया रे, हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा शोला और शबनम पिक्चर का कविता कृष्णमूर्ति और अमित कुमार की आवाज में, और इसमें अभिनय किया है गोविंदा और दिव्या भारती ने। दिव्या भारती कितनी सुंदर, कितनी हॉट है ना, मतलब थी ना। सो एंजॉय करेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश, और अगली फरमाइश है दोस्तों मोहित की माल पे नगर गोंडा से, उनको सुनना है गाना कोयल सी तेरी बोली कू कू कू कू कू। सो एंजॉय करते हैं मोहित की फरमाइश और ये गाना, और ये गाना है बेटा पिक्चर का, आवाज है अनुराधा जी की और उदित नारायण जी की। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। कभी कभी ज़्यादा हो जाता है ना, वैसे ये ज़्यादा होना चाहिए, ये एक्स्ट्रा जब तक नहीं होता ना जिंदगी में कुछ मज़ा नहीं आता दोस्तों मित्रों।

एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। ये तो फरमाइश थी मोहित की मालवीय नगर गोंडा से। अगली फरमाइश हमारे पास में है सोनिया तिवारी की गोंडा से। सोनिया तिवारी को गोंडा से सुनना है गाना आज मधोश हुआ जाए रे। एंजॉय करते हैं ये ओल्ड इज गोल्ड नगमा किशोर कुमार और लता जी की आवाज में शर्मीली पिक्चर का सिर्फ और सिर्फ सोनिया तिवारी जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

मैंने को ललचाए रे मेरा मन, किशोर कुमार लता जी की आवाज में शर्मीली पिक्चर का ये गाना हमने एंजॉय किया है। हमारी सोनिया तिवारी जी की फरमाइश पर जो हैं गोंडा से, इसी के साथ में सोनिया तिवारी जी का कहना है कि दिल मेरा थोड़ा इस कदर की अब कोई ख्वाहिश ना रही, तो किसी और का हो गया और मुझे कोई शिकायत ना रही। हम तो समझे थे कि तुम सिर्फ हमारे हो, पर जमाने की राहों में तुम किसी और के सितारे हो गए। ओ वाओ, एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। प्रीति शुक्ला जी बहराइच से आपका स्वागत और इस्तकबाल है आपकी अपनी फरमाइश की महफिल में। अगली फरमाइश हमारे पास में है राजेश कुमार की, सिंचाई विभाग से उनको सुनना है गाना हम तुम पर मरते हैं तुम हम पे मरते हो। हीरो नंबर वन का ये गाना हम इंजॉय करेंगे सिर्फ और सिर्फ राजेश कुमार की फरमाइश पर जो कि है सिंचाई विभाग गोंडा से। स्टे ट्यून्ड।

वाओ दोस्तों, हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सनगमा राजेश कुमार की फरमाइश पर, जो कि है सिंचाई विभाग गोंडा से। बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ, लेकिन क्या आप सभी तैयार हैं अगली फरमाइशी गीत को एंजॉय करने के लिए? क्यों नहीं तैयार होंगे, डेफिनेटली तैयार होंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा तैयार नहीं हूँ अभी। क्या है ना कि इतनी अच्छी सी शेरो शायरी हो गई है ना सोनिया जी की तरफ से, कि मेरा भी कुछ कहने का मन कर रहा है दोस्तों, और मन इतना कह रहा है, इतना कह रहा है, इतना कह रहा है कि जिसका कोई जवाब नहीं, जिसकी कोई हद नहीं है। सो कहना चाहूंगी ये कि अर्ज किया है कि गर है खराब तो उसे खराब कहिए, गर है खराब तो उसे खराब कहिए, जरूरी नहीं हर किसी को जनाब कहिए। कागज के फूलों से महक ना आएगी, कागज के फूलों से महक ना आएगी, इसलिए जो गुलाब है उसे गुलाब कहिए। अंधेरी रातों में जुगनू ही सूरज है, अंधेरी रातों में जुगनू ही सूरज है, फिर उस घड़ी को ही आफताब कहिए, जो नींद टूटने पर भी रह जाए आंखों में, जो नींद टूटने पर भी रह जाए आंखों में, उसे ही सच में कोई ख्वाब कहिए। सो एंजॉय करते हैं अब अगली फरमाइश। अगली फरमाइश है विजय रावत की, उनको सुनना है गाना दूध का कर्ज पिक्चर का, बीन बजाऊं तुझे बुलाऊं से। एंजॉय करेंगे ये नगमा एंड दोस्तों इसी फरमाइशी गीत के उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारी आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया में, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहां गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपकी अपनी आर्ज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। जिन लोगों ने पेट पूजा नहीं की है फटाफट से जाके पेट पूजा कर लो, फिर सीधे 9 बजे फरमाइशी की महफिल में आ जाना। और आप डेफिनेटली सुन रहे हो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, आपकी अपनी खट्टी मीठी कड़वी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, एंजॉय करते हैं ये गाना।

एक बार फिर से इस्तकबाल है आप सभी का आपकी अपनी फरमाइशी की महफिल में, आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। सो दोस्तों, एंजॉय करेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश को, लेकिन उसके पहले कहना चाहूँगी कि राबते भी रखता हूँ, रास्ते भी रखता हूँ, हर किसी से मिलता हूँ, फासले भी रखता हूँ। गम कहाँ मनाता हूँ छोड़ जाने वालों का, तोड़ कर ताल्लुक मैं दर खुले भी रखता हूँ। मौसमों की गर्दिश से मैं निकल तो आया हूँ, याद पर खिजाओं के हाथ से भी रखता हूँ। वक्त के मुताबिक अब खुद को है बदलना, वक्त को बदलने के हौसले भी रखता हूँ। सो एंजॉय करते हैं दोस्तों हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है धर्मेंद्र मोहन की आवाज विकास गोंडा से। धर्मेंद्र मोहन को आवाज विकास गोंडा से सुनना है गाना डांस लाइक पंजाबी। सो एंजॉय करते हैं लव एक्सप्रेस का ये गाना सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र मोहन की फरमाइश पर, जो कि है आवाज विकास गोंडा से। और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की खटी मीठी कड़वी बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। वाओ, स्टे ट्यून्ड एवरीवन। ओहो, so dance like Punjabi,

गाना भी हमने इंजॉय किया, लव एक्सप्रेस का ये गाना सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र मोहन की फरमाइश पे जो की आवाज विकास गोंडा से। और नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अगली फरमाइश हमारे पास में है एडवोकेट सुनील मझारा की। एडवोकेट सुनील मझारा को सुनना है गाना, वो है जग से बेमिसाल सखी री तुझे क्या बतलाऊं। सो एंजॉय करेंगे लखबीर सिंह लखा की आवाज में नवरात्र स्पेशल प्लेलिस्ट से ये वाला गाना सिर्फ और सिर्फ एडवोकेट सुनील मझारा की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों इट्स कुमार की और केके गुप्ता की तिरंगा कॉम्प्लेक्स गोंडा से। इट्स कुमार को और तिरंगा कॉम्प्लेक्स गोंडा से केके गुप्ता जी को सुनना है गाना कुवारा नहीं मरना। सो एंजॉय करते हैं ये गाना इश्क कुमार। इट्स कुमार का कहना है कि आज के बाद मुझे इट्स कुमार नहीं इश्क कुमार कहना। तो चलिए एंजॉय करते हैं इश्क कुमार और केके गुप्ता जी की फरमाइश पर ये गाना। आय हाय आय हाय आय हाय

मर जाऊं तो गम नहीं कुवारा नहीं मरना। अलका याग्निक की आवाज में जान पिक्चर का ये गाना हमने एंजॉय किया, केके गुप्ता जी की फरमाइश पर और हमारे इश्क कुमार की फरमाइश पर जो की है एमपी रीवा से। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों उषा कश्यप जी की गोंडा से। और आपको पता है क्या, उषा कश्यप जी को गोंडा से सुनना है गाना तेरी बंजारन रास्ता देखे कब आएगा मेरे बंजारे से। एंजॉय करते हैं उषा कश्यप जी की फरमाइश पे ये वाला गाना, स्टे ट्यून्ड मेरे बंजारे।

आएगा मेरे बंजारे, हमने एंजॉय किया है ये गाना अलका याग्निक की आवाज में बंजारन पिक्चर का, सिर्फ और सिर्फ उषा कश्यप की फरमाइश पर। अगली फरमाइश हमारे पास में है मीनू कश्यप की सीतापुर से और प्रीति शुक्ला जी की बहराइच से। मीनू कश्यप को सीतापुर से और प्रीति शुक्ला जी को बहराइच से सुनना है गाना। आंखों में नींदे ना दिल में करार, मोहब्बत भी क्या चीज होती है यार। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, एंजॉय करते हैं ये हाउ रोमांटिक वाला गाना अलका याग्निक कुमार सानू की आवाज में। स्टे ट्यून्ड।

में नींदे ना दिल में करार, मोहब्बत भी क्या चीज होती है यार। हमने एंजॉय किया है ये गाना प्रीति शुक्ला जी की फरमाइश पे, जो की है बहराइच से, और मीनू कश्यप जी की फरमाइश पे, जो की है सीतापुर से। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों अरविंद की और मुस्तफा जी की सऊदी से। अरविंद को और मुस्तफा जी को सऊदी से सुनना है गाना तू शायर है मैं तेरी शायरी। सो साजन पिक्चर का ये गाना अलका याग्निक की आवाज में हम इंजॉय करेंगे अरविंद जी की और मुस्तफा जी की फरमाइश।

और अगर साजना को खबर ही ना हो तो मिलने का दिल करता रहे और तू शायर है, मैं तेरी शायरी, ये तू कहती रहे कहती रहे कहती रहे। सो हमने एंजॉय किया साजन पिक्चर का ये गाना अरविंद की फरमाइश पर, और अब बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ। ये तो फरमाइश थी अरविंद की मुस्तफा जी की सऊदी से। अगली और आखिरी फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों निधि की सीतापुर से, उनको सुनना है गाना पान खाए सैया हमार। इंजॉय करेंगे पान खाए सैया हमार, इसी के साथ लेना चाहूंगी अलविदा दोस्तों। सो बस यही तक कहना चाहूंगी कि हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, गुनगुनाते रहना, अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना और सुनते रहना रेडियो 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो गाइस हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड फैमिली एज वेल। समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना, आजू बाजू वालों पर वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है, और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता। इनफैक्ट बहुत सारा सवाल बनता है क्योंकि कल मैं नहीं मिलूंगी, कल है संडे, संडे मींस फंडे, फंडे मींस हॉलीडे, ओह माय गॉड। सो कल मुझे ढेर सारा मिस करना और फिर मिलेंगे परसों, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम, बहुत सारा प्यार आपके अपने आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए, आप सबकी तरफ से बेइंतहा बेतहाशा प्यार आपके आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए। लव यू ऑल, स्टे ट्यून, मिलते हैं सीधे मंडे को, बाय बाय। इंजॉय करते हैं ये गाना और एक बार फिर से हैप्पी नवरात्रि आप सभी को, दिल से खुश रहिए, लोगों की मत सोचिए क्योंकि ये जिंदगी अपने लिए जीने को मिली है, एक्सक्यूज मी। सो पहले खुश को रखो, पहले खुद को खुश रखो, फिर दूसरे के बारे में सोचना। मैं ये नहीं कहती हूँ दूसरे के बारे में मत सोचना, बिल्कुल सोचना, बिल्कुल सोचना, प्रायोरिटी देना, लेकिन पहली प्रायोरिटी अपने आप को देना। ओके बाय बाय, लव यू ऑल, स्टे ट्यून, एंजॉय करते हैं पान खाए सैया हमार। बाय बाय। Thank you so much, everyone.

0: नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु, और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में, सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं, सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
2: गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है, गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC वर डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर, किचन के लिए चिमनी HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड वायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर वन प्रोडक्ट तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है एनवी ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 9019353594 और 8726168000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।
3: अरे सुना
4: क्या?
3: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
4: वाओ!
3: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545853546।
5: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
6: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
6: आज ही कॉल करें 9286 9976 9260 9819176। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
5: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
6: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही दस्त प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान, पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
1: क्या आप या आपका कोई अपना जले के निशान, सफेद दाग, जन्मजात समस्याओं या कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए बड़े शहर जाने की सोच रहे हैं? तो अब गोंडा में ही उपलब्ध है इंटरनेशनल लेवल की सर्जरी सुविधा। देवी पाटन मंडल का पहला प्लास्टिक सर्जरी एवं बर्न सेंटर समर्पित SKKM मेमोरियल लाइफ केयर हॉस्पिटल, जहां 5000 से ज्यादा सफल सर्जरी का अनुभव रखने वाले MCH स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुधीर कुमार मौर्य द्वारा प्लास्टिक सर्जरी, जले हुए मरीजों का इलाज, सफेद दाग और दूरबीन विधि से पथरी, हार्निया, अपेंडिक्स, हाइड्रोसील, पाइल्स और भगंदर का सफल इलाज होता है। यहाँ आयुष्मान कार्ड से कैशलेस इलाज और 24 घंटे इमरजेंसी व ICU सुविधा भी उपलब्ध है। आज ही कॉल करें 0552-460-562। ये व्हाट्सएप करें 9592-904-908 पर। लाइफ केयर हॉस्पिटल का पता है झंझरी ब्लॉक के पास, बेलसर रोड, गोंडा। पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी। आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
3: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी, निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9970-9251-8840-098-123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
4: जी हाँ जी हाँ जी हाँ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या। जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो गणेशलीट 9.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन। कार्यक्रम चल रहा है बहारे गजल और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। आज शनिवार है और गजलें हमारी, गीत आपके। तो भाई पहले हम आपको गजल सुना देते हैं और इस गजल के बाद आपसे सुनते हैं गीत। फिलहाल आप सभी के लिए ये प्यारी सी गजल और इसके बाद गीतों का सिलसिला करते हैं।

0: जी हाँ जी हाँ जी हाँ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या। शाम का सलाम कबूल करें आप, आदाब आप सभी को। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM। ये गोंडा ही नहीं, अब बन चुकी है हम सभी के दिलों की धड़कन। और आज भाई लग रहा है कि हमारी महफिल बहुत शानदार होने वाली है। श्री अनिल बनर्जी जी हैं दादा चरण स्पर्श आपको, सविता शास्त्री जी हैं चरण स्पर्श भाभी माँ, तेजनारायण शुक्ल जी हैं चरण स्पर्श आपको भी। और क्या बात है, बहुत दिनों के बाद इस महफिल को गुलजार किया है शिल्पी जी ने चरण स्पर्श आपको भी। बहुत दिनों के बाद आप दिखाई पड़ी भाई, और अब लगता है जी हमारे साथ कोई जुड़ चुका है। देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो
1: नमस्कार।
0: अरे दादा दादा चरण स्पर्श, आज तो पूरा परिवार बैठा है।
1: जी हाँ जी हाँ, खुश रहिए, कैसे हैं आप?
0: जी आशीर्वाद है आपका।
1: और बढ़िया है आपका?
0: जी जी, और नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक अग्रिम शुभकामनाएं आपको।
1: आपको भी और पूरे परिवार को, आपको और जो भी ज्ञानस्थली का परिवार है सभी लोग।
0: जी और कैसे हैं दादा?
1: बस मैं बढ़िया हूँ। तो मैंने कहा उस दिन दरअसल मैं सो गया था क्योंकि थका हुआ था।
0: जी जी
1: तो उसके लिए सॉरी। बुधवार का
0: ऐसा मत कह दीजिए, ऐसा कहेंगे तो
1: नहीं, जो भी है
0: नहीं नहीं मतलब।
1: तो मैं आज यशुदास जी का गाना फिल्म स्वामी पिक्चर का
0: जी
1: वो गाना है ना
0: जी,
1: का करूं सजनी आए ना बाल
0: बाल। उनको हिंदी बोलनी तक नहीं आती थी सोचिए, और उन्होंने इतना अच्छा गीत गाया है
1: ये बहुत। अरे यशुदास जी तो बहुत अच्छे क्लासिकल और बहुत बढ़िया। तो मैं थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ सर, कोशिश चाहूंगा।
0: जी दादा बिल्कुल।

0: थैंक यू सर।
1: अरे दादा अरे दादा, मतलब एक बात कहूँ, आप अगर बुरा न माने तो बात कहूँ।
0: अरे बोले बोले सर।
1: मतलब आज आपने वास्तव में क्लासिकल गाया है, वास्तव में इतना बेहतरीन क्लासिकल। आपके सारे गीत अच्छे होते हैं, लेकिन आज जो आपने शुरुआत की है और क्या क्लासिकल टच दिया है, आहा, मतलब अब नहीं, इस पर आपने रियाज किया है?
0: नहीं, रियाज नहीं किया, मैं डायरेक्ट गाया हूँ।
1: लेकिन मतलब कभी रियाज किया होगा आपने, क्योंकि बिना रियाज किए इतना क्लासिकल टच दे पाना बहुत मुश्किल काम है।
0: थैंक यू सर।
1: क्या बात है दादा, क्या बात है, बहुत शानदार, मतलब क्या क्लासिकल अंदाज है आपका, आज मजा आ गया।
0: थैंक यू सर।
1: जी चरण स्पर्श। जी हाँ भाई, तो ये शुरुआत बहुत शानदार हो गई और श्रीतेज नासुक जी लिखते हैं बेहतरीन शुरुआत, और एक सुझाव रफी साहब को अपने साथ रखें। जी हाँ, लेकिन आज तो यशुदास की आवाज़ ने भी एकदम कहर सा ढा दिया। जी हाँ, अब हम चाहेंगे भाई, बहुत दिन से हमने नहीं सुनाया, सविता जी को भी बहुत दिन से नहीं सुना है हमने, हमारे शिल्पी जी की आवाज़ वादियों में, हमारे कार्यक्रम में तो नहीं गूंजी है, तो भाई ज़रूर चाहेंगे कि दूरभाष क्रमांक आपका वही है 63 93 31 6 3 9 3 3 1 6 4 2 9। शुरुआत कर दी है दादा ने, और बहुत प्यारी शुरुआत की है ये कहना पड़ेगा, मतलब इतना क्लासिकल टच दे पाना शायद आसान काम नहीं होता। तो प्रतीक्षा है आपके शुभागमन की, और जब तक आपका फोन हमारे पास नहीं आता, चलिए आपको सुनाते हैं कि प्यार सा नगमा, और इस नगमे के बाद, जी हाँ, और देखिए मेरा फोन आ चुका है। हेलो,
2: दिस कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड।
3: नमस्कार सर।
1: अरे चलो स्पर्श, मैं अगर
3: खुश रहिए,
1: गलत नहीं हूँ तो आप गोरखपुर से ही हैं?
3: हाँ, मैं गोरखपुर से सविता शास्त्री बोल रही हूँ।
1: कैसी हैं आप?
3: ठीक हूँ, अच्छी हूँ, अपनी बताइए, तबीयत ठीक है आपकी?
1: जी जी, आपका आशीर्वाद।
3: हाँ, क्योंकि आप नहीं आए थे ना गुरुवार को।
1: हाँ, कुछ समस्या थी।
3: तो मैं सोची कोई तबीयत वगैरह खराब।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं, कुछ ऐसा नहीं था, स्वास्थ्य भगवान आप लोगों की कृपा से ठीक रखते हैं।
3: ठीक ही रहे, बहुत अच्छी बात है।
1: और बहुत दिन के बाद आपको सुनने जा रहे हैं।
3: जी, वो भी बहुत कोशिश, उस दिन भी बहुत कोशिश की, लेकिन हमारे यहाँ ना लाइट थी और आंधी पानी से एकदम पूरी लाइट चली गई थी और नेटवर्क काम ही नहीं कर रहा था। लास्ट में आया तो समय समय हो गया था।
1: जी जी जी जी, हाँ हाँ।
3: तो आज मैं कोशिश कर रही हूँ एक गीत गाने का, जो गीत गाता चल फिल्म का है। और इस गीत को मैं आपके कार्यक्रम को, जितने सुनने वाले हैं श्रोता है इसमें, उन सभी को डेडिकेट करती हूँ।
1: क्या बात है,
3: कोशिश कर रही हूँ।
1: अरे नहीं नहीं,
3: बहुत दिनों के बाद में
1: आपकी कोशिश बहुत शानदार होती है।
3: ठीक है, तो शुरू करें?
1: जी जी।
3: Thank you.

किसी को बुलाए, जिसके मन भाई वो उसी के गुनेगा। ओ कौन जाने बांसुरिया किसको बुलाए, जिसके मन भाई वो उसी के गुने गाए। कौन नहीं बंसी का धुन का गुलाम, कौन नहीं बंसी के धुन का गुलाम। राधा कभी श्याम हो तो मेरा कभी श्याम, राधा कभी श्याम हो तो मेरा

अंक करे मीरा को यूं बदनाम, लोग करे मीरा को यूं

0: नाम, राधा कभी श्याम हो तो मेरा कभी श्याम, राधा कभी श्याम हो तो मेरा कभी श्याम, राधा कभी श्याम हो तो मेरा कभी श्याम। धन्यवाद
1: सर। अरे तालियां भाई, वाह वाह वाह वाह।
0: बहुत मुश्किल से गाई आदमी, और गला तो साथ नहीं दे रहा।
1: और मैं आपको बताऊं कि अभी तक आपने कोई क्लासिकल गीत नहीं गाया था, और आज पहली बार हमको लगा खरबूजे को देखकर खरबूजे ने रंग बदला। और मतलब क्या एक भी शब्द का कहीं हेर से नहीं होता। आपकी पहली खास बात तो ये होती है कि आप गीत पूरा सुनाती हैं और एक भी शब्द आपके गलत नहीं होते, कभी नहीं होते। और आज तो आपने भाई, जो मैं मानता था कि एकदम सीधा सीधा आप गाती हैं, अलाप नहीं लेती, उतार चढ़ाव और इतना अच्छा गा लेती हैं, आज आपने मेरा वो वहम भी तोड़ दिया कि नहीं, हमको अलाप लेना भी आता है। बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत अच्छा लगा, क्या बात है। और आपके गीतों का चयन तो मैं हमेशा आपके गीतों के चयन की तारीफ करता हूँ। जैसे आपने वो गाया था आपके सज्जन सावन में, तो वो बहुत कम लोग गाते हैं। तो मतलब आपके पास जो कलेक्शन है, जो संग्रह है, वो बहुत अच्छा है। मतलब आप साहित्य की बहुत अच्छी विद्यार्थी रही होंगी।
0: अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि आपके बार बार आग्रह करने से मेरी हिम्मत थोड़ी बढ़ती है, नहीं तो अभी मतलब मेरे गले एकदम साथ ही नहीं दे रहा था।
1: नहीं नहीं, लेकिन हमको तो लगा कि आपके गले ने कहीं साथ छोड़ा हो।
0: धन्यवाद।
1: और बहुत अच्छा लगा,
0: खुश रहिए।
1: जी हाँ भाई, तो ये आवाज आप सुन रहे हैं, और गोरखपुर की ये प्यारी सी आवाज, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। और इसके बाद कोई और जुड़ चुके हैं। जी हाँ, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो।
2: हाँ नमस्कार।
1: दर्द कुमार जी, कैसे हैं आप?
2: ठीक है भैया, आप सबको नवरात्रि।
1: हाँ आप, मैं भी हाँ। आप ही कह दीजिए।
2: हाँ, नवरात्रि का शुभ कामना सभी भाइयों को
1: जी,
2: और मनु भाई आपको भी
1: जी,
2: सभी निष्ठा भाई को जय माता दी
1: जी, जय माता दी।
2: और आप कैसे हैं?
1: जी जी, आशीर्वाद आपका।
2: चलो भैया, भगवान खुश रखे, माता जी आपको सदा खुश रखे
1: जी।
2: चलो भैया, फिर एक गीत सुनाए जी थे कुछ तरह से।
3: ये समा तो जली रोशनी के लिए, एक समा से कहीं आग लग जाए तो ये समा क्या करे, ये हवा तो चली सांस ले सब कोई, आंधिया से उजर जाए घर तो ये हवा क्या करे, ये समा तो जली रोशनी के लिए। ओ ओ कल के पूरब से ठंड हवा आ गई, कल के पूरब से ठंड हवा आ गई, उसके पर बस काली घटा छा गई, ये घटा तो उठी प्यास सब की बुझी, आधिया से गिरी बिजलियाँ तो ये घटा क्या करे, ये शमा तो जली रोशनी के लिए। पूछता हूँ मैं सब से कोई दे जवाब, पूछता हूँ मैं सब से कोई दे जवाब, ना खुदा है जानिब जनाब, ना खुदा लेगी सांस डूब जाए कहीं ना, मझधार में तो ये ना खुदा क्या करे, ये समा तो जले रोशनी के लिए, ओ ये जो उलझन सी तेरे ख्यालों में है, ये जो उलझन सी तेरे ख्यालों में है, वो इशारा भी मेरे सवालों में है, ये निगाह तो उठी देखने के लिए, पर नजर ये धोखा खा जाए तो ये निगाह क्या करे, ये शमा तो जली रोशनी के लिए, एक समा से कहीं आग लग जाए तो ये समा क्या करें।
1: क्या आवाज है भाई, आया सावन झूम के, और वास्तव में सावन आ गया झूम के, शायद फिल्म वही है। और रफी जी की प्यारी सी आवाज, लिखा इस गीत को जिसने है उसका नाम आनंद बख्शी है, और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल, क्या बात।
2: धर्मेंद्र के ऊपर फिल्म आया गया आशा पानी जी।
1: जी जी जी, बहुत प्यारा गीत आया सावन झूम के, बहुत बढ़िया गया, बहुत बढ़िया गया।
2: और भैया
1: जी, और आशीर्वाद
2: है, कोई और नंबर
1: जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी। हेलो
4: हेलो
1: हेलो
4: हेलो
1: जी, चरण स्पर्श।
4: खुश रहिए सर जी, कैसे हैं आप?
1: अब पहले बताइए आप इतने दिन तक कहाँ।
4: क्षमा प्रार्थी हूँ कुछ कहने से पहले।
1: अच्छा हाँ, बिल्कुल क्षमा प्रार्थनी आपको होना पड़ेगा, बिल्कुल हम तो शिकायत करेंगे कभी।
4: जी जी
1: हाँ,
4: सुनते हम बराबर थे सर, बस कुछ सिचुएशन है, बस वही है।
1: हाँ, कुछ तो मजबूरियाँ नहीं होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता।
4: जी, और आप कैसे हैं?
1: आपका आशीर्वाद।
4: आज तो बहुत बेहतरीन प्रोग्राम चल रहा है।
1: हाँ, मतलब आज तो मतलब शुरुआत बहुत बेहतरीन हो गई।
4: हाँ, बहुत अच्छा, सभी लोग बहुत अच्छा गाए।
1: हाँ,
4: तो बिना विलंब के साथ शुरू करते हैं आशा भोसले जी का।
1: जी जी जी, बिल्कुल।

चलूं दिल झूम जाए ऐसी बहारों में, ले चलूं लिख दो लिख दो किताब दिल से कोई ऐसी दास्ता जिसकी मिसाल दे न सके सातों आसमान। लिख दो

0: थैंक यू सर।
1: क्या बात है भाई, क्या बात है। आओ हुजूर आओ, और आप बुलाएंगे तो हमको लगता है कि ऊपर से भगवान को भी आना पड़ेगा।
0: हाँ कोशिश
1: है, नहीं बहुत शानदार कोशिश है, मतलब इतना झूम के गाया है आपने, और वास्तव में लगता है कि एकदम आशा भोसले जी ही गा रही है।
0: हम गाने वाले थे सर दूसरा गाना, लेकिन दीदी ने बोला मेरे कि तुम सिर्फ ये गाना गाओ। दादा थोड़ा गाए थे कि थोड़ा सेमी क्लासिकल, तो मैं भी सोची थी जाओ मैं भी थोड़ा सा सेमी क्लासिकल गा दूं।
1: हाँ तो मतलब अभी समय है आपके पास,
0: तो सर हम दो तीन लाइन गाएंगे इसका, ठीक है।
1: नहीं नहीं एक स्टैंजा तो कम से कम सुनेंगे।
0: चलिए ठीक है सर, एक स्टैंजा गा देते हैं
1: जी।

0: थैंक यू सर।
1: क्या बात है भाई, क्या बात है, और बहुत सारी तारीफ। दादा ने लिखा है कि बहुत सुंदर शिल्पी, बहुत खूब, और भाभी जी ने भी तारीफ की और तेजा शुक्र लिखते, वाह क्या बात है, शानदार, क्या बात है, क्या बात है। मतलब आज क्लासिकल चला है और शुरुआत दादा ने ही की है
0: जी।
1: आज दादा ने शुरुआत कर दी और क्लासिकल चला, बहुत अच्छा। और भाई आपसे करबद्ध निवेदन है कि ज़रा समय निकाल लिया कीजिए 10-15-20 मिनट का इस परिवार के लिए।
0: एक्चुअली सब दोस्तों थोड़ा चेंज हो गया है ना, तो बस इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो जाता है।
1: नहीं नहीं, बड़ी प्रतीक्षा रहती है।
0: ठीक ठीक सर, बिल्कुल कोशिश करेंगे, प्रयास पूरा रहेगा सर।
1: कोशिश कामयाब हो जाती है
0: जी। प्रणाम सर
1: जी। प्रणाम प्रणाम। जी हमारे साथ जेके शाह जी भी उपस्थित हैं जी। गुड इवनिंग सर जी। जी गुड इवनिंग भाई, और आप वर्सेटाइल सिंगर की आवाज़ सुन रहे थे। शिल्पी जी कुछ भी गाती हैं तो बहुत शानदार गाती हैं। हमारे साथ राजेश कुमार सिंह जी हैं। सर नमस्कार जी, आपको भी नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। और जी आइए अब आपको सुनाते हैं एक प्यासा गीत, और मिलते हैं इस छोटे से गीत के उस पास। सुनते रहिए और रेडियो 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल एक प्यारा सा गीत कर रहा है आपकी प्रतीक्षा। हो सकता है इस गीत को आपने पहले कभी सुना हो, या हो सकता है आप पहली बार सुनने जा रहे हो। सुनकर बताइएगा कि ये गीत आपको कैसा लगा।

जी हाँ, कोई जूझ कम से हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो जी हाँ, कोई फोन पर है हमारे साथ लेकिन आवाज नहीं आ रही है। चलिए फिलहाल इस गीत को करते हैं मुकम्मल।

0: जी हाँ, आप देखते हैं भाई कौन जुड़ चुका है मेरे साथ। हेलो हेलो
1: हेलो हेलो, नमस्कार
0: जी। नमस्कार,
1: कैसे हैं सर जी आप?
0: जी आपका आशीर्वाद, आपका शुभ नाम।
1: जी नाम में क्या रखा है, फिर भी चलिए नाम बता ही देते हैं।
0: जी
1: जी, मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से अभिनाश सभी बोल रहा हूँ।
0: त्रिपुरा से बोल रहे हैं आप, क्या बात है भाई।
1: जी जी जी,
0: मौसम कैसा है त्रिपुरा का?
1: मौसम तो बहुत बढ़िया है, बस चल रहा है
0: जी।
1: अभी तो सुहाना मौसम है और हमारे जो सबसे बड़ा फेस्टिवल वो भी कल से शुरू होने वाला है नवरात्रि का।
0: जी जी जी, तो अविनाश जी आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं नवरात्रि की।
1: जी जी, आपको भी नवरात्रि की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।
0: जी, तो हम क्या सुनने वाले हैं आपसे
1: आज? कल बिग बी यानी अमिताभ बच्चन जी का भी जन्मदिन है, तो उनकी ही एक मूवी आई थी नमक हलाल, इसी का एक गीत सुना देते हैं। और ऊपर से 13 अक्टूबर को किशोर जी का भी पुण्यतिथि है, तो उनकी ही आवाज में एक गीत सुनने की कोशिश करते हैं। उनकी आवाज तो नहीं निकल पाएंगे, लेकिन मेरी आवाज में सुनिए किशोर कुमार जी भी गाया हुआ गीत। और इसमें डांस करते हुए नजर आए थे अमिताभ बच्चन जी।
0: क्या बात है
1: जी। जी, बुजुर्गों ने फरमाया के पैरों के ऊपर खड़े होके दिखलाओ, फिर हर फसाना तुम्हारा है। अरे रुकिए एक मिनट। बुजुर्गों ने फरमाया के अपने पैरों के ऊपर खड़े होके दिखलाओ, फिर हर फसाना तुम्हारा है। जमाने के सुरताल से चलते चले जाओ, फिर हर तराना तुम्हारा है। तो लो भैया, हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल, दबा ले जा तो तले उंगलियां लिया, ये जहां देख कर अपनी चाल। बाबा धन्यवाद के पग घुंघरू, के पग घुंघरू बाद मीरा नाची थी, के पग घुंघरू बाद मीरा नाची थी। और हम नाचे दिन घुंघरू के पग घुंघरू बाद मीरा नाची थी। ओ तीर भला किस काम का है, जो तीर निशाने से चूके चूके चूके रे, के पग घुंघरू बाद मीरा नाची थी। रे तनी निता चाचा, रे रे रे रे रे तनी निता चाचा, निसारे निसारे मारे मारे, रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे। आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं, बाखुदा शक्ल से तो चोर नजर आते हैं। उम्र गुजरी है चोरी में, सुख चैन बंद जुर्म की तिजोरी में। आपका तो लगता है बस यही सपना, राम राम जपना पराया माल अपना, पराई माल और पराई नर पे नजर मत डालो, ये आदत बुरी है ये आदत अभी बदल डालो, क्योंकि ये आदत ओ आग है जो एक दिन अपना घर फूके फूके फूके रे, के पग घुंघरू बाद मीरा नाची थी। और हम नाचे दिन घुंघरू के पग घुंघरू बाद मीरा नाची थी। जी
0: क्या बात है, पग घुंघरू बाद मीरा नाची थी, और आपने बिना घुंघरू के नाच के दिखा दिया।
1: जी जी, बिना घुंघरू के नाच के दिखा दिया, और आपको भी उसमें क्या बोलते हैं पार्टिसिपेट करना चाहिए ना इसमें।
0: जी जी जी, हम समझ नहीं पाए आपने क्या कहा।
1: मैंने बोला कि मैं तो ना डांस कर ले बिना घुंघरू के, लेकिन आप तो घुंघरू बांध के नाचना चाहिए आपको मेरे साथ साथ।
0: जी जी जी बिल्कुल, हम घुंघरू बांधे हुए हैं, हम नाच रहे थे जब तक आप गए तब तक हम नाचे।
1: अच्छा अच्छा, आप स्टूडियो में नाच रहे थे।
0: जी जी बिल्कुल नाच रहे थे।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, तो तब तक फिर मेरा सार्थक हुआ ये गीत गाना।
0: अरे बिल्कुल सार्थक हो गया।
1: जी जी बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम।
1: जी जी प्रणाम, शुभ रात्रि।
0: जी नमस्कार। जी भाई, तो ये भाई त्रिपुरा से हमारे साथ अविनाश जी मौजूद थे। और अब चलिए भाई, तुम गगन के चंद्रमा हो मैं धरा की धूल हूँ, ये गीत पूरा नहीं हो पाया, बड़े दिन के बाद हमारा मन हुआ था इस गीत को बजाने का, तो चलिए इस गीत को पूरा कर देते हैं। और अब तो घड़ी की सुइयां भी बता रही हैं कि आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है। तो शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होंठ पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। आसमान वाले ने चाहा तो कल रविवार को ठीक 1 बजे आपसे मुलाकात होगी आपके ही कार्यक्रम ओपन माइक अपना टैलेंट अपना FM में। अगर आपके पास कल रविवार है और आप फुर्सत में हैं तो नवरात्रि का पहला दिन है, आइए रेडियो गणेश के 89.6 FM परिवार करेगा आपकी प्रतीक्षा। आसमान वाले ने चाहा तो आपसे मुलाकात होगी ठीक 1 बजे आपके ही कार्यक्रम ओपन माइक अपना टैलेंट अपना FM में। तब तक सुनते रहिए और रेडियो गणेश के 89.6 FM, ये गोंडा ही नहीं अब बन चुकी है हम सभी के दिलों की धड़कन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं 89.6 FM ज्ञानस्थली रेडियो। मैं हूं आपकी लेट नाइट आरजे और आज की इस गहरी रात में लेके आई हूं एक ऐसी कहानी जिसमें कोहरा सिर्फ रास्तों पर नहीं उतरता, वो इंसान के मन के भीतर भी छा जाता है। आज की कहानी का नाम है कटा हुआ सिर और लाल बैग। तो रोशनी को थोड़ी धीमी कर लीजिए और अगर आप अकेले हैं तो एक बार आसपास नजर डालिए, क्या पता किसी कोने में कोई चीज चुपचाप आपकी ओर देख रही हो। रात के लगभग 2 बज रहे थे। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर इतना घना कोहरा छाया हुआ था कि हाथ को हाथ नहीं दिखाई दे रहा था। सड़क पर दूर दूर कोई रोशनी नहीं थी। गाड़ियों की हेडलाइटें भी कुछ कदम आगे तक उजाला करती और फिर सफेद धुंध में खो जाती। उस सुनसान सड़क पर एक पुरानी यात्री बस धीमी रफ्तार में आगे बढ़ रही थी। बस का इंजन लगातार घरघराता हुआ, ऐसा लगता है जैसे हर पल बंद पड़ जाने की धमकी दे रहा हो। भीतर केवल 2-3 मुसाफिर बैठे थे। कोई सीट से सिर टिकाकर सो रहा था तो कोई खिड़की से माथा लगाकर ऊंग रहा था। ड्राइवर की सीट पर बैठे विक्रम की आंखें भारी हो रही थी। उसने कई बार चेहरे पर पानी छिड़का, खिड़की थोड़ी खोली, फिर भी नींद उसकी पलकों पर लौट आ रही थी। बस के भीतर बजता रेडियो कुछ देर पहले खरखरा के बंद हो गया था। अब सिर्फ इंजन की आवाज और टायरों के नीचे दबती सड़क का शोर था। अचानक कोहरे के बीच एक पीली सी रोशनी उभरी। विक्रम ने आंखें सिकोड़ कर देखा, सड़क के ठीक बीचों बीच एक काली कार खड़ी थी। उसका अलग हिस्सा हल्का सा सड़क की दूसरी ओर झुका हुआ था। ड्राइवर वाला दरवाजा आधा खुला था और कार की अंदरूनी लाइट बार बार जल बुझ रही थी। विक्रम ने जोर से ब्रेक लगाया, बस झटके से रुकी। पीछे बैठे यात्री नींद में चौंक पड़े। एक का सिर आगे की सीट से टकराया। अरे कौन है जो इस तरह सड़क पर गाड़ी छोड़कर चला गया? विक्रम ने खिड़की के बाहर झुककर आवाज लगाई, किसी दिन खुद तो मरोगे ही, दूसरों को भी मरवाओगे। कोई जवाब नहीं आया। विक्रम ने कुछ क्षण कार को देखा। कोहरे के कारण उसके भीतर कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। बस की हेडलाइट कार के आधे खुले दरवाजे पर पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी कोई उसमें से उतरकर सड़क के किनारे गया हो। एक मुसाफिर ने धीमे से पूछा, ड्राइवर साहब, कोई दुर्घटना हुई है क्या?
1: पता नहीं, लेकिन यहाँ रुकना तो ठीक नहीं, विक्रम बोला। उस बस को धीमे से किनारे किया और उस कार के पास से निकालने लगा। जैसे ही बस कार के बराबर पहुंची, विक्रम की नजर एक पल के लिए अंदर गई। ड्राइवर की सीट खाली थी, लेकिन उसके सामने की सीट पर कुछ लाल रंग का रखा दिखाई दे रहा था, जैसे कोई बैग हो। बस आगे बढ़ी। विक्रम ने शीशे के पीछे देखा, कार की लाइट अब भी जल बुझ रही थी। फिर कोहरे ने उसे ढक लिया। कुछ 100 मीटर आगे पहुंचे थे कि बस की हेडलाइटों के सामने कोई आकृति दौड़ती हुई दिखाई दी। अरे, विक्रम जोर से चीखा और उसने ब्रेक लगाया। एक आदमी था, सड़कों के बीचों बीच भाग रहा था, कभी फिसलता कभी संभलता। उसने बस को आते देख रास्ते से हटने के बजाय दोनों हाथ उठा के उसे रोकने लगा। विक्रम ने बस रोकी, दरवाजा खोला तो वो आदमी लड़खड़ाता हुआ अंदर आया। उसके कपड़े मिट्टी से सने थे, चेहरे पे पसीना था, जबकि बाहर की ठंडी हवा में किसी का पसीना आना असंभव था। उसकी सांसें इतनी तेज चल रही थी कि वो बोल नहीं पा रहा था। दोनों हाथ एक मध्यम आकार के लाल चमड़े के बैग को जकड़े हुए थे। विक्रम ने शीशे से उसे देखा और पूछा, कौन हो भाई, कहां से आ रहे हो, तुम्हारे पीछे कोई पड़ा है क्या? उस आदमी ने खिड़की की ओर देखा, कोहरे के पार कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी वो जैसे किसी चीज को खोज रहा था। गाड़ी भगाओ, उसने कांपती हुई आवाज में कहा, कृपया जल्दी चलो, वो हमें देख लेगी। अरे कौन देख लेगी, आदमी ने जवाब नहीं दिया। उसने लाल बैग को और कस के जकड़ लिया। कुछ मिनट तक बस में किसी ने कुछ नहीं कहा, फिर पीछे बैठी एक महिला यात्री ने पूछा, आप घायल तो नहीं है, कहीं चोट लगी है क्या? उस आदमी ने सिर हिलाया, बोला, मेरा नाम समीर है, मैं रामपुर स्टेशन पे काम करता था और मेरे साथ जो कुछ हुआ, आप लोग शायद उसे सुनकर मुझे पागल समझेंगे सबकी तरह। विक्रम ने कहा, हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि तुम किससे डर रहे हो। समीर ने कहा, मुझे डर उस चीज से लग रहा है जो मेरे पीछे है, मुझे डर इस बात का है कि वो चीज मेरे इस बैग में भी आ गई है। बस के भीतर बैठे सभी लोगों की निगाहें लाल बैग पर टिक गई। उसकी जेब पूरी तरह बंद थी, फिर भी बैग के भीतर से कुछ आवाज आ रही थी। समीर ने बैग को झटके से अपने सीने से चिपकाया, बोला, इस आवाज को मत सुनना। फिर उसने गहरी सांस लेकर अपनी कहानी सुनानी शुरू किया। ये सब हुआ रामपुर के उस रेलवे स्टेशन से। रामपुर रेलवे स्टेशन शहर से दूर था और स्टेशन के पीछे एक छोटा सा जंगल है। दिन के समय भी वहाँ बहुत कम लोग दिखाई देते हैं। रात में तो स्टेशन पे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसे दुनिया से ही काट दिया हो। समीर वहाँ एक इंक्वायरी क्लर्क था। उसकी नौकरी का ज्यादातर समय पुराने रजिस्ट्रों में एंट्री करने, यात्रियों का ट्रेन समय बताने और रात की शिफ्ट में खाली प्लेटफॉर्म पे बैठे रहने से गुजरता था। स्टेशन मास्टर सुरेश उसे कई सालों से जानता था। नाइट गार्ड सुमित भी अक्सर उसके साथ चाय पीता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से समीर ठीक से सो नहीं पा रहा था। कभी उसे अपने घर की खिड़की के पास कोई खड़ा दिखाई देता, कभी रात में उसे अचानक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती। डॉक्टरों ने उसे आराम करने की सलाह दी, मगर उसे छुट्टी नहीं मिल रही थी। उस रात भी घड़ी में 11:30 हुए, प्लेटफॉर्म की पीली ट्यूबलाइट झपक रही थी, दूर की पटरियों पर धुंध बैठने लगी थी। समीर अपने कैबिन में रजिस्टर लिख रहा था, अचानक सन्नाटे में एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी, मम्मी मुझे घर जाना है। समीर का हाथ रुक गया, उसने कलम मेज पर रखी और खिड़की के बाहर देखा, प्लेटफॉर्म खाली था, मगर फिर आवाज आई, मम्मी बहुत अंधेरा है। इस बार आवाज लेडीज टॉयलेट से आ रही थी। समीर बाहर निकला, वो टॉर्च की रोशनी सामने करते हुए धीरे धीरे टॉयलेट की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ बच्चे के रोने की आवाज साफ होती जा रही थी। कौन है वहाँ, समीर ने पुकारा, कोई उत्तर नहीं मिला। टॉयलेट की दीवार के पास पहुँच के वो रुका, वहाँ ट्यूबलाइट बंद थी और उसी क्षण उसकी सांस जैसे गले में अटक गई। फर्श पे एक छोटे बच्चे का धड़ पड़ा था, उससे कुछ दूरी पर उसका सिर पड़ा था, सिर की आंखें खुली थी, चेहरा पीला था, होंठ कांप रहे थे और कटे हुए गले से वही रोने की आवाज निकल रही थी, मम्मी मुझे घर जाना है। समीर के हाथ से टॉर्च लगभग छूट गया, वो पीछे की ओर लड़खड़ाया, उसकी पीठ दीवार से टकराई, टॉर्च की रोशनी कांपते हुए फिर उसके सिर पर पड़ी। बच्चे की आंखें अब समीर को देख रही थी। समीर भागा, स्टेशन मास्टर के केबिन पे पहुंचा और चिल्लाया, सुरेश भाई प्लीज जल्दी बाहर आइए, वहां बच्चे का कटा हुआ सर पड़ा हुआ है। सुरेश नींद में था। वो झुंझलाते हुए बाहर निकला। उसने पूछा, क्या हुआ? समीर ने बताया, मैंने देखा वहाँ लाश है एक बच्चे की। दोनों तेज कदमों से टॉयलेट तक पहुँचे। समीर ने कांपती उंगली से फर्श की ओर इशारा किया। वहाँ कुछ नहीं था, न बच्चा, न सिर, न खून। फर्श सूखा और साफ था। टॉर्च की रोशनी में सिर्फ धूल के कुछ कण चमक रहे थे। सुरेश ने समीर का चेहरा देखा। समीर, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। रात की ड्यूटी में भ्रम हो सकता है, समीर ने कहा। लेकिन वो रो रहा था, मैंने वो सर देखा। पर स्टेशन मास्टर ने कहा, मैंने कुछ नहीं देखा। चलो पानी पीकर बैठो, सुबह घर जाकर आराम करना। सुरेश लौट आया। समीर वहीं कुछ देर खड़ा रहा। उसने फर्श को गौर से देखा। उसके जूते के पास एक छोटी सी गीली बूंद चमक रही थी। उसने झुककर उंगली लगाई। वो पानी नहीं था। उंगली पर हल्का लाल रंग लगा और वो बूंद अगले ही पल गायब हो गई। प्यारे श्रोतागण, कभी कभी डर किसी आवाज से नहीं, उस सन्नाटे से पैदा होता है जो आवाज के बाद रह जाता है। और आप कहानी के अगले मोड़ से पहले लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: वेलकम बैक। पहली रात के बाद समीर के लिए समय जैसे रुक गया था। दिन में वो खुद को समझाता कि शायद सचमुच थकान के कारण उसे भ्रम हुआ होगा, लेकिन जैसे ही रात होती उसे टॉयलेट की दीवार के पास वही बच्चा दिखाई देने लगता। उसकी खुली हुई आंखें, चेहरा सफेद और धीमी आवाज में, मम्मी मुझे घर जाना है। दो दिन तक कुछ नहीं हुआ। समीर ने किसी से उसके बाद कुछ नहीं कहा। वो स्टेशन पे काम करता, लेकिन उसकी नजरें बार बार टॉयलेट की तरफ उठ जाती। उसे लगता जैसे अंधेरे में कोई उसे देख रहा हो। तीसरी रात 1 बजे के आसपास वो प्लेटफॉर्म पे टहल रहा था। हल्का बुखार था। स्टेशन की घड़ी टिक टिक करके चल रही थी। नाइट गार्ड सुमित उसके पास आया। उसने प्लेटफॉर्म की लोहे की बेंच की तरफ इशारा करके कहा, समीर भाई, लगता है चादर ओढ़े कोई बूढ़ा यात्री लेटा हुआ है, बीच बीच में कांप भी रहा है। मैं आवाज देता हूँ लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा। बेंच पर कोई लेटा हुआ था, उसके ऊपर भूरी चादर थी और चादर के नीचे शरीर हल्का हल्का हिल रहा था। समीर ने कहा, शायद उसे ठंड लग रही है। सुमित आगे बढ़ के बोला, बाबा सुन रहे हैं, चादर के भीतर से एक घुटी हुई आवाज आई, मुझे छोड़ दो। दोनों चुप हो गए। कुछ क्षण के बाद फिर आवाज आई, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। सुमित ने समीर की ओर देखा, किससे कह रहे हैं आप? समीर ने पास जाके पूछा, आपको क्या हुआ, कोई मदद चाहिए? वो शरीर अंदर जोर जोर से कांपने लगा, बोला, मेरा सिर लौटा दो। समीर की उंगलियां ठंडी पड़ने लगी। उसने सुमित से कहा, चादर हटाओ। मैं? सुमित की आवाज कांप गई, शायद उन्हें चोट लगी है। देखो, सुमित ने चादर का कोना पकड़ा और खींचा। बेंच पर बूढ़े का धड़ पड़ा था, लेकिन गर्दन के ऊपर कुछ नहीं था। कटे हुए गले पर खून और मांस का काला थक्का जमा था। उसका शरीर अब भी कांप रहा था। समीर पीछे हटा, लेकिन तभी धड़ ने एक झटका दिया। कटे हुए गले से खून की तेज धार निकली और समीर के चेहरे और शर्ट पर आ गिरी। सुमित चीख पड़ा। समीर का चेहरा सुन्न हो गया। उसने हाथ से अपना चेहरा पूछा। उसकी उंगलियों पर गाढ़ा लाल रंग था। फिर से आवाज आई, कहाँ है मेरा सिर, मेरा सिर लौटा दो। समीर और सुमित भागे। समीर स्टेशन मास्टर के कमरे में पहुंचा और सुरेश को सब बताया। सुरेश टॉर्च लेकर उनके साथ दौड़ा, लेकिन जब वे बेंच के पास पहुंचे, बूढ़ा यात्री चादर ओढ़े आराम से सो रहा था। उसका सिर उसके शरीर पे था, धीरे धीरे खर्राटे ले रहा था। चादर साफ था, बेंच पर भी खून का कोई निशान नहीं था। सुरेश ने गुस्से में समीर से कहा, फिर वही बात, अब तुमने सुमित को भी डरा दिया, वहाँ कोई बूढ़ा आदमी सो रहा है। समीर ने अपने चेहरे को छुआ, उसकी शर्ट पर भी खून नहीं था, लेकिन उसे अभी भी खून की स्मेल आ रही थी। वो बोला, मैंने देखा था, खून मेरे चेहरे पे था। सुमित ने धीरे से कहा, सुरेश साहब, मुझे भी कुछ दिखाई दिया था, शायद धुंध या अंधेरे में। बस, सुरेश ने सख्ती से कहा, सुबह सब डॉक्टर को दिखाना, रात भर डर की बातें मत फैलाओ। सुरेश चला गया। सुमित कुछ देर समीर के पास खड़ा रहा। वो अपने केबिन में लौटा और दरवाजा बंद कर लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने पानी पिया, लेकिन गले का सूखापन नहीं किया। रात के 3 बजने वाले थे, तभी स्टेशन के बाहर ट्रेन की आवाज सुनाई दी। समीर चौंका, उस समय ट्रेन आने की सूचना भी नहीं थी। उसने रजिस्टर देखा, अगली ट्रेन तो सुबह 5:35 पर थी, मगर सीटी की आवाज आई। समीर खिड़की तक गया। कोहरे के बीच एक औरत प्लेटफॉर्म पर चलती दिखाई दी। उसने लाल रेशमी साड़ी पहनी थी। उसका पल्लू जमीन को छू रहा था। वो धीरे धीरे पटरियों की ओर बढ़ रही थी। समीर ने खिड़की खोली। सुनिए, वहाँ मत जाइए, ट्रेन आने वाली है। औरत ने उसकी ओर देखा तक नहीं। समीर के भीतर कोई बेचैनी उठी। उसने कैबिन से बाहर दौड़ लगाई। प्लेटफॉर्म पे पहुंचते ही उसे रेल की पटरियों के कंपन महसूस हुआ और औरत पटरी के बिल्कुल पास खड़ी थी। पीछे हटिए, समीर चिल्लाया। दूर से रोशनी उभरी। ट्रेन की आवाज बढ़ती गई। औरत ने अब भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जैसे ही इंजन पास आया, उसने एक कदम आगे बढ़ाया और वो ट्रेन सामने से चली गई। समीर ने आंखें बंद कर ली। कुछ डब्बे आगे जाके रुक गए। समीर का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे लगा उसकी छाती फट जाएगी। वो पटरी की ओर भागा। उसे लगा वहाँ कोई भयानक दृश्य होगा, लेकिन पटरी के पास एक सिर पड़ा हुआ था। लाल साड़ी का पल्लू कुछ दूर लहराता हुआ दिखाई दे रहा था। उस सिर की आंखें खुली हुई थी। चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। समीर उसके पास झुका। वो औरत उसकी आंखों में देख रही थी। फिर धीरे धीरे अपनी जीभ उसने बाहर निकाली। समीर पीछे हटा। अरे कोई है, स्टेशन मास्टर को बुलाओ। उसने ट्रेन की तरफ देखा। डिब्बे की खिड़कियों में यात्री बैठे थे। कुछ लोग उनींदे होकर बाहर झांक रहे थे। ट्रेन के ड्राइवर ने सिर निकाल कर पूछा, क्या हुआ, आप सिग्नल क्यों दे रहे हैं? अरे, औरत पटरी पर आई थी, उसका सर कट गया, आपने उसे नहीं देखा? ड्राइवर ने हैरानी से पूछा। अरे किसी को नहीं देखा, ट्रेन तो धीमी भी नहीं हुई, कोई रुकावट नहीं थी। सुरेश और सुमित वहाँ पहुँचे। पटरी पर न सिर था, न साड़ी, न खून। सुरेश ने समीर के दोनों कंधों को पकड़ लिया। बोला, अब बस, तुम आज सुबह तक घर जाओगे। मुझे तुम्हारी हालत की चिंता है, लेकिन तुम पूरी रात सबको परेशान करते रहते हो। समीर ने सुरेश की ओर देखा। उसकी आवाज धीमी थी। बोला, सर, अगर ये सब मेरे दिमाग में है तो मैं हर बार वही चीज क्यों देखता हूँ, बच्चा, बूढ़ा और अब ये औरत। सुरेश ने जवाब नहीं दिया। उस रात के बाद समीर ने स्टेशन के रजिस्ट्रों में पुराने रिकॉर्ड खोजने शुरू किए। उसे नहीं पता था कि वो क्या ढूंढ रहा है। शायद कोई घटना, कोई दुर्घटना, कोई ऐसा सुराग जो उसे बता सके कि ये चेहरे बार बार उसी के सामने क्यों आ रहे हैं। पुराने रजिस्टर में उसे कई साल पहले एक एंट्री मिली। रामपुर स्टेशन के बाद एक बच्चा लापता हुआ था। पुलिस को उसका परिवार नहीं मिला। एक और पन्ने पे लिखा था, रात में एक वृद्ध यात्री गायब हुआ, फिर सामने बेंच पे मिला, मगर उसकी पहचान नहीं मिली। वो मरा हुआ था और उसके ठीक नीचे फीकी स्याही में तीसरी एंट्री थी, एक महिला यात्री के साथ दुर्घटना, लेकिन विवरण का हिस्सा फटा हुआ था। समीर की नजर स्टेशन के अगले पन्ने पर पड़ी। वहाँ किसी ने लाल पेंसिल से एक शब्द लिखा था, सिर। उसी समय स्टेशन के बाहर से मोटरसाइकिल के रुकने की आवाज आई। समीर खिड़की तक पहुँचा। प्लेटफॉर्म के बाहर एक पुरानी मोटरसाइकिल खड़ी थी। उस पर एक आदमी और एक औरत बैठे थे। वे आपस में बहस कर रहे थे। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, आदमी चिल्लाया। औरत ने सिर से पल्लू हटाया। समीर के हाथ से रजिस्टर छूट गया। वो वही लाल साड़ी वाली औरत थी। उसका चेहरा कुचला हुआ था, माथे से खून बह रहा था, एक गाल का मांस का हिस्सा लटक रहा था। फिर भी उसकी आंखें खुली हुई थी और वो अपने पति से उसी तरह से झगड़ रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तुम यहाँ मुझे छोड़ के भाग गए थे, तुमने कहा था कोई मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। समीर की तो आवाज नहीं निकल रही थी। आदमी ने उस औरत की बाह पकड़ी। दोनों लड़खड़ाते हुए मालगाड़ी की ओर बढ़े। दूर से उसे मालगाड़ी की भारी गर्जना सुनाई दिया। समीर चिल्लाया, रुको, पीछे हटो। मगर वो दोनों नहीं रुके। अगले ही पल वे पटरी की ओर दौड़े और मालगाड़ी के सामने गायब हो गए। समीर को सिर्फ एक धड़ाम की आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार उसने सुरेश को नहीं बुलाया। उसे समझ में आ गया था कि स्टेशन पे दिखाई देने वाली चीजें उसे शायद कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रही है और वो सिर्फ उसको ही दिखाई दे रही है। प्यारे श्रोतागण, जल्दी मिलेंगे एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: प्यारे श्रोतागण, आप सुन रहे हैं 89.6 FM ज्ञान स्थली रेडियो। रामपुर स्टेशन के उन डरावने दृश्यों के बाद समीर अब वहां एक पल भी नहीं रुका। वो स्टेशन से बाहर भागा और घने जंगल की ओर जाने वाली सड़क पर दौड़ने लगा। स्टेशन पीछे छूट गया, आगे केवल अंधेरा था। पेड़ों की शाखाएं रास्ते पर झुकी हुई थी, जैसे उसे रोकना चाहती हो। समीर को ठीक से पता नहीं था कि वो किस दिशा में जा रहा है, वो बस भाग रहा था। उसने मोबाइल निकाला, नेटवर्क नहीं था, बैटरी भी खत्म हो रही थी। तभी जंगल के भीतर किसी बच्चे की रोने की आवाज आई, मम्मी मुझे घर जाना है। समीर रुक गया, फिर आगे बढ़ा। थोड़ी दूर जाने पर टॉर्च की रोशनी जमीन पर पड़े एक छोटे नीले जूते पर पड़ी। उसके भीतर मिट्टी और सूखे पत्ते भरे थे। समीर ने उसे उठाया ही था कि पास के पेड़ की छाल पर खरोचे हुए कुछ अक्षर दिखाई दिए। लिखा था, सिर वापस करो। समीर ने जूता नीचे रख दिया। तभी उसे घोड़े के टापों की आवाज सुनाई दी। वो आवाज धीरे धीरे तेज होती गई। समीर रास्ते के किनारे हट गया। उसे लगा कोई घुड़सवार इस सुनसान रास्ते से गुजर रहा होगा, लेकिन कोहरे के बाहर आई आकृति कोई साधारण घुड़सवार नहीं था। उसके घोड़े का शरीर पसलियों से भरा हुआ था, आंखें अंगारों की तरह लाल थी और नथनों से धुआं निकल रहा था। उसकी पीठ पर एक आकृति बैठी हुई थी, लंबा काला चोंगा पहने हुए। जहां उसका चेहरा होना चाहिए था, वहां अंधेरे का गहरा गड्ढा था। उसके हाथ में लोहे का एक बड़ा हसिया था, उसकी धार पे सूखा हुआ काला दाग चमक रहा था। समीर वहीं जम गया। घुड़सवार उसके पास आके रुका। घोड़े के खुर जमीन पर पड़े तो सूखे पत्ते जलने लगे। फिर उस आकृति ने कहा, मेरा सिर तुम्हारे पास है। समीर ने कांपते हुए जवाब दिया, मैंने तुम्हारा सर नहीं लिया। आकृति ने खाली कंधा घुमाया। उसके चोंगे के नीचे गर्दन का कोई निशान नहीं था, सिर्फ काली सड़ी हुई त्वचा थी। समीर कहता रहा, मैंने कुछ नहीं किया है। मगर घुड़सवार ने हसिया उठाया और समीर की गर्दन पर चला दिया। समीर आखिरी पल झुक गया, हसिया उसके पीछे पेड़ के तने में धस गई। समीर ने जमीन से एक भारी पत्थर उठाया और पूरी ताकत से उस हैवान के मुंह पर दे मारा। घुड़सवार पीछे लड़खड़ाया, थोड़ा बेकाबू होकर तड़पने लगा। समीर ने मौका देकर हसिये का डंडा पकड़ा और उसे पेड़ से खींचने लगा। बहुत भारी था, लेकिन उसने किसी तरह उसे निकाल लिया। घुड़सवार फिर उसकी ओर लपका। समीर ने हसिया घुमाया, वह उसके कंधे पर लगा और काला चोंगा फट गया। उसके नीचे मांस नहीं था, सिर्फ गीली मिट्टी, सूखी घास और हड्डियों का ढांचा। घुड़सवार ने समीर को जोर से धक्का दिया, वो पत्थरों पर गिर पड़ा। उसकी कोहनी छिल गई। वो उठने की कोशिश कर ही रहा था कि घोड़ा उसके ऊपर झुक गया। उसकी लाल आंखों की रोशनी सीधे समीर के चेहरे पर पड़ रही थी। समीर को स्टेशन का बूढ़ा आदमी याद आया, मेरा सिर लौटा दो। उसे फिर वो बच्चा याद आया, वो औरत याद आई। क्या ये सब एक ही कहानी का हिस्सा थे? समीर ने हसिये का डंडा दोनों हाथों से पकड़ा और घुड़सवार के पैरों पर दे मारा। घोड़ा घुटनों के बल गिर पड़ा और सवार नीचे लुढ़क गया। हसिया उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। समीर घिसटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। घुड़सवार ने उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया। उसकी लंबी हड्डियां जैसी उंगलियों ने समीर की कलाई पकड़ ली। उस स्पर्श से समीर की पूरी बांह बर्फ जैसी ठंडी पड़ गई। घुड़सवार की गर्दन से कई आवाजें एक साथ निकल रही थी। समीर ने नीचे देखा, उसके पैरों के पास एक लाल चमड़े का बैग पड़ा था। उसे समझ में नहीं आया ये बैग यहाँ कैसे आया। उसने तो स्टेशन से केवल अपना मोबाइल और टॉर्च उठाया था। समीर ने जल्दी से वो लाल बैग उठाया। बैग भीतर से खाली लग रहा था। समीर ने उसको बंद किया और वहाँ से भागने लगा। भागते भागते वो हाईवे पर पहुँचा। घना कोहरा था, तभी सामने से आती एक बस की हेडलाइट दिखाई दी। समीर ने सड़क पर दौड़कर दोनों हाथ ऊपर उठाए चिल्लाया, रोकिए प्लीज, बस रोकिए, मेरी मदद करिए। वो बेहद बुरी हालत में बस में चढ़ा और फिर फर्श पे गिर पड़ा था। उसके हाथ में वही लाल बैग था और वो धीरे धीरे कहानी सुना रहा था और बीच बीच में चिल्लाता जा रहा था, गाड़ी भगाइए जल्दी, अगर उसने देख लिया तो हम में से कोई नहीं बचेगा। श्रोतागण, जल्दी मिलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

रेडियो। आइए चलते हैं अब कहानी के अंतिम भाग पे। समीर की कहानी पूरे होते ही बस के भीतर मौत का सन्नाटा छा गया। विक्रम और यात्री सब स्तब्ध बैठे थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कुछ पूछे। तभी पीछे से एक कार के इंजन की आवाज आई। बस के पीछे वाली काली कार आ पहुंची, जो शुरुआत में सड़क पर लावारिस खड़ी थी। कार ने बस को ओवरटेक किया और उसके सामने आड़ी खड़ी हो गई। कार से दो लंबे चौड़े आदमी उतरे। एक ने मेंटल हॉस्पिटल का एप्रन पहन रखा था और दूसरा सुरक्षा गार्ड की यूनिफॉर्म में था। वे झटके से बस में चढ़े और तुरंत समीर को दबोच लिया। उन्होंने समीर के हाथों में हथकड़ियां पहना दी। समीर चीखने लगा, मुझे छोड़ दो, मैंने उसका सिर नहीं काटा, वो तो बैग में बंद है। उन दोनों के पीछे मुख्य डॉक्टर डॉक्टर मेहरा आए। उन्होंने विक्रम को अपना कार्ड दिखाया, बोला, घबराइए मत, हम सेंट्रल मेंटल हॉस्पिटल से हैं। ये हमारा सबसे खतरनाक मनोरोगी मरीज है जो आज रात अस्पताल का ताला तोड़कर भागा है। विक्रम ने हकलाते हुए पूछा, डॉक्टर साहब, ये जो कटा हुआ सिर और स्टेशन की बातें बता रहा है, क्या वो सब झूठ है? डॉक्टर मेहरा ने भारी आवाज में कहा, 3 महीने पहले रामपुर स्टेशन पे एक दर्दनाक ट्रेन हादसा हुआ था, जिसमें एक माँ और बच्चे के चीथड़े उड़ गए थे। समीर उस ड्यूटी पर था। उस हादसे के भयानक सदमे ने इसके दिमाग पर गहरा असर डाला। इसे सीवियर स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी हो गई है। डॉक्टर ने आगे बताया, इसे हर जगह कटे हुए सिर दिखाई देते थे। इसे लगता था कभी कोई राक्षस इसका सिर काटने आ रहा है। इसी वहम में आकर इसने 3 हफ्ते पहले रामपुर स्टेशन के पास एक बेकसूर यात्री पर हमला करके उसकी गर्दन काट दी थी। तब इसे मेंटल हॉस्पिटल भेजा गया था। विक्रम और यात्रियों का खून सूख गया। विक्रम ने डरते डरते लाल बैग की ओर देखा, तो इस बैग में क्या है? डॉक्टर मेहरा ने जल्दी से वो बैग खोला। बस के अंदर एक सड़ी हुई बदबू फैल गई। बैग में मेंटल हॉस्पिटल के नाइट गार्ड का कटा हुआ खून से सना सिर रखा था, जिसे समीर भागते समय काट कर ले आया था। सारे यात्री जोर से चीखने लगे। हथकड़ियों में जकड़ा समीर पागलों की तरह हंसने लगा, मैंने सिर काट दिया, अब वो मुझे नहीं मारेगा, देखो बैग में भी कैसे मुस्कुरा रहा है। अस्पताल के लोग समीर को खींचते हुए बस से उतार कर कार में बिठाने लगे। वे उसे लेकर अंधेरे में गायब हो गए। बस में फिर गहरा सन्नाटा छा गया। विक्रम के हाथ अभी भी कांप रहे थे। उसने हिम्मत जुटाकर गियर बदला। जैसे ही उसने रियर व्यू मिरर में देखा, बस की सबसे आखिरी सीट पर वही लाल साड़ी वाली औरत बैठी हुई थी। उसका कटा हुआ सिर उसकी गोदी में रखा हुआ था और वो विक्रम की तरफ देखकर भयानक तरीके से मुस्कुरा रही थी। श्रोतागण, इसी के साथ आज की ये डरावनी दास्तान यहीं समाप्त होती है। मैं हूँ आपकी लेट नाइट आरजे और आप सुन रहे थे लेट नाइट हॉरर शो। उम्मीद है आप इस कहानी को याद करके पीछे मुड़कर देखने से बचेंगे। अपना ख्याल रखिए और इस रात को सुकून से गुजरने दीजिए। गुड नाइट।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: काले काले बादलों का अंबर पर डेरा है, ठंडी ठंडी हवाओं ने हर तरफ से घेरा है, रिमझिम बरसती बूंदों ने सुर ऐसा छेड़ा है, इस सुहाने मौसम ने हम सब का मन मोहा है। कागज की कश्तियों का पानी में बह जाना, भीगी भीगी मिट्टी की खुशबू का महक जाना, चाय की चुस्कियों के साथ यादों का आ जाना, बड़ा ही हसीन है बारिश का ये तराना।
1: पत्तों पर थिरकती है मोती जैसी बूंदे, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति आंखें मूंदे, हर दिल में जग रही है एक नई उमंग, चलो आज बिखरेंगे हम भी सुरों के नए रंग। संगीत की महफिल है सावन की यह रात, सुर से सुर मिलाएंगे होगी सुरों की बरसात, हो जाइए थामिए एक दूसरे का हाथ। शुरू करते हैं आज का बीबीजी यानी कि भूले बिसरे गीत। मैं हूँ आरजे ख्वाहिश।
0: मैं हूँ आरजे गुमसुम।
1: तो रात के सफर को आइए शुरू करते हैं एक बहुत ही प्यारे से नाम के साथ। हाँ जी दोस्तों, नाम हमारा होने वाला है आज बारिश, और बारिश हो और प्यारे प्यारे गीत ना हो ये कहाँ मुमकिन है। तो आइए आज का सफर शुरू करते हैं प्यारी सी बूंदों के साथ। सुनाती हूँ एक प्यारा सा नगमा।

जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जब कोई भी गाना होता है, जब कोई भी फिल्म होती है, तो उस शूटिंग के दौरान कोई ना कोई एक ऐसी कहानी उस गाने के पीछे की होती है। आज एक बहुत ही प्यारा सा गाना और उसके पीछे की कहानी, जो कि बारिश में फिल्माया गया है, राज कपूर और नरगिस पर भारतीय सिनेमा का सब आइकॉनिक रेन सॉन्ग है। इस गाने की शूटिंग के दौरान इस एक मज़ेदार वाक्या हुआ था, जो आज मैं आपको बताऊंगी। गाने में तीन छोटे बच्चे रेनकोट पहनकर सड़क पर खेलते हुए दिखाई देते हैं। वे बच्चे कोई और नहीं बल्कि राज कपूर के ही बच्चे रणधीर कपूर, रीमा कपूर और ऋषि कपूर थे। ऋषि कपूर ने अपनी बायोग्राफी में बताया भी है कि शूटिंग के दौरान रो रहे थे, तब नरगिस ने उन्हें चॉकलेट का लालच देकर चुप कराया और शॉट के लिए राजी किया गया। ये गाना आज भी सच्चे प्यार की एक बहुत बड़ी मिसाल है। प्यार हुआ, इकरार हुआ, इस गाने को सुनेंगे, लेकिन एक और गाना है जिसे हम और बताएंगे आपको।

अब आती है बारी उस गाने की जो आज भी हम सुनते हैं तो बस कुछ याद आ जाता है। कुछ यादें वो बारिश के दिनों वाली फिर से ताज़ा हो जाती हैं। गाना है एक लड़की भीगी भीगी सी। किशोर कुमार और मधुबाला का ये गाना आज भी इतना मशहूर है कि जो भी इसे सुनता है और गुनगुनाता है वो सावन की बूंदों के साथ कुछ खो सा जाता है। मधुबाला का चुलबुला अंदाज और उसी के साथ किशोर कुमार की मस्ती, क्या ही कहना है इस गाने का। बता दें कि संगीत निर्देशक SD बर्मन कुछ ऐसा संगीत चाहते थे जो रोज़मर्रा की आवाज़ों से मेल खाए। किशोर कुमार इस गाने की जो सिचुएशन थी उसे ऐसे बनाना चाहते थे कि लगे कि वो बिल्कुल असली है। इसे बिल्कुल असली और एक्चुअल में दिखाने के लिए गैराज के टूल्स का इस्तेमाल किया गया। गाने की शुरुआत में जो कार के नेटबोर्ड कसने और पानी की बाल्टी पलटने जैसी आवाज़ें आती हैं वो पूरी तरीके से सिचुएशनल थी। गाने में किशोर कुमार की असली मस्ती और मधुबाला की बेमिसाल खूबसूरती का ऐसा फ्यूजन हुआ कि ये गाना एवरग्रीन बन गया। आज भी ये गाना लोगों की जुबान पर उतना ही कहीं ना कहीं आता है और उतनी ही मदहोशी और मस्ती से बारिश के दिनों में गुनगुनाया जाता है। तो आइए लिसनर्स चलते हैं, एक प्यारा सा गीत सुनते हैं जो कि है एक लड़की भीगी भागी सी।

हाँ जी दोस्तों, जब हम कभी किसी से मिलते हैं लाइक समवन स्पेशल, तो अगर बारिश हो जाए और हम बाइक पे हों, गाड़ी पे हों, तो वो जो माहौल बन जाता है ना, बेहद खुशनुमा बन जाता है। और उसी खुशनुमा मौसम में अगर ये गाना चल जाए, रिमझिम की तराने लेके आई बरसात, ये मूवी है काला बाजार। और इस कहानी के पीछे भी, इस गाने के पीछे भी एक बहुत प्यारी सी कहानी है, जो कि देव आनंद और वहीदा रहमान का एक बेहद खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग है। इसकी शूटिंग मुंबई में असली बारिश में की गई थी। और आपको तो पता ही है कि मुंबई की बारिश, वाओ, मतलब कहा जाता है कि एक मुंबई की बारिश हो और लड़की भीगी भागी हो, और रात की जो सड़कें होती हैं, वहाँ की सड़कें कभी भी सोती नहीं हैं। तो मुंबई में ये गाना फिल्माया गया, वो भी असली बारिश में। निर्देशक विजय आनंद पर्दे पर असली मानसून का जादू दिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कोई नकली वाटर टैंक इस्तेमाल नहीं किया। देव आनंद और वहीदा रहमान एक ही छाते के नीचे मुंबई की सड़कों पर चल रहे थे। उस दौरान में ये भी कहा जाता है कि उस दौर में भारी कैमरों के साथ असली बारिश में शूट करना बेहद मुश्किल था, लेकिन देव साहब की बेफिक्री और वहीदा जी की सादगी ने इस गाने को एक टाइमलेस क्लासिक बना दिया। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को, रिमझिम के तराने लेके आई बारात।

अब आते हैं, बात करते हैं उस गीत की जो कि है फिल्म ए लव स्टोरी का, जो कि है रिम झिम रिम झिम। संगीत सम्राट आर डी बर्मन का ये बहुत ही खूबसूरत और प्यारा एल्बम था। पंचम दा इस गाने को लेकर बेहद भावुक थे, क्योंकि एक लंबे समय के बाद वो इसी गाने से बॉलीवुड में वापसी कर रहे थे। उन्होंने इस गाने को बारिश की बूंदों के साथ पिरोया, और ऐसा पिरोया कि आज भी ये हर किसी की जुबान पर कहीं ना कहीं सुनाई दे जाता है। अनिल कपूर और मनीषा कोहराला पर फिल्माए गए इस गाने की रिलीज से ठीक पहले पंचम दा ने इसके धुनों को फाइनल किया था। लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई भी काम वक्त से बहुत पहले या वक्त के कुछ पहले होता है तो बात ही कुछ अलग होती है। आखिरी टाइम पर फाइनल हुई धुनों ने ही इस गाने को इतना खूबसूरत बना दिया कि ये आज भी कहीं ना कहीं बारिश की जब भी बात आती है तो इसे ज़रूर गुनगुनाया जाता है। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गीत, जो कि है रिम झिम रिम झिम।

गाना सुनाने से पहले मैं बताऊं, एक बहुत ही प्यारा सा गीत है जो कि है जिंदगी भर नहीं भूलेगी ये बरसात की रात। अब इस गाने के पीछे की बहुत ही प्यारी सी कहानी है। गीतकार साहिर लुधियानवी ने इस गाने को एक गहरी कविता के रूप में लिखा था। कहानी के अनुसार गायक को बारिश की एक रात में एक अनजान लड़की यानी मधुबाला से प्यार हो जाता है। इस गाने को बारिश के बैकड्रॉप के साथ इस तरह कंपोज किया गया था कि ये केवल एक गाना नहीं बल्कि फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाने का एक मुख्य जरिया बना। इस प्यारी सी कहानी के साथ आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को जिसमें हमारी हम सब की प्यारी मधुबाला।

0: आइए अब बात करते हैं उस गीत की जो बरसात के दिनों में कहीं ना कहीं सभी की जुबान पर होता है, ओ सजना बरखा बहार आई। इसे गाया था लता मंगेशकर जी ने और ये फिल्माया गया था साधना जी पर। संगीतकार सलिल चौधरी एक दिन तेज बारिश के दौरान अपने घर की खिड़की के पास बैठे थे। खिड़की पर गिरती पानी की बूंदों की रिदम से उन्हें एक धुन सूझी। उन्होंने सबसे पहले इसे बंगाली गाने ना मोन लागे रे के रूप में रिकॉर्ड किया था। बाद में विमल राय की फिल्म के लिए इसी धुन को हिंदी में बदल दिया गया, जो हिंदी सिनेमा के सबसे खूबसूरत और शांत मानसून के गानों में से एक बन गया। तो आइए सुनते हैं ये बेहद ही प्यारा सा गीत।
1: ओ सजना

आवाज से ही इस गाने की पहचान है और आवाज ही हर किसी के एक व्यक्तित्व की पहचान भी होती है। जी हाँ दोस्तों, अगला गाना इस क्लासिक गाने को मन्ना डे ने और लता मंगेशकर ने गाया था। संगीत सलिल चौधरी का था और ये गाना था हरियाला सावन ढोल बजाता आया। विमल रॉय की इस फिल्म का यह गाना किसी प्रेमी प्रेमिका के रोमांस पे नहीं बल्कि भारतीय किसानों और धरती के जुड़ाव पर आधारित है। कहानी के अनुसार सूखे से परेशान गांव वाले जब आसमान में काले बादल देखते हैं तो खुशी से झूम उठते हैं क्योंकि बारिश का मतलब उनके लिए नई जिंदगी और फसलों का उगना है। गीतकार शैलेंद्र ने बादलों की गड़गड़ाहट की तुलना ढोल की आवाज से की है, इसीलिए इस गाने का नाम भी कुछ ऐसा दिया, हरियाला सावन ढोल बजाता आया। आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को।

आइए अब बात करते हैं उस गीत की जिसने बारिश के रोमांटिक पहलू को दिखाने की बजाय आम आदमी की खुशियों को दिखाया है, जो कि है दम दम डीगा डीगा। इसे मुकेश ने गाया था और अभिनेता राज कपूर जी पर यह फिल्माया गया था। संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। इस गाने में जब राज कपूर जी आम आदमी की खुशी को दिखाते हैं, मुंबई की सड़कों पर भरे पानी में थिरकते हैं, तो वो गर्मी के बाद आई हुई पहली बरसात और राहत का जश्न मना रहे होते हैं। इस गाने की शूटिंग के दौरान सड़कों पर असली जैसा माहौल बनाने के लिए भारी मात्रा में टैंकरों का इस्तेमाल किया गया था। बहुत ही प्यारे धुनों के साथ इसे शूट भी किया गया था। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

0: सूरत आप। बरसात की बूंदों ने आज फिर यादों का जहां आबाद किया, सुरमई नगमों ने गुजरे दौर के हर लम्हे को याद किया। अब ठहरने लगी है बारिश और महफिल समेटने का वक्त है। मौसम की हर बूंद ने आज एक नया तराना गाया है, पुराने गीतों ने हर दिल में एक नया एहसास जगाया है। हवाओं में घुली है आज भी इन सुरों की भीनी सी खुशबू। जाने का वक्त तो है पर दिल यहीं कुछ छूट गया है।
1: जैसे भीग कर थम जाती है सावन की यह हसी बरसात, वैसे ही अब मोड़ पर आ पहुंची है सुरों की ये प्यारी सी रात। दिलों में समेट कर ले जा रहे हैं इन गीतों की गर्माहट, अलविदा करते हैं आज थाम कर यादों की हसीन सौगात। फिर लौट कर आएगी ये रिमझिम, फिर सजेगी ये महफिल, पुराने गानों के सहारे फिर आसान होगी हर राह और मंजिल। भूले बिसरे गीत के इस सफर को आज हम यहीं रोकते हैं, अगली बारिश में फिर मिलने का वादा करके जाते हैं इस दिल से। तो मैं हूँ आपकी आरजे ख्वाहिश
0: और मैं हूँ आरजे गुमसुम।
1: रात के सफर में भूले बिसरे गीतों का सफर हम यहीं पर करते हैं आज एंड, मिलेंगे फिर से। तब तक के लिए शुभ रात्रि।
0: शुभ रात्रि।